हर जस लेखा से चरण सहावे जो हर मार्ग चले हौ बाल तिन संग पछाणा जियो सुन साजन मेरे मीत प्यारी साध संग किन माही उधारी किल बिख काट हुआ मन निर्मल।

दयाला सगले तृप्त अगाए जियो वाण त्रेण त्रिपवन की तुन हरिया करनहार खिन पीतर करिया गुरमुख नानक तिसै आराधी मन की आस पुजाए जियो माज महला पंजवा तू मेरा पिता तू है मेरा माता तू मेरा बंदप तू मेरा

तेरा माणा, तुझ बिन दूजा अवर न कोई। सब तेरा खेल अखाड़ा जियो, जी जंत सब तुद उपाय। जित जित पाणा तित तित लाए, सब किस कीता तेरा हुवै। नाही किस असाड़ा जियो, नाम त्याए महा सुख पाया।

जी प्राण प्रभ मन है आधारा, भगत जीव है गुण गाए अपारा, गुण निदान अमृत हर नामा, हर त्याए त्याए सुख पाया जीओ, मनसा तार जो करते आवे, साध संग जन्म मरण मटावे, हास मनोरथ पूरन होवे, टीटत गुर दरसाया जीओ, अगम अगोचर किस मित नहीं जानी, साधक सिद्ध त्यावे है ज्ञानी, खुदी मिटी चूका पुलावा, गुरमन ही मह प्रगटाया जीओ, आनंद मंगल कल्याण।

तुम ठाकुर अत पारी तुमरी करतब तुम ही जान हो तुमरी ओट गोपाला जियो गुण गावत मन हरिया हुए कथा सुनत मल सगली खोए।

सुख पाया, ठांड पाई प्रभ आपे जीव, सब किस बहुतो बहुत उपाया, कर कृपा प्रभ सगल रजाया, दात करहो मेरे दातारा, जी जंत सब त्रापे जीव, सच्चा साहेब सच्ची नाई, गुर प्रसाद तिस सदा त्याई।

कर कृपा प्रभ भगती लाव हो सच नानक अमृत पिए जियो माज महला पंजवां पये कृपाल गोविंद गुसाई मेघ वरसै सबनी थाई दीन दयाल सदा कृपाला ठांड पाई करतारी जियो अपने जी जंत प्रित पारी ज्यों बारक माता संभारी दुख भंजन सुख सागर स्वामी देत सगल आहारी जियो जल थल पूर रहया मेहरवाना सद बलिहार जाइय कुर्बाना रैन दिन सतिस सदा त्यानी जे खिन मह सगल उदारे जियो राख लिए सगले प्रभ आपे उतर गए सब सोग संतापे नाम जपत मन तन हरियावल प्रभ नानक नदर निहारे जियो माज महला पंजवां जिथे नाम जपिए प्रभ प्यारे से अस्थल सोइन चौबारे जिथे नाम ना जपिए मेरे गोविंदा से ही नगर उजाड़ी जियो हर रुखी रोटी खाए संभाले हर अंतर बाहर नदर निहाले खाए खाए करे बद फैली जान विसु की वाड़ी जियो संतां से तीरंग न लाए साकत संग विकर्म कमाए दलाब दे खोई अज्ञानी

सगल मनोरथ पूरन होए, कदे ना होए दुखाला जीओ। माज महला पंजवा, पार ब्रह्म प्रभ मेघ पठाया, जल थल महियल दह दिस वरसाया। शांत भई बुझी सब तृष्णा, आनंद भया सब ठाई जीओ। सुख दाता दुख भंजन हारा, आप

आठ पहर तुद प्याई जीओ, माज महला पंजवा, सबे सुख पए प्रभ तुठे, गुरपूरे के चरण मन उठे, सहज समाद लगी लिव्य अंतर, सोरा

जय सागर कटिय जम की फासा जीव चार पदार्थ हर की सेवा पार जात जप अलख अपेवा काम क्रोध किल बिख गुर काटे पूर्ण होई आसा जीव पूर्ण भाग भये जिस प्राणी साध संग मिले सारंग पानी नानक नाम वसया जिस अंतर परवान गिरस्त उदासा जीव।

ज्ञान ध्यान पूर्ण परमेश्वर प्रभ सबना गल्ला जोगा जीओ छिन मह थाप उथापन हारा आप एकंती आप पसारा लेप नहीं जग जीवन दाते दर्शन दिते लहन विजोगा जीओ अंचल लाए सब शिष्ट तराई अपना नाओ आप जपाई गुर बोहित पाए।

ऐसा भली जाए। सोई सियाणा सो पतवंता, हुक्म लग है जिस मीठा जियो। सब परोई इकत धागे, जिस लाए लए सो चरनी लागे। ऊंद कवल जिस होए परगासा, तिन सर्व निर

निर्मल जिन देखे सब उतर कलमल नानक नाम त्याए त्याए जीवै बिनसिया भ्रम भव तीठा जीओ माज महला पंजवा झूठा मंगण जे कोई मांगे।

आन दिन नित जागी बाहा पकड़ तिस स्वामी मेले जिस कह मस्तक लहना चरण कमल भगता मन उठे बिन परमेश्वर सगले मुठे संत जना की धूड़ नित बांच है नाम सच्चे का गहना उठत बैठत हर हर गाइये जिस सिमरत वार निह चल पाइये नानक कहो प्रभ होए दयाला तेरा कीता सहना राग माज अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

पाया माया मोह चुकावणिया हौ वारी जियो वारी सतगुर कै बलिहारनिया गुरमती परगास हुआ जी अन दिन हर गुण गावणिया रहाऊ।

भगत करावणिया। इस काया अंदर वस्त असंखा, गुरमुख साथ मिले ता वेखा। नौ दरवाजे दसवें मुक्ता, अनहद शब्द बजावणिया।

निर्मल नाम त्यावनिया जीवन मरना सब तुदै ताई जिस बख्शे तिस दे वड्याई नानक नाम त्याए सदा तू जम्मन मरन सवारनिया माज महला तीजा मेरा प्रभ निर्मल अगम अपारा बिन तकड़ी तोले संसारा गुरमुख होवे सोई पूजै गुण कहे गुणी समावनिया हौ वारी जीओ वारी हर का नाम मन वसावनिया जो सच लागे सियान दिन जागे दर सच्चे सोभा पावनिया रहाउ आप सुने तै आपे वेखे जिसनो नदर करे सोई जन लेखे आपे लाए लए सो लागे गुरमुख सच कमावनिया जिस आप भुलाए सो किथे हाथ पाई पूर्व लिखिया सो मेटना ना जाई जिन सतगुर मिलिया से वड भागी पूरे कर्म मलावनिया पे अड़े तन अन दिन सुती कंतव सारी अवगण मुत्ती।

तै नाही, जमपुर बद्दा दुख सहाही, अन्ना बोला किस नदर ना आवे, मन मुख पाप पचावनिया, एक रंग राते जो तुद आप निवलाए, पाए भगत तेरे मन पाए, सतगुर सेवन सदा सुख दाता, सब इच्छा आप पुजावनिया, हर जीओ तेरी सदा सरनाई, आपे बख्शे दे वडियाई, जम काल तिस नेड़ ना आवे, जो हर हर नाम त्यावनिया।

तू आपे सच बुझा बनिया जिन सच जाता से सच समाणी हर गुण गावे सच वखाणी नानक नाम रते बैरागी

सदा नाली, गुर प्रसादी को नदर निहाली। मेरा प्रभु अत ऊचो ऊचा, कर कृपा आप मनावणिया, माया मोहे एहो जग सुता।

गत पाई भगती रत्ता सदा बैरागी आप मार मनावनिया आप अपाए तंदे लाई लख चौरासी रिजक आप अपड़ाई नानक नाम त्याए सच।

गुर कै शब्द परख परखाया, जिन सच पल्लै सच बखान है, सच कसवटी लावणिया। हो वारी जी ओ वारी, गुर की बाणी मन वसावणिया। अंजन माहि निरंजन पाया, ज्योति ज्योत मलावणिया। रहाउ इस काया अंदर बहुत पसारा, नाम निरंजन अति अगम अपारा। गुरमुख हो ऐसो ही पाई, आपे बख्श मलावणिया। मेरा ठाकुर सच दृढ़ाई, गुर प्रसादी सच चित लाई। सचो सच वरतै सबनी थाई, सच्चे सच समावणिया। वे परवाह सच मेरा प्यारा, किल विख अवगुण काटन हारा। प्रेम प्रीत सदा त्याई, भै भाए भगत दृढ़ावणिया। तेरी भगत सच्ची जे सच्चे भावै, आपे दे ना पछुतावै। सबना जिया का एको दाता, शब्दे मार जीवावणिया। हर तुद बाजो मैं कोई नाही, हर तुदै सेवी तै तुद सलाही। आपे मेल लैहो प्रभ साची,

आज महला तीजा अमृत बाणी गुर की मीठी गुरमुख विरलै किने चख डीठी अंतर प्रगास महारस पीवे दर सच्चै शब

पाया, गुर प्रसाद किन बिरले चित लाया। तुद सलाहे नारजा कबहू सच्चे, नावे की भुख लावणिया। एको वेखा अवर ना बिया, गुर प्रसादी अमृत पिया।

परम च कामणिया, परम चकाया सदा सुख पाया, गुर प्रसाद परम पद पाया, अंतर निर्मल निर्मल बाणी, हर गुण सहजी गावणिया, सिमरत शास्त्र वेद बखाणे, परमे भूला।

माज महला तीजा आपे रंगे सहज सुपाई गुर कै शब्द हर रंग चढ़ाई मन फन रत्ता रसना रंग चलूली पै पाए रंग चढ़ावणिया हौ वारी जी ओ वारी निरपहो मन वसावणिया गुर किरपा ते हर निरपहो त्याया बिख पौ जल शब्द तरावणिया रहाउ मन मुख मुग्ध करह चतुराई नाता धोता थाए ना पाई जिहा आया तेहा जासी कर अवगण पछो तावणिया मन मुख अंधे किशु ना सूजै मरन लखाए आए नहीं बूजै मन मुख कर्म करे नहीं पाई बिन नामै जन्म गवावणिया सच करनी शब्द है सार पूरा गुर पाईऐ मोख द्वार अन दिन बाणी शब्द सुनाई सच राते रंग रंगावणिया रसना हर रस राती।

कबीरा शब्द बड़े आई देवनिया रहाऊ वेला वक्त सब सुहाया जित सच्चा मेरे मन पाया सच्चे सेवै सच वडियाई गुर कृपा ते सच पावनिया पाओ भोजन।

हर सच्चा गुर भगती पाईऐ सहजे मन वसावणिया रहाउ सतगुर सेवे ता सब किछ पाए जेहि मनसा कर लागै तेहा फल पाए सतगुर दाता सबना वथू का पूरै भाग मलावणिया इहो मन मैला इक न त्याए अंतर मैल लागी बहु दूजै पाए तट तीरथ दसंतर भवै अहंकारी होर वधेरै होमै मल लावणिया सतगुर सेवे तां मल जाए जीव तमरै हर स्यों चित लाए हर निर्मल सच मैल न लागै सच लागै मैल गवावणिया बाज गुरु है अंध गुबारा अज्ञानी अंधा अंध अंधारा बिस्टा के कीड़े बिस्टा कमावे हैं फिर बिस्टा माही पचावणिया मुक्ते सेवे मुक्ता हुए हम मैं ममता शब्द देखो है अन दिन हर

रहाउ पंडित पढ़ है साधना पाव है, दूजे भाई माया मन परमाव है, माया मोहे सब शुद्ध गुआई।

गुरमुख जात पत सब आपी, नानक गुरमुख नाम त्याई, नामे नाम समावणिया। माज महला तीजा, उत्पत पर लोह शब्दे होवे, शब्दे ही फिर ओ पत होवे। गुरमुख वरतै सब आपे सच्चा, गुरमुख अपाए समावणिया। हों वारी जीओ वारी, गुरपूरा मन वसावणिया। गुर ते शांत भगत करे दिन राती, गुण कहे गुणी समावणिया। रहाउ गुरमुख धरती गुरमुख पाणी, गुरमुख पवन बै संतरे।

मूड़ा बाहर पाली मनमुख अंधे फिर है बेताली जिथे वत होवे तिथों कोई ना पावे मनमुख परम भुलावणे।

पूर्व लिखिया सो कर्म कमाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, बिन भागा गुर पाई नाही, शब्द मेल मलावणिया, गुरमुख अलिप्त रह संसारी, गुर कै तकिया नाम आधारी, गुरमुख जोर करे क्या तिसनो, आपे खप दुख पावणिया, मनमुख अंधे सुध ना काई, आत्म घाती है जगत कसाई, निंदा कर कर बहु भार उठावे, बिन मजूरी भार पहुंचावणिया, इहो जग वाड़ी मेरा प्रभ माली, सदा संभाले को नाही खाली, जेही वासना पाए ते ही वरतै, वासु वास जनावणिया, मनमुख रोगी है संसारा, सुखदाता विसरिया अघम अपारा, दुखिए नित फिर है बिललांदी, बिन गुर शांत ना।

किस बाज हूँ सच्चे मैं होर न कोई, जिस लाए लए सो निर्मल होई। नानक नाम वसै घट अंतर, जिस देवै सो पावणिया। माज महला तीजा, अमृत नाम मन वसाई। हम मैं मेरा सब दुख गवाई।

अमृत बाणी मन वसाई, अमृत नाम त्यावणिया रहाव। अमृत बोलै सदा मुख वैणी, अमृत वेखै परखै सदा नैणी। अमृत कथा कह सदा दिन राती, अवरा आख सुनावणिया। अमृत रंग रत्ता लिवलाई, अमृत गुर पर

नदर करे ता हर गुण गावे, नदरी सच समावणिया। सबना उपर नदर प्रभ तेरी, किसै थोड़ी किसै है कनेरी। तुझ ते बाहर किस ना होवै, गुरमुख सोजी पावणिया। गुरमुख तत है बीचारा,

अंतर मन मोह है। अमृत मन तन बाणी रत्ता अमृत सहज सुनावणिया मनमुख भूला दूजै पाए खुआए नाम ना लेवै मरै बिख खाए आंदिन सदा विष्टा मैं वासा बिन सेवा जन्म गुआवणिया।

मन निश्चल निज घर वासा पावणिया गुरु कै शब्द हृदय दिखाया माया मोह शब्द जलाया सचो सचा वेख सलाही गुर शब्दी सच पावणिया जो सच राते तिन सची लिव लागी हर नाम संभाल है से वड भागी सच्चा शब्द आप मलाई सत संगत सच गुण गावणिया लेखा पढ़िया जे लेखे विच होवे ओहो अगम अगोचर शब्द सुद होवे अन दिन सच शब्द सलाई होर कोई ना कीमत पावणिया पढ़ पढ़ था के शांत ना आई तृष्णा जाले सुध ना काई बिख विहाज है बिख मोह प्यासी।

नानक एको नाम वरतै मन अंतर गुर प्रसादी पावणिया। माज महला तीजा वर्ण रूप वरतै सब तेरे मर मर जमै फिर पवह कनेरे तू एको निश्चल अगम अपारा गुरमति बूझ बुझावणिया। हौ वारी जियो वारी राम नाम मन वसावणिया किस रूप ना रेख्या वर्ण ना कोई गुरमति आप।

प्रगट वरतै सब थाई ज्योति ज्योत मलावणिया तिसना अगन जलै संसारा लोभ अभिमान बहुत अहंकारा।

सच सलाही सब घट अंतर सचो सच सुहावनिया सच सलाही सदा हजूरे गुर कै शब्द रहया परपूरे गुर पर साधी सच नदरी आवे सच्चे ही सुख पावनिया सच मन अंदर रहया समाए सदा सच निश्चल आवे ना जाए सच्चे लागे सो मन निर्मल गुरमति सच समावनिया सच सलाही अवर न कोई जित सेवै सदा सुख होई नानक नाम रते विचारी सचो सच कमावनिया महाज महला तीजा निर्मल शब्द निर्मल है बाणी निर्मल जोत सब माहि समाणी निर्मल बाणी हर सालाही जप हर निर्मल मैल गवावनिया हौ वारी जियो वारी सुखदाता मन वसावनिया हर निर्मल गुर शब्द सलाही शब्दो सुन तिसा मटावनिया रहाओ निर्मल नाम वसिया मन आई मन तन निर्मल माया मोह गुआई निर्मल गुण गावै नित साचे के निर्मल नाद बजावनिया निर्मल अमृत गुर ते पाया विचों आप मोआ तिथे मोह ना माया निर्मल ज्ञान ध्यान अत निर्मल निर्मल बाणी मन वसावनिया जो निर्मल सेवे सो निर्मल होवे हौ मैं मैल गुर शब्दे ढोवे निर्मल वाजे अनहद धुन बाणी दर सच्चै सोभा पावनिया निर्मल ते सब निर्मल होवे निर्मल मनुआ हर शब्द परोवे निर्मल नाम लगे बड़ भागी निर्मल नाम सुहावनिया सो निर्मल।

मैला खाई फिर मैल वधाई मनमुख मैल दुख पावणिया मैले निर्मल सब हुक्म सबाई से निर्मल जो हर साची पाई नानक नाम वसै मन अंतर गुरमुख मैल चुकावणिया माज महला तीजा गोविंद उजल उजल हंसा मन बाणी निर्मल मेरी मनसा मन उजल सदा मुख सोह है हत उजल नाम त्यावणिया हौ वारी जियो वारी गोविंद गुण गावणिया गोविंद गोविंद कह दिन राती गोविंद गुण शब्द सुनावणिया रहाओ गोविंद गावे सहज सुपहाई गुर कै भै उजल हौ मैं मल जाई सदा आनंद रह भगत करह दिन राती सुन गोविंद गुण गावणिया मनुआ नाचै भगत दिरड़ाई गुर कै शब्द मन मन मलाई।

माया मोह इस मनहन चाई अंतर कपट दुख पावनिया गुरमुख भगत जा आप कराई तन मन राता सहज सुपाई बाणी बजे शब्द बजाई गुरमुख भगत थाई पावनिया बहु ताल पूरे बाजे बजाई ना को सुने ना मन वसाई माया कारण पिड़ बंद नाचे दूजे पाए दुख पावनिया जिसे अंतर प्रीत लगे सो मुक्ता इंद्री वस सच संयम जुगता गुर कै शब्द सदा हर त्याई एहा भगत हर पावनिया गुरमुख भगत जुग चारे होई होरत भगत ना पाए कोई नानक नाम गुर भगती पाईए गुर चरणी चित लावणिया माज महला तीजा सच्चा सेवी सच सालाही सच्चे नाही दुख कब ही नाही सुख दाता सेवन सुख पाइन गुरमत मन वसावणिया हौ वारी जीओ वारी सुख सहज समाध लगावणिया जो हर सेवह से सदा सोह सुबा सुरत सुहावणिया रहाउ सबको तेरा भगत कहाय से भगत तेरे मन पाए सच बाणी तुदे सालाहन रंग राते भगत करावणिया सबको सच्चे हर जियो तेरा गुरमुख मिले ता चूकै फेरा जा तुद भावै ता नाही रचावै तू आपे नाउ जपावणिया गुरमती हर मन वसाया हरख सोग सब मोह गवाया इक सस्यों डिवलागी सदही हर नाम मन वसावणिया भगत रंग राते सदा तेरे चाई नौ निध नाम वसया मन आई।

मार दुख पाए, मन मुख अंधे सूझे नाही। फिर घिर आए गुरमुख वत पावणिया, गुर प्रसादी सच्चा हर पाए। मन तन वेखै हउमै मैल जाए, बैस सुथान सद हर गुण गावे।

दिन राती गुरमती शब्द सुनावणिया बिन शब्द अंतर अनेरा ना वस्त लह ना चूकै फेरा सतगुर हाथ कुंजी होरत दर खुलै नाही गुर पूरै भाग मलावणिया गुपत प्रगट तू सबनी थाई गुर प्रसादी मिल सोजी पाई नानक नाम सलाहे सदा तू गुरमुख मन वसावणिया माज महला तीजा गुरमुख मिले मलाए आपे काल ना जो है दुख ना संतापे हउमै मार बंधन सब तोड़ै गुरमुख शब्द सुहावणिया हउ वारी जियो वारी हर हर नाम सुहावणिया गुरमुख गावै गुरमुख नाचै हर सेती चित लावणिया रहाउ गुरमुख जीवै मरै परवान आर जा ना सीजै शब्द पछाण गुरमुख मरै ना काल ना खाई गुरमुख सच समावणिया गुरमुख हर दर सोभा पाई गुरमुख विचों आप गवाई आप तरै कुल सगले तारी गुरमुख जन्म सवारणिया गुरमुख दुख कदे ना लगै शरीर गुरमुख हऊ मैं चूकै पीर गुरमुख मन निर्मल फिर मैल ना लागै गुरमुख सहज समावणिया गुरमुख नाम मिलै वडियाई गुरमुख गुण गावै सोभा पाई सदा आनंद रहै दिन राती गुरमुख शब्द करावणिया गुरमुख आन दिन शब्दे राता गुरमुख जुग चारे है जाता गुरमुख गुण गावै सदा निर्मल शब्दे भगत करावणिया बाज गुरु है अंध अंधारा

कराई। आपे शब्द गुर मन वसाए, शब्दे उपजै अमृत बाणी, गुरमुख आख सुनावणिया। आपे करता आपे भुगता,

पढ़ बुझ मानव सामणिया गुरमुख पढ़ हर नाम सलाह दर सच सूबा पावणिया रहाउ अलक अपेरो हर रहे आसमाई उपाय न किती पाया जाई किरपा करी ता सतगुर पीते नदरी मेल मनावणिया दूजे पाए पड़े नहीं दूजे त्रेविद माया कारण लूजे त्रेविद बंधन टूटे है गुर शब्दी मुक्त करावणिया एहो मन चंचल वासना आवे दुबदा लागे दह दिस तावे बिख का कीड़ा बिख मै राता बिख ही माही पचावणिया हों हों करे तै आप जनाई बहु कर्म करे किस थाए ना पाई तुझते बाहर किसु ना होए बख्शे शब्द सुहावणिया उपजे पचे हर बूजे नाही अन दिन दूजे पाए फराही मन मुख जन्म गया है बिरथा अंत गया पछतावणिया फिर परदेश श्रृंगार बनाई मन मुख आंधे से।

कै शब्द पुछाता, अन दिन भगत करे दिन राती, सहजे ही सुख पावनिया, सब मैं वरतै इको सोई, गुरमुख विरला बूझै कोई, नानक नाम रते जन सोहै, कर किरपा आप मलावनिया, माज महला तीजा, मनमुख पढ़ै पंडित कहावै है, दूजै पाए महा दुख पावै है, बिख्या माते किस सूजै नाही, फिर जूनी आवनिया, हौ वारी जियो वारी, हौ मैं मार मनावनिया, गुरसेवा ते हर मन वसिया, हर रस सहज पी आवनिया, रहाउ वेद पढ़ै हर रस नहीं आया, वाद वखाणै मोहे माया, अज्ञान मत्ती सदा अंधियारा, गुरमुख बूझ हर गावनिया, अकथो कथियै शब्द सुहावै, गुरमती मन सचो पावै, सचो सच रवै दिन राती, इहो मन सच रंगावनिया, जो सच रत्ते

हर सर सागर निर्मल सूई, संत चुगह नित गुरमुख होई, इशनान करह सदा दिन राती, होमे मैल चुकावनिया, निर्मल हंसा प्रेम प्यार, हर सर वसै होमे मार, एहन सप्रीतो शब्द साचै, हर सर वासा पावनिया, मन मुख सदा बग मैला, होमे मल लाई, इशनान करै पर मैल ना जाई, जीवत मरै गुर शब्द बीचारै, होमै मैल चुकावणिया, रतन पदार्थ करते पाया, पूरै सतगुर शब्द सुनाया, गुर प्रसाद मिटिया अंधियारा, घट चानण आप पछानणिया, आप अपाए तै आपे वेखै, सतगुर सेवै सो जन लेखै, नानक नाम वसै घट अंतर, गुर किरपा ते पावणिया, माज महला तीजा, माया मोह जगत सवाया, त्रै गुण दिसह मोहे माया,

साचा साहिब गुरमुख जापै, पूरे गुर कै शब्द सुझापै, जिन पिया से त्रिपतासे, सच्चे सच अगा मणिया, तिस कर सहजा सोई सोहेला, अणद बनोद करे सद केला, सो तनवंता सो वड साहा।

आज महला पंजवां, कौन सो मुक्ता कौन सो जुगता, कौन सो ज्ञानी कौन सो बक्ता, कौन सो गृही कौन उदासी, कौन सो कीमत पाए जियो, किन बिद बादा किन बिद छूटा, किन बिद आवण जावण टूटा, कौन कर्म कौन नेह कर्मा, कौन सो कह कहाए जियो, कौन सो सुखिया कौन सो दुखिया, कौन सो सनमुख कौन वे मुखिया, किन बिद मिलिया किन बिद बिछरे, एह बिद कौन प्रगटाए जियो, कौन सो अखर जित धावत रहता, कौन अपदेश जित दुख सुख सम सहता, कौन सो चाल जित पार ब्रह्म त्याय, किन बिद कीर्तन गाए जियो, गुरमुख मुक्ता गुरमुख जुगता, गुरमुख ज्ञानी गुरमुख बक्ता, तन गिरही उदासी गुरमुख, गुरमुख कीमत पाए जियो, हौ मैं बादा गुरमुख छूटा, गुरमुख आवण जावण टूटा, गुरमुख कर्म गुरमुख नेह कर्मा, गुरमुख करे सो सुपाए जियो, गुरमुख सुखिया मनमुख दुखिया, गुरमुख सनमुख मनमुख वे मुखिया, गुरमुख मिलिया मनमुख विछरे, गुरमुख बिद प्रगटाए जियो, गुरमुख अखर जित तावत रहता, गुरमुख अपदेश दुख सुख सम सहता, गुरमुख चाल जित पार ब्रह्म त्याय, गुरमुख कीर्तन गाए जियो, सगली बणत बणाई आपे, आपे करे कराए थापे, इकस ते होयो आनंता, नानक एकस माहि समाए जियो, माज महला पंजवां, प्रभ अवनासी ता क्या काड़ा, हर भगवंता ता जन खरा सुखाला।

कर कृपा दास नदर निहाली गुण गावे है पूर्ण अबनासी कह सुन तोट ना आवणिया एथे उथे तू है रखवाला मात गर्भ में तुम ही पाला माया अग्न ना पोहे तिनको रंग रते गुण गावणिया क्या गुण तेरे आख संभाली मन तन अंतर तुद नदर निहाली तू मेरा मीत साजन मेरा स्वामी तुद बिन अवर ना जाननिया जिसको तू प्रभ पया सहाई तिस तत्ती वाओ न लगे काई तू साहेब सरन सुखदाता सत संगत जप प्रगटावणिया तू ऊच अथाह अपार अमोला तू साचा साहेब दास तेरा गोला तू मीरा साची ठकुराई नानक बल बल जावणिया माज महला पंजवा कर दूजा नित नित दयो संभाली है मूल ना मनहु विसारी है रहाव संतां संगत पाई है जित जम कह पंथ ना जाई है।

पाई तत्ती वाओ ना लग गई जिन मन बुठाए दियो से सुंदर सोहने साध संग जिन बहने

राख कमलावती उपजह नाही दाम। हर नाह न ना मिलिए साजन है कत पाइए विश्राम। जित घर हर कंतना प्रगटई पाठ नगर से।

चल ताम, चेत गोविंद अरादिया होवे आनंद घना, संत जना मिल पाई है रसना नाम पणा।

जन्म जना जल तलमयन पूरिया रविया विच बना सो प्रभ चेतना आवई कितड़ा दुख गणा जिन्नी रावया सो प्रभु तिन्ना भाग मना हर दर्शन कौ मन लोचदा नानक प्यास मना चेत मलाए सो प्रभु तिसकै पाए लगा वैसाख तीरन क्यों वादिया जिन्ना प्रेम बशो हर साजन पुरख वसार कै लगी माया तो पुत्र कलत्तर ना संग तना हर अवनासी ओह पलच पलच सगली मुई झूठ तंदे मोह इक सहर के नाम बिन अगे लई है खोहे दयो विसार विगुचना प्रभ बिन अवर ना कोई प्रीतम चरणी जो

पत होए। वैसाख सुहावा ता लगे जा संत भेटै हर सोए। हर जेठ जुड़ंदा लोड़ी है जिस अगै सब निवन। हर सज्जन दावन।

हेठ रंगीला तिस तनी जिस कह भाग मथन असाड़त पंदा तिस लगे हर नाह ना जिन्ना पास जग जीवन पुरख त्याग के मानस संधि आस दुइये भाइव गुचिये गल पई सो जम की फास जेहा बीजै सो लुणे मत्ते जो लिखियास रैण मिहाणी पछताणी उठ चली गई निरास जिनको साधु भेटिए सो दरगहा हुए खलास कर कृपा प्रभ अपनी तेरे दर्शन हुए प्यास प्रभ तुद बिन दूजा को नहीं नानक की अरदास असार सुहंदा तिस लगे जिस मन हर चरण निवास सावन सरसी कामणी चरण कमल स्यों प्यार मन तन रत्ता सच रंग इको नाम आधार बिखिया रंग कूड़ा विया दिसन सबे शार हर अमृत बूंद सुहावनी मिल साधु पीवन हार वाण तेन प्रभ संग मौलिया समरथ पुरख अपार हर मिलने नो मन लोचदा कर्म मिलावन हार जिन्नी सखिए प्रभ पाया हौ तिन कै सद बलिहार नानक हर जी मया कर शब्द सवार नहार सावन तिना सुहागनी जिन राम नाम उरहार भादोए परम पलानिया दूजे लगा हेत लख शिंगार बनाया कारज नाही केत जित दिन देहे बिनससी तित वेलै कहसन प्रेत पकड़ चलायन दू

मन तन प्यास दर्शन कणी कोई आन मलावे माई संत सहाई प्रेम के हौ किन कै लागा पाई बिन प्रभ क्यों सुख पाई है दूजी नाही जाय जिन्नी चाखिया प्रेम रस से तृप्त रहे आगाय आप त्याग बिनती करह लेहो प्रभु लड़ लाए जो हर कंत मलाइया से विछड़ कतह ना जाय प्रभ बिन दूजा को नहीं।

दोष ना काहू जोग परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सबे रोग वे मुख होए राम ते लगन जन्म विजोग खिन मह कौड़े हुए गए जितड़े माया भोग विच ना कोई कर सके किस ठहरु वह रोज कीता किशु ना होवई लिखिया तुर संजोग वडभागी मेरा प्रभ मिले ता उतर है सब बियोग नानक को प्रभ राख ले मेरे साहिब बंदी मोच कत्तक होवे साध संग दिन सह सबे सोच मंगर माहे सुहंदियां हर पिर संग बैठड़िया इनकी शोभा क्या गणी जे साहेब में लड़िया तन मन मौलिया राम सिंह संग साध सही लड़िया साध जना ते बाहरी से रहन अके लड़िया तिन दुख ना कबहू उतरे से जम कै बस पड़िया जिन्नी राव्या प्रभ अपना से दिसन नित खड़िया रतन जवे हर लाल हर कंठ तिना जड़िया नानक बांछे धूड़ तिन प्रभ सरनी दर पड़िया मंगर प्रभ आराधना बहुड़ ना जन्मड़िया पोख तुखार ना व्यापई कंठ मिलिया हर ना मन बिद्या चरनार बिंद दर्शन लगड़ा सा ओट गोविंद गोपाल राई सेवा स्वामी ला बिख्या पोहे ना सकई मिल साधु गुण गा जह ते उपजी तह मिली सच्ची प्रीत समाह कर गह

सरे हर गुरु पूरा आराध्या दरगहा सच खरे सर्व सुखा निध चरण हर भौ जल बिखम तरी प्रेम भगत तिन पाईया बिख्या नाही जरी कूड़ गए दुबदा नसी पूर्ण सच भरे पार ब्रह्म प्रभ सेवंदे मन अंदर एक तरे महादिवस मूरत भले जिसको नदर करे नानक मंगे दर्श दान कृपा करहु हरि माज महला पंजवा दिन रैन एक ओंकार सतगुर प्रसाद सेवी सतगुर अपना हर सिमरी दिन सब रैन आप त्याग सरनी पवा।

नंतिया हर सुरजन देखा नैन जी की बिरथा सू सुनी हर समर्थ पुरख अपार मरण जीवन आराधना सबना का आधार ससुरै पेयै तिस कंत की वड्डा जिस परवार ऊंचा अगम अगाध बोध किस अंत न पारावार सेवा सा तिस भावसी संतां की होए शार दीना नाथ दयाल देव पतत उदारण हार आद जुगादी रखदा सच नाम करतार कीमत कोई ना जाने को ना ही तो लनहार मन तन अंतर वस रही।

हर ओट गई मन अंदरी जप जप जीवा नाम कर कृपा प्रभ अपनी जन धूड़ी संग समाओ ज्यों तू रख है त्यों रहा तेरा दिता पैना खाओ उदम सोई कराए प्रभ मिल साधु गुण गाओ दूजी जाए ना सुजई किथे कूकण जाओ अज्ञान बनासन तम हरन ऊचे अगम अमाओ मन विछड़िया हर मेली है नानक एहो सुआओ सर्व कल्याणा तित दिन हर परसी गुर के पाओ वार माज की तत्

प्यार लगा खण दुध दूजे माए बाप की सुध तीजे भैया भाभी बेब चौथे प्यार अपनी खेड पंजवे खान पीण की तात छिवे कामना पुछे जात सतवें सांझ किया घरवास अठवें

पाया। ज्यो भावै त्यो रख तू, सब करे तेरा कराया। इकना बख्श है मेल लह, गुरमति तुझ लाया। एक खड़े करह तेरी चाकरी, विण नावै होर ना पाया। होर कार वे कार है, एक सच्ची कार है लाया। पुत कलत कटंब है, एक अलिपत रहे जो तुझ पाया। ओहे अंदर हूं बाहर हूं निर्मले, सच्चा नाहे समाया। सलोक महला पहला, सोइने कै पर्वत गुफा करी। कै पानी पयाल, कै विच धरती कै आकाशी। उर्द रहां सिर पार, पुर कर काया कपड़ पहरा। तुआ सदाकार, बग्गा रत्ता पियला काला। बेता करी पुकार, हुए कुचील रहा मल तारी। दुर्मत मत विकार, ना हूं ना मैं ना हूं। नानक शब्द विचार। महला पहला, वस्त्र पखाल पखाले काया। आपे संयम होए, अंतर मैल लगी नहीं जाने। बाहर हूं मल मल धोए, अंधा भूल पया जम जाले। वस्त पराई अपनी कर जाने, हम मैं विच दुख काले। नानक गुरमुख हम मैं टुटे, ता हर हर नाम त्यावे। नाम जपे नामो आराधे, नामे सुख समावे पवड़ी। काया हंस संजोग मेल मलाया, तिन्ही किया वजोग जिन उपाया। मूर्ख भोगे भोग दुख सबाया, सुख हो उठे रोग पाप कमाया। हरख हो सोग वजोग उपाय खपाया, मूर्ख गणत गणाए झगड़ा पाया। सतगुर हाथ नबेड़ झगड़ चुकाया, करता करे सो होग ना चले चलाया। सलोक महला पहला, कूड़ बोल मुरदार खाई। अवरी नो समझावन जाए।

कहया कथना भरिया पर धुआ आप न बुझा लोक बुझाई ऐसा आगू हुआ नानक अंधा हुए कै दसीरा है सब समहाए साथ है अग्गे गया मुहे मुह पाए सो ऐसा।

जिस लाभ लोभ अहंकारा नाव पढ़िया नाव बुझिया गुरमति विचारा गुरमति नाम धन खटिया भगति परे भंडारा निर्मल नाम मन्निया गर सच्चै सचियारा।

साथ इस पावसी नानक रखै लाज महला पहला हक पराया नानका उस सुअर उस गाय गुर पीर हा माता भरी जा मुरदार ना खाए गली पिस्त ना जाइए छुट्टै सच कमाए मारन पाहे हराम मैं होए हलाल ना जाए नानक गली कूड़ी कूड़ो पल्ले पाए महला पहला पंज निवाजा वक्त पंज पंजा पंजे नाम पहला सच हलाल दुई तीजा खैर खुदाई चौथी नीयत रास मन पंजवी सिफत सनाई करनी कलमा आख कै ता मुसलमान सदाई नानक जेते कूड़ियार कूड़ै कूड़ी पाए पौड़ी एक रतन पदार्थ वणज दी एक कच्चै दे वापारा सतगुर तुठै पाइयन अंदर रतन भंडारा विण गुर किनै ना लद्या अंधे भौंक मोए कूड़ियारा मनमुख दूजै पच मोए ना बूझै विचारा एक सबाजो दूजा को नहीं किसे आगे करह पुकारा एक निरतन सदा भौंक दे एक ना भरे तुजारा विण नावै होर धन नाही होर बिख्या सब छारा नानक आप कराए करे आप हुकम सवारन हारा सलोक महला पहला मुसलमान कहावन मुश्किल जां होए ता मुसलमान कहावै।

रब की रजाई मन्नी सिरी उपर करता मन्नी आप गवावे तो नानक सर्व जिया मेहरमत होए ता मुसलमान कहावे।

काम कामनी मोह तजै ता अंजन माहे निरंजन पावे तज मान अभमान प्रीत सुत दारा तज प्यास आस राम लिवलावे नानक साचा मन वसै साच शब्द हर नाम समावे पौड़ी राजे रैयत सिकदार कोई ना रहसियो हट पटन बाजार हुक्मी तहसियो पक्के बंक द्वार मूर्ख जाने अपने दर्ब भरे भंडार रीते एक खणे ताजी रथ तुखार हाथी पाखरे बाग मिलख घर वार किते से अपने तंबू पलंग निवार सराय के लालती नानक सच दातार सनाखत कुदरती सलोक महला पहला नदियां होवह तीनवा सोम होवह दुध कीओ सगली धरती सक्कर होवे खुशी करे नित जीओ।

महला पहला। पार अठारह मेवा हुए गरुड़ा हुए सुआऊ। चांद सूर्य दोए फिर दे रखी है निश्चल हो थाव। पी तू है सालाहना आखण लह ना चाऊ। महला पहला। जे देह दुख लाई है पाप ग्रह दोए राह। रात पीने राजे सिरे ऊपर रखी है।

चारि खसम पठाया, तबल बाज दी चार शब्द सुनाया। एक होए असवार एक ना साखती, इकनी बदे पार इक ना ताखती। सलोक महला पहला, जा पक्का ता कटिया, रही सो पलरवार सन की सारा चिथिया। कान लया तन झाड़, दोए पुड़ चत

खाले थली करे असगा कीड़ा थाप दे पातशाही लश्कर करे स्वाह जेते जी जीवह लै साहा जीवाले ताके असाहा नानक ज्यों ज्यों सच्चे पावे त्यों त्यों दे ग्राह महला पहला एक मास हारी एक त्रिण खाहे एक ना शक्ति अमृत पाहे एक मिटिया मह मिटिया खाए एक पौन समारी पौन समार एक निरंकारी नाम आधार जीवे दाता मरे ना कोए नानक मुठे जाहे नाही मन सोए पौड़ी पूरे गुर की कार कर्म कमाई है गुरमति आप गवाए नाम त्याई है दूजी कार लग जन्म गवाई है बिन नावे सब विस पेंजे खाई है सच्चा शब्द सलाहे सच समाई है बिन सतगुर सेवे नाही सुख निवास फिर आई है दुनिया खोटी रास कूड़ कमाई है नानक सच खरा सलाहे अत सिंह जाई है सलोक महला पहला तुद भावे ता वावह गावह तुद भावे जल नावह जा तुद भाव

नानक पूरा जे करे कटै नाही तोल पौड़ी जा तू ता क्या होर मैं सच सुनाई है मुठी तंदे चोर महल ना पाई है इने चित कठोर सेव गवाई है जित घट सच ना पाई सो पन कढ़ाई है क्यों कर पूरे वट तोल तोलाई है कोई ना आखै घट हों मैं जाई है लईन खरे परख दर भी नाई है सौदा इक तहट पूरे गुर पाई है सलोक महला दूजा अठी पैरी अठ खंड नावा खंड शरीर किस विच नौ निद नाम एक पाल है गुणी गहीर कर्मवंती सालाया नानक कर गुर पीर चौथे पहर सबहा कै सुरतियां कुजै चाओ तिन्ना दरियावां स्यों दोस्ती मन मुख सच्चा नाम उते अमृत वंडी है करमी हुए पसाव कंचन काया कसी है।

गुण गाहक एक वन भुखियां भुख ना उतरै गली भुख ना जाए नानक भुखा तां रजै जां गुण कहै गुणी समाई पौड़ी बिन सच्चे सब कूड़ कूड़ कमाई है बिन सच्चे कूड़ियार बन चलाई है बिन सच्चे तन शार शार रलाई है बिन सच्चे सब भुख जे पैंजै खाई है।

ठगियो ठग आइय जाइय तन मह तृष्णा अग शब्द बुझाइय सलोक महला पहला नानक गुर संतोख रुख धर्म फुल फल ज्ञान रस रसिया हरिया सदा पक्के कर्म ध्यान पत के सा

संसार किन समझाई है, सच ना धरे प्यार तंदै ताई है। काल बुरा खै काल सिर दुनियाई है, हुक्मी सिर जंदार मारे दाई है। आपे दे प्यार मन वसाई है, मोहत ना चसा विलम भरिए पाई है। गुर प्रसादी बुज सच समाई है, सलोक महला पहला तुम्मी तुम्मा विस। आकत तूरा निम फल मन मुख वसह तिस, जिस तू चेतना आवही नानक कहिए किस। हंडन कर्मा बाहरी महला पहला, मत पंखे रू किरत साथ। कब उत्तम कब नीच, कब चंदन कब अक डाल, कब उच्ची परीत। नानक हुक्म चलाई है।

खट दर्शन कह पीख किसे सच समावना सच्चा पुरख अलख शब्द सुहावना मन्ने नाउ बसंक दरगाह पावना खालक कौ आदेश ताडी जावना नानक

हुक्म पया तुर खसम का अती हूं टक्का खाय गुरमुख स्यों मन मुख अड़े डुबे हक न्याय दुहां सिरियां आपे खसम वेख कर व्यपाय नानक एवै जानिए सब किस तिसहर जाय महला दूजा नानक परखे आप।

साधना तृप्तिया सायर परेक सुख नानक सच्चे नाम की केती पुछा पुछ महला दूजा निह पलंग तस जन्मस जावत ब्रह्मना बिंदते सागरं संसारस गुर

पौड़ी खसमै कै दरबार टाडी वसिया सच्चा खसम कलाण कमल विगसिया खसम पूरा पाए मनो रहस्या दुश्मन कड्डे मार सज्जन सरस्या सच्चा सतगुरु सेवन सच्चा मार्ग दस्या सच्चा शब्द विचार काल वधौसिया ढाडी कथे अकथ शब्द सवारिया नानक गुण गहरास।

इत के होम जग सद पूजा पय कार्य सो है गुरु समुंध नदी सब सिखी नापै जित वड्याई नानक जे सिर खुते नावन नाही ता सत चट्टे सिर शाई महला दूजा अग्नि पाला की करे सूरज के ही रात चंद अनेरा की करे पौन पानी क्या जात धरती चीजी के करे जिस विच सब किछ होए नानक ता पत जानी है जा पत रखै सोए पौड़ी तुद सच्चे सुभान सदा कलाणिया तू सच्चा दी बाण होरिया मन जानिया।

ढूपै तरै जिन किश किया सो किश करै हुक्मे आवै हुक्मे जाए आगे पाछे हुक्म समाए हंस हेत आसा समान तिस विच भूख बहुत नैसान पाओ खाना पीना आधार बिन खादे मर होए गवार जिसका कोए कोई कोए कोए सबको तेरा तू सबना का सोए जाके जी जंत धन माल नानक आखन बिखम बीचार गौड़ी महला पहला माता मत पिता संतोख सत भाई कर इहो वसेख कहना है किस कहन ना जाए तौ कुदरत कीमत नहीं पाए रहाओ शर्म सुरत दोए ससुर भए करनी कामन कर मन लए साहा संजोग व्याह वियोग सच संतत कहो नानक जोग गौड़ी महला।

तट तीर्थ जाही, रत्न पदार्थ काट ही माही। पढ़ पढ़ पंडित बाद वखाण, पीतर होंदी वस्त ना जाने। हौ ना मुआ मेरी मुई बलाई, ओ ना मुआ जो रहे आसमाई। कहो नानक गुर ब्रह्म दिखाया, मरता जाता नदर ना आया। गौड़ी महला पहला दखनी, सुन सुन बूझे मन नाऊ। ता कै सद बलिहारे जाऊ, आप भुलाए ठौर ना ठाऊ। तू समझावे

गुरमुख मुख तो बंद ना पाए, शब्द विचार छुट्टे हर नाई, तरवर पंखी बहो निसबास, सुख दुखिया मन मोह विनाश, सांझ बिहाग तकह आगास, दह दिस तावह कर्म लिखियास, नाम संजोगी गोइन थाट, काम क्रोध फूटे बिखमाट, बिन बखर सुनो कर हाट, गुर मिल खोले बजर कपाट, साध मिले पूरब संजोग, सच रहस्ये पूरे हर लोग, मन तन देले सहज सुभाए, नानक तिनके लागो पाए, गौड़ी महला पहला, काम क्रोध मा

बोलै पड़वाओ, जेवा इंद्री एक सुवाओ, दिष्ट विकारी नाही पहु पाओ, आप मारे ता पाए नाओ, शब्द मरै फिर मरन ना होए, बिन

उठाऊं। नानक गुरमत सहज समाऊं, गौड़ी महला पहला। सतगुर मिले सो मरण दिखाई, मरन रहन रस अंतर पाई। गर्भ निवार गगन पुर पाई, मरन लिखाए आए नहीं रहना। हर जप जाप रहन हर सरना रहाऊ, सतगुर मिले तदुबदा भागे। कमल बगास मन हर प्रभ लागे, जीवत मरे महारस आगे। सतगुर मिले सच संयम सूचा, गुर की पौड़ी ऊचो ऊचा। कर्म मिले जम का पौ मूचा, गुर मिले मिले अंक समाया। कर कृपा कर महल दिखाया, नानक हो मैं मार मलाया। गौड़ी महला पहला।

तोट नाही तुद भगत भंडार, किया गर्भ न आवे रास, जियो पिंड सब तेरे पास, तू मार जीवा लह बख्श मलाई।

गुरबचनी सच शब्द पछाता तेरा तान नाम की वडियाई नानक रहना भगत सरनाई गौड़ी महला पहला जिन अकथ कहाया अपयो पी आया अन पै बिसरे नाम समाया क्या डरिय डर डर है समाना पूरे गुर कै शब्द पछाना रहाओ जिस नर राम हृदय हर रास सहज सुपाए मिले साबास जाहे सवारे सांझ बयाल इत उत मन मुख बांदे काल अहनस राम हृदय से पूरे नानक राम मिले ब्रह्म दूरे गौड़ी महला पहला जन्म मरे त्रै गुण हितकार चारे वेद कथ है आकार तीन अवस्था कह बखियान तुरियावस्था सतगुर ते हर जान राम भगत गुर सेवा तरना बहुर जन्म ना हुए है मरना रहाओ चार पदार्थ कह सब कोई सिमरत सासत पंडित मुख सोई बिन गुर अर्थ विचार ना पाया मुक्त पदार्थ भगत हर पाया जा कै हृदय बसया हर सोई गुरमुख भगत प्राप्त होई हर की भगत मुक्त आनंद गुरमत पाए परमानंद जिन पाया गुर देख दिखाया आसा माहि निराश बुझाया दीना नाथ सर्व सुख दाता नानक हर चरणी मन राता गौड़ी चेती महला पहला अमृत काया रह सुखाली बाजी एहु संसारू लब लोभ मुच कूड़ कमावे बहुत उठावे पारू तू काया मैं रुड़दी देखी ज्यों धारी उपर शारू सुन सुन सिख हमारी सो कृत कीता रहसी मेरे जियड़े बहुड़ ना आवे वारी रहाऊ।

भोग तिस का पाना रहाउ साहु हमारा ठाकुर पारा हम तिसके बनजारी जियो पिंड सब रास तिस की मारे आपे जी वाले गौड़ी चेती महला पहला अवर पंच हम एक जना क्यों राखो कर बार मना।

तिनकी पंख होवे जे नानक तो मूड़ा किस पाई रे। गौड़ी चेती महला पहला कत की माई बाप कत केरा किदू थाम हो हम आई अगन बिंब जल पीतर निप।

पार मेरा सहु वस है हौ मिलोंगी बाहां पसार। नागन होआ तर वसा शब्द वसै पहु जाय, नानक सदा सुहागनी जिन ज्योति ज्योत समाए। गौड़ी पूर्बी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जय कर कीरत आखी है करते का हुए बिचार, तित कर गाव हो सोहिला सिवर हो सिरजनहार। तुम गाव हो मेरे नरपहु का सोहिला, हौ वारी जाऊं जित सोहिले सदा सुख होए रहाओ। नित नित जियड़े संभालियन देखेगा देवनहार, तेरे दान कीमत ना पवे इस दाते कवन समार। संबत साहा लिखिया मिलकर पाव तेल, देहो सज्जन आसीसड़िया ज्यो होवे साहिब स्यो मेल। कर कर एहो पहुंचा सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिय नानक से दे आवन। राग गौड़ी गवारी महला तीजा चौपदी।

शब्द पछाणे। सतगुर कै पहे ब्रह्म पहु जाई, पैरा कै सच रंग समाई। रहाउ गुर मिले हर मन वसै सुपाई, मेरा प्रभ भारा कीमत नहीं पाई।

साची वाणी शब्द विचार गावत रह जे सतगुर पावे मन तन राता नाम सुहावे रहाव एक गाव है एक भगत करे नाम ना पावे बिन असने सच्ची भगत गुर शब्द प्यार अपना पिर राखिया सदा उरतार भगत करह मूर्ख आप जनाव है नच नच टप है बहुत दुख पाव है नचे टपे भगत ना होए शब्द मरे भगत पाए जन सोए भगत वशल भगत कराए सोए सच्ची भगत बिचो आप खोए मेरा प्रभ साचा सब बिद जाने नानक बख्शे नाम पछाण गौड़ी गुआरी महला तीजा मन मारे धात मर जाए बिन मुए कैसे हर पाए मन मरे दारू जाने कोई मन शब्द मरे बूझे जन सोए जिसनो बख्शे दे वड्याई गुर प्रसाद हर वसे मन आई रहाओ गुरमुख करनी कार कमावे ता इस मन की सोजी पावे मन में मत मैगल मिकदारा गुर अंकस मार जी वालन हारा मन असाद साधे जन कोए अचार चरे ता निर्मल होए गुरमुख एहो मन लया सवार हौ मैं विचो तजे वकार जो तुर राखियन मेल मलाए कदे ना विचण है शब्द समाए अपनी कला आपे ही जाने नानक गुरमुख नाम पछाणे गौड़ी गुआरी महला तीजा हौ मैं विच सब जग बौराना दूजे पाए परम पुलाना बहु चिंता चितवे आप ना पछाना धंधा करतियां आन दिन विहाना हिरदय राम रमहु मेरे भाई गुरमुख रसना हर रसन रसाई रहाओ गुरमुख हिरदय जिन राम पछाता जग जीवन सेव जुग चारे जाता हौ मैं मारे गुर शब्द पछाता कृपा करे प्रभ कर्म बधाता से जन सच्चे जो गुर शब्द मलाए तावत वर्जे ठाक रहाई।

तै पुन तिन हउ मैं मारी, नानक जो नाम रते तिन को बलिहारी। गौड़ी ग्वारी महला तीजा, तू अकथ क्यों कथिया जाई, गुर शब्द मारन

सब कोई, गुर शब्द समावे बूझे हर सोई, सुन सुन वेखे शब्द मलाए, वड्डी वड्याई गुर सेवा ते पाए, नानक नाम रते हर नाम समाए, गौड़ी गवारी महला तीजा, मनमुख सूता माया मोहे प्यार, गुरमुख जागे

ते बूझै जन कोई रहाउ। असंत अनाड़ी कदे ना बूझै, कथनी करे तै माया नाल लूझै। अंध अज्ञानी कदे ना सीजै, इस जुग में राम नाम निस्तारा। बिरला को पाई गुर शब्द विचारा, आप तरै सगले कुल उधारा। इस कल युग में कर्म धर्म ना कोई, कली का जन्म चंडाल कै कर होई। नानक नाम बिना को मुक्त ना होई। गौड़ी महल्ला।

राम जपहु हो पवजल उत्तरो हो पार रहाव परमे आवे परमे जाय एहो जग जन्मया दूजे पाय मन मुख ना चेतै आवे जाय आप भुला के प्रभ आप भुलाया एहो जियो वडाणी चाकरी लाया महा दुख खटे बिरथा जन्म गवाया कृपा कर सतगुरु मलाए एको नाम चेते विचो परम चकाए नानक नाम जपे नाउ नौ निध पाए गौड़ी गुआर दी महला तीजा जिन्ना गुरमुख त्याया

मेरे पाई, गुरमुख सेवा हर काल थाई पाई। रहाओ आप पछाणे मन निर्मल होए, जीवन मुकत हर पावे सोए। हर गुण गावे मत उत्तम होए, सहजे सहज समावे सोए। दूजे पाई ना सेवया जाए, हम मैं माया महा बिख खाए।

बिन नावे त्रिग त्रिग अहंकार बंधन बांधियो माया पास जन नानक छूटे गुर प्रगास महला तीजा गौड़ी बैरागण जैसी धरती ऊपर मेघला बरसत है क्या धरती मध्य पानी नाही जैसे धरती मध्य पानी परगासिया बिन पगा वरसत फराही बाबा तू ऐसे परम चुकाही।

तुझ ही माही समाही। इतने जन्म भूल परे से, जा पाया ता भूले नाही। जाका कार्ज सोई पर जाने, जे गुर कै शब्द समाही।

महला तीजा सब जग काल बस है बांदा दूजे पाई हमें कर्म कमावंदी मन मुख मिले सुजाई मेरे मन गुर चरणी चित लाए गुरमुख नाम निदान लै दरगाह लै छडाई रहाओ लख चौरासी भरम दे मन हठ आवे जाई गुर का शब्द ना चीन्यो फिर जो नी पाए गुरमुख आप पछाणिया हर नाम वसिया मन आई अन दिन भगती रत्या हर नामे सुख समाय मन शब्द मरे प्रतीत होए हम मैं तजे विकार जन नानक कर्मी पाईन हर नामा भगत भंडार गौड़ी बैरागण महला तीजा पेय लै दिन चार है हर हर लिख पाया शोभावंती नार है गुरमुख गुण गाया देव कड़ै गुण संभलै सोहरै वास पाया गुरमुख सहज समाणिया हर हर मन पाया ससुरह पेयै पिर वसै कहो कित बिद पाईऐ आप निरंजन अलख है आपे मेलाइय रहाउ आपे ही प्रभ देह मत हर नाम ते आईऐ वडभागी सतगुर मिले मुख अमृत पाईऐ हमै दुबदा बिर सजाए सहजे सुख समाईऐ सब आपे आप वरतदा आपे नाए लाईऐ मन मुख गर्भ ना पायो अज्ञान ज्ञानी सतगुर सेवा ना करह फिर पछताणी गर्भ जूनी वास पाए दे गर्भे गल जानी मेरे करते एवं पावदा मन मुख परमाणी मेरा हर प्रभ लेख लखाया तुर मस्तक पूरा हर हर नाम त्याया भेटिया गुर सूरा मेरा पिता माता हर नाम है हर बंधप बीरा हर हर बख्श मलाए प्रभु जन नानक कीरा गौड़ी बैरागण महला तीजा सतगुर ते ज्ञान पाया हर तत् बीचारा मत मलीन प्रगट पई जप नाम मरारा शिव सकत मटाईया चूका अंधियारा तुर मस्तक जिन को लिखिया तिन हर नाम प्यारा हर कित बिद पाईऐ संत जन हो जिस देख हो जीवा हर बिन चसा ना जीवती गुर मेले हो हर रस पीवा रहाओ हौ हर गुण गावा नित हर सुनी हर हर गत कीनी हर रस गुर ते पाया मेरा मन तन लीनी तन तन गुर सत पुरख है जिन भगत हर दीनी जिस गुर ते हर पाया सो गुर हम कीनी गुण दाता हर राय है हम अवगण यारे पापी पाथर डूब दे गुरमत हर तारी तू गुण दाता निर्मला हम अवगण यारी हर शरणागत राख लेहु मूड मुग्ध निस्तारी सहज आनंद सदा गुरमति हर हर मन त्याया सज्जन हर प्रभ पाया कर सोहिला गाया हर दया तार प्रभ बेनती हर हर चेताया जन नानक मंगै धूड़ तिन जिन सतगुर पाया गौड़ी गुआरी महला चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद पंडित शास्त्र सिमरत पढ़िया जोगी गोरख गोरख करिया मैं मूरख हर हर जप पढ़िया ना जाना क्या गत राम हमारी हर भज मन मेरे कर भौजल तू तारी रहाओ सन्यासी बेपूत लाए दे सवारी पर त्रै त्याग करी ब्रह्मचारी मैं मूरख हर आस तुम्हारी।

चौथा निर्गुण कथा कथा है हर की पाज मिल साधु संगत जन की तर पौ जल कथ कथा सुन हर की गोविंद सत संगत में लाई हर रस रसना राम गुण गाई रहाउ जो जन प्याव है हर हर नामा तिन दासन दास करहु हम रामा जन की सेवा उत्तम कामा जो हर की हर कथा सुनावे सो जन हमरे मन चित पावे जन पग रेन वड भागी पावे।

जहां हर जस गावे सारिंग प्रीत बसह जल तारा नरपत प्रीत माया देख पसारा हर जन प्रीत जपे निरंकारा नर प्राणी प्रीत माया धन खाटे गुरसिख प्रीत गुर मिले गलाटे जन नानक प्रीत साध पग चाटे गौड़ी गुआरी महला चौथा भीखक प्रीत भीख प्रभ पाए भूखे प्रीत होवे अन्न खाए गुरसिख प्रीत गुर मिल आघाए हर दर्शन देहो हर आस तुम्हारी कर कृपा लोच पूर हमारी रहाओ चकवी प्रीत सूरज मुख लागे मिले प्यारी सब दुख त्यागे गुरसिख प्रीत गुरु मुख लागे बछरे प्रीत खीर मुख खाए हृदय बिगसै देखे माए गुरसिख प्रीत गुरु मुख लाए होर सब प्रीत माया मोह काचा बिन सजाए पूरा कच पाचा जन नानक प्रीत तृप्त गुर साचा गौड़ी गुआर री महला चौथा सतगुर सेवा सफल है बनी जित मिल हर नाम त्याया हर तनी जिन हर जपया तिन पीछे छूटी कणी गुरसिख हर बोलो हो मेरे भाई हर बोलत सब पाप लह जाई रहाओ जब गुर मिलया तब मन वास आया तावत पंच रहे हर त्याया अन दिन नगरी हर गुण गाया सतगुर पग धूर जिन्ना मुख लाई तिन कूड़ ते आगे हर लिब लाई ते हर दरगाह मुख उजल पाई गुर सेवा आप हर पावे कृष्ण बल भद्र गुर पग लग त्यावे नानक गुरमुख हर आप तरावे गौड़ी गवार री महला चौथा हर आपे जोगी डंडा तारी हर आपे रव रहे बनवारी हर आपे तप तापे लाए तारी ऐसा मेरा राम रहया भरपूर निकट वसै नाही हर दूर रहाओ हर आपे शब्द सुरत धुन आपे हर आपे वेखै बिगसै आपे हर आप जपाए आपे हर जापे हर आपे सारिंग अमृत धारा हर अमृत आप पिया मनहारा।

जननी गर्भ पालती सुत की कर आसा वड्डा हुए तन खाट दे कर भोग बलासा क्यों हर जन प्रीत हर राखदा दे आप हथासा मेरे राम मैं मूर्ख हर राख मेरे गुसैया जन की उपमा तुझे वडैया रहा मंदर कर आनंद हर हर जस मन पावे सब रस मीठे मुख लगह जा हर गुण गावे हर जन परवार सधार है इक्की ही कुली सब जगत छडावे जो किश किया सो हर किया हर की वडियाई हर जी तेरे तू वरतदा हर पूज कराई हर भगत भंडार नहाईंदा आपे वरताई लाला हाट विहाजिया क्या तिस चतुराई जे राज बहाले ता हर गुलाम कासी को हर नाम कढाई जन नानक हर का दास है हर की वडियाई गौड़ी ग्वार भी महला चौथा किरसानी किरसान करे लोचे जियो लाए हल जोते उदम करे मेरा पुत धी खाए त्यों हर जन हर हर जप करे हर अंत छाए।

हमरे अवगुण बहुत बहुत है, बहु बार बार हर गणत ना आवे। तू गुणवंता हर हर दयाल, हर आपे बख्श लह हर पावे। हम अपराधी राखे गुर संगति, अपदेश दियो हर नाम छडावे। तुमरे गुण क्या कहा मेरे सतगुरा, जब गुर बोल है तब विस्म होए जाए। हम जैसे अपराधी अवर कोई राख है, जैसे हम सतगुर राख लिए छडाए। तू गुर पिता, तू है गुर माता, तू गुर बंधप मेरा सखा सखाए। जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, साबिद तुम हर जान हो आपे। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीरे हम थापे। तन तन गुरु नानक जन केरा, जित मिले चूके सब सोग संतापे। गौड़ी बैरागन महला चौथा, कंचन नारी मह जियो लुभत है। मोह मीठा माया, कर मंदर घोड़े खुशी, मन अन रस लाया।

हर हर दयाल कर कृपा बख्श अवगण सब मेरे रहाओ। किस रूप नहीं किस जात नाही किस ढंग ना मेरा क्या मुंह लै बोल है गुण विहून ना।

जन नानक हाथ विहाजिया हर गुलम गलामी गौड़ी बैरागण महला चौथा ज्यों जननी सुत जन पालती राखह नदर मजार अंतर बाहर मुख देह ग्रास खिन खिन पोचार त्यों सतगुर गुर सिख राखता हर प्रीत प्यार मेरे राम हम बारक हर प्रभ के है यानी तन तन गुरु गुर सतगुर पांदा जिन हर उपदेश दे किए सियाणी रहाओ जैसी गगन फरंती उड़ती कपरे बागे वाली ओह राखै चीत पीछे बिच बचरे नित हिरदय सार संभाली त्यों सतगुर सिख प्रीत हर हर की गुर सिख रखै जी नाली जैसे काती तीस बतीस है विच राखै रसना मास रात केरी कोई जान हो मास काती कह किस हाथ है सब वसगत है हर केरी त्यों संत जना की नर निंदा करह हर राखै पैज जन केरी भाई मत कोई जानो किसी कै किस हाथ है सब करे कराया जरा मरा ताप सिरत साप सब हर कै वस है कोई लाग न सकै बिन हर का लाया ऐसा हर नाम मन चित नित त्यावहु जन नानक जो अंति अवसर ले छाया गौड़ी बैरागण महला चौथा जिस मिले मन हुए आनंद सो सतगुर कहिए मन की दुबदा बिन सजाए हर परम पद लहिए मेरा सतगुर प्यारा कित बिद मिले हौ खिन खिन करी नमस्कार मेरा गुर पूरा क्यों मिले रहाव कर कृपा हर मेलिया मेरा सतगुर पूरा इच पुन्नी जन केरिया ले सतगुर तूरा हर भगत दरड़ावे हर भगत सुने तिस सतगुर मिलिये टोटा मूल ना आवई हर लाभ नित दृढ़िये जिस को हृदय विगास है पाओ दूजा नाही नानक तिस गुर मिल उधरे हर गुण गावाही महला चौथा गौड़ी पूर्वी हर दयाल दया प्रभ कीनी मेरे मन तन मुख हर बोली गुरमुख रंग भया अत गूड़ा हर रंग पीनी मेरी चोली अपने हर प्रभ की हौ गोली जब हम हर सेती मन मानिया कर दीनो जगत सब गोल अमोली रहाओ करहो विवेक संत जन पाई खोज हृदय देख टंडोली हर हर रूप सब जोत सबाई हर निकट वसै हर कोली हर हर निकट वसै सब जग कह अपरंपर पुरख अतोली हर हर प्रगट कियो गुर पूरै सिर वेचियो गुर पै मोली हर जी अंतर बाहर तुम सरनाग तुम वड पुरख वडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावै मिल सतगुर गुर वे चोली गौड़ी पूर्वी महला चौथा जग जीवन अपरंपर स्वामी जगदीश्वर पुरख बधाते जित मार्ग तुम प्रेर हो स्वामी तित मार्ग हम जाते राम मेरा मन हर से तीराते सत संगत मिल राम रस पाया हर राम मैं नाम समाते रहाओ हर हर नाम हर हर जग अवखद हर हर नाम हर साते तिनके पाप दोख सब बिनसे जो गुरमत राम रस खाते जिनको लिखत लिखे तुर मस्तक ते गुर संतोख सर नाते दुर्मत मैल गई सब तिनकी जो राम नाम रंग राते राम तुम आपे आप आप प्रभ ठाकुर तुम जेवड़ अवर ना दाते जन नानक नाम लए ता जीवै हर जपिए हर कृपाते गौड़ी पूर्वी महला चौथा करहो कृपा जग जी मन दाते मेरा मन हर से तीराचे सतगुर बचन दियो अत निर्मल जप हर हर हर मन माचे
राम मेरा मन तन बेद लियो हर साचे जेहे काल कै मुख जगत सब ग्रसिया गुर सतगुर कै बचन हर हम बाचे रहा जिनको प्रीत नाही हर सेती ते साकत मूड नर काचे तिनको जन्म मरण अत भारी विच विस्ता मर मर पाचे तुम दयाल सरन प्रतपालक मोको दीजे दान हर हम जाचे हर के दास दास हम कीजे मन निरत करे कर नाचे आपे साहा वड्डे प्रभ स्वामी हम बन जा रे है ताचे मेरा मन तन जियो रास सब तेरी जन नानक के साहा प्रभ साचे गौड़ी पूर्वे महला चौथा तुम दयाल सर्व दुख पंजन एक बिनो सुनो दे कानी जिस ते तुम हर जाने स्वामी सो सतगुर मेल मेरा प्राणी राम हम सतगुर पार ब्रह्म कर माने हम मूड मुगद अशुद्ध मत होते गुर सतगुर कै बचन हर हम जाने रहाओ जितने रस अनरस हम देखे सब तितने फीक फीकाने हर का नाम अमृत रस चाखिया मिल सतगुर मीठ रस गाने जिनको गुर सतगुर नहीं पीटिया ते साकत मूड देवानी तिनके कर्महीन तुर पाए देख दीपक मोहे पचाने जिनको तुम दया कर मेलो ते हर हर सेव लगाने जन नानक हर हर हर जप प्रगटे मत गुरमत नाम समाने गौड़ी पूर्वी महला चौथा मेरे मन सो प्रभ सदा नाल है स्वामी कहो कितै हर पहु नसीऐ हर आपे बख्श लए प्रभ साचा हर आप छुड़ाए छुटिऐ मेरे मन जप हर हर हर मन जपिऐ सतगुर की सरनाई भज पौ मेरे मना गुर सतगुर पीछे छुटिया रहाव मेरे मन सेव हो सो प्रभ सर्व सुख दाता जित सेवे निज कर वसीय गुरमुख जाए लहो कर अपना कस चंदन हर जस कसीय मेरे मन हर हर हर हर हर जस उत्तम लैला हर मन हसीय हर हर आप दया कर देवे ताय अमृत हर रस चखिए मेरे मन नाम बिना जो दूजे लागे ते साकत नर जम कुटिए

लेखा छुटिए जन नानक हर प्रभ पूरे किए खिन मासा तोल ना कटिए गौड़ी पूर्वे महला चौथा हमरे प्राण वसगत प्रभ तुमरे मेरा जियो पिंड सब तेरी दया करहो हर दर्श दिखावहो मेरे मन तन लोच कनेरी राम मेरे मन तन लोच मिलन हर केरी गुर कृपाल कृपा किंचत गुर कीनी हर मिल आए प्रभ मेरी रहाओ जो हमरे मन चित है स्वामी साबिद तुम हर जानो मेरी अन दिन नाम जपी सुख पाई।

अन दिन अनद पया वडभागी सब आस पूजी जन केरी जगन्नाथ जगदीश्वर करते सब वसगत है हर केरी जन नानक शरणागत आए हर राखो पैज जन केरी गौड़ी पूर्वी महला चौथा इहो मनुआ खिन ना टिकै बहु रंगी दह दह दिस चल चल हांडी गुरपुरा पाया वड भागी हर मंत्र दिया मन ठाढे राम हम सतगुर लाले कांडे रहाउ हमरे मस्तक दाग दगाना हम कर्ज गुरु बहु साढ़े पार उपकार पुन बहु किया बहु दुत्तर तार पराढ़े जिनको प्रीत हृदय हर नाही तिन कूरे गाडन गाडी ज्यो पानी कागद बिन सुजात है त्यों मन मुख गर्भ गलाढ़े हम जानिया कछु ना जान है आगे ज्यो हर राख है त्यों ठाढ़े हम पूल चूक गुर कृपा तारो जन नानक कुतरे कांडे गौड़ी पूर्वी महला चौथा काम करोद नगर बहु भरिया मिल साधु खंडल खंडाए पूरब लिखित लिखे गुर पाया मन हर लिव मंडल मंडाए कर साधु अंजलि पुन वड्डाए कर डंडोत पुन वड्डाए रहाओ साकत हर रस साधना जानिया तिन अंतर हम मैं कंडाए ज्यों ज्यों चल है चुभै दुख पावह जम काल सह सिर डंडाई हर जन हर हर नाम सुमाणी दुख जन्म मरण भव खंडाही अविनाशी पुरख पाया परमेश्वर बहु सोभ खंड ब्रह्मंडाही हम गरीब मशकीन प्रभ तेरे हर राख

इस गढ़ में हर राम राय है, किस साधना पावे तीठा, हर दीन दयाल अनुग्रह किया।

मुख मस्तक पाग सुभागी राम गुरमत हर लिव लागी रहाउ। कट कट रमैया रमत राम राय गुर शब्द गुरु लिव लागी। हो मन तन देवो काट गुरु कहो मेरा भ्रम पहो गुर बचनी भागी। अंधियार है दीप ज्ञान जलाई गुर ज्ञान गुरु लिव लागी। अज्ञान अंधेरा बिनस बनासेउ कर वस्त लही मन जागी। साकत बदक माया तारी तिन जम जो हन लागी।

अब नानक सरणागत आए, हर राखो लाज हर पाया, गौड़ी पूर्वी महला चौथा, गुरमत बाजै शब्द अनाहद, गुरमत मनुआ गावे, वड पागी गुर दर्शन पाया, तन तन गुरु लिव लावे, गुरमुख हर लिव लावे रहाउ, हमरा ठाकुर सतगुर पूरा, मन गुर की कार कमावे, हम मल मल धोवे पाव गुरु के, जो हर हर कथा सुनावे, हृदय गुरमत राम रसायन, जिहवा हर गुण गावे, मन रसक रसक हर रस आगामी, फिर बहोर न भूख लगावे, कोई करे उपाव अनेक बहुतेरी, बिन कृपा नाम ना पावे, जन नानक को हर कृपा तारी, मत गुरमत नाम दृढ़ावे, राह गौड़ी माज महला चौथा, गुरमुख जिंदू जप नाम करम्मा, मत माता मत जियो नाम मुख रामा, संतोख पिता कर गुरपुरख अजन्मा, वडभागी मिल रामा, गुर जोगी पुरख मिलिया रंग माणी जियो, गुर हर रंग रतड़ा सदा निर्बाणी जियो, वडभागी मिल सुगड़ सुजाणी जियो, मेरा मन तन हर रंग पिन्ना, आवह संत हो मिल नाम जपाहा, विच संगत नाम सदा ले लाहा जियो, कर सेवा संता अमृत मुख पाहा जियो, मिल पूर्व लिखियड़े तुर कर्मा, सावन वर्ष अमृत जग छाया जियो, मन मोर कुह कियड़ा शब्द मुख पाया, हर अमृत बुठड़ा मिलिया हर राया जियो, जन नानक प्रेम रतन्ना, गौड़ी माज महला चौथा, आओ सखी गुण कामन करी हा जियो, मिल संत जना रंग मान रलिया जियो, गुर दीपक ज्ञान सदा मन बलिया जियो, हर तुठै टुल टुल मिलिया जी।

प्यारिया वस मेरे गोविंदा हर कर कृपा मन वस जीउ मन चिंदियाड़ा फल पाया मेरे गोविंदा गुरपुरा वेख विगस जीउ हर नाम मिलिया सोहागणी मेरे गोविंदा मन अन दिन अन दरहस जीउ हर पायड़ा वडभागी मेरे गोविंदा नित लै लाहा मन हस जीऊ।

हर हर नाम प्रगासिया मेरे गोविंदा सब दालत दुख लह जाही दियो हर पद उत्तम पाया मेरे गोविंदा वडभागी नाम समाही दियो नैनी मेरे प्यारिया नैनी मेरे गोविंदा किने हर प्रभ डिठड़ा नैनी दियो मेरा मन पन बहुत बैरा गया मेरे गोविंदा हर बाजो धन कुमलैनी जियो संत जना मिल पाया मेरे गोविंदा मेरा

हर कथा मंग है हर चंगी जीओ, हर आपे भगत कराएंदा मेरे गोविंदा। हर भगता लोच मन पूरी जीओ, आपे जल थल वरतदा मेरे गोविंदा। रब रहया नहीं दूरी जीओ, हर अंतर बाहर आप है मेरे गोविंदा। हर आप रहया भरपूरी जीओ, हर आत्म राम पसारिया मेरे गोविंदा। हर वेखै आप हदूरी जीओ, हर अंतर वाजा पौन है मेरे गोविंदा। हर आप बजाए त्यों वाजे जीओ, हर अंतर नाम निदान है मेरे गोविंदा। गुर शब्दी हर प्रभ गाजे जीओ, आपे सरन पुआएंदा मेरे गोविंदा। हर भगत जना राख लाजे जीओ, वडभागी मिल संगती मेरे गोविंदा। जन नानक नाम सिद्ध काजे जीओ, गौड़ी माज महला चौथा। मैं हर नामे हर बिरहो लगाई जीओ, मेरा हर प्रभ मित मिले सुख पाई जीओ। हर प्रभ देख जीवा मेरी माई जीओ, मेरा नाम सखा हर पाई जीओ। गुण गावो संत जीओ, मेरे हर प्रभ केरे जीओ। जप गुरमुख नाम जीओ, भाग वडेरे जीओ। हर हर नाम जीओ, प्राण हर मेरे जीओ। फिर बहुड़ ना भवजल फेरे जीओ, क्यों हर प्रभ वेखा। मेरा मन तन चाओ जीओ, हर मेलो संत जीओ। मन लगा पाओ जीओ, गुर शब्दी पाईए हर प्रीतम राव जीओ। वड भागी जप नाओ जीओ, मेरा मन तन वडड़ी गोविंद प्रभ आसा जीओ। हर मेलो संत जीओ, गोविंद प्रभ पासा जीओ। सतगुर मत नाम सदा प्रगासा जीओ, जन नानक पूरे अड़ी मन आसा जीओ। गौड़ी माज महला चौथा, मेरा बिरही नाम मिले ता जीवा जीओ। मन अंदर अमृत गुरमत हर लीमा जीओ, मन हर रंग रतड़ा हर रस।

प्रीतम मित्र हर पुरख सुजान जियो, गुर मेले संत हर सुगड़ सुजान जियो। हौ नाम बिटहु कुरबान जियो, हौ हर हर सज्जन हर मीत दसाई जियो। हर दसहु संतो जी हर खो।

सुपने पेखारी एक कुशल मोको सतगुरु बताया हर जो कुछ करे सो हर किया भगता पाया जन नानक हूं मैं मार समाया इन बिद कुशल होत मेरे भाई इउं पाईए हर राम सहाई रहाओ दूजा गौड़ी गुआररी महला पंजवां क्यों भ्रमिए भ्रम किसका होई जा जल थन महियल रवे आसोई गुरमुख उबरे मनमुख पत खोई जिस राखै आप राम दयारा तिस नहीं दूजा को पहुंचन हारा रहाओ सब मह वरतै एक अनंता ता तू सुख सो होए अचिंता ओहो सब किस जाने जो वरतंता मनमुख मोए जिन दूजी प्यासा बहु जोनी पवह तुर किरत लिखियासा जैसा बीजह तैसा खासा देख दर्स मन पया विगासा सब नदनी आया ब्रह्म परगासा जन नानक की हर पूर्ण आसा गौड़ी गुआर री महला पंजवा कई जन्म पय कीत पतंगा कई जन्म गजमीन कुरंगा कई जन्म पंखी सर्प होयो कई जन्म हैवर ब्रिख जोयो मिल जगदीश मिलन की बरिया चिरंकाल एह दे संजरिया रहाओ कई जन्म सैल गिर करिया कई जन्म गर्भ हिर खरिया कई जन्म साख कर उपाया लख चौरासी जोन प्रमाया साध संग भयो जन्म प्रापत कर सेवा पज हर हर गुरमत त्याग मान झूठ अभमान जीवत मरह दरगाह परवान जो किश होआ सो तुझ ते होग अवरना दूजा करने जोग ता मिलिए जा लह मलाई कहो नानक हर हर गुण गाय गौड़ी गुआर री मोहला पंजवां कर्म भूम मह बोह नाम पूर्ण होए तुम्हारा काम फल पावह मिटै जम त्रास नित गावह हर हर गुण जास।

तिस की ओट निमुख माही होवै तेरी छोट सदा निकट कर तिस नो जान प्रभ की आज्ञा सत कर मान गुर कै बचन मटावो हो आप हर हर नाम नानक जप जाप गौड़ी गुआर री महला पंजवा गुर का बचन सदा अबनासी गुर कै बचन कट्टी जम फासी गुर का बचन जी कै संग गुर कै बचन रचै राम कै रंग जो गुर दिया सुमन कै काम संत का किया सत कर मान रहाव गुर का बचन अटल अशेद गुर कै बचन कटे भ्रम भेद गुर का बचन कतहु ना जाय गुर कै बचन हर के गुण गाय गुर का बचन जी कै साथ गुर का बचन अनाथ को नाथ गुर कै बचन नरक ना पवै गुर कै बचन रसना अमृत रवै गुर का बचन प्रगट संसार गुर कै बचन नया व्यहार जिस जन होए आप कृपाल नानक सतगुर सदा दयाल गौड़ी गुआर री महला पंजवा जिन कीता माटी ते रतन गर्भ मह राखिया जिन कर जतन जिन दीनी सोभा वडियाई तिस प्रभ को आठ पहर त्याई रमैया रेन साध जन पावो गुर मिले अपना खसम त्यावो रहाओ जिन कीता मूड ते बक्ता जिन कीता बेसुरत ते सुरता जिस प्रसाद नवै निद पाई सो प्रभ मन ते बिसरत नाही।

सास ग्रासा जिस प्रसाद माया सिलक काटी गुर प्रसाद अमृत बिख खाटी कहो नानक इस ते किश नाही राख नहारे कौ सलाही गौड़ी गुआरी महला पंजवा तिसकी शरण नाही पहु सोग उसते बाहर कछु ना होग तजी सियाणप बल बुद्ध बिकार दास अपने की राख नहार जप मन मेरे राम राम रंग राम।

काल बंधन काट किए अपने दास सिमर सिमर सिमर गुणतास एको मन एको सब ठाए पूर्ण पूर रहे हो सब जाए गुरपूर सब परम चकाया हर सिमरत नानक सुख पाया गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा अगले मोए से पाछे परे जो उबरे से बांध लख खरे।

रहाउ हस पवन हस्त असवारी जोआ चंदन सेज सुंदर नारी नट नाटक आखारे गाया तामह मन संतोख न पाया तख्त सभा मंडन दोलीचे सगल मेवे सुंदर बागीचे अखेर बिरत राजन की लीला मन ना सुहिला परपंच हीला कर कृपा संतन सच कहया सर्ब सुख इहो आनंद लहया साध संग हर कीर्तन गाईए कहो नानक वड भागी पाईए जा कै हर तन सोई सुहेला प्रभ कृपा ते साध संग मेला रहाउ दूजा गौड़ी गुआरी महला पंजवां।

दया। जो तुद भावै सो निर्मल कर्मा, जो तुद भावै सो सच धर्मा। सर्ब निदान गुण तुम ही पास, तू साहिब सेवक अरदास। मन तन निर्मल हो।

नाम गुण गाओ। निमक निमक हर हर हर त्याओ, आन ना सुनिय कतहूं जाइए, साध संगत बड़ पागी पाइए, आठ पहर जिहवे आराध, पार ब्रह्म ठाकुर आगाद, इहां उहां सदा सुहेली, हर गुण गावत रसनी अमोली, बनस्पत मौली फल फूल पेडे, एह रस राती बहुर ना छोड़े, आन ना रस कस लवै ना लाई, कहो नानक गुर पए है सहाई। गौड़ी गुआरी महला पंजवां, मन मंदर तन साजी बार, इस ही मत ही बस्त अपार, इस ही पीतर सुनियत साह, कवन बापारी जाका उहां वसाह, नाम रतन को व्यवहारी, अमृत भोजन करे आहारी, रहाओ मन तन अर्पी सेव करी जय, कमन सो जुगत जित कर पीजै, पाए लगो तज मेरा तेरै, कमन सो जन जो सौदा जोरै, महल साहा का किन बिद पावै, कमन सो बिद जित पीतर बुलावै, तू वड साह जाके कोट बन जारे, कमन सो दाता ले संचारे, खोजत खोजत निज कर पाया, अमोल रतन साच दिखलाया, कर कृपा जब मेले साह, कहो नानक गुर कै विसार, गौड़ी महला पंजवां गवाररी, रैन दिनस रह इक रंगा, प्रभ को जाने सद ही संगा, ठाकुर नाम कियो उनवर्तन, तृप्त अगावन हर कै दर्शन, हर संग राते मन तन हरे, गुर पूरे की सरनी परे, रहाओ चरण कमल आत्म आधार, एक निहार है आज्ञाकार, एको बनज एको व्यवहारी, अवर न जान है बिन निरंकारी, हरख सोग दोहूं ते मुक्ते, सदा अलिपत जोग अर जुगते, दिस है सब मह सब ते रहते, पार ब्रह्म का उए ध्यान धरते, संतन की महिमा कमन बखानो, अगाध बोध किस मित नहीं जानो, पार ब्रह्म मोहे कृपा की जय, तूर संतन की नानक दी जय, गौड़ी गुआरी महला पंजवां, तू मेरा सखा तू ही मेरा मीत, तू मेरा प्रीतम तुम संग हीत, तू मेरी पत तू है मेरा गहना, तुझ बिन निमख ना जाई रहना।

रंग रसा तू मन है आधार, तू मेरी शोभा तुम संग रतिया, तू मेरी ओट तू है मेरा तकिया, मन तने अंतर तू ही ते आया, मर्म तुम्हारा गुर ते पाया, सतगुर ते दृढ़िया एक एक है, नानक दास हर हर हर टेक है, गौड़ी गुआरी महला पंजवा, व्यापत हरक सोग विस्थार, व्यापत सुरग नर के अवतार, व्यापत धन निरधन पेख सोभा, मूल ब्यादि व्याप सलोभा, माया व्यापत बहु परकारी, संत जीव है प्रभ ओट तुम्हारी, रहाउ व्यापत हम बुद्ध का माता, व्यापत पुत्र कलत्तर संग राता, व्यापत हस्त कोड़े अर बस्ता, व्यापत रूप जोबन मदमस्ता, व्यापत भूम रंक अर रंगा, व्यापत गीत नाद सुन संगा, व्यापत सेज महल सिंगार, पंच दूत व्यापत अंधियार, व्यापत कर्म करे हौ फासा, व्यापत गिरस्त व्यापत उदासा, चार व्यवहार व्यापत एह जात, सब किश व्यापत बिन हर रंग रात, संतन के बंधन काटे हर राय, ताको कहां व्यापै माई, कहो नानक जिन तूर संत पाई, ताके निकट न आवै माई, गौड़ी गुआर री महला पंजवां।

की खबर ना जाती। मुसनहार पंच बटवारी सूने नगर परे ठगहारी। उन तेरा कह बाप ना माई उन तेरा कह मीत ना पाई। दर्ब सियाणप ना हुए रहते साध संग ओए दुष्ट वस होते।

नाम पार ब्रह्म स्यो लागी प्रीत निर्मल करनी साची रीत गुरपूरै मेटिया अंधियारा नानक का प्रभ अपर अपारा गौड़ी ग्वार दी महला पंजवा जिस मन वसै तरै जन सोए जाके कर्म प्राप्त होए दुख रोग कछ पौ न व्यापै अमृत नाम हृदय हर जापै पार ब्रह्म परमेश्वर क्या यह।

पाल अगमय गोचर सदा बेअंता सिमरमना पूरे गुरमंता जाकी सेवा सर्व निदान प्रभु।

सुख निदान हर अलख स्वामी जी जंत तेरी सरनाई नानक नाम मिले बड़ियाई गौड़ी गुआरी महला पंजवा जी जुगत जा कह है हाथ सो सिमरहो अनाथ को नाथ प्रभ चित आए सब दुख जाए पै सब बिन सह हर कह नाए बिन हर पवो काहे का मन है हर बिसरत काहे सुख जान है रहाओ जिन तारे बहु तरन आगास जाकी ज्योत जी परगास जाकी बख्शना में तय कोए सिमर सिमर प्रभ निरपव होए आठ पैर सिमर हो प्रभ नाम अनक तीरथ मज्जन इशना।

पुरख जपै भगवान, आठ पहर हर हर गुण गाऊं, कहो नानक कहो तिस बल जाऊं। राग गौड़ी ग्वारी महला पंजवा, चौपदे दो पदे एक ओंकार, सतगुर प्रसाद जो परायो सोई अपना, जो तज छोड़न तिस स्यो मन रचना, कहो गसाई मिली ऐ के, जो बिबरजत तिस स्यो नेह रहाओ। झूठ बात सा सच कर जाती, सत होवन मन लगे ना राती, बावे मार्ग टेढ़ा चलना।

नामूल परे पंडार अखूट अतोल खाव है खर्च है रल मिल पाई टूट न आवे वद दो जाई कहो नानक जिस मस्तक लेख लिखाए सो एत खजाने लियार लाई गौड़ी महला पंजवा डर डर मरते जब जानिए दूर डर चूका देखिया भरपूर सतगुर अपने कहो बलिहार छोड़ ना जाई सर पर तारे रहाओ दुख रोग सोग बिसरे जब नाम सदा आनंद जा हर गुण गाम बुरा भला कोई ना कही जय छोड़ मान हर चरण गही जय कहो नानक गुर मंत्र चितार सुख पावे साचे दरबार गौड़ी महला पंजवां जांका मीत साजन है समिया तिस जन कहो कहो का की कमिया जां की प्रीत गोबिंद स्यों लागी दुख दर्द भ्रम ता का भागी रहाउ जां को रस हर रस है आयु सो अन रस नाही लपटायु जा का कहया दरगाह चले सो किसको नदर ले आवे तले जां का सब किस ता का होए नानक ता को सदा सुख होए गौड़ी महला पंजवां जां कै दुख सुख सम कर जापै ता को काड़ा कहां बियापै सहज आनंद हर साधु माहे आज्ञाकारी हर हर राय रहाउ जां कै अचिंत वसै मन आई ता को चिंता कत हु

सगल निदहना गौड़ी महला पंजवा अगम रूप का मन महथाना गुर प्रसाद किना बिरले जाना सहज कथा के अमृत कुंटा जिसह प्राप्त तिसलह पुंचा रहाव अनहत बाणी थान निराला तां की धुन मोहे गोपाला तह सहज अखारे अनेक अनंता पार ब्रह्म के संगी संता हरख अनंत सोग नहीं बिया सो कार्य गुरु नानक को दिया गौड़ी महला पंजवा कवन रूप तेरा अरादो कवन जोग काया ले साधो कवन गुण जो तुझ ले गाव कवन बोल पार ब्रह्म रि जाऊ रहाऊ कवन सो पूजा तेरी करो कवन सो बिद जित पवजल तरु कवन तप जित तपिया होए कवन सो नाम हमै मल खोए गुण पूजा ज्ञान ध्यान नानक सगल काल जिस कर कृपा

सेव आद पुरख अपरम पर देव तिसे ऊपर मन कर तू आसा आद जुगाद जा का परवासा जा की प्रीत सदा सुख होए नानक गावे गुर मिल सोए गौड़ी महला पंजवा मीत करे सोई हम माना मीत के करतब कुशल समाना एकाटेक मेरे मन चीत जिस किस करना सो हमरा मीत रहाओ मीत हमारा वे परवाहा गुर कृपा ते मोहे असनाहा मीत हमारा अंतर जामी सम्राट पुरख पार ब्रह्म स्वामी हम दासे तुम ठाकुर मेरे मान महत नानक प्रभ तेरे गौड़ी महला पंजवा जाको तुम पये समरथ अंगा।

सो वड्डा जिन राम निवलाई रहाउ। भूमिया भूम ऊपर नित लुजै, छोड़ चलै तृष्णा नहीं बुझै। कहो नानक एहो तत बीचारा, बिन हर भजन नाही छुटकारा। गौड़ी महला पंजवां, पूरा मार्ग पूरा इशनान, सब

हर कै मार्ग पतत पनीत पूरी शोभा पूरा लोकीक करनहार सद वसै हदूरा कहो नानक मेरा सतगुरु पूरा गौड़ी महला पंजवा संत की तूर मिटे अग कोट संत प्रसाद जन्म मरण ते चोट संत का दर्श पूर्ण इशनान संत कृपा ते जपिए नाम रहाव संत कै संग मिटिया अहंकार दृष्ट आवे सबे कंकार संत सो प्रसन्न आए वस पंचा अमृत नाम हृदय लै संचा कहो नानक जा का पूरा कर्म तिस भेटे साधु के चरण गौड़ी महला पंजवा हर गुण जपत कमल पर गासै हर सिमरत त्रास सब नासै सामत पूरी जित हर गुण गावे वड्डे भाग साधु संग पावे रहाव साध संग पाइय निदनामा साध संग

साद भगवंता हर सिमरन ते मिटी मेरी चिंता सब ताज अनाथ इक सरने आयो ऊच अस्थान तब सहजे पायो दुख दर्द परम पौ नसया करनहार नानक मन बसया गौड़ी महला पंजवा कर कर टहल रसना गुण गावो चरण ठाकुर कै मार्ग धामो भलो समो सिमरन की बरिया सिमरत नाम पै पार उतरिया रहाओ नेतर संतन का दर्शन पेख प्रभ अवनासी मन महलेख सुन कीर्तन साध पह जाए जन्म मरण की त्रास मटाए चरण कमल ठाकुर उरतार दलाब दे नानक निस्तार गौड़ी महला पंजवां जाको अपनी कृपा धारै सो जन रसना नाम उचारै हर बिसरत सहसा दुख व्यापै सिमरत नाम परम पौ भाग।

पहल करत जन सोहै ता कौ माया अग्न ना पोहै। मन तन मुख हर नाम दयाल नानक तजी अले।

कटकाई दुख बिन से सुख हर गुण गाई गुरपुरा पीतिया लिवलाई रहाउ हर का नाम दियो गुर मंत्र मिटे वसूरे उतरी चिंत आनंद भये गुर मिलत कृपाल कर कृपा।

साध संग मिल भजह गोपाला गौड़ी महला पंजवा काल कलेश गुर शब्द निवारी आवन जान रही सुख सारी तै बिन से निरभउ हर त्याया साध संग हर के गुण

रात पूरा गुड़ काढ़े जन्म जन्म के टूटे गांडे कहो नानक तिस गुर बलिहारी जिस भेटत गत पई हमारी गौड़ी महला पंजवां साध संग तां की सरनी परो मन तन अपना आगै धरहु अमृत नाम पीवो मेरे भाई सिमर सिमर सब तपत बुझाई रहाओ ताज अवमान जन्म मरण निवारहु हर के दास के चरण नमस्कारहु सास सास प्रभ मन सुमाले सो तन संचो जो चाले नाले तिसह प्राप्त जिस मस्तक भाग कहो नानक ताकी चरणी लाग गौड़ी महला पंजवां सूके हरे किए खिन माए अमृत दृष्ट संच जीवाए काटे कष्ट पूरे गुरुदेव सेवक को दीनी अपनी सेव रहाओ मिट गई चिंत पुन्नी मन आसा कर दया सतगुर गुणतासा दुख नाठे सुख आए समाए ढील ना परी जा गुर फुरमाए इच पुन्नी पूरे गुर मिले नानक तेजन सुफल फले गौड़ी महला पंजवां।

प्रभ का नाम सगल रोग का बिनसे आठाव सहज सुपाए बोले हर वाणी आठ पहर प्रभ सिमरहु प्राणी दुख दर्द जम नेड़ ना आवे कहो नानक जो हर गुण गावे गौड़ी महला पंजवा पले दिनस पले संजोग।

गुरमूरत स्यो लाए ध्यान, नीहा ऊहा पावे मान। सगल त्याग गुर सरनी आया, मिटे अंदेसे नानक सुख पाया। गौड़ी महला पंजवां, जिस सिमरत दुख सब जाए। नाम रतन वसै मन आए, जप मन मेरे गोविंद की बाणी। साधु जन राम रसन बखाणी, रहाओ एकस बिन नाही दूजा कोई। जा

अंतरजामी गौड़ी महला पंजवा तै मह रचियो सब संसारा तिस भव नाही जिस नाम आधारा।

ब्राह्मण जाना, इन सुख पाया जो प्रभ पाना, अगन सागर महाव्यापै माया, ते शीतल जिन सतगुर पाया।

तुमरी कृपा ते दरगाह थाव, तुझ बिन पार ब्रह्म नहीं कोए, तुमरी कृपा ते सदा सुख होए रहाओ। तुम मन बसे तो दुख न लागे, तुमरी कृपा ते ब्रह्म पौ भागे, पार ब्रह्म अपरम्पर स्वामी सगल कथा के अंत।

रतुखा नाम विहून सुने से मुखा हर हर नाम जप हो नित प्राणी नाम विहून त्रिग देह बिगानी रहा नाम बिना नाही मुख भाग परत।

तू है मेरा स्वामी, सब किस तुम ते तू अंतर जामी, पार ब्रह्म पूर्ण जन ओट, तेरी शरण उदर है जन कोट रहाव, जेते जीते ते सब तेरे, तुमरी कृपा ते सुख कनेरे, जो किस वरतै सब तेरा पाना, हुक्म बूझै सो सच समाना, कर कृपा दीजै प्रवदान, नानक सिमरै नाम निदान, गौड़ी महला पंजवां, ताका दर्स पाईऐ वड भागी, जाकी राम नाम लिव लागी, जाकै हर वस्या मन माही, ताको दुख सुपने पी नाही रहाओ, सर्व निदान राखे जन माहे, ताकै संग किल विख दुख जाए, जन की महिमा कथी न जाए, पार ब्रह्म जन रहया समाए, कर कृपा प्रभ बिनो सनीज।

मन आए, भज मन मेरे एको नाम, जी तेरे कै आवे काम रहाओ, रैन दिनस गुण गाओ अनंता, गुरपूरे का निर्मल मंता, छोड़ अपाव एक टेक राख, महापदार्थ अमृत रस चाख, बिकम सागर तेई जन तरे, नानक जा कौ नदर करे, गौड़ी महला पंजवा, हृदय चरण कमल प्रभ तारी, पूरे सतगुर मिल निस्तारी, गोविंद गुण गाव हो मेरे भाई,

आनंदा जप जप जीवे परमानंदा नाम रास साध संग खाटी कहो नानक प्रभ अपदा काटी गौड़ी महला पंजवा हर सिमरत सब मिट है कलेश चरण कमल मन मह प्रवेश उच्चरो हो राम नाम लख बारी अमृत रस पीवो हो प्रभ प्यारी रहाओ सुख सहज रस महा आनंदा जप जप जीवे परमानंदा काम क्रोध लोभ मद खोए साध कै संग किल विख सब धोए कर कृपा प्रभ दीन दयाला नानक दीजै साध रवाला गौड़े महला पंजवा जिसका दिया पैने खाए तिस स्यों आलस क्यों बने माए खसम बिसार आन कम लागह कौडी बदले रतन त्याग है रहाओ प्रभु त्याग लागत अन लोभा दास सलाम करत कत सुभा

प्रभ अंतर जामी गौड़ी महला पंजवां प्रभ के चरण मन माहे ध्यान सगल तीरथ मजन इशनान हर दिन हर सिमरन मेरे पाई कोट जन्म की मल लह जाई रहाओ हर की कथा रित माहे बसाई मन बाशत सगले फल पाई जीवन मरण जन्म परवान जा कैर दैवसै भगवान कहो नानक से जन पूरे जिन्ना प्राप्त साधु तूरे गौड़ी महला पंजवा खांदा पैंदा मुकर पाए तिसनो जो है दूत धर्म राय तिस स्यो बेमुख जिन जियो पिंड दीना कोट जन्म परमह बहु जूना रहाओ साकत की ऐसी है रीत जो किस करे सगल विपरीत जियो प्राण जिन मन तन तारिया सोई ठाकुर मनो बिसारिया बदे विकार लिखे बहु कागर नानक उधर कृपा सुख सागर पार ब्रह्म तेरी सरनाए बंधन काट तरे हरनाए रहाओ दूजा गौड़ी महला पंजवा अपने लोभ को कीनो मीत सगल मनोरथ मुकत पद दीत ऐसा मीत करहु सब कोई जाते बिरथा कोई ना होए रहाओ अपने सुआए हृदय लै तारिया दुख दर्द रोग सगल बदारिया रसना गीदी बोलत राम पूर्ण होए सगले काम अनक बार नानक बलिहारा सफल दर्शन गोविंद हमारा गौड़ी महला पंजवा कोट बिगन हिरे खिन माहे हर हर कथा साध संग सुनाहे तीवत राम रस अमृत गुण जास जप हर चरण मिटी खुद तास रहाओ सर्व कल्याण सुख सहज निदान जा कर दे वसह भगवान।

कहो नानक अटल एह धर्म गौड़ी महला पंजवा कर कृपा भेटे गुरसोई तित बल रोग ना व्यापै कोई राम रमन तरन पै सागर सरल सूर फारे जमकागर रहाओ सतगुर मंत्र दियो हर नाम एह आसर पूर्ण पय काम जप तप संयम पूरी वडियाई गुर कृपाल हर पय सहाय मान मोह खोए गुर परम पेख नानक पसरे पार ब्रह्म गौड़ी महला पंजवा बिखै राज ते अंदला पारी दुख लागे राम नाम चितारी तेरे दास को तुही वडियाई माया मगन नरक लै जाई रहाओ रोग

प्रीत सदा सदा सिमरो प्रभ स्वामी मिल नानक हर अंतर जामी गौड़ी महला पंजवा आठ पहर संगी बटवारी कर कृपा प्रभ लय निवारी ऐसा हर रस रमहु सब।

हर को नाम बिचर संसार पूर्ण सब काम वड भागी हर कीर्तन गाइए पार ब्रह्म तू देहे ता पाइए रहाउ हर के चरण हृदय उरतार भव सागर चढ़ उतरह पार साधु संग करहो सब कोय सदा कल्याण फिर दुख ना होय प्रेम भगत भज गुणी निदान नानक दरगाह पाई है मान गौड़ी महला पंजवा जल थल महियल पूर्ण हरमीत प्रम बिन से गाए गुण नीत उठत सोवत हर संग पहरुआ जां कै सिमरन जम नहीं डरुआ रहाउ चरण कमल प्रभ हृदय निवास सगल दुख का होया नास आसा मान तान ताने कर साचे साहा की मन मह टेक महागरीब जन साध अनाथ नानक प्रभ राखे दे हाथ गौड़ी महला पंजवा हर हर नाम मज्जन कर सूचे कोट ग्रहण पुन फल मूचे रहाव हर के चरण हृदय मह बसे जन्म जन्म के किल विख नसे साध संग कीर्तन फल पाया जम का मार्ग दृष्ट न आया मन बच क्रम गोविंद आधार ताते छुट्यो बिख संसार कर कृपा प्रभ कीनो अपना नानक जाप जपे हर जपना गौड़ी महला पंजवा पौ सरनाई जिन हर जाति मन तन शीतल चरण हर राति पै भंजन प्रभ मन ना बसाही डरपत डरपत जन्म बहुत जाही रहाव जां कै हृदय बस्यो हर नाम सगल मनोरथ ताके पूर्ण काम जन्म जरा मृत जिस वास सो समरथ सिमर सास ग्रास मीत साजन सखा प्रभ एक नाम स्वामी का नानक टेक गौड़ी महला पंजवा बाहर राख्यो हृदय संभाल

कर पूजी सौदे को तावै बिन पूंजी नानक राम नाम जप चीत सिमर स्वामी हर सामीत गौड़ी महला पंजवा सा मत निर्मल कहियत तीर राम रसायन पीवत बीर हर के चरण हृदय कर ओट जन्म मरन ते होवत छोट रहाओ सो तन निर्मल जित उपजै ना पाप राम रंग निर्मल प्रताप साध संग मिट जात बिकार सब ते ऊज एहो उपकार प्रेम भगत राते गोपाल नानक जाचै सादरवाल गौड़ी महला पंजवा ऐसी प्रीत गोविंद स्यों लागी मेल लए पूर्ण वडभागी रहाउ परता पेख बिकसै ज्यों नारी त्यों हर जन जीवै नाम चितारी पूत पेख ज्यों जीवत माता ओत पोत जन हर स्यों राता लोभी आनंद करै पेख तना जन चरण कमल स्यों लागू मना।

नायन जो जन गीते चरण कमल प्रेम भगति बीते रहाउ आन रसादि सह सब चार नाम बिना निःफल संसार अंधकूप।

निखिल विख खोए, सिमर है साधु कर है आनंद, मन तन रविया परमानंद, जिसे प्राप्त हर चरण निदान, नानक दास तिसह कुर्बान। गौड़ी महला पंजवां।

संत संग जप केवल नाम, कर्म तर्म नियम ब्रत पूजा, पार ब्रह्म बिन जान ना दूजा, ता की पूर्ण होई काल, जा की प्रीत अपने प्रभ नाल, सो वैष्णो है अपर अपार, कहो नानक जिन तजे बिकार, गौड़ी महला पंजवां, जीवत छाड़ जाहे देवाने।

रहाउ। बिखैठ गौरी जिन जिन खाई, ताकी तृष्णा कबहू न जाई। दारण दुख दुत्तर संसार, राम नाम बिन कैसे उतर सपार। साध संग मिल दुए कुल साध, राम नाम नानक आराध। गौड़ी महला पंजवा, गरीबा उपर जे खिंजै दाड़ी। पार ब्रह्म सा अग्न मह साड़ी, पूरा न्याओ करे करतार। अपने दास को रखनहार रहाउ। आद जगाद प्रगट प्रताप, निंदक मुआ उपज वद ताप। तिन मारिया जे रखे न कोय, आगे पाचे मंदी सोए। अपने दास राखे कंठ लाए, शरण नानक हर नाम त्याए। गौड़ी महला पंजवा, महजर झूठा की तुने आप। पापी को लागा संताप, जिसह सहाई गोविंद मेरा। तिसको जम नहीं आवे नेरा रहाउ। साची दरगाह बोले कूड़, सिर हाथ पछोड़े अंधा मूड़। रोग व्यापे कर दे पाप, अदली होए बैठा प्रभ आप। अपन कमाए आपे बांधे, दर्ब गया सब जी कै साथे। नानक सरन परे दरबार, राखी पैज मेरे करतार। गौड़ी महला पंजवा, जन की धूर मन मीठ खटानी। पूर्व कर्म लिखिया तुर प्राणी रहाउ। अहम बुद्ध मन पूर थे धाई, साध तूर कर सुद मन जाई। अनक जला जे धोवै देही, मैल न उतरै सुद न तेही। सतगुर भेट्यो सदा कृपाल, हर सिमर सिमर काटिया पौ काल। मुकत भुगत जुगत हर नाओ, प्रेम भगत नानक गुण गाओ।

कल्याण, पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार, निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याध उबरे जनमीत, मन बच क्रम प्रभ अपना त्याय, नानक दास तेरी सरनाई, गौड़ी महला पंजवां, नेत्र प्रगास किया गुरुदेव, परम गए पूर्ण भई सेव, रहाउ सीतला ते रखिया बिहारी, पार ब्रह्म प्रभ कृपा धारी, नानक नाम जपै सो जीवै, साध संग हर अमृत पीवै, गौड़ी महला पंजवां, तन ओह मस्तक तन तेरे नेत, तन ओए भगत जिन तुम संग हेत, नाम बिना कैसे सुख लहिए, रसना राम नाम जस कहिए, रहाउ किन ऊपर जाइए कुर्बान, नानक जिन जपया निर्वाण, गौड़ी महला पंजवां, तू है मसलत तू है नाल, तू है राख है सार संभाल, ऐसा राम दीन दुनी सहाय, दास की पैज रखे मेरे भाई, रहाउ आगे आप इहो थान वस जाके, आठ पैर मन हर को जापे।

कहो नानक जिस कृपा तार है हिरदा शुद्ध ब्रह्म विचार है गौड़ी महला पंजवां थिर कर बैसो हर जन प्यारी सतगुरु तुमरे काज सवारी रहाओ दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैज रखी करतारी बादशाह सहा सब वस कर दीने अमृत नाम महारस पीने निरपो होए भजो भगवान साध संगत मिल की नोदान शरण परे प्रभ अंतर जामी नानक ओट पकरी प्रभ स्वामी गौड़ी महला पंजवां हर संग राते पाहे ना जले हर संग राते माया नहीं चले हर संग राते नहीं डूबे जला हर संग राते सुफल फला सब पै मिटह तुम्हारे नाई पेटत संग हर हर गुण गाए रहाओ हर संग राते मिटै सब चिंता हर सिंह सो रचै जिस साध का मंता हर संग राते जम की नहीं त्रास हर संग राते पूर्ण आस हर संग राते दुख न लागै हर संग राता अन दिन जागै हर संग राता सहज कर वसै हर संग राते ब्रह्म पौ नसै हर संग राते मत उत्तम होए हर संग राते निर्मल सोए कहो नानक तिन कहो बल जाई जिनको प्रभ मेरा बिसरत नाही गौड़ी महला पंजवां उदम करत सीतल मन पहे मार्ग चलत सगल दुख गए नाम जपत मन पहे आनंद रस गाए गुण परमानंद खेम पया कुशल घर आए पेटत साध संग गई बलाए रहाओ नेत्र पनीत पेखत ही दर्श तन मस्तक चरण कमल ही परस गोविंद की टहल सफल एकाया संत प्रसाद परम पद पाया जन की कीनी आप सहाय सुख पाया लग दासह पाए आप गया ताया पह पहे कृपा निदान की सरनी पए जो चाहत सोई जब पाया तब ढूंढन कहां को जाया अस्थिर पए बसे सुख आसन गुर प्रसाद नानक सुख बासन गौड़ी महला पंजवां कोट मजन कीनो इशनान लाख अरब खरब दीनो दान जा मन बसेओ हर को नाम सगल पवित्र गुण गाए गोपाल पाप मिट है साधु शरण दयाल रहाव बहुत उर्द तप साधन साधे अनक लाभ मनोरथ लादे हर हर नाम रसन अरादे सिमरत शास्त्र वेद बखाने जोग ज्ञान सिद्ध सुख जाने नाम जपत प्रभ सिंह मन माने अगाध बोध हर अग्न अपारे नाम जपत नाम हृदय बिचारे नानक कहो प्रभ कृपा तारे गौड़ी महला पंजवां सिमर सिमर सिमर सुख पाया चरण कमल गुर हृदय बसाया गुर गोबिंद पार ब्रह्म पूरा किसह अराध मेरा मन तीरा रहाओ अन दिन जपो गुरु गुर नाम ता ते सिद्ध पए सगल काम दर्शन देख सीतल मन पहे जन्म जन्म के किल बिख गए कहो नानक कहां पै पाई अपने सेवक की आप पैज रखाई गौड़ी महला पंजवां अपने सेवक को आप सहाई नित प्रत पारै बाप जैसे माई प्रभ की शरण उबरै सब कोए कर्ण करावन पूर्ण सच सोए रहाव अब मन बसया करने हारा पै बिन से आत्म सुख सारा कर कृपा अपने जन राखे जन्म जन्म के किल बिखलाते कहन न जाए प्रभ की वडियाई नानक दास सदा सरनाई राग गौड़ी चेती महला पंजवां दुपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद
राम को बलपूर्ण पाई ताते बिरता ना व्यापै काई रहाओ। जो जो चितवै दास हर माई सो सो करता आप कराई निंदक की प्रभ पत गुआई नानक हर गुण निरपो गाई गौड़ी महला पंजवा। भुज बल बीर ब्रह्म सुख सागर गर्त परत गह लिहो अंगुरिया रहाओ। श्रवण ना सुरत नैन सुंदर नहीं आरत द्वार रटत पिंगुरिया दीना नाथ अनाथ करना में साजन मीत पिता महतरिया। चरण कमल हृदय गह नानक पै सागर संत पार उतरिया। राग गौड़ी बैरागण महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दई गुसाई मीतला तू संग हमारे बास जियो रहाओ। तुझ बिन करी ना जीवना त्रिग रहना संसार जी प्राण सुख दात्या निमक निमक बलिहार जी। हस्त अलंबन देहो प्रभ गर्त हो उदर गोपाल मोहे निर्गुण मत थोरिया तू सद ही दीन दयाल। क्या सुख तेरे सम्मला कमन विधि विचार सरल समाई दास हित ऊचे अगम अपार। सगल पदार्थ अष्ट सिद्ध नाम महारस माहे सो प्रसन्न भये केसवा सेजन हर गुण गाहे। मात पिता सुत बंध पो तू मेरे प्राण आधार साध संग नानक भजै बिख तरिया संसार। गौड़ी बैरागण रोहोए के संत के घर महला पंजवा।

बुद्ध बलहीनी मोहे परदेसन दूर ते आई नाहिन दर्ब ना जोबन माती मोहे अनाथ की करो समाई खोजत खोजत पई बैरागन प्रव दर्शन कौ हौ फिरत तसाई दीन दयाल कृपाल प्रभ नान साध संग मेरे जनन बुझाई गौड़ी महला पंजवा प्रभ मिल बे कौ प्रीत मन लागी पाई लगो मोहे करो बेनती को संत मिले बड़ भागी रहाओ मन अर्पो तन राखो आगे मन की मत मोहे सगल त्यागी जो प्रभ की हर कथा सुनावे अन दिन फिरो तिस पिछे विरागी पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे पेट्यो पुरख रसक बैरागी मिट्यो अंधेर मिलत हर नानक जन्म जन्म की सोई जागी गौड़ी महला पंजवां।

रस पंकज अत तीखियन मोह की फास काटन हार जगत गुरु गोविंद चरण कमल ताके करो निवास।

पा राखु हो राखनहारी खेद कर है और बहुत संताव है आयु शरण तुहारी कर कर हारियु अनक बहु भांति छोड़ है कतहु नाही एक बात सुन ताकी ओटा साध संग मिट जाही कर कृपा संत मिले मोहे तिन ते धीरज पाया संती मंत दियो मोहे निरपो गुर का शब्द कमाया जीत लए ओए महा बिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन भया परगासा पाया पद निर्वाणी गौड़ी महला पंजवा ओ अबनासी राया निरपो संग तुम्हारे बस्ते

प्रभु कृपाला राज जोगन अवध जो दीसै सब किस जोग मह घाटिया नाम निधान सद नव तन निर्मल एहो नानक हर तन खाटिया गौड़ी महला पंजवां जोग जुगत सुने आयो गुरते मोको सतगुर शब्द बुझायो रहाओ नौ खंड पृथ्वी इस तन मह रविया निमख निमख नमस्कारा दीखिया गुर की मुंदरा कानी दृढ़े हो एक निरंकारा पांच चेले मिल पए एकत्रा एक सकै वस किए दस बैरागन आज्ञाकारी तब निर्मल जोगी थिए परम जराए चराई बेभूता पंथ एक कर पेखिया सहज सूख सो कीनी भुगता जो ठाकुर मस्तक लेखिया जह पौ नाही तहां आसन बांधे हो सिंघी अनहत बानी तत बीचार डंडा कर राखे हो जुगत नाम मन पानी ऐसा जोगी बड़ भागी पेटै माया के बंधन काटै सेवा पूज करो तिस मूर्त की नानक तिस पग चाटै गौड़ी महला पंजवां अनूप पदार्थ नाम सुनो सगल त्याए ले मीता हर औखद जाको गुर दिया ताके निर्मल चीता रहाओ अंधकार मिट्यो ते तन ते गुर शब्द दीपक परगासा भ्रम की जाली ताकी काटी जाको साध संगत विश्वासा तारी ले पवजल तारू बिखड़ा बोहित साधु संगा पूर्ण होई मन की आसा गुर भेट्यो हर रंगा नाम खजाना भगती पाया मन तन तृप्त अगाए नानक हर जियो ता को देवै जाको हुक्म मनाए गौड़ी महला पंजवां दया मया कर प्राण पत मोरे मोहे अनाथ सरन प्रभ तोरी अंध कूप मह हाथ दे राखो पशु सियानप उकत ना मोरी रहाओ कर्म करावन सब किश तुम ही तुम समरथ नाही अनहोरी तुमरी गातमित तुम ही जानी से सेवक जिन भाग मथोरी अपने सेवक संग तुम प्रभराते पोत पोत भगतन संग जोरी प्रियो प्रियो नाम तेरा दर्शन चाहै जैसे दृष्ट ओह चंद चकोरी राम संत मह भेद किश नाही एक जन कई मह लाख करोरी जा कहिए प्रगट प्रभ होआ अनदिन कीर्तन रसन रमोरी तुम समरथ अपार अति ऊचे सुखदाते प्रभ प्राण अधोरी नानक को प्रभ की जय कृपा उन संतन कै संग संगोरी गौड़ी महला पंजवां तुम हर से तीराते संत हो नबाहे लेहो मोको पुरख बधाते ओड़ पहचाव हुदाते रहाओ तुमरा मर्म तुमाही जानिया तुम पूर्ण पुरख बधाते राखो सरन अनाथ दीन को करहो हमारी गाते तरन सागर बोहित चरण तुम्हारे तुम जानो अपनी भांति कर कृपा जिस राखो संगे ते पार पुराते ईत ऊत प्रभ तुम समरथा सब किश तुमरे हाथे ऐसा निदान देहो मोको हर जन चले हमारे साथे निर्गुण यारे कौ गुण की जय हर नाम मेरा मन जापे संत प्रसाद नानक हर पेटे मन तन शीतल त्रापे गौड़ी महला पंजवां सहज समायो देव मोको सतगुर भये दयाल देव रहाओ काट जेवरी कियो दासरु संतन टहलायो एक नाम को थियो पुजारी मोको अचरज गुरह दिखायो पयो प्रगास सर्व उजियारा गुर ज्ञान मनह प्रगटायो अमृत नाम पियो मन तृप्तया अन भय ठहरायो
मान आ गया सर्ब सुख पाए दुखा ठाऊ गवायो जो सो प्रसन्न पये प्रभ ठाकुर सब आनंद रूप दिखायो ना किस आवत ना किस जावत सब खेल कियो हर रायो कहो नानक अगम अगम है ठाकुर भगत टेक हर नायो गौड़ी महला पंजवा पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर मन ता की ओट गही जैरे जिन तारे ब्रह्मांड खंड हर ताको नाम जपी जैरे रहाव मन की मत त्याग हो हर जन हुक्म बूझ सुख पाई रे जो प्रभ करे सोई भल मानो सुख दुख योही त्याई रे कोट पतत उधारी खिन मै करते बार ना लागे रे दीन दर्द दुख भंजन स्वामी

तिस करते पूर रहे हो रतनागर रे। जाचक जाचै नाम तेरा स्वामी कट कट अंतर सोई रे। नानक दास तां की सरनाई जाते वृथा ना कोई रे। राग गौड़ी पूर्वी महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हर हर कबहू ना मनहु बिसारे इहां उहां सर्ब सुख दाता। सगल कटां प्रित पारी रहाओ महा कष्ट काटे खिन पीतर। रसना नाम चितारी शीतल शांत सुख हर सरनी। जलती अग्न निवारी गर्भ कुंड नरक ते राखै। पव जल पारी उतारी चरण कमल अराधत मन मह। जम की त्रास बदारी पूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर। ऊंचा अगम अपारी गुण गावत त्यावत सुख सागर। जुए जन्म ना हारी काम क्रोध लोभ मोह मन लीनो। निर्गुण के दातारी कर कृपा अपनो नाम दीजै। नानक सद बलिहारी राग गौड़ी चेती महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। सुख नाही रे हर भगत बिना जीत जन्म एहो रतन अमोलक। साध संगत जप एक खिना रहाव सुत संपत बंता बनोद। छोड़ गए बहु लोग भोग हैवर गैवर राज रंग। त्याग चल्यो है मूढ़ नंग चोआ चंदन देह फूलिया। सो तन धर संग रूलिया मोहे मोहिया जाने दूर है। कहो नानक सदा हदूर है। गौड़ी महला पंजवा मन धर तरबे हर नाम नु। सागर लहर संसार संसार गुरबोहित पार ग्राम नु रहाओ। कल कालख अंधियारिया गुर ज्ञान दीपक उजियारिया। बिख बिखिया पसरी अत घनी उबरे जप जप हर गुनी। मतवारू माया सोया गुर भेटत भ्रम पौ खोया। कहो नानक एक त्याया घट घट नदरी आया। गौड़ी महला पंजवा दीवान हमारू तुही एक। सेवा थारी गुरह टेक रहाओ अनक जुगत नहीं पाया। गुर चाकर ले आया मारे पंच बिखा दिया। गुर कृपा ते दल साध्या बख्शीस वजहो मिल एक नाम। सुख सहज आनंद विश्राम प्रभ के चाकर से भले। नानक तिन मुख उजले गौड़ी महला पंजवा। जी अरे ओला नाम का अवर जे करन कराम नु। तिन मह पहो है जाम का रहाओ अवर जतन नहीं पाई है। वड्डे भाग हर त्याई है लाख हिकमती जानी है। आगे तिल नहीं मानी है हम बुद्ध कर्म कमावने। ग्रह बालू नीर बहावने प्रभ कृपाल कृपा करे। नाम नानक साधु संग मिले गौड़ी महला पंजवा। बार ने बलिहार ने लख बरिया नामो हो नाम साहिब को। प्राण अधरिया रहाव कर्ण करावन तुही एक। जी जंत की तुही टेक राज जोगन प्रभ तू चली। तू निर्गुण तू सरगुणी इहां उहां तुम रखे। गुर कृपा ते को लखे अंतर जामी प्रभ सुजान। नानक तकिया तुही तान गौड़ी महला पंजवा। हर हर हर आराधी है संत संग हर मन वसै। परम मोह पहो साधी है रहाओ वेद प्राण सिमरत पने। सब ऊच बराजत जन सुने सगल अस्थान पै पीत चीन। राम सेवक पै रहत कीन लख चौरासी जोन फिर है। गोविंद लोक नहीं जन्म मर है बल बुद्ध स्यान पहु मैं रही। हर साध सरन नानक गही गौड़ी महला पंजवा। मन राम नाम गुण गाई है नीत नीत हर सेवी है।
सास सास हर त्याय रहाओ। संत संग हर मन वसै, दुख दर्द अनेरा भ्रम नसै। संत प्रसाद हर जापीए, सो जन दुख ना व्यापीए। जा को गुर हर मंत्र दे, सो उभरिया माया अग्न ते। नानक को प्रभ मया कर, मेरा मन तन वासै नाम हर। गौड़ी महला पंजवा, रसना जपिए एक नाम। इहां सुख आनंद घना, आगे जी कै संग काम। रहाओ कटिए तेरा अंग रोग, तू गुर प्रसाद कर राज जोग। हर रस जिन जन चाखिया, तां की तृष्णा लाथिया। हर विश्राम निध पाया, सो बहुर न कत ही ताया। हर हर नाम जां को गुर दिया, नानक तां का पहु गया।

हरी खसम हमारा, खिन मह साज सवार नहारा, काम करी जे ठाकुर पावा, गीत चरित प्रभ के गुण गावा, सरन परयो ठाकुर वजीरा, तिना देख मेरा मन धीरा, एक टेक एको आधारा, जन नानक हर की लागा कारा, गौड़ी महला पंजवा, है कोई ऐसा हो मैं तोरे, इस मीठी ते एहो मन हो रह रहा, अज्ञानी मनुख भया, जो नाही सो लोरे, रैन अंधारी कारिया, कमन जुगत जित पूरे, प्रमतो हारिया, अनक विधि कर टोरे, कहो नानक कृपा पही, साध संगत निद मोरे, गौड़ी महला पंजवा, चिंता मन करना मई रहाओ, दीन दयाला पार ब्रह्म, जाकै सिमरन सुख पई, अकाल पुरख अगाध बोध, सुनत जसो कोट अग खई, कृपा निद प्रभ मया तार, नानक हर हर नाम लई, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन सरन प्रभु सुख पाए, जान दिन बिसरे प्राण सुख दाता, सो दिन जात अजाए रहाव, एक रैन के पहुन तुम आए, बहु जुग आस बंधाए, ग्रह मंदर संपै जो दीसे, ज्यों तरवर की छाए, तन मेरा संपै सब मेरी, बाग मिलख सब जाए, देवनहारा बिसरियो ठाकुर, खिन मह होत पराए, पहरे बागा कर इशनाना, चोआ चंदन लाए, निरपहो निरंकार नहीं चीनिया, ज्यों हस्ती नवाए, जो हुए कृपाल, ता सतगुर मिले, सब सुख हर के नाए, मुक्त पया बंधन गुरु खोले, जन नानक हर गुण गाए, गौड़ी पूर्वी महला पंजवा, मेरे मन गुर गुर गुर सद करिए, रत्न जन्म सफल गुर किया, दर्शन को बले हरिये रहाव, जेते सास ग्रास मन लेता, तेते ही गुण गाइये, जो हुए दयाल सतगुरे अपना, ता एह मत बुद्ध पाइये, मेरे मन नाम लए जम बंद ते छूटे, सर्व सुखा सुख पाइये, सेव स्वामी सतगुर दाता, मन बंचत फल आइये, नाम इष्ट मीत सुत करता, मन संग तुहारे चाले, कर सेवा सतगुरे अपने की, गुर ते पाइये पाले, गुर कृपाल कृपा प्रभ तारी, बिन से सर्व अंदेसा, नानक सुख पाया हर कीर्तन, मिटियो सगल कलेशा, राग गौड़ी महला पंजवा।

मन ना हो रे परे परे ही को लुजी हे सुंदर नारी अनक प्रकारी परिग्रह बेकारी बुरा भला नहीं सुजी हे अनक बंधन माया परमत परमाया गुण निद नहीं गाया मन बिखै ही मह लुजी हे जा को रे कृपा करे जीवत सोई मरे साध संग माया तरे नानक सो जन दर हर सिजी हे गौड़ी महला पंजवा सबहू को रस हर हो रहाओ काहू जोग काहू भोग काहू ज्ञान काहू ध्यान काहू हो दंड धर हो।

कीर्तन हुए उदार राग गौड़ी माला महल्ला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद पायो बाल बुद्ध सुखरे हरख सोग मान मृत दुख सुख चित समसर गुर मिले रहाओ जो लो हो किस सोचो चितो

केते बंद परे जो साधु कर्मस्तक धरियो तब हम मुक्त भए जो लो मेरो मेरो करतो तो लो बिख केरे मन तन बुद्ध अर्पी ठाकुर को तब हम सहज सोए जो लो पोट उठाई चलियो तो लो दान भरे पोट दार गुरु पूरा मिलिया तो नानक निर्भय गौड़ी माला महला पंजवा पावन त्यागियो री त्यागियो त्यागियो मैं गुर मिल त्यागियो सर्व सुख आनंद मंगल रास मान गोबिंद आगियो रहाओ मान अभमान दो समाने मस्तक डार गुर पागियो संपत हरख ना आपत दुखा रंग ठाकुर लागियो बास बासरी एक स्वामी उद्यान दृष्टागियो निरपौ भये संत भ्रम डारियो पूर्ण सर्वागियो जो किस करतै कारण कीनो मन बुरो न लागियो साध संगत प्रसाद संतन कै सोयो मन जागियो जन नानक ओड़ तुहारी परियो आयो सरनागियो नाम रंग सहज रस माने फिर दुख ना लागियो गौड़ी माला महला पंजवा पाया लाल रतन मन पाया तन सीतल मन सीतल थिया सतगुर शब्द समाया रहाओ लाथी भूख तृष्ण सब लाथी चिंता सगल बिसारी कर्मस्तक गुर पूरे तरेओ मन जीतो जग सारी तृप्त अगाए रहे हृदय अंतर डोलन ते अब चूके अखुट खजाना सतगुर दिया तोट नहीं रे मूके अचरज एक सुनो रे भाई गुर ऐसी बूझ बुझाई लाहे परदा ठाकुर जो पेटे हो तो बिसरी तात पराई कहो ना जाई एहो अचंभव सो जाने जिन चाखिया कहो नानक सच भये बिगासा गुर निधान हृदय लै राखिया गौड़ी माला महला पंजवा उबरत राजा राम की सरनी सर्व लोक माया के मंडल गिर गिर परते धरनी रहाओ शास्त्र सिमरत वेद बिचारी महापुरखन इउं कहिया बिन हर भजन नाही निस्तारा सूख ना किन्हू लहिया तीन भवन की लक्ष्मी जोरी बूजत नाही लहरे बिन हर भगत कहां थित पावे फिर तो पहरे पहरे अनक बलास करत मन मोहन पूरन होत ना कामा जल तो कबहू ना बूजत सगल बिरथे बिन नामा हर का नाम जपो मेरे मीता एह सार सुख पूरा साध संगत जन्म मरण निवारे नानक जन की धूरा गौड़ी माला महला पंजवा मोको एह बिद को समझावे करता होए जनावे रहाओ अनजानत किस इन्ह कमानो जप तप कशु ना सादा दह दिस लै इहो मन दौरायो कमन कर्म कर बांदा मन तन धन भूम का ठाकुर हौ इसका इहो मेरा परम मोह कस सूजस नाही एह पैखर पए पैरा तब इहो कहां कमावन परिया जब इहो कछु ना होता जब एक निरंजन निरंकार प्रभ सब किस आपह करता अपने कर्तव्य आपे जाने जिन इहो रचन रचाया कहो नानक करनहार है आपे सतगुर परम चुकाया गौड़ी माला महला पंजवा हर बिन अवर क्रिया बिरथे जप तप संयम कर्म कमाणी एह ओरे मूसे रहाओ वर्त नेम संयम मह रहता इनका आड़ ना पाया आगे चलन और है भाई ऊहा काम ना आया तीर्थ नाए अर धरनी भ्रमता।

वाण तेन त्रे भव सुख परमानंदा जीव सेज सुहावी इहो मन बिकसंदा जीव पेख दर्शन इहो सुख लहिया जीव चरण पखार करी नित सेवा।

तौ सब बिद बन आई गौड़ी महला नौवा। साधु गोविंद के गुण गावो, मानस जन्म अमूलक पायो, बिरथा काहे गवावो रहाओ। पतत पनीत दीन बंद हर, सरन ताहे तुम आवो। गज को त्रास मिट्यो जेह सिमरत, तुम काहे बिसरावो। ताज अभमान मोह माया पुन, भजन राम चित लावो। नानक कहत मुक्त पंत एहो, गुरमुख हुए तुम पावो। गौड़ी महला नौवा। को माई भूल्यो मन समझावै, वेद पुराण साध मग सुन कर। निमख ना हर गुण गावै रहाओ, दुर्लभ देह पाए मानस की। बिरथा जन्म सरावै, माया मोह महा संकट बन। तास्यो रुच उपजावै, अंतर बाहर सदा संग प्रभ। तास्यो नेहो ना लावै, नानक मुक्त ताहे तुम मानो। जेहे कट राम सुमावै। गौड़ी महला नौ, साधो राम सरन बिसरामा। वेद पुराण पढ़े को एह गुण, सिमरे हर को नामा रहाओ। लोभ मोह माया ममता फुन, औ बिखियन की सेवा। हरख सोग परसै जे नाहिन, सो मूरत है देवा। सुर्ग नरक अमृत बिख ए सब।

पुत्रानी गौड़ी महल्ला नौवा मन रे कहां पयो तै बौरा अहनस औद कटै नहीं जाने पयो लोभ संग होरा रहा जो तन तै अपनो कर मानी हर सुंदर ग्रह नारी इनमें कछ तेरो रे नाहिन देखो सोच बिचारी रत्न जन्म अपनो तै हारे गोविंद गत नहीं जानी निमख नालीन भयो चरणन सियो बिरथा औद सरानी कहो नानक सोई नर सुखिया राम नाम गुण गावै और सगल जग माया मोहया निरपै पद नहीं पावै गौड़ी महला नौवा नर अचेत पाप ते डर रे दीन दयाल सगल भय भंजन सरन ताहे तुम पर रे रहाओ वेद पुराण जास गुण गावत तां को नाम ही है मो धर रे पावन नाम जगत मैं हर को सिमर सिमर कसमल सब हर रे मानस देह बहुर नह पावे कछु उपाओ मुक्त का कर रे नानक कहत गाए करना मैं भव सागर कह पार उत्तर रे राग गौड़ी अष्टपदिया महला पहला गौड़ी गुआर री एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद निध सिद्ध निर्मल नाम विचार पूर्ण पूर रहया बिखमार त्रिकुटी छूटी विमल मजार गुर की मत जिए आई कार इन बिद राम रमत मन मानिया ज्ञान अंजन गुर शब्द पछानिया रहाओ एक सुख मानिया सहज मलाया निर्मल बाणी भरम चुकाया लाल पई सूहा रंग माया नदर पई बिख थाक रहाया उल्ट पई जीवत मर जागया शब्द रवे मन हर स्यों लागया रस संग्रह बिख पर हर त्यागया पाए बसे जम का पौ भागया साध रहे बादम अहंकारा चित हर स्योरा ता हुक्म अपारा जात रहे पत के आचारा दृष्ट पई सुख आत्म तारा तुझ बिन कोई न देखो मीत किस सेवो किस देवो चीत किस पूछो किस लागो पाए किस उपदेश रहा लिवलाए गुर सेवी गुर लागो पाए भगत करी राचो हर नाए सिखिया दीखिया भोजन पाओ हुक्म संजोगी निज घर जाओ गर्भ गतं सुख आत्म ध्याना जोत पई ज्योति माहे सुमाना लिखत मिटै नहीं शब्द निशाना करता करना करता जाना नह पंडित नह चतुर सियाना नह भूलो नह परम पुलाना कथो न कथनी हुक्म पछाना नानक गुरमत सहज सुमाना गौड़ी गुआर री महला पहला मन कुंचर काया उद्यान है।

कर्म है अमृत तस कर ले, नन्ना कार न कोई करे, राखै आप वड्याई दे, नील अनील अग्न एक ठाई, जल निवरी गुरबूज बुझाई, मन दे लिया रहस गुण गाई, जैसा कर बाहर सो तैसा, बैस गुफा मैं आँखों कैसा, सागर डूंघर निरपो ऐसा, मुए को कहो मारे कौन, न डरे को कैसा डर कवन, शब्द पछाने तीने पौन, जिन कहया तिन कहन बखानिया, जिन बूझया तिन सहज पछानिया, देख बीचार मेरा मन मानिया, कीरत सूरत मुक्त एक नाई, तही निरंजन रहे आसमाई, निज कर व्याप रहे आ निज ठाई, पुस्तत करह केते मुन प्रीत, तन मन सूचै साच सोचीत, नानक हर पज नीता नीत, गौड़ी गुआरी महला पहला, ना मन मरे न कार्य होय, मन वस दूता दुरमत दोय, मन माने गुरते एक होय, निर्गुण राम गुण वस होय, आप निवार बिचारे सोए रहाओ, मन भूलो बहु चितै विकार, मन भूलो सिर आवे भार, मन माने हर एक अंकार, मन भूलो माया घर जाए, काम गुरु दूर है न ठाए, हर भज प्राणी रसन रसाए, गैवर हैवर कंचन सुत नारी, बहु चिंता पिड़ चाले हारी, जुए

मेल मलाई गुण संग्रह औगण शब्द जलाई गुरमुख नाम पदार्थ पाए बिन नावे सब दुख निवास मनमुख मूड माया चितवास गुरमुख ज्ञान तुर कर्म लिखे आस मन चंचल धावत फुन धावे साचे सूचे मैल ना पावे नानक गुरमुख हर गुण गावे गौड़ी ग्वार री महला पहला हौ मैं करत्या नह सुख होए मन मत झूठी सच्चा सोए सगल बगूते पावे दोए सो कमावे तुर लिखिया होए ऐसा जग दे

सहज सुभाय सेवा सुरत एक लिवलाय सुख मांगत दुख आगल होय सगल विकारी हार परोय एक बिना झूठे मुक्त ना होय कर कर करता देखै सोय तृष्णा अगन शब्द बुझाए दूजा परम सहज सुभाय गुरमति नाम हृदय वसाए साची बाणी हर गुण गाए तन मह साचो गुरमुख पाओ नाम बिना नाही निज खाओ प्रेम परायण प्रीतम राव नदर करे ता बूझै नाव माया मोह सर्ब जंजाला मनमुख को चील कुशत बिकराला सतगुर सेवे चूकै जंजाला अमृत नाम सदा सुख नाला गुरमुख बूझै एक लिवलाए निज करवासै साच समाए जम्मण मरना ठाक रहाए पूरे गुरते एह मत पाए कथनी कथों ना आवै और गुर पुछ देखिया नाही दर होर दुख सुख भाणै तिसै रजाए नानक नीच कह लिवलाए गौड़ी महला पहला दूजी माया जगत चित वास काम क्रोध अहंकार बनास दूजी

0: ओ जोगी निरंजन त्यावे अन दिन जागे सच लिवलावे सो जोगी मेरे मन पावे काल जाल ब्रह्म अग्नि जारी जरा मरण गत गर्भ निवारी आप तरह पितरी निस्तारी सतगुर सेवे सो जोगी होए पैर अच रह सो निरपो होए जैसा सेवै तैसो होए नर निह केवल निरपो नाओ अनाथा नाथ करे बल जाओ पुनरप जन्म नाही गुण गाओ अंतर बाहर एको जाने गुर कै शब्दे आप छाणे
1: साचे शब्द दर निसाणे
0: शब्द मरै तिस निज कर वासा आवै न जावै चूकै आसा गुर कै शब्द कमल परगासा जो दिसै सो आसन रासा काम क्रोध बिख भूख प्यासा नानक बिरले मिलै उदासा गौड़ी महला पहला ऐसो दास मिलै सुख होई दुख विसरै पावै सच सोई दर्शन देख पई मत पूरी अठसठ मज्जन चरना धूरी रहाव नेत्र संतोखे एक लिवतारा जेवा सूची हर रस सारा सच करनी अब अंतर सेवा मन तृप्ता सिया अलख अपेवा जह जह देखो तह तह साचा बिन बूझे झगरत जग काचा गुर समझावै सोजी होई गुरमुख विरला बूझै कोई कर कृपा राखो रखवाले बिन बूझे पशु भये बेताले गुर कहया अवर नहीं दूजा किस कहो देख करो अन पूजा संत हेत प्रभ त्रि भवन धारे
1: आत्म चीनै सो तत बिचारी
0: साच हृदय सच प्रेम निवास प्रणवत नानक हम ता के दास गौड़ी महला पहला ब्रह्म गर्भ किया नहीं जानिया वेद की विपत पड़ी पछतानिया जह प्रभ सिमरे तही मन मानिया ऐसा गर्भ बुरा संसार है जिस गुर मिले तिस गर्भ नवारे रहाओ बाल राजा माया अहंकारी जगन करे बहु पार अफारी बिन गुर पूछे जाए प्यारी हरी चंद दान करे जस लेवे बिन गुर अंत ना पाए अपेवे आप पलाए आपे मत देवे दुर्मत हरनाक्ष दुराचारी प्रभ नारायण गर्भ प्रहारी प्रहलाद पुदारे कृपा धारी भूलो रावण मुग्ध अचेत लूटी लंका शीस समेत गर्भ गया बिन सतगुर हेत सहस बाहु मद कीट महखासा हर नाक्ष ले नखो बिदासा दैत संघारे बिन भगत अभ्यासा जरा संद काल जमन संघारे रक्त बीज काल नेम बिदारी दैत संघार संत निस्तारी आपे सतगुर शब्द बिचारी दूजे पाए दैत संघारे गुरमुख साच भगत निस्तारे बूढ़ा दुर्योधन पत खोई राम ना जानिया करता सोई जन को दुख पचे दुख होई जन्मे जय गुर शब्द ना जानिया क्यों सुख पावे परम पलानिया एक तिल भूले बहोर पछतानिया कंस केस चंडूर ना कोई राम ना चीनिया अपनी पत खोई बिन जगदीश ना राखे कोई बिन गुर गर्भ ना मेटिया जाए गुरमत धर्म तीर जहर नाय नानक नाम मिले गुण गाय गौड़ी महला पहला चोआ चंदन अंक चढ़ावो पाट पटंबर पहर हंडावो बिन हर नाम कहां सुख पावो क्या पहरो क्या ओढ़ दिखावो बिन जगदीश कहां सुख पावो रहाओ कानी कुंडल गल मोतियन की माला लाल निहाली फूल गुलाला बिन जगदीश कहां सुख पाला नैन सलोनी सुंदर नारी
1: खोल शिंगार करे अत प्यारी
0: बिन जगदीश भजे नित खुआरी दर कर महला सेज सुखाली अहनस फूल बिछावे माली बिन हर नाम सो देहे दुखाली हैवर गैवर नेजे वाजे लश्कर ने बखवासी पाजे बिन जगदीश झूठे देवाजे सिद्ध कहावो रिद सिद्ध बलामो ताज कुलह सिर छत्र बनावो बिन जगदीश कहा सच पावो खान मनुक कहावो राजा अबे तबे कूड़े है पाजा बिन गुर शब्द ना सवरस काजा हों मैं ममता गुर शब्द वसारी गुरमत जानिया हृदय मरारी प्रणवत नानक शरण तुम्हारी गौड़ी महला पहला सेवा एक न जान से अवरे परपंच ब्याद त्यागे कवरे भाई मिले सच साचे साचरे ऐसा राम भगत जन होई हर गुण गाए मिले मन धोई रहाउ ऊंदो कवल सगल संसार है दुर्मत अग्न जगत परजार है सो उबरै गुर शब्द बीचार है प्रेंग पतंग कुंचर अरमीना मिर्ग मरै सह अपना कीना कृष्णा राच तत नहीं बीना काम चितै कामन हितकारी क्रोध बनासै सगल विकारी पत मत खोवै नाम वसारी पर कर चीत मनमुख डोलाए गल जेवरी धंधै लपटाए गुरमुख छूट सहर गुण गाए ज्यों तन विधवा पर को देई काम दाम चित पर वस सेई बिन पिर त्रिपत ना कबहू होई पढ़ पढ़ पोथी सिमरत पाठा वेद पुराण पढ़ै सुन थाटा बिन रस राते मन बहु नाटा ज्यों चातरक जल प्रेम प्यासा ज्यों मीना जल माहे उलासा नानक हर रस पी त्रिपतासा गौड़ी महला पहला हठ कर मरै न लेखै पावै वेस करै बहु भस्म लगावै नाम विसार बहुर पछतावै तू मन हर जियो तू मन सुख नाम विसार सह जम दुख रहाव चोआ चंदन अगर कपूर माया मगन परम पद दूर नाम बसारे है सब कूड़ो कूर नेजे बाजे तखत सलाम अदकी तृष्णा व्यापै काम बिन हर जाचे भगत ना नाम वाद अहंकार नाही प्रभ मेला मन दे पावह नाम सुहेला दूजे भाए अज्ञान दुहेला बिन दम के सौदा नहीं हाट बिन बोहित सागर नहीं वाट बिन गुर सेवे घाटे घाट तिसको वाह वाह जे वाट दिखावे तिसको वाह वाह जे शब्द सुनावे तिसको वाह वाह जे मेल मलावे वाह वाह तिसको जिसका एहो जियो गुर शब्दी मत अमृत पियो नाम वडाई तुद भाणे दियो नाम बिना क्यों जीवा माए अन दिन जपत रहो तेरी सरनाए नानक नाम रते पत पाए गौड़ी महला पहला हों मैं करत भेखी नहीं जानिया गुरमुख भगत बिरले मन मानिया हों हों करत नहीं सच पाईऐ हों मैं जाए परम पद पाईऐ रहाओ हों मैं कर राजे बहुतावह हों मैं खपह जन्म मर आवह हों मैं निवरै गुर शब्द विचारै चंचल मत त्यागै पंच संघारै अंतर साच सहज घर आवह राजन जान परम गत पावह सच करनी गुर परम चकावह निरपो कै घर ताड़ी लावै हों हों कर मरना क्या पावै पूरा गुर भेटे सो झगड़ चकावै जेती है तेती केहो नाही गुरमुख ज्ञान भेट गुण गाही हों मैं बंधन बंद पवावै नानक राम भगत सुख पावै गौड़ी महला पहला प्रथमे ब्रह्मा कालै घर आया ब्रह्म कमल पयाल ना पाया आग्या नहीं लीनी भरम भलाया जो उपजै सो काल संघारिया हम हर राखे गुर शब्द बीचारिया रहाओ माया मोहे देवी सब देवा काल ना छोड़ै बिन गुर की सेवा ओह अबनासी अलख अपेवा सुल्तान खान बादशाह नहीं रहना नामो भूले जम का दुख सहना।

आकाश पताला गुरमत नाम ना विसरै सहजी पत पाई अंतर शब्द निधान है मिल आप गवाई है नदर करे प्रभ अपनी गुण अंक समावै नानक मेल ना चूकई लाहा सच पावे गौड़ी महला पहला गुर प्रसादी बूझले तो हुए नबेरा कर कर नाम निरंजना सो ठाकुर मेरा बिन गुर शब्द ना छूटी है देखो विचारा जे लख कर्म कमावे बिन गुर अंधियारा रहाओ अंधे अकली बाहरे क्या तिन स्यों कही है बिन गुर पंथ ना सूझई कित बिद निर्बही है।

अपनो नहीं पाया, मीठे को कौड़ा कह, कड़ुए को मीठा, राते की निंदा करह, ऐसा कल मैं दीता, चेरी की सेवा करह, ठाकुर नहीं दिस, पोखर नीर वरोली है, माखन नहीं रिस, इस पद जो अर्थाए ले, सो गुरु हमारा, नानक चीन आप को, सो अपर अपारा, सब आपे आप वर्तदा, आपे परमाया, गुर किरपा ते बूजी है, सब ब्रह्म समाया, राग गौड़ी ग्वारी महला तीजा, अष्टपदिया, एको ओंकार सतगुर प्रसाद, मन का सूतक दूजा पाओ, परमे भूले आवो जाओ, मनमुख सूतक कबह ना जाए, जिचर शब्द ना पीजे हर कह नाए रहाओ, सबो सूतक जेता मोह आकार, मर मर जम्मे वारो वार, सूतक अगन पौणे पानी माहे, सूतक भोजन जेता किस खाए, सूतक कर्म ना पूजा होए, नाम रत्ते मन निर्मल होए, सतगुर सेवे सूतक जाए, मरे ना जन्मे काल ना खाए, सास्त सिमरत सोध देखो कोई, विण नामे को मुक्त ना होए, जोग चारे नाम उत्तम शब्द बीचार, कल में है गुरमुख उतरस पार, साचा मरे ना आवे जाए, नानक गुरमुख रह समाए, गौड़ी महला तीजा, गुरमुख सेवा प्राण अधारा, हर जियो राखो हृदय उर तारा, गुरमुख सोभा साच द्वारा, पंडित हर पर तजोह विकारा, गुरमुख भोजन उतरो पारा, रहाओ गुरमुख विचो हो मैं जाए, गुरमुख मैल ना लागे आए, गुरमुख नाम वसे मन आए, गुरमुख कर्म धर्म सच होई, गुरमुख अहंकार जलाए दोई, गुरमुख नाम रते सुख होई, अपना मन प्रबोधो बूझो सोई, लोक समझावो हो सुने ना कोई, गुरमुख समझो हो सदा सुख होई, मनमुख डंप बहुत चतराई, जो किछ कमावे सो थाए ना पाई, आवे जावे ठौर ना काई, मनमुख कर्म करे बहुत अभमाना, बाग ज्यो लाए बह नित ध्याना, जम पकड़िया तब ही पछताना, बिन सतगुर सेवे मुक्त ना होई, गुर प्रसादी मिले हर सोई।

चतुराई। गौड़ी महल्ला तीजा, किस युग का धर्म पढ़ो तुम पाई, पूरे गुर सब सो जी पाई, एथे अग्गे हर नाम सिखाई, राम पढ़ो मन करो विचार, गुर प्रसादी मैल उतार रहाओ, वाद विरोध ना

इह संसारा नित तीर्थ नावे न जाए अहंकारा बिन गुर भेटे जम करे खुआरा सो जन साचा जे हऊ मैं मारे गुर कै शब्द पंच संघारे आप तरे सगले कुल तारे माया मोहे नटबाजी पाई मन मुख अंध रहे लपट।

अहंकारी आप ना चीन बाजी हारी कापड़ पहर करे चतुराई माया मोहे अत परम पलाई बिन गुर सेवे बहुत दुख पाई नाम रते सदा बैरागी गिरही अंतर साच लिवलागी नानक सतगुर सेवह सेवड भागी गौड़ी महला तीजा ब्रह्मा मूल वेद अभ्यासा तिस ते उपजे देव मोह पयासा त्रै गुण भरमे नाही निज करवासा हम हर राखे सतगुरु मलाया अन दिन भगत हर नाम दिरड़ाया रहाओ त्रै गुण बाणी ब्रह्म जंजाला पड़वाद बखाण है सिर मारे जमकाला तापना चीन है बन्न है पांड पराला मनमुख अज्ञान कुमारग पाए हर नाम बसारिया बहु कर्म दिरड़ाए पवजल डूबे दूजे पाए माया का मोहताज पंडित कहावे बिख्या राता बहुत दुख पावे जम का गल जेवड़ा नित काल सन...

माया दासी भगतां की कार कमावे, चरनी लागे ता महल पावे, सद ही निर्मल सहज समावे, हर कथा सुनह से तनवंत दिसह जुग माही, तिनको सब निवह अन दिन पूज कराही, सहजे गुण रवह साचे मन माही, पूरे सतगुर शब्द सुनाया, त्रै गुण मेटे चौथे चित लाया, नानक हों मैं मार ब्रह्म मलाया, गौड़ी महला तीजा, ब्रह्मा वेद पढ़े वाद वखाणे, अंतर तामस आप ना पछाणे, ता प्रभ पाए गुर शब्द वखाणे, गुर सेवा करो फिर काल ना खाए, मनमुख खादे दूजे पाए रहाओ, गुरमुख प्राणी अपराधी सीधे, गुर कै शब्द अंतर सहज रीदे, मेरा प्रभ पाया गुर कै शब्द सीधे, सतगुर मेले प्रभ आप मलाए, मेरे प्रभ साचे कै मन पाए, हर गुण गावह सहज सुपाए, बिन गुर साचे परम पलाए, मनमुख अंधे सदा बिख खाए, जम डंड सह सदा दुख पाए, जमुआ ना जो है हर की सरनाई, हों मैं मार सच लिवलाई, सदा रह हर नाम लिवलाई, सतगुर सेव है से जन निर्मल पविता, मन स्यो मन मिलाए सब जग जीता, इन विद कुशल तेरे मेरे मीता, सतगुरु सेवे सो फल पाए, हिरदय नाम विच्चों आप गवाए, अनहद बाणी शब्द वजाए, सतगुर ते कमन कमन ना सीधो मेरे भाई, भगती सीधे दर सोभा पाई, नानक राम नाम वडियाई, गौड़ी महला तीजा, त्रै गुण बखाणे भरम ना जाए, बंधन ना टूटह मुक्त ना पाए, मुक्त दाता सतगुर जुग माहे, गुरमुख प्राणी भरम गवाए, सहज तुन उपजे हर लिवलाए रहाओ, त्रै गुण काले की सिर कारा, नाम ना चेतह उपावन हारा, मर जम्मह फिर वारू वारा, अंधे गुरु ते भरम ना जाई,

दाता शब्द सुनाए, तावत राखे ठाक रहाए, पूरे गुरते सो जी पाए, आपे करता सृष्ट सिर्ज जिन गोई, तिस बिन दूजा अवर ना कोई, नानक गुरमुख बूजै कोई, गौड़ी महला तीजा, नाम अमोलक गुरमुख पावे, नामो सेवे नाम सहज समावे, अमृत नाम रसना नित गावे, जिसनु कृपा करी सो हर रस पावे, अनगिन हिरदय जपो जगदीसा, गुरमुख पावो परम पद सूखा, रहाओ हिरदय सूख पया परगास, गुरमुख गावे है सच गुण तास, दासन दास नित होवे दास, ग्रह कटंब मह सदा उदास, जीवन मुक्त गुरमुख को होई, परम पदार्थ पावे सोई, त्रै गुण मेटे निर्मल होई, सहजे साच मिले प्रभ सोई, मोह कटंब स्यों प्रीत ना होई, जां हिरदय वसिया सच सोई, गुरमुख मन बेदिया अस्थिर होई, हुकम

सब जग महलोए गुरमुख बाणी मीठी लागी अंतर बिगसै अन दिन लिव लागी सहजे सच मिलिया परसादी सतगुर पाया पूरे वडभागी हौ मैं ममता दुर्मत दुख नास जब हृदय राम नाम गुणतास गुरमुख बुद्ध प्रगटी प्रभ जास जब हृदय रविया चरण निवास जिस नाम दे सोई जन पाए गुरमुख मेले आप गवाए हृदय साचा नाम वसाए नानक सहजे साच समाए गौड़ी मोहल्ला तीजा मन ही मन सवारिया पै सहज सुपाए शब्द मन रंगिया लिवलाए निज कर वस्या प्रभ की रजाए सतगुर सेवया जाए अभमान गोविंद पाई है गुणी निदान रहाओ मन बैरागी जां शब्द पओ।

नाल हन हर हर राखो किरपा तार सत संगत मिलाए प्रभ हर हिरदय हर गुणसार रहाओ से भगत हर भाम दे जो गुरमुख पाए चलन आप छोड़ सेवा करन जीवत मोए रहन जिसदा पिंड प्राण है तिसकी सिरकार ओहो क्यों मनो विसारी है हर रखिए हिरदय धार नाम मिले है पत पाई है नाम मने है सुख होए सतगुर ते नाम पाई है कर्म मिले प्रभ सोए सतगुर ते जो मोह फेरे होए भ्रम दे ना टकन तरत असम

मन करहला अत निर्मला मल लागी हूं मैं आई परतख पीर घर नाल प्यारा विछड़ चोटा खाए मन करहला मेरे प्रीतमा हर हृदय पाल पलाए उपाय कित ना लभई गुर हृदय हर देखाए मन करहला मेरे प्रीतमा दिन रहन हर लिवलाए कर जाए पावह रंग महली गुर मेले हर मिलाए मन करहला तू मीत मेरा पाखंड लोभ तजाए पाखंड लोभी मारिए जम डंड दे सजाए मन करहला मेरे प्राण तू मैल पाखंड परम गवाए हर अमृत सर गुर पूरिया मिल संगती मल लह जाए मन करहला मेरे प्यारिया एक गुर की सिख सुनाए एहो मोह माया पसरिया अंत साथ ना कोई जाए मन करहला मेरे साजना हर खर्च लिया पत पाए हर दरगाह पहनाया हर आप लया गल लाए मन करहला गुर मन्या गुरमुख कार कमाए गुर आगे कर जोदड़ी जन नानक हर मेलाए गौड़ी महला चौथा मन करहला विचारिया विचार देख संभाल बन फिर थके बनवासिया फिर गुरमत हृदय निहाल मन करहला गुरु गोविंद संभाल रहाओ मन करहला विचारिया मनमुख फाथिया महाजाल गुरमुख प्राणी मुक्त है हर हर नाम संभाल मन करहला मेरे प्यारिया सत संगत सत गुर भाल सत संगत लग हर त्याई है हर हर चले तेरे नाल मन करहला वड भागिया हर एक नदर निहाल आप छड़ाए छुट्टी है सतगुर चरण संभाल मन करहला मेरे प्यारिया विच देही जोत संभाल गुर नौनिध नाम वखालिया हर दात करी दयाल मन करहला तू चंचला चतुराई छड विकराल हर हर नाम संभाल तू हर मुक्त करे अंतकाल मन करहला बड़ भागिया तू ज्ञान रतन संभाल गुर ज्ञान खड़ग हाथ धारिया जम मारियड़ा जमकाल अंतर निदान मन करहले भ्रम भवह बाहर पाल गुर पुरख पूरा भेटिया हर सज्जन लदड़ा नाल रंग रतड़े मन करहले हर रंग सदा संभाल हर रंग कदे ना उतरे गुर सेवा शब्द संभाल हम पंखी मन करहले हर तरवर पुरख अकाल वड भागी गुरमुख पाया जन नानक नाम संभाल राग गौड़ी गुआरी महला पंजवा अष्टपदिया एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद जब इहु मन मह करत गुमाना तब इहु बावर फिरत बेगाना जब इहु हुआ सगल कीरीना ता तेर मैया कट कट चीना सहज सुहेला फल मशकीनी सतगुर अपने मोहे दान दीनी रहाओ जब किसको इहु जानस मंदा तब सगले इस मेलह फंदा मेर तेर जब इन्ह चुकाई ताते इस संग नहीं बैराई जब इन अपनी अपनी तारी तब इसको है मुश्किल भारी जब इन करने हार पछाता तब इसनो नाही किस ताता जब इन अपनो बांधियो मोहा आवे जाए सदा जम जोहा जब इसते सब बिन से परमा भेद नाही है पार ब्रह्मा जब इन किस कर माने भेदा तब ते दुख दंड अर खेदा जब इन एको एकी बूझिया तब ते इसनो सब किस सूझिया जब इह तावे माया अर्थी नह त्रिपतावे नह ते सलाथी जब इसते इह होयो जौला पीछे लाग चली उठकौला
कर कृपा जो सतगुर मिलियो, मन मंदर मह दीपक जलियो, जीत हार की सोजी करी, तो इस कर की कीमत परी, कर्ण करामन सब किश एक है, आपे बुद्ध विचार विवेक है, दूर ना नेरै सब कै संगा, सच सलाहन नानक हर रंगा, गौड़ी महला पंजवां, गुर सेवा ते नामे लागा, तिसको मिलिया जिस मस्तक भागा, तिसकै हिरदै रविया सोए, मन तन सीतल निश्चल होए, ऐसा कीर्तन कर मन मेरे, इहां उहां जो काम तेरे रहाओ, जास जपत पहु अपदा जाए, तावत मनुआ आवै ठाए, जास जपत फिर दुख ना लागे, जास जपत एह हो मैं भागे, जास जपत वस आवै पंचा, जास जपत हृदय अमृत संचा, जास जपत ए तृष्णा बुझे, जास जपत हर दरगाह सिजे, जास जपत कोट मिटह अपराध, जास जपत हर होवह साध, जास जपत मन शीतल होवे, जास जपत मल सगली खोवे, जास जपत रतन हर मिले, बहुर न छोड़े हर संग हिले, जास जपत कई बैकुंठ वास, जास जपत सुख सहज निवास, जास जपत एह अग्न ना पोहत, जास जपत एहो काल ना जोहत, जास जपत तेरा निर्मल माथा, जास जपत सगला दुख लाथा, जास जपत मुश्किल कशु ना बने, जास जपत सुन अनहत तुने, जास जपत एह निर्मल सोए, जास जपत कमल सीधा होए, गुर शुभ दृष्ट सब ऊपर करी, जिसका हृदय मंत्र दे हरी, अखंड कीर्तन तिन भोजन चूरा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, गौड़ी महला पंजवा, गुर का शब्द हृदय अंतर तारे, पंच जना स्यो संग निवारे, दस इंद्री कर राखे वास, ताकै आत्मै हुई प्रगास।

सहज कथा मह आत्म रसिया तां कै संग अविनाशी वसिया सहजे आसन अस्थिर पाया सहजे अनहत शब्द बजाया सहजे रुण चुनकार सुहाया तां कै कार पार ब्रह्म समाया सहजे जाको परयू कर्मा सहजे गुर भेट्यो सच धर्मा जां कै सहज भया सो जाने नानक दास तां कै कुर्बान गौड़ी महला पंजवां प्रथमे गर्भ वास्ते तरिया पुत्र कलत्र कटंब संग जुरिया भोजन अनक प्रकार बहु कपरे सर पर गमन करहंगे बपरे तमन अस्थान जो कबह ना तरे तमन शब्द जित दुर्मत हरे रहाओ इंद्रपुरी मैं सर पर मरना ब्रह्मपुरी निह चल नहीं रहना शिवपुरी का होएगा काला त्रै गुण माया बिनस बिताला गिर तर धरन गगन अर तारी राव सस पवन पावक नीरारी दिन सरैन बरत अर पेदा सासत सिमरत बिन सिंगे बेदा तीरथ देव देहरा पोथी माला तिलक सोच पाक होती धोती डंडौत प्रसादन भोगा गमन करे गो सगलो लोगा जात वर्ण तुरक अर हिंदू पस पंखी अनक जोन जिंदू सगल पासार दिसै पासारा बिनस जाए गो सगल अकारा सहज सिफत भगत तत ज्ञाना सदा आनंद निहचल सच थाना तहां संगत साध गुण रसै अनपो नगर तहां सद वसै तह पौ परमा सोग न चिंता आवन जामन मृत ना होता तह सदा आनंद अनहत आखारी भगत वसै कीर्तन आधारी पार ब्रह्म का अंत न पार कौन करे तां का विचार कहो नानक जिस कृपा करे निश्चल थान साध संग परे गौड़ी महला पंजवां जो इस मारे सोई सूरा जो इस मारे सोई पूरा जो इस मारे तिसह वडियाई जो इस मारे तिसका दुख जाई ऐसा कोई जे दुबदा मार गवावे इसह मार राज जोग कमावे रहाओ जो इस मारे तिस को पहो नाही जो इस मारे सो नाम समाहे जो इस मारे तिसकी तृष्णा बुझै जो इस मारे सो दरगाह सिजै जो इस मारे सो तनवंता जो इस मारे सो पतवंता जो इस मारे सोई जति जो इस मारे तिस होवै गति जो इस मारे तिसका आया गनी जो इस मारे सो निश्चल तनी जो इस मारे सो वडभागा जो इस मारे सो अनदिन जागा जो इस मारे सो जीवन मुक्ता जो इस मारे तिसकी निर्मल जुगता जो इस मारे सोई सो ज्ञानी जो इस मारे सो सहज त्यानी इस मारी बिन थाए ना परै कोट कर्म जाप तप करे इस मारी बिन जन्म ना मिटे इस मारी बिन जमते नहीं छुटे इस मारी बिन ज्ञान ना होई इस मारी बिन झूठ ना धोई इस मारी बिन सब किस मैला इस मारी बिन सब किस जौला जाको पये कृपाल कृपा निद तिस पई खलासी होई सगल सिद्ध गुर दुबदा जाकी है मारी कहो नानक सो ब्रह्म बिचारी गौड़ी महला पंजवा हर स्यों जुरे ता सबको मीत हर स्यों जुरे ता निश्चल चीत हर स्यों जुरे ना व्यापै काड़ा हर स्यों जुरे ता हुए निस्तारा।

आस नीच कुल सुने है, तिसकै संग खिन मह उदर है। कोट मज्जन जाकै सुन नाम, कोट पूजा जाकै है ध्यान। कोट पुन सुन हर की बाणी, कोट फला गुरते बिद जानी। माने अपने मह फिर चेत, बिनस जाहे माया के हेत। हर अबना

जाकै काम ना जो है दूत, जाकै काम तेरा वड गमर, जाकै काम होवै तू अमर, जाके चाकर को नहीं दान, जाके चाकर को नहीं बान, जा

कह पांत जाकी दृष्ट हुए सदा निहाल मन मेरे कर की काल ना को चतर ना ही को मूड़ा ना को हीन ना ही को सूरा जित को लाया तित ही लागा सो सेवक नानक जिस भागा गौड़ी महला पंजवा बिन सिमरन जैसे सर्प आर जारी त्यों जीव है साकत नाम बिसारी एक निमख जो सिमरन मह जिया कोट दिन सलाख सदा थिर थिया रहाओ बिन सिमरन त्रिग कर्म करास काग बतन बिस्ता महवास बिन सिमरन पय कुकर काम साकत बेसवा पूत नाम बिन सिमरन जैसे सींग सतारा बोलह कूर साकत मुख कारा बिन सिमरन घर दब की न्याई साकत थान पृष्ठ फराई बिन सिमरन कूकर हर काया साकत लोभी बंद ना पाया बिन सिमरन है आत्म काती साकत नीच तिस कुल नहीं जाती जिस भया कृपाल तिस सतसंग मलाया कहो नानक गुर जगत तराया गौड़ी महला पंजवा गुर कै बचन मोहे परम गत पाई गुर पूरै मेरी पैज रखाई गुर कै बचन त्यायो मोहे नाम।

गुर कै बचन मिटिया मेरा आप, गुर की दया ते मेरा वड प्रताप। गुर कै बचन मिटिया मेरा भरम, गुर कै बचन पेख्यो सब ब्रह्म। गुर कै बचन कीनो राज जोग, गुर कै संग तरिया सब लोग। गुर कै बचन मेरे कार्य सिद्ध, गुर कै बचन पाया नाउ निध। जिन जिन कीनी मेरे गुर की आसा, तिस की कटिया जम की पासा। गुर कै बचन जागिया मेरा कर्म, नानक गुर भेटिया पार ब्रह्म। गौड़ी महला पंजवां।

गुर की रेण नित मज्जन करूं, जन्म जन्म की हम मैं मल हरूं, किस गुर को चलावूं पाखा, महा अग्न ते हाथ दे राखा, किस गुर कै ग्रह ढोवूं पानी, जिस गुर ते अकल गत जानी, किस गुर कै ग्रह पीसो नीत, जिस प्रसाद वैरी सब मीत, जिन

ज्यों मृतक मिथ्या सिंगार नाम बसार करे रस भोग सुख सुपने नहीं तन मह रोग नाम त्याग करे अनुकाज बिनस जाए झूठे सब पाज नाम संग मन प्रीत ना लावे कोट कर्म करतो नरक जावे हर का नाम जिन मन ना अरादा चोर की न्याई जम पुर बादा लाख अडंबर बहुत बिसथारा नाम बिना झूठे पासारा हर का नाम सोई जान ले कर कृपा नानक जिस दे गौड़ी महला पंजवा आद मद जो अंत न बाहै सो साजन मेरा मन चाहै हर की प्रीत सदा संग चालै दयाल पुरख पूर्ण प्रतपालै रहाव बिनसत नाही छोड़ न जाए जह पेखा तह रह आसमाए सुंदर सुगढ़ चतुर जी दाता भाई पूत पिता प्रभ माता जीवन प्राण

सब रोग, चरण ध्यान सर्व सुख भोग, पूर्ण पुरख नव तन नित बाला, हर अंतर बाहर संग रखवाला। कहो नानक हर हर पद चीन, सर्बस नाम भगत कौ दीन। राग गौड़ी माज महला पंजवा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, खोजत फिरे अस

सुन सुन पंत डराओ बहुत पैहारिया, मैं तक्की ओट संता लेहो उबारिया, मोहन लाल अनूप सर्ब साधारिया, गुर निव निव लागो पाए देहो देखारिया, मैं किए मित्र अनेक इकस बलिहारिया, सब गुण किसे ही नाही हर पूर पंडारिया, चहो दिस जपिए नाओ सूख सवारिया, मैं आही ओड़ तुहार नानक बलिहारिया, गुर काढ़ेओ पुजा पसार मोह कुपारिया, मैं जीतेओ जन्म अपार बहुर ना हारिया, मैं पायो सर्ब निदान अकथ कथारिया, हर दरगाह शोभावंत बाहां लुडारिया, जन नानक लद्दा रतन अमोल अपारिया, गुर सेवा भौजन करिए कहो पुकारिया, गौड़ी महला पंजवां एक ओवंकार सतगुर प्रसाद, नारायण हर रंग रंगो जप जेवा हर एक मंगो रहाओ, ताज हम मैं गुर ज्ञान भजो मिल संगत तुर कर्म लिखियो, जो दिसै सो संग ना गयो साकत मूड लगे पच मोयो, मोहन नाम सदा रब रहियो कोट मदे किनै गुरमुख लहियो, हर संतन कर नमो नमो नौ निद पाव है अतुल सुखो, नैन अलोवो साध जनो हृदय गावो नाम निधो, काम क्रोध लोभ मोह तजो जन्म मरण दोहो ते रहियो, दुख अंधेरा करते मिटियो गुर ज्ञान दृढ़ायो दीप बलियो, जिन सेव्या सो पार परियो जन नानक गुरमुख जगत तरियो, महला पंजवां गौड़ी हर हर गुर गुर करत भरम गए, मेरे मन सब सुख पायो रहाओ, बल तो जल तो तौकिया गुर चंदन सीत लायो, अज्ञान अंधेरा मिट गया गुर ज्ञान दी पायो, पावक सागर गहरु चर संतन नाव तरायो, ना हम कर्म ना धर्म सोच प्रभ गह पुजा अपायो, पौ खंडन दुख भंजनो भगत वचल हर नायो, अनाथ है नाथ कृपाल दीन समृथ संत उटायो, निर्गुण यारे की बेनती देहो दर्स हर रायो, नानक सरन तुहारी ठाकुर सेवक द्वारे आयो, गौड़ी महला पंजवां रंग संग बिखिया के भुगा, इन संग अंध न जानी हौ संचो हौ खातता सगली अवध बेहानी रहाओ, हौ सूरा प्रधान हौ को नाही मुझे समानी, जो बनवंत अचार कुलीना मन में हुए गुमानी, ज्यो उलझायो बाद बुद्ध का मरत्या नहीं बिसरानी, पाई मीत बंदप सके पाछे तिन्हू कौ संपानी, जित लागो मन बासना अंत साई प्रगटानी, अहम बुद्ध सुच कर्म कर एहे बंधन बंधानी, दयाल पुरख कृपा कर।

हर के गुण सारे हिन पल रह न सकै जियो बिन हर प्यारे बिन हर प्यारे रह न सकै गुर बिन महल न पाईऐ जो गुर कहै सोई पर कीजै तिसना अग्न बुझाईऐ हर साचा सोई तिस बिन अवर न कोई बिन सेवै सुख न पाए नानक सा धन मिलै मलाई जिसनो आप मलाए धन रहन सुहेलड़िए जियो हर स्यों चित लाए सतगुर सेवे भाओ करे जियो विचों आप गवाए विचों आप गवाए हर गुण गाए अन दिन लागा भाओ सुन सखी सहेली जी की मेली गुर कै शब्द समाओ हर गुण सारी ता कंत प्यारी नामे धरी प्यारू नानक कामण नाह प्यारी राम नाम गल हारू तन ए कलड़ी जियो बिन नाह प्यारे दूजे पाए मुठी जियो बिन गुर शब्द करारे बिन शब्द प्यारे कौन दुत्तर तारे माया मोहे खुआई कूड़ बगुती ता फिर मुक्ति सा तन महल न पाई गुर शब्दे राती सहजे माती अन दिन रह समाए नानक कामन सदा रंग राती हर जियो आप मलाए ता मिलिए हर मेले जियो हर बिन कवन मलाए बिन गुर प्रीतम अपने जियो कौन भरम चुकाए गुर भरम चुकाए इउं मिलिए माए ता सा धन सुख पाए गुर सेवा बिन कोर अंधार बिन गुर मग न पाए कामण रंग राती सहजे माती गुर कै शब्द विचारी नानक कामण हर वर पाया गुर कै भाई प्यारी गौड़ी महला तीजा फिर बिन खरी निमाणी जियो बिन फिर क्यों जीवा मेरी माई फिर बिन नींद न आवै जियो कापर तन ना सुहाई कापर तन सुहावै जां फिर भावै गुरमती चित लाईऐ सदा सुहागण जां सतगुर सेवे गुर कै अंक समाईऐ गुर शब्दै मेला तां फिर रावी लाहा नाम संसारी नानक कामण नाह प्यारी जां हर के गुण सारी सा धन रंग माणे जियो अपने नाल प्यारे अहनस रंग राती जियो गुर शब्द विचारे गुर शब्द विचारे हों मैं मारे इन बिद मिलो प्यारे सा धन सुहागण सदा रंग राती साचै नाम प्यारे अपने गुर मिल रही है अमृत गही है दुबदा मार निवारे नानक कामण हर वर पाया।

कूड़ मुठी कूड़ आरी, कूड़ निवारी गुरमत सारी, जूए जन्म ना हारी। गुर शब्द सेवे सच समावे, बिचो होमे मारी। हर का नाम हृदय बसाई, ऐसा करे सिंगारू, नानक कामन सहज समाणी, जिस साचा नाम आधारू। मिल मेरे प्रीत मां जियो, तुद बिन खरी निमाणी, मैं नैनी नींद ना आवै जियो, पावे अन्न ना पानी, पानी अन्न ना पावे, मरिए हावे, बिन फिर क्यों सुख पाईए। गुर आग्या करो बिनंती, जे गुर पावे ज्यो मिलै तिवें मिलाईए। आपे मेल लए सुख दाता, आप मिलिया घर आए, नानक कामन सदा सुहागण, ना फिर मरे ना जाए। गौड़ी महला तीजा, कामन हर रस बेदी जियो, हर कै सहज सुपाई, मन मोहन मोहे लिया जियो, दुबदा सहज समाए, दुबदा सहज समाए, कामन वर पाए, गुरमती रंग लाए। एहो शरीर कूड़ कसत भरिया, कल ताई पाप कमाए। गुरमुख भगत जित सहज धुन उपजे, बिन भगती मैल ना जाए। नानक कामन पिरह प्यारी, विचों आप गवाए। कामन पिर पाया जियो, गुर कै पाई प्यारे, रैन सुख सुती जियो, अंतर उर तारे। अंतर उर तारे मिलिए प्यारे, अन दिन दुख निवारे। अंतर महल पिर रावे कामन, गुरमती विचारे। अमृत नाम पिया दिन राती, दुबदा मार निवारे। नानक सच मिली सुहागण, गुर कै हेत अपारे। आव हो दया करे जियो, प्रीतम अत प्यारे। कामन बिनो करे जियो, सच शब्द सिंगारे। सच शब्द सिंगारे होमे मारे, गुरमुख कार्ज सवारे। जुग जुग एको सच्चा सोई, बूझे गुर बिचारे। मनमुख काम व्यापी, मोहि संतापी, किस आगे जाहि पुकारे। नानक मनमुख थाउ ना पाए, बिन गुर अत प्यारे। मुंद एयाणी भोली निगुणिया जियो, फिर अगम अपारा। आपे मेल मिलिए जियो, आपे बख्शन हारा। अवगुण बख्शन हारा, कामन कंत प्यारा। कट कट रहे आसमाई, प्रेम प्रीत पाए भगती पाईए। सतगुर बूझ बुझाई, सदा आनंद रह दिन राती, अन दिन रह लिवलाई। नानक सहजे हर वर पाया, सा तन नौ निद पाई। गौड़ी महला तीजा, माया सार सबल वरतै जियो, क्यों कर दुत्तर तरिया जाए। राम नाम कर बोहे था जियो, शब्द खेवट विच पाए। शब्द खेवट विच पाए, हर आप लंघाए। इन बिद दुत्तर तरिए, गुरमुख भगत प्राप्त होवै। जीवतियां इयों मरिए, जिन मह राम नाम किलविख काटे, पए पवित्र शरीरा। नानक राम नाम निस्तारा, कंचन पए मनूरा। स्त्री पुरख काम व्यापे जियो, राम नाम की बिद नहीं जानी। मात पिता सुत भाई खरे प्यारे जियो, डूब मोए बिन पानी। डूब मोए बिन पानी, गत नहीं जानी। हम मैं तात संसारे, जो आया सो सब को जासी। उभरे गुर विचारे, गुरमुख होवे राम नाम बखाने। आप तरे कुल तारे, नानक नाम बसे घट अंतर, गुरमत मिले प्यारे। राम नाम बिन को थिर नाही जियो, बाजी है संसारा। दृढ़ भगत सच्ची जियो, राम नाम वापारा। राम नाम वापारा, अगम अपारा। गुरमति धन पाईए, सेवा सुत भगत एह साची।
ਵਿਚੋਂ ਆਪ ਗਵਾਈਐ ਹਮ ਮਤਹੀਨ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਅੰਧੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਾਰਗ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਸ਼ਬਦ ਸਹਾਵੇ ਅੰਨ ਦਿਨ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਏ ਆਪ ਕਰਾਏ ਕਰੇ ਆਪ ਜੀਉ ਆਪੇ ਸ਼ਬਦ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜੀਉ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਜੁਗ ਜੁਗ ਭਗਤ ਪਿਆਰੇ ਹਰ ਆਪ ਸਵਾਰੇ ਆਪੇ ਭਗਤੀ ਲਾਏ ਆਪੇ ਦਾਨਾ ਆਪੇ ਬੀਨਾ ਆਪੇ ਸੇਵ ਕਰਾਏ ਆਪੇ ਗੁਣਦਾਤਾ ਅਵਗੁਣ ਕਾਟੇ ਹਿਰਦੈ ਨਾਮ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦ ਬਲਿਹਾਰੀ ਸੱਚੇ ਵਿਟੋ ਆਪੇ ਕਰੇ ਕਰਾਏ ਗੌੜੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ।

तारे आव हो नाह प्यारी, हौ माने अर्पी सब ताने अर्पी, अर्पी सब देसा हौ सिरे अर्पी तिसमीत प्यारे, जो प्रभ दे संदेसा अर्पया ता सीस सुथान गुर पह, संग प्रभु दिखाया खिन माहे सगला दुख मिटिया, मनो चिंदिया पाया दिन रहन रलिया करै कामण, मिटे सगल अंदेसा बिनवंत नानक कंत मिलिया, लोड़ ते हम जैसा मेरा मन आनंद भया जियो, वजी वधाई कर लाल आया प्यारा, सब तिखा बुझाई मिलिया ता लाल गोपाल ठाकुर, सखी मंगल गाया सब मीत बंद पहरख उपजिया, दूत थाऊ गवाया अनहत वाजे बजे है कर्म है, फिर संग सेज विछाई बिनवंत नानक सहज रह, हर मिलिया कंत सुखदाई गौड़ी महला।

जह साध संत इकत्तर होवे है तहां तुझे त्यावहि कर दया मया दयाल स्वामी हो दीन कृपारा बिनवंत नानक दर्श प्यासी मिल दर्शन सुख सारा। मोहन तेरे बचन अनूप चाल निराली मोहन तू मान है एक जी अवर सब राली मान है ता एक अलेख ठाकुर जिन्ह सब कल धारिया तुद बचन गुर कै वस किया आदि पुरख बनवारिया तू आप चलिया आप रहिया आप सब कल धारिया बिनवंत नानक पैज राखो सब सेवक सरन तुम्हारिया। मोहन तुद सत संगत ध्यावै दर्श ध्याना मोहन जम नेर ना आवै तुद जपहै निधाना जम काल किनको लगै नाही जो एक मन त्यावे मन बचन कर्म जे तुद आराध है से सबे फल पावे मल मूत मूड जे मुग्ध होते से देख दर्श सुगियाना बिनवंत नानक राज निश्चल पूरन पुरख भगवाना। मोहन तू सुफल फलिया सन परवारे मोहन पुत्र मीत भाई कुटुंब सब तारे तारिया जहान लहिया अभमान जिन्नी दर्शन पाया जिन्नी तुद नो धन कहया तिन जम नेड़ ना आया बेअंत गुण तेरे कथे ना जाही सतगुर पुरख मरारी बिनवंत नानक टेक राखी जित लग तरिया संसारी। गौड़ी महला पंजवां सलोक पतत असंख पनीत कर पुनः पुनः बलिहार नानक राम नाम जप पाव को तिन किल बिख दाहनहार। संत जप मना तू राम नारायण गोविंदा हर माधु त्याए मना मरार मुकंदे कटिए काल दुख फादु दुख हरन दीन सरन श्री तहर चरण कमल अराधिय जम पंथ बिखड़ा अग्न सागर निमक सिमरत साधिय कल मलै दहता शुद्ध करता गिन सरैन अराधु बिनवंत नानक करहु कृपा गोपाल गोविंद माधु। सिमर मना दामोदर दुख हर पै पंजन हर राया श्री रंगो दयाल मनोहर भगत वच्छल बिरदाया भगत वच्छल पुरख पूरन मन है चिंदिया पाईए ताम अंध कूप ते उधार है नाम मन वसाईए। सुर सिद्ध गण गंधर्व मुन जन गुण अनक भगती गाया बिनवंत नानक करहु कृपा पार ब्रह्म हर राया। चेत मना पार ब्रह्म परमेश्वर सर्व कला जिन तारी करुणा मैं समरथ स्वामी कट कट प्राण आधारी। प्राण मन तन जी दाता बेअंत अगम अपारू सरण जोग समरथ मोहन सर्व दुख बिदारू। रोग सोग सब दुख बिन सह जपत नाम मरारी बिनवंत नानक करहो कृपा समरथ सब कल तारी। गुण गाओ मना अचुत अबनासी सब ते ऊच दयाला बिसंबर देवन को एक है सर्व करे प्रतपाला प्रतपाल महादयाल दाना दया तारी सब किस है। काल कंटक लोभ मोह नासे जी जा कै प्रभ बसे सो प्रसन्न देवा सफल सेवा पई पूर्ण काला बिनवंत नानक इच पुन्नी जपत दीन दयाला। गौड़ी महला पंजवा सुन सखिए मिल उदम करेहा मनाए लह हर कंत मान त्याग कर भगत ठगौरी मोह है साधु मंत। सखी वास आया फिर छोड़ ना जाई एह रीत भली भगवंत। नानक जरा मरण पै नरक निवार
पनीत करै तिस जनते। सुन सखिए एह भली बिनंती, एहो मतांत पकाइयै, सहज सुभाए अपाद रहत होए, गीत गोविंदह गाइयै। कल कलेश मिटे है भ्रम नासे, मन चिंदिया फल पाइयै, पार ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर, नानक नाम ते आइयै। सखी इश करी नित सुख मनाई, प्रभ मेरी आस पुजाए, चरण प्यासी दर्स बैरागन, पेखो थान सबाए। खोज लहो हर संत जना संग, समर्थ पुरख मलाए, नानक किन मिलिया सुर जन सुख दाता, सेवड भागी माए। सखी नाल वसा अपने नाह प्यारे, मेरा मन तन हर संग लिया, सुन सखिए मेरी नींद पली, मैं आपनड़ा फिर मिलिया। प्रम खोयो शांत सहज स्वामी, प्रगास भया कौल खिलिया, वर पाया प्रभ अंतर जामी, नानक सुहाग ना टलिया। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, गौड़ी बावन अखरी महला पंजवां सलोक। गुरुदेव माता गुरुदेव पिता, गुरुदेव स्वामी परमेश्वरा, गुरुदेव सखा अज्ञान भंजन, गुरुदेव बंदप सहोदरा, गुरुदेव दाता हर नाम उपदेसै, गुरुदेव मंत नरोदरा, गुरुदेव शांत सत बुद्ध मूरत, गुरुदेव पारस परस परा, गुरुदेव तीरथ अमृत सरोवर, गुरु ज्ञान मज्जन अपरंपरा, गुरुदेव करता सब पाप हरता, गुरुदेव पतत पवित्र करा, गुरुदेव आदि जुगाद जुग जुग, गुरुदेव मंत हर जप उदरा, गुरुदेव संगत प्रभ मेल कर कृपा, हम मूड पापी जित लग तरा, गुरुदेव सतगुर पार ब्रह्म परमेश्वर, गुरुदेव नानक हर नमस्कारा सलोक। आप है किया कराया, आप है करना जोग, नानक एको रब रहया, दूसर हुआ ना होग पौड़ी। ओं साध सतगुर नमस्कारन, आद मद अंत निरंकारन, आपह सुन आपह सुख आसन, आपह सुनत आप ही जासन, आपने आपह उपायो, आपह बाप आप ही मायो, आपह सूखम आपह अस्थूला, लखी न जाई नानक लीला, कर कृपा प्रभ।

है एक बखाननो नानक एक अनेक पौड़ी ओं गुरमुख कियो अकारा एक है सूत परो मनहारा पिन पिन त्रै गुण विस्थार निर्गुण ते सरगुण दृष्टार सगल भांत कर करह अपायो जन्म मरण मन मोह बढ़ायो दूहू भांत ते आप नरारा नानक अंत न पारा वारा सलोक से सहा भगवंत से सच संपै हर रास नानक सच सोच पाई है तेहे संतन कै पास पवड़ी ससा सत सत सत सो सत पुरख ते भिन्न ना को सो सरन परै जिह पायं सिमर सिमर गुण गाए सुनायं संसय परम नहीं कछ व्यापक प्रगट प्रताप ताहू को जापत सो साधु एह पहुंचन हारा नानक ता कै सद बलिहारा सलोक तन तन कहा पकारते माया मोह सब कूर नाम बिहूने नानका होत जात सब तूर पवड़ी तद्दा तूर पनीत तेरे जनुआ तन तेऊ जे रुच या मनुआ तन नहीं बाछ है सुरगना आछ है अत प्रिय प्रीत साध रज राच है धंधे कहां व्यापहता हूं जो एक शाड़ अन कत ना जाहू जा कहिय दियो प्रभ नाम नानक साध पूर्ण भगवान सलोक अनक भेख अर ज्ञान ध्यान मन हठ मिलियो ना कोय कहो नानक कृपा पई भगत ज्ञानी सोए पौड़ी गंगा ज्ञान नहीं मुख बातों अनक जुगत शास्त्र कर पातों ज्ञानी

उर्ज परे जो छोड़ छडाना देव नहार मन है बिसराना तारू कृपा जिसह गुसाई इत उत नानक तिस बिसरहो नाही सलोक आवत हुक्म बनास हुक्म आग्या पिन्ना कोए आमन जाना तेह मिटै नानक जिहे मन सोए पौड़ी एऊ जी बहुत गर्भवासे मोह मगन मीठ जो न फासे इन माया त्रै गुण बस कीने आपन मोह कटे कट दीने ए साजन कछ कहो उपाया जाते तरो बिखम एह माया कर कृपा सतसंग मलाए नानक तां कै निकट ना माय सलोक किरत कमावन शुभ अशुभ कीने तिन प्रभ आप असे आपन हों हों करे नानक बिन हर कहां कमात पौड़ी ये कह आप करावन हारा आपे पाप पुन बिसथारा या जुग जित जित आपे लायो सो सो पायो जो आप दुआयो वा का अंत ना जाने को जो जो करे सो फुन हो ये कहते सगला बिसथारा नानक आप सवार नहारा सलोक राच रहे बनता बनोद कुसुम रंग बिखशोर नानक ते सरनी परो बिन सजाए मैं मोर पौड़ी रे मन बिन हर जह रचो तह तह बंधन पाहे जेह बिद कतु ना छूटी है साकत तेऊ कमाहे हौ हौ करते कर्म रत ताको पार अपार प्रीत।

नै बुझै सो प्रभ सदहु संग। लेखै गणत ना छूटियै काची भीत ना सुध, जिसै बुझाए नानका तेह गुरमुख निर्मल बुद्ध। सलोक टूटे बंधन जास के होआ साधु संग, जो राते रंग एक कै नानक गूढ़ा रंग पौड़ी। रारा रंग हो या मन अपना, हर हर नाम जप हो जप रसना। रे रे दरगाह कह ना को, आओ बैठ आदर शुभ देव। वाह महली पावह तू बासा, जन्म मरन नह हुए बनासा। मस्तक कर्म लिखियो तुर जाके, हर संपै नानक करता कै। सलोक लालच झूठ विकार मोह, व्यापत मूड़े अंध। लाग परे दुर्गंध स्यों, नानक माया बंद पौड़ी। लल्ला लपट बिखै रस राते, अहम बुद्ध माया मद माते।

लवै न को एक है आप अवर न हो होवन हार होत सद आया वाका अंत न काहू पाया कीत हस्त मह पूर समाने प्रगत पुरख सब ठाऊ जाने जाको दीनो हर रस अपना नानक गुरमुख हर हर तेह जपना सलोक आत्म रस जे जानिया हर रंग सहजे मान नानक धन तन धन जन आए ते परवान पौड़ी आया सफल ताहू को गनिय जास रसन हर हर जस भनिय आए बस है साधु कै संगे अन बिन नाम त्याव है रंगे आवत सोजन न महराता जा को दया मया बेदाता एक है आवन फिर जोन न आया नानक हर कै दर्श समाया सलोक यास जपत मन हुए आनंद बिनसै दूजा पाओ दुख दर्द तृष्णा बुझै नानक नाम समाओ पौड़ी जैया जारो दुर्मत दो किसै त्याग सुख सहजे।

तर या भवजल करना यया जन्मना आवे सो एक नाम ले मन है परो यया जन्मना हारी है गुरपुरे की टेक नानक ते सुख पाया जां कह हिरे एक श्लोक अंतर मन तन बस रहे पीत ऊत के नीत गुरपुरा उपदेसिया नानक जपी है नीत पौड़ी अन दिन सिमर हो तास को जो अंत सहाई होए एह बिख्या दिन चार छे शाद चल्यो सब कोए काको मात पिता सुत धीया ग्रह बनता कस संग ना लिया ऐसी संच जो बिन सतनाही पत सेती अपने घर जाही साध संग कल कीर्तन गाया नानक तेते बहुर ना आया सलोक अत सुंदर कलीन चतर मुख ज्ञानी तनवंत मृतक कई है नानका जेह प्रीत नहीं भगवंत पौड़ी गंगा खट शास्त्र होए ज्ञाता पूरक कुंभक रेचक करमाता ज्ञान ध्यान तीर्थ इशनानी सोम पाक अपरस उदयानी राम नाम संग मन नहीं हेता जो कशकीनो सो अनेता वाते उत्तम गनो चंडाला नानक जे मन बसह गोपाला सलोक कुंट चार दह जिस ब्रह्मे कर्म कीर्त की रेख सुख दुख मुक्त जोन नानक लिखियो लेख पवड़ी कक्का कारण करता सो लिखियो लेख न मेटत को नहीं होत कश दो बारा करने हार न भूलन हारा काहू पंत दिखारे आपे काहू उद्यान भ्रमत पछतापे आपन खेल आप ही कीनो जो जो दीनो सो नानक लीनो सलोक खात खर्चत बिलछत रहे टूट न जाहे भंडार हर हर जपत अनेक जन नानक नाहे सुमार पौड़ी खखा खूना कछ नहीं तिस समरथ कह पाहे जो देना सो दे रहे हो भावे तह तह जाहे खर्च खजाना नाम तन या भगतन की रास हिमा गरीबी आनंद सहज जपत रह गुणतास खेल है बिगसह अंध स्यो जा को होत कृपाल सदीव गनीव सुहावने राम नाम ग्रह माल खेद ना दुख ना दान ते जा को नदर करी नानक जो प्रभ भाणिया पूरी तिना परी सलोक गन मिन देखो मने माहे सर पर चलनो लोग आस अनित गुरमुख मिटै नानक नाम अरोग पौड़ी गग्गा गोविंद गुण रवो हो सास सास जपनीत कहां बसासा देहे का बिलम ना करे हो मीत नह बारक नह जोगन नह बिरदी।

गई मूड तहां लपटाहि। गुर प्रसाद सिमरत रहै जाहू मस्तक भाग, नानक आए सफल ते जा को प्रिय है सुहाग। सलोक कोके शास्त्र वेद सब आन ना कथतो कोई, आद जुगादी हुण होवत नानक कै सोए। पौड़ी कग्गा कालो मन है एह बिन हर दूसर नाही, नह हुआ नह होना जत कत ओही समाहे। कुलह तो मन जो आवे सरना, नाम तत कल मह पुनः चरना। काल काल अनक पछतावे बिन हर भगत कहां थित पावे। कोल महारस अमृत ते पिया नानक हर गुर जा को दिया। श्लोक गण काले सब दिवस सास, नह बढ़न घटन तिल सार। जीवन लो रह परम मोह नानक ते गुवार। पौड़ी गंगा अंगरासै काल ते जो साकत प्रभ कीन, अनक जोन जन्मह मरह आत्म राम ना कीन। ज्ञान ध्यान ताहू को आय कर कृपा जिह आप दुआय। गणती गणी नहीं को छूटै काची गागर सर पर फूटै। सो जीवत जिह जीवत जपया प्रगट भये नानक नह छपया। श्लोक चित चितमो चरनार बिंद ऊंद कवल बिग शांत, प्रगट भये आपै गोबिंद नानक संत मतांत। पौड़ी चचा चरण कमल गुर लागा, तन तन उआ दिन संजोग सुभागा। चार कुंट दह दिस भ्रम आयो पई कृपा तब दर्शन पायो। चार बचार बिनस्यो सब दुआ, साध संग मन निर्मल हुआ। चिंत बिसारी एक दृष्टिता, नानक ज्ञान अंजन जेह नेत्रा। श्लोक छाती शीतल मन सुखी,

दास तुम्हारे, दास दासन के पानी हारे, सच्चा सार होत तेरे संता, अपनी कृपा करो भगवंता, शाड सियानप बहु चतराई, संतन की मन टेक टकाई, शार की पुत्री परम गत पाई, नानक जाको संत सहाई। सलोक जोर जुल्म फूल है घनो, साची दे विकार, हम बुद्ध बंधन परे, नानक नाम छुटार पौड़ी, जज्जा जान हो कछ हुआ, बांधियो ज्यो नलनी भ्रम सुआ, ज्यो जान हो भगत ज्ञानी, आज्ञा ठाकुर तिल नहीं मानी, ज्यो जान मैं कथनी करता, व्यापारी बसधा ज्यो फिरता, साध संग जे हो मैं मारी, नानक तां को मिले मरारी। श्लोक चालांगे उठ नाम जप, निसबासुर आराध, कारहा तुझै ना व्यापई, नानक मिटै उपाद पौड़ी, चज्जा चूरन मिटै तुम्हारो, राम नाम स्यो कर व्यवहारो, चूरत चूरत साकत मुआ, जा कैरदै होत पाओ बिया, चरह कसम्मल पाप तेरे मनुआ, अमृत कथा संत संग सुनुआ, चरह काम क्रोध दृष्टाई, नानक जाको कृपा गुसाई। श्लोक यतन करो तुम अनक बिद, रहन न पावो मीत, जीवत रहो हर हर भजो हो, नानक नाम प्रीत पवड़ी, जन्या जानो दृढ़ सही, बिनस जात एहेत, गणती गणो ना गण सको, ऊट सधारे केत, न्यो पेखो सो बिनसतो, कास्यो करिय संग, ज्ञान होया बिद सही चित, झूठो माया रंग, ज्ञान तो सोई संत सोए, भ्रम ते की चत भिन्न, अंधकूप ते कढ़ो, जेह होवो सो परसन्न, ज्ञान कै हाथ समरथ ते, कारण करने जोग, नानक ते उस्तत करो, याहू कियो संयोग। श्लोक टूटे बंधन जन्म मरण, साध सेव सुख पाए, नानक मनो ना बिसरै, गुण निध गोविंद राय पौड़ी, टहल करहो तौ एक की, जाते बिरथा ना कोए, मन फन मुख ही है बसै, जो चाहो सो होए, टहल मैल तां को मिलै, जा को साध कृपाल, साधु संगत तौ बसै, जो आपन होहे दयाल, तोहे ताहे बहु पवन बिन ना

नानक पाप बनासे कदके सलोक ठाक ना होती तिन्हों दर जेह हो वो सो प्रसन्न जो जन प्रभ अपने करे नानक ते तन तन पौड़ी ठठा मनुआ ठाह नाही जो सगल त्याग एकै लपटाई ठहक ठहक माया संग मुए वाकै कुसल न कतहू हुए ठांड परी संत है संग बसिया अमृत नाम तहां जी रसिया ठाकुर अपने जो जन पाया नानक वा का मन सीतलाया। सलोक दंडौत बंदन अनक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हाथ पौड़ी डड्डा डेरा एहो नहीं जह डेरा तह जान वा डेरा का संयम गुर कै शब्द पछान या डेरा को श्रम कर कल जाका तसु नहीं संग चाल वा डेरा की सो मित जान जाको दृष्ट पूर्ण भगवान डेरा निश्चल सच साध संग पाया नानक ते जन नह डुलाया। सलोक तहन लागे धर्म राय किन्ह न कालियो बंद नानक उबरे जप हरी साध संग संबंध पौड़ी टड्डा ढूंढत कह फिरो ढूंढन या मन माहे संग तुहारे प्रभ बसे बन बन कहां फराहे तेरी ताहो साध संग हम बुद बिकराल सुख पावो सहजे बसो दर्शन देख निहाल तेरी जामै जम मरे गर्भ जोन दुख पाए मोह मगन लपटत रह हौ हौ आवे जाए टहत टहत अब टह परे साध जना सरनाए दुख के फाहे काटिया नानक लिए समाए। सलोक जह साधु गोविंद भजन कीर्तन नानक नीत ना हो ना तू नह छुटह निकट ना जाइयो दूत पौड़ी नाना रण ते सी जीए आत्म जीतै कोवे हौ मैं अनस्यो लर मरे सो सोबा दू होए मणि मटाए जीवत मरे गुर पूरे अपदेश मनुआ जीतै हर मिले तेहे सूर तन वेस ना को जाने आपनो एक है टेक आधार रैन दिनस सिमरत रह सो प्रभ पुरख अपार रेण सगल या मन करे एऊ कर्म कमाए हुक्मै बूजै सदा सुख नानक लिखिया पाए। सलोक तन मन तन अर्पो तिसै प्रभु मलावै मोहे नानक भ्रम पहु काटियै चूकै जम की जोह पौड़ी तत्ता तांस्यो प्रीत कर गुण निध गोबिंद राय फल पावह मन बांछते तपत तुहारी जाय त्रास मिटै जम पंथ की जास बसै मन नाव गत पावह मत हुई प्रगास महली पावह ठाव ताहू संग ना धन चलै ग्रह जोबन नहराज संत संग सिमरत रहो एह तुहारे काज ताता कछु ना हुई है जो ताप नवारे आप प्रतपाले नानक हमह आपह माई बाप। सलोक थाके बहुबिद काल ते कृपत न तृष्णा लाख संच संच साकत मुए नानक माया ना साथ पौड़ी थत्था थिर को नहीं काए पसारु पाम अनक बंच बल छल करहु माया एक अपाव थैली संच हो श्रम करहु थाक परहु गवार मन कै कामना आ गई अंते अवसर बार हित पावहु गोबिंद भजो हो संत है की सिख ले हो प्रीत करहु सद एक स्यों या साचा असनेह कारण करन कराम नु सब विद एक हाथ जित जित लाभ हो तित तित लग है नानक जंत अनाथ। सलोक
दासा एक निहारिया सब कछ देवनहार। सास सास सिमरत रह नानक दर्श आधार पव।

भरे भंडार, दैन हार सद जीवन हारा, मन मूर्ख क्यों ताहे बसारा, दोष नहीं काहू को मीता, माया मोह बंद प्रभ कीता, दर्द निवार है जाके आपे, नानक तेते गुरमुख त्रापे।

तद्दा तावत तौ मिट संत संग होए बास तुरते कृपा करो आप तौ होए मनह परगास तन साचा तेऊ सच साहा हर हर पूंजी नाम बसाहा धीरज जस सुबा ते बनिया हर हर नाम श्रवण जेह सुनिया गुरमुख जेह कट रहे समाई नानक ते

मत पूरी प्रधान ते गुर पूरे मन मंत जिह जान्यो प्रभ अपना नानक ते भगवंत पौड़ी मम्मा जाहू मर्म पछाना भेटत साध संग पतियाना दुख सुख अवाकै समत बिचारा नरक सुरग रहत अवतारा ताहू संग ताहू निरलेपा पूर्ण घट घट पुरख बसेखा वा रस मैं वाहू सुख पाया नानक लिप्त नहीं ते माया। सलोक यार मीत सुन साजन हो बिन हर शूतन नाहे नानक तेह बंधन कटे गुर की चरणी पाहे। पवड़ी जइया यतन करत बहु बिदिया एक नाम बिन कह लो सिदिया याहू जतन कर होत छटारा वाहू जतन साध संगारा या उबरण धारे सब को वाहे जपे बिन उबर ना हो याहू तरन तारन समराता राख लेहो निर्गुण नरनाथा मन बच क्रम जेह आप जनाई नानक तेह मत प्रगति आई। सलोक रोस न काहू संग करहो अपने आप विचार होए निमाना जग रहो नानक नदरी पार पौड़ी रारा रेन होत सब जाकी ताज अवमान छुटै तेरी बाकी रण दर्ग है तो सीजै भाई जो गुरमुख राम नाम लिवलाई रहत रहत रह जाहे बिकारा गुर पूरे कै शब्द अपारा राते रंग नाम रस माते नानक हर गुर की नींदाते। सलोक लालच झूठ बिखै ब्याद या देही महबास हर हर अमृत गुरमुख पिया नानक सूख निवास पौड़ी लल्ला लावो औखद जाहु दुख दर्द ते मिटै खनाहु नाम औखद जे हृदय हतावै ताहे रोग सुपने नहीं आवै हर औखद सब घट है पाई गुर पूरे बिन बिद ना बनाई गुर पूरे संयम कर दिया नानक तौ फिर दुख ना थिया। सलोक वासुदेव सर्वत्र मैं ऊन ना कतहू ठाए अंतर बाहर संग है नानक काए दुराए पौड़ी ववा वैर ना करिए काहू घट घट अंतर ब्रह्म समाहू वासुदेव जल थल मैं रविया गुर प्रसाद विरले ही गविया वैर विरोध मिटे ते मन ते हर कीर्तन गुरमुख जो सुनते वर्ण चेहन सगल है ते रहता नानक हर हर गुरमुख जो कहता। सलोक हौ हौ करत बेहानिया साकत मुगद अजान रड़क मोए ज्यो त्रिखावन नानक किरत कमान पौड़ी राड़ा लाड़ मिटै संग साधु कर्म तर्म तत नाम अराधु रूड़ो जेहे बसे उरे दमाही वा की राड़ मिटत बिन साही राड़ करत साकत गावारा जेहे ही है हम बुद बेकारा राड़ा गुरमुख राड़ मटाई निमख माही नानक समझाई। सलोक साधु की मन ओट गहो उकत सियान पत्याग गुर दीखिया जेहे मन बसै नानक मस्तक भाग पौड़ी ससा शरण परे अबहारी शास्त्र सिमरत वेद पुकारी सोधत सोधत सोध बिचारा बिन हर भजन नहीं छुटकारा सास सास हम भूलन हारे तुम समरत अगनत अपारे शरण परे की राख दयाला नानक तुमरे बाल गोपाला। सलोक खुदी मिटी तब सुख पये मन तन पये अरोग नानक दृष्टि आया उस्तक करने जोग पौड़ी खखा खरा सराहू ताहू जो खिन मैं ऊने सुबर पराहू खरा निमाना होत परानी अन दिन जापै प्रभ निर्वाणी भावै खसम ता वा सुख देता पार ब्रह्म ऐसो आगंता असंख खते खिन बख्शन हारा
नानक साहेब सदा दयारा सलोक। सत कहूं सुन मन मेरे शरण पर हो हर राय, उकत सियानप सगल त्याग नानक लय समाए। पौड़ी ससा सियानप छाड़ आना, हिकमत हुक्म ना प्रभ पतियाना, सहस भांत करह चतुराई।

दासन दसना प्रभ को सिमरह से तनवंते प्रभ को सिमरह से पतवंते प्रभ को सिमरह से जन परवान प्रभ को सिमरह से पुरख प्रधान प्रभ को सिमरह से बेमोहताजे प्रभ को सिमरह से सर्व के राजे प्रभ को सिमरह से सुखवासी प्रभ को सिमरह सदा अविनाशी

प्रयोग जन राता हर नाम की सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन कै मालिक जीना हर धन जन को

जन हर रस राते सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपै हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संग केते तरे पार जात इहो हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम।

दुर्त सब नसै, संत का संग बड पागी पाई है, संत की सेवा नाम ते आई है, नाम तुल कछ अवर ना होए, नानक

पूजस नाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमृत वख्यान योग अभ्यास कर्म धर्म क्रिया सगल त्याग बन मदे फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना।

चार नानक गुरमुख नाम जपिए एक बार नौ खंड पृथ्वी फिरै चिर जीवै महा उदास तपीसर थीवै अग्न माहे होमत परान कनक असव है विर भूम दान न्योली कर्म करै बहु आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निमख कर शरीर कटावै तौ पी हों मैं मैल ना जावै हर के नाम समसर कछ नाहि नानक गुरमुख नाम जपत गत पाहि मन कामना तीर्थ देह छुटै गर्भ गमान ना मन ते हुटै सोच करै

पात्र संग सहाई सुवावे ना कीत जो बैराई तां सो प्रीत बलुआ के ग्रह पीतर बसै आनंद केल माया रंग रसै दृढ़ कर्मा न मन है प्रतीत काल न आवे मूड़े चीत बैर विरोध काम क्रोध मोह झूठ बकार महालोभ त्रोह याहू जुगत बिहाने कई जन्म नानक राख ले हो आपन कर कर्म तू ठाकुर तुम पह अरदास जियो पिंड सब तेरी रास तुम मात पिता हम

लपट रहे हो तह अंध अंधार, बताऊ स्यो जो लावे ने ताको हाथ ना आवे के, मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई, कर कृपा नानक आप ले लाई, मिथ्या तन धन कुटुंब सुभा।

मिथ्या रथ हस्ती असव वस्त्रा मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता मिथ्या त्रोह मोह अभमान मिथ्या आपस ऊपर करत गमान अस्थिर भगत साध की सरन नानक जप जप जीवै हर के चरण मिथ्या श्रवण पर निंदा सुनह मिथ्या हसत पर धर्म को हिरह मिथ्या नेत्र पेखत पर त्रिय रुपाद मिथ्या रसना भोजन अनुस्वाद मिथ्या चरण पर बकार को धाव है मिथ्या मन पर लोभ लुभाव है मिथ्या तन नहीं पर उपकारा मिथ्या बास नेत बेकारा बिन बूझे मिथ्या सब भय सफल देहे नानक हर हर नाम लय बिरथी साकत की आर जा।

बरते रहत, सब कछ जाने आत्म की रहत, जिस पावै तिस लए लड़ लाई, थान थनंतर रहे आसमाई, सो सेवक जिस कृपा करी, निमुख निमुख जप नानक हरी। सलोक काम क्रोध अर लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभ शरणागति, कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी, जेह प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, तिस ठाकर को रख मन माहे, जेह प्रसाद सुगंधत तन लाव है, तिस को सिमरत परम गत पाव है, जेह प्रसाद बस है सुख मंदर, तिसै त्याहे सदा मन अंदर, जेह प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरहो तिस रसना, जेह प्रसाद रंग रस भोग, नानक सदा त्याहिय त्यावन जोग, जेह प्रसाद पाठ पटंबर हंधावै है, तिसै त्याग कत अवर लुभावै है, जेह प्रसाद सुख सेज सुइजै, मन आठ पैर तांका जस गावीजै, जेह प्रसाद तुझ सब को मानै, मुखता को जस रसन बखानै, जेह प्रसाद तेरो रहता धर्म, मन सदा त्याहि केवल पार ब्रह्म, प्रभ जी जपत दरगाह मान पावै, नानक।

मन सुख पावह हर हर जस कहत जे प्रसाद तेरे सगल सिदर ढाके मन चरनी पार ठाकर प्रभ ताके जे प्रसाद।

साधजना की अचरज कथा अष्टपदी साध कै संग मुख उज्जल होत साध संग मल सगली खोत साध कै संग मिटै अभिमान साध कै संग प्रगटै सुज्ञान साध कै संग बुझै प्रभ नीरा साध संग सब होत नबेरा साध कै संग पाए नाम रतन साध कै संग एक ऊपर जतन साध की महिमा वरनै कौन परानी नानक साध की शोभा प्रभ माहे सुमानी साध कै संग अगोचर मिलै साध कै संग सदा प्रफुलै साध कै संग आवह बस पंचा साध संग अमृत रस पुंचा साध संग हुए सब की रेन साध कै संग मनोहर बैन साध कै संग न कतहू धावै साध संग अस्थित मन पावै साध कै संग माया ते भिन्न साध संग नानक प्रभ सो प्रसन्न।

आनंदा साधक्या संग नाही हो ताप साधक्या संग तजै सब आप आपे जाने साध बुदाई नानक साध प्रभु बने आई साधक्या संग न कबहू धावे साधक्या संग सदा सुख पावे साध संग बस्त अगोचर लह साधु कै संग अजर सह साधक्या संग बसै थानी उच्चै साधु कै संग महल पहुंचै साधक्या संग दृढ़ सब धर्म साधक्या संग केवल पार ब्रह्म साधक्या संग पाहि नाम निदान नानक साधु कै कुर्बान साधक्या संग सब कुल उधारै साध संग साजन मी

सेवा। साध कै संग शोभा सुर देवा, साधु कै संग पाप पलायन, साध संग अमृत गुण गायन, साध कै संग सर्ब थान गम, नानक साध कै संग सफल जनम, साध कै संग नहीं कछ काल, दर्शन भेट होत निहाल, साध कै संग कलूखत हरै, साध कै संग नरक पर हरै, साध कै संग इहां उहां सुहेला, साध संग बिछरत हर मेला, जो इच्छै सोई फल पावै, साध कै संग न बिरता जावै, पार ब्रह्म साध रिद बसै, नानक उधरै साध सुन रसै, साध कै संग सुनो हर नाऊ, साध संग हर के गुण गाऊ, साध कै संग

जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी की ना ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी ते कछ बुरा ना पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान।

ब्रह्म ज्ञानी ले धावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै हुए सो भला, ब्रह्म ज्ञानी सो फल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी हम बुद्ध त्यागत, ब्रह्म ज्ञानी कै मन परमानंद, ब्रह्म ज्ञानी कै घर सदा आनंद, ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास, नानक ब्रह्म ज्ञानी।

ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ भागी पाई है। ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाई है। ब्रह्म ज्ञानी को खोजह महेश्वर। नानक ब्रह्म ज्ञानी

निमुख निमुख ठाकुर नमस्कार है, नानक ओह अपरस सगल निस्तार है, अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस, मन मह प्रीत निरंजन दर्श, पर क्रिया रूप ना पेख नेत्र, साध की टहल संत संग हेत,

आर अष्टपदे कई कोट होए पुजारी, कई कोट अचार व्यवहारी, कई कोट भय तीर्थ वास्ती, कई कोट बन भ्रम है उदासी, कई कोट वेद के स्रोते, कई कोट तपीसर होते, कई कोट आत

कई कोट भय अभमानी, कई कोट अंध अज्ञानी, कई कोट किरपन कठोर, कई कोट अपिग आत्म निकोर, कई कोट पर दर्भ को हिरह, कई कोट पर दुख ना करह, कई कोट माया श्रम माहे, कई कोट परदेश परमाहे, जित जित लाभ हो तित तित लगना, नानक करते की जाने करता रचना, कई कोट सिद्ध जति योगी, कई कोट राजे रस भोगी, कई कोट पंखी सर्प उपाय, कई कोट पात्र बिरख निपजाए, कई कोट पवन पानी बैसंतर, कई कोट देश भूमंडल, कई कोट ससियर सूर नखियतर, कई कोट देव दानव इंद्र सिर शतर, सगल समग्री अपने सूत तारै, नानक जिस जिस पावै तिस तिस निस्तारै, कई कोट राजस तामस सातक, कई कोट वेद पुराण सिमरत अरसास, कई कोट किए रतन समुंद, कई कोट नाना प्रकार जन, कई कोट किए चिर जीवे, कई कोट गिरी मेर स्वर्ण जीवे, कई कोट जख किनर पसाच, कई कोट भूत प्रेत सूकर मिर्गाच, सब ते नेरा सब हूं ते दूर, नानक आप अलिपत रहया भरपूर, कई कोट पाताल के वासी, कई कोट नरक सुर्ग निवासी, कई कोट जन्म है जीव है मर है, कई कोट बहु जोनी फिर है, कई कोट बैठत ही खाहे, कई कोट काल है थक पाहे, कई कोट किए तनवंत, कई कोट माया मह चिंत, जह जह पाणा तह तह राखे, नानक सब किश प्रभ कह हाते, कई कोट भय बैरागी, राम नाम संग तिन लिव लागी, कई कोट प्रभ कौ खो जनते, आत्म मह पार ब्रह्म लहंते, कई कोट दर्शन प्रभ प्यास, तिनको मिलियो प्रभ अविनाश, कई कोट मांग है सत संग, पार ब्रह्म तिन लागा रंग, जिनको होए आप सो प्रसन्न, नानक ते जन सदा धन धन, कई कोट खानी अरखंड।

होए नानक तिस बलिहार ने जल थल महियल सोए। अष्टपदी करन करामन करन जोग जोत सिपावै सोई होग। हिन मह थाप उथाप नहारा अंत नहीं किश पारा वारा। हुक्मे तार अतार रहावै हुक्मे उपजै हुक्म समावै। हुक्मे ऊच नीच व्यवहार हुक्मे अनक रंग प्रकार। कर कर देखै अपनी वड्याई नानक सब मह रहे आसमाई। प्रभ भावै मनुख गत पावै प्रभ भावै तां पात्र तरावै। प्रभ भावै बिन सास ते राखै प्रभ भावै तां हर गुण भाखै। प्रभ भावै तां पतत उधारै आप करै आपन बीचारै। दोहां सिरियां का आप स्वामी खेलै बिगसै अंतर जामी।

आवे इसके हाथ हुए ता सब किस ले जो तिस पावे सोई करे अनजानत बिख्या मह रचे जे जानत अपने आप बचे परमे फूला दह दिस तावे।

हिन मह नीच कीट कौ राज पार ब्रह्म गरीब नवाज जाका दृष्ट कछु ना आवै इस तत्काल दह दिस प्रगटावै।

ब्रह्म प्रगास अपनी बनते आप बनाई नानक जीवै देख बडाई इसका बल नाही इस हाथ करन करावन सर्व को नाथ आज्ञाकारी बपुरा जियो जो तिस पावै सोई फुन थियो कबहू ऊंच नीच मह बसै कबहू सोग हरख रंग हसै कबहू निंद चिंद व्योहार कबहू ऊब आकाश पयाल कबहू बेता ब्रह्म विचार नानक आत्मा।

सर्ब की हो तरवाल। कबहु होए बह बड़ राजा, कबहु भिखारी नीच का साजा। कबहु अपकीर्त मह आवे, कबहु भला भला कहावे। ज्यों प्रभ राख तिव ही रह, गुर प्रसाद नानक सच कह। कबहु होए पंडित करे बखियान, कबहु मोन धारी लावे ध्यान। कबहु तट तीर्थ इशनान, कबहु सिद्ध साधक मुख ज्ञान।

त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गमन पाए विश्राम। नानक प्रभु कै सद कुर्बान, सलोक सुखी बसै मशकीनिया। आप निवार तले बड़े बड़े अहंकारिया, नानक गर्भ गले अष्टपदी। जिसकै अंतर राज अभिमान, सो नरक पाती होवत सुवान। जो जाने मैं जो बनवंत, सो होवत बिष्टा का जंत। आपस कहो कर्मवंत कहावे, जन्म मरै बहु जोन प्रमावै।

हनक तपस्या करे अहंकार, नरक सुर्ग फिर अवतार, हनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे, हर दरगहा कहो कैसे गवे, आपस कहो जो भला कहावे, तिसह भलाई।

तब इसको सुख नाही कोई। जब एह जाने मैं किछ करता, तब लग गर्भ जोन मैं फिरता। जब तारे को बैरी मीत, तब लग निश्चल नाही चीत। जब लग मोह मगन संग माई,

को उठ धावे तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिख्या के करे नह तृप्तावे खप खप मरे बिना संतोख नहीं को राज्य सुपन मनोरथ बिरथे सब काज्य नाम रंग सर्व सुख होए बड़ भागी तिसे प्राप्त होए करन करावन आपे आप सदा सदा नानक हर जाप करन करावन करन हार इसके हाथ कहां विचार जैसे

ना जाए। नानक सद ही रहे आसमाय, आप उपदेसै समझै आप, आपे रचिया सब कै साथ, आप कीनो आपन विस्तार, सब कछ उसका ओह करनै हार, उसते भिन्न कहो किश होए, थान तनंतर एकै सोए, अपने चलते आप करनै हार, कौतक करै रंग अपार, मन मह आप मन अपने माहे, नानक कीमत कह।

नानक ज्योति सपावे सोई थिया। संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए। संत का दुखी सदा सहकाई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है। संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का

नाथ, तिसका हुक्म बूझ सुख होए, तिसका नाम रख कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन ना लागे कोए, उस्तत मन मह कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो।

हर हर कर्म सर्वण हर कथा हर दरगाह नानकी उज्जल मथा बड़ भागी ते जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करें विचार ते तनवंत गनी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जानो ते सुखी एको एक एक पछान इत उत की ओह सोजी जान नाम संग जिसका मन मानिया नानक तिन्ह निरंजन जानिया गुर प्रसाद अपने आप सुजै किसकी जानो तृष्णा बुझै साध संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओह हर जन रहत अन दिन कीर्तन केवल बखियान गृहस्थ मैं सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी कटिया जम की फासा पार ब्रह्म की जिस मन भूख नानक तिसह ना लागह दुख जिस को हर प्रभ मन चित आवे सो संत सहेला नहीं रुलावे जिस प्रभ अपना कृपा करे सो सेवक कहो किसते डरे जैसा सा तैसा दृष्टाया अपने कार्य में आप समाया सोदत सोदत सोदत सीजिया गुर प्रसाद तत सब बूजिया जब देखो तब सब किस मूल नानक सो सूखम सोई असथूल नह किस जन्म नह किस मरे अपन चलते आप ही करे आमन जावन दृष्ट अन दृष्ट आज्ञाकारी।

मिले जोत प्रगटावे, दिन संतन की बाँचो तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूरख काहे बिन लाइए, पुरब लिखे का लिखिया पाइए।

अजहान कौन बस्त आई तिरे संग लपट रहे हो रस लूबी पतंग राम नाम जप हिरदे माहे नानक पत सेती कर जाहे जिस वखर को लैन तू आया राम नाम संतन घर पाया ताज अभमान ले।

ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद पुराण, नाम के तारे सुनन ज्ञान ध्यान, नाम के तारे आकाश पाताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पुरिया सब भवन, नाम के संग उदरे सुन श्रवन, कर कृपा जिस अपने नाम लाए, नानक चौथे पद मह सो जन गत पाए, रूप सत जाका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रधान, करतूत सत सत जा की बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जा की रचना सत मूल सत सत उत्पत, सत करनी निर्मल निर्मली, जिसह बुझाए तिसह सब भली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुरते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सत ते जन जा कै हृदय प्रवेश, सत नित बूझै जे कोय, नाम जपत ता की गत होय, आप सत किया सब सत, आपे जानै अपनी मित गत, जिसकी सृष्ट सो करनै हार, अवर ना बूझ करत बिचार, करते की मित ना जानै किया, नानक जोत सुभावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म भये बिस्माद, जिन बूझया तिसे आया स्वाद, प्रभ कै रंग रात जन रहे, गुर कै बचन पदार्थ लहे, हुए दाते दुख काटन हार, जा कै संग तरै संसार, जन का सेवक सो वड भागी।

प्रतीत ठाकुर के सेवक की निर्मल रीत ठाकुर को सेवक जाने संग प्रभ का सेवक नाम कै रंग सेवक को प्रभ पालन हारा।

बारंबार बार प्रभ जपिए ई अमृत इह मन तन तृपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किस अवर नाही दृष्ट।

माने उठत बैठत सोवत नाम कहो नानक जन कै सद काम बोलो हो जस जेह बाद नरात प्रभ अपने जन कीनी दात करह भगत आत्म कै चाय प्रभ अपने स्यों रह समाय जो होवा होवत सो जान प्रभ अपने का हुक्म पहचान तिस की महिमा कौन बखानो।

नानक तिस जन के पूजो सद पैरा। सलोक सत पुरख जिन जानिया सत गुर तिसका नाम तिसकै संग सिख उधरै नानक हर गुण गाव। अष्टपदी सतगुर सिख की करै प्रतपाल सेवक को गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरै गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख बेकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख वडभागी हे सतगुर सिख का हलत पलत सवारै नानक सतगुर सिख को जी नाल समारै गुर के ग्रह सेवक जो रहै गुर की आग्या मन मह सह आपस को कर कछ ना जनावै हर हर नाम हृदय सद ध्यावै मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कार्ज रास सेवा करत हुए निहकामी तिस को होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले।

बल जाओ सर्व निधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म मैं जन जन मैं पार ब्रह्म एक कह आप नहीं कछ भरम सहस सियान पलया ना जाइय नानक ऐसा गुरबद भागी पाइय सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुन कर बचन करन आगहने मन संतोख आत्म पतियाने पूरा गुर अखयो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेखा हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावै तिस लये मलाए जिहवा एक उस्तत अनेक सत पुरख पूर्ण विवेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगम अगोचर प्रभ निर्वाणी निराहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने ना पाई अनक भगत बंधन नित करह चरण कमल हृदय सिमरह सद बलिहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने एहो हर रस पावे जन कोय अमृत पीवे अमर सो होए उस पुरख का नाही कदे विनाश जा कै मन प्रगटे गुणतास आठ पहर हर का नाम ले सच उपदेश सेवक कौ दे मोह माया कै संग ना लेप मन मह राखै हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक परम मोह दुख तह ते नासे तपत माहे ठांड वरताई आनंद भया दुख नाठे पहाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूर्ण उपदेसे पहु चूका निरपौ होए बसे सगल ब्याध मन ते खै नसे जिसका साथ इन कृपा धारी साध संग जप नाम मरारी थित पाई चूके भ्रम गवन सुन नानक हर हर जस श्रवन निर्गुण आप सरगुण पी ओही कला धार जिन सगली मोही अपने चरित प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोए सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पये प्रगास साध कै संग रच रचना अपनी कल धारी अनक बार नानक बलिहारी सलोक साथ न चल बिन भजन विखिया सगली शार हर हर नाम कमावना नानक इहो तन सार अष्टपदी संत जना मिल करो बीचार एक सिमर नाम आधार अवर अपाव सब मीत बसार हो चरण कमल रिद मह उरतार हो करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हरवत यहु तन संचो हो वो भगवंत संत जना का निर्मल मंत एक आस राखो मन माहे सर्व रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चार कुंट उठ धावह तो तन हर सेवा ते पावह जिस सुख को नित बांचह मीत सो सुख साधु संग प्रीत जिस शोभा को करह भली करनी सा शोभा भज हर की सरनी अनक अपावी रोग न जाए रोग मिटै हर अवखद लाए सर्व निधान मह हर नाम निधान जप नाम

0: सिमर सिमर सदा सुख पाओ, पाओ बिन सह पूर्ण होए आस, भगत भाई आत्म परगास, तित कर जाए बसै अबनासी, कहो नानक काटी जम फासी,
1: तत विचार कह जन साचा,
0: जन्म मरे सो काचो काचा, आवागमन मिटै प्रभ सेव, आप त्याग सरन गुरदेव, इउ रतन जन्म का हुए उदहार, हर हर सिमर प्राण अधार, अनक अपावना छूटन हारे, सिमरत शास्त वेद विचारे, हर की भगत करहु मन लाए, मन बंछत नानक फल पाए, संग न चालस तेरे तना, तू क्या लपटाव है मूर्ख मना।

भगत बिना बहु डूबे सियाने, हर की भगत करो मन मीत, निर्मल होए तुम्हारो चीत, चरण कमल राखो मन माहे, जन्म जन्म के किल विख जाहे, आप जप हो अवरा नाम जपाव हो, सुनत कहत रहत गत पाव हो, सार भूत सत हर को नाव, सहज सुपाए नानक गुण गाव, गुण गावत त्रि उत्तर सुमैल, बिन सजाए हो मैं बिख फैल, होहे अचिंत बसै सुख नाल, सास ग्रास हर नाम संभाल, चाड़ सियान पसगली मना, साध संग पावे है सच धना, हर पूंजी संच करो व्यवहार, इहा सुख दरगाह जयकार, सर्ब निरंतर एको देख, कहो नानक जाकै मस्तक लेख, एको जप एको सलाहे, एक सिमर एको मन आहे, एक सके गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एक भगवंत, एको एक एक हरियाप, पूर्ण पूर रहो प्रभ व्याप, अनक विस्थार एक ते भये, एक अराध परासत गए।

परयासौ सरनाय नानक की प्रभ बेनती अपनी भक्ति लाए अष्टपदी जाचक जन जाचे प्रभ दान कर कृपा देव हो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी श्रद्धा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट महा सुख होए हर रस पावे बिरला कोए जिन चाखिया से जन त्रिपताने

मन सब त्याग, अंतर प्रगास अन दिन लिवलाग, बड़ भागी जपया प्रभ सोए, नानक नाम रते सुख होए, सेव की मनसा पूरी भई, सतगुर ते निर्मल मत लई, जन कौ प्रभ होयो दयाल, सेवक कीनो सदा निहाल, बंधन काट मुक्त जन भया, जन्म मरण दुख भ्रम गया, इच पुन्नी सरदा सब पूरी, रव रहिया सतसंग हजूरी, जिसका साथ

जाऊ मन तन अंतर इही सो आऊ नेत्रहु पेख दर्श सुख होए मन बिगसै साध चरण धोए भगत जना कै मन तन रंग बिरला कोहु पावै संग एक बस्त दीजै करमया।

अष्टपदी जब अकार एहु कस ना दृष्टेता पाप पुन तब कहते होता जब धारी आपन सुन समाद तब बैर विरोध किस संग कमात जब इसका वर्ण चिहन ना जापत तब हरख सोग कहो किसे व्यापत जब आपने आप पार ब्रह्म तब मोह कहां किस होवत भरम आपन खेल आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस कहो गनी जब एक है हर अगम अपार तब नरक सुर्ग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सहज सुभाय तब शिव सकत कहो कित ठाय जब आप है आप अपनी जोत धरे तब कमन नडार कमन कत डरे आपन चलत आप करने हार नानक ठाकुर अगम अपार अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूर्ण करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किस होए जब अवगत गोचर प्रभेका तब चित्र गुप्त किस पूछत लेखा जब नाथ निरंजन अगोचर अगाधे तब कौन छुटे कौन बंधन बाधे आपने आप ही अचरजा नानक आपन रूप आप ही उपरजा।

जब अपनी शोभा अपन संग बनाई तब कमन माए बाप मित्र सुत भाई जह सर्व कला आपह प्रवीन तह वेद कतेव कहां को चीन जब आपन आप आप उर धारै।

मान अपमान अनक प्रकार की ओ बखियान आपन खेल आप कर देखे खेल संकोचे तो नानक एक जह अवगत भगत तह आप जह पसरे पासार संत प्रताप दुहु पाख का आप है धनी उनकी शोभा उनहु बनी आप है कौतक करे अनद चोज आप है रस भोगर निरजोग जिस भावे तिस आपन नाए लावे जिस भावे तिस खेल खिलावे बेशमार अथाह अगंत अतुल।

निरपव जपै सगल भव मिटै प्रभ कृपा ते प्राणी छुटै जिस प्रभ राखै तिस नाही दुख नाम जपत मन होवत सुख चिंता जाए मिटै अहंकार तिस जन को कोई

दृष्ट दर्शन पेहत कुदरत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक परवान अंतर जामी पुरख प्रदान जिस मन बसै सो होत निहाल ताकै निकट ना आवत काल अमर पहे अमरा।

हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन परगास अष्टपदे संत संग अंतर प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल समिग्री एक सकट माहे अनकरंग नाना दृष्टाहे नौ निद

नै कछ करा, आप भला कर तूत आत्मी की, आपे जाने अपने जी की, आप साच धारी सब साच, ओत पोत आपन संगराच, ताकी गत मित कही ना जाए।

तिस सदा सुख होए, आप मलाए नहीं प्रभ सोए। ओह तनवंत कुलवंत पतवंत, जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत। धन धन धन जन आया, जिस प्रसाद सब जगत तराया। जन आवन का यह सुआउ, जन कै संग चित आवे नाउ। आप मुक्त मुक्त करे संसार, नानक

हस्तपदी पूरे गुर का सुन अपदीस पार ब्रह्म निकट कर पीख सास सास सिमरो गोविंद मन अंतर की उतरे चिंद आस अनित त्यागो तरंग संत जना की धूर मन बंग आप छोड़ बेनती करो साध संग अगल सागर तरहो हर धन के परने हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार हेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरक नवार उधार हो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दामोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह आधार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल यह रतन सुनत कमावत होत उधार आप तरह लोकह निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जा कै मन लागा हर रंग जय जय शब्द अनाहद वाजै सुन सुन आनंद करे प्रभ गाजै प्रगटे गोपाल महात कै माथे नानक कुदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मलाए।

या तप योग प्रभ ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम इशनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतुर तत का बेता समदर्शी एक दृष्टेता ए फल तिस जन कै मुख भने गुर नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपै मन कोए

सगल मतांत केवल हर नाम, गोविंद भगत कै मन विश्राम। कोट अपराध साध संग मिटे, संत कृपा ते जम ते छुटे। जा कै मस्तक कर्म प्रभ पाई, साध सरन नानक ते आई। जिस मन बसै सुनै लाए प्रीत, जिस जन आवै।

तिस बिन अवर ना जाय, जो चाह है सोई मिले, नानक हर गुण गाय, गोविंद जस गाय हर नीत।

नानक संत निर्मल भये, जिन मन वसिया सोए पौड़ी, तृतीया त्रै गुण बिखै फल, कब उत्तम कब नीच, नरक सुर्ग भ्रमतो घणो, सदा संगारै नीच, हरख सोग

मोह परम बूढ़त कणो महानरक महवास कर कृपा प्रभ राख ले हो नानक तेरी आस। श्लोक चतुर सियाणा सुगड़ सोए जिन तजया अभमान चार पदार्थ अष्ट सिद्ध

पंचम पंच प्रधान ते जे जान्यो परपंच कुसुम बास बहुरंग कणो सब मिथ्या बलबंच नह जापै नह बूझिऐ नह कछ करत बिचार स्वाद मोह रस भेदियो अज्ञान रचियो संसार जन्म मरण बहु जून भ्रमण कीने कर्म अनेक रचनहार नह सिमरियो मन ना बिचार विवेक पाओ भगत भगवान संग माया लिपत नारंच नानक बिरले पाई है जो नारच है परपंच सलोक खट शास्त्र ऊचो कह अंत न पारावार भगत सोह गुण गावते नानक प्रभ कह द्वार पौड़ी खष्टम खट शास्त्र कह सिमरत कथ है अनेक उत्तम ऊचो पार ब्रह्म गुणयंत ना जान है सेख नारद मुन जन सुख ब्यास जस गावत गोविंद रस गीते हर स्यो बीते भगत रचे भगवंत मोह मान भ्रम बिनसियो।

जाहिर साध संग लिवलाए खाट खजाना गुण निदहरे नानक नाम ते आए सलोक संत मंडल हर जस कथ है बोल है सत सुपाय नानक मन संतोखी एकस स्यों लिवलाए पौड़ी सप्तम संचो नाम धन टूट ना जाहे भंडार संत संगत मह पाई है अंत ना पारावार आप तजो हो गोबिंद भजो हो सरन पर हो हर राय दुख हरे पवजल तरे मन चिंदिया फल पाए आठ पहर मन हर जपै

मीत जो हर की मत दे नानक तिस बलिहार ने हर हर नाम जपे सलोक आठ पहर गुण गाई है तजी है अवर

अष्टमी अष्ट सिद्ध नव निद सगल पदार्थ पूर्ण बुद्ध कवल परगास सदा आनंद निर्मल रीत नरो धर्मंत सगल धर्म पवित्र इशनान सब मह ऊच बसेख ज्ञान हर हर भजन पूरे गुर संग जप तरिय नानक।

सारे नरक सुर्ग अवतार पौड़ी नौमी नवे सिदर अपवीत हर नाम ना जप है करत विपरीत पारत्रय रम है बक है साध निंद कर्म ना सुनही हर जस बिंद फिर है पर दर्भ उदर कहताई अग्न ना निवरे तृष्णा ना बुझाई हर सेवा बिन एह फल लागे नानक प्रभ बिसरत मर जमह अभागे सलोक दस दिस खोजत मैं फिरयो जत देखूं तत सोए मन बस आवे।

मन मह चितव पूर्ण भगवंत हस्त चरण संत कहल कमाइए नानक इहो संजम प्रभ कृपा पाइए सलोक एको एक बखानिए बिरला जाने स्वाद गुण गोबिंद ना जानिए नानक सब बिस्माद पौड़ी एकादशी निकट पेखो हर राम इंद्री बस कर सुनो हर नाम मन संतोख सर्ब जी दया इन बिद बरत संपूर्ण भया धावत मन राखे एक ठाई मन तन शुद्ध।

पतत उदारन मन बसे नानक छूटे नाम पौड़ी त्रौदसी तीन ताप संसार आवत जात नरक अवतार हर हर भजन ना मन मह आयु सुख सागर प्रभ निमुख ना गायु हरख सोग का देह कर बांधेउ दीर्घ रोग माया असाध्यु दिने विकार करत श्रम पायु।

पौड़ी चौदह चार कुंट प्रभे आप सगल भवन पूर्ण प्रताप दसे दिशा रव्या प्रवेक तरन आकाश सब मह प्रभ पीक जल थल बन पर्वत पाताल परमेश्वर तह बसह दयाल सूखम अस्थूल सगल भगवान नानक गुरमुख ब्रह्म पिछान सलोक आत्म जीता गुरमती गुण गाए गोविंद संत प्रसादी पै मिटे नानक बिनसी किंड पौड़ी अमावस आत्म सुखी पहे संतोख दिया गुरुदेव मन

हो मैं छुट्टी सिमरत हर को नाम शरण गही पार ब्रह्म की मिटिया आवागमन आप तरिया कुटुंब सियो गुण गोबिंद।

पाया नानक सुख विश्राम सलोक पूर्ण कभो ना ढोलता पूरा किया प्रभ आप दिन दिन चढ़ सुआया नानक होत ना घाट पौड़ी पूर्णमा पूर्ण प्रवेक करण कारण समरथ जी जंत दयाल पुरख सब ऊपर जा का हाथ गुण निदान गोविंद गुर किया जा का होए अंतर जामी प्रभ सुजान अलख निरंजन सोए पार ब्रह्म परमेश्वरो सब विद जानन हार संत सहाई सरन जोग आठ पहर नमस्कार अकथ कथा नह बूझिय सिमरहु हर के चरण पतत उदारन अनाथ नाथ नानक प्रभ की सरन सलोक दुख बिन से सहसा गयो सरन गही हर राय मन चिंदे फल पाया नानक हर गुण गाय पौड़ी कोई गावे को सुने कोई करे विचार को उपदेसे को दृढ़ तिसका हुए उदार किलबिख काटे हुए निर्मला जन्म जन्म मल जाय हलत पलत मुखी।

जिन भजया भगवंत खतरी ब्राह्मण सूद बैस उदरै सिमर चंडाल जिन जानियो प्रभ अपना नानक तिसह रवाल गौड़ी की वार महला चौथा एक ओंकार सतगुर प्रसाद श्लोक महला चौथा सतगुर पुरख दयाल है जिसनो समत सब कोई एक दृष्ट कर देखदा मन भावनी ते सिद्ध होए सतगुर विच अमृत है हर उत्तम हर पद सोए नानक किरपा ते हर त्याई है गुरमुख पावे कोई महला चौथा हौमै माया सब बिख है नित जग तोटा संसार लाहा हर धन खटिया गुरमुख शब्द विचार हौमै मैल बिख उतरै हर अमृत हर उरतार सब कारज तिनके सिद्ध है जिन गुरमुख किरपा धार नानक जो तुर मिले से मिल रहे हर मेले सिरजनहार पौड़ी तू सच्चा साहिब सच है सच सच्चा गोसाई तुदनो सब त्याई दी सब लगे तेरी पाई तेरी सिफत सवाल्यो स्वरूप है जिन कीती तिस पार लंघाई

मनमुख अहंकार सलाह दे, होमै ममतावाद जिन सलाहन से मरह, खप जावे सब अपवाद। जन नानक गुरमुख उबरे, जप हर हर परमानाद। महला चौथा, सतगुर हर प्रभ दस, नाम त्याई मन हरी। नानक नाम पवित, हर मुख बोली सब दुख पर हरी। पौड़ी, तू आपे आप निरंकार है, निरंजन हर राया। जिन्नी तू एक मन सच त्याया, तिनका सब दुख गवाया।

मन पहाया, सच्चे मेरे साहिबा सच्चे सच नाया। श्लोक महला चौथा, मन अंतर होमै रोग है, भ्रम भूले मन मुख दुर्जना, नानक रोग गवाए, मिल सतगुर साधु सज्जना। महला चौथा, मन तन रत्ता रंग सियों, गुरमुख हर गुण तास, जन नानक हर शरणागति, हर मेले गुर साबास पौड़ी। तू करता पुरख अगम है, किस नाल तू वड़ी है, तुद जे वडहोए सो आखी है, तुद जेहा तू है पढ़ी है, तू घट घट एक वरतदा, गुरमुख परगड़ी है, तू सच्चा सब सदा खसम है, सब दू तू चढ़ी है, तू करह सो सच्चे होए सी, ता कायत करी है।

सतगुर सुख वसन महला चौथा जिने अंदर प्रीत पिरम की ज्यो बोलन तिवें सोहन नानक हर आपे जानदा जिन लाई प्रीत पिरन पौड़ी तू करता आप भुल है भुलन विच नाही तू करह सो सच्चे भला है गुर शब्द बुझाही तू करन कारण समरथ है दूजा को नाही तू साहिब अगम दयाल है सब तुद त्याही सब जी तेरे तू सब सदा तू सब छड़ाही। सलोक महला चौथा सुन साजन प्रेम संदेसरा अखी तार लगन गुर तुठे सजन मेलिया जन नानक सुख सुवन महला चौथा। सतगुरु दाता दयाल है जिसनो दया सदा हुए सतगुर अंदरों निर्वैर है सब देखे ब्रह्म एक सोए निर्वैरा नाल जे वैर चलाएं दे तिन विचों तिस्तिया ना कोई सतगुर सबना दा भला मनाएं दा तिस दा बुरा क्यों होए सतगुर नो जेहा को इच्छदा तेहा फल पाए कोए नानक करता सब किछ जानदा जिदू किश गुजा ना होए पौड़ी जिसनो साहिब वड्डा करे सोई वड जानी जिस साहिब भावे तिस बख्श लए सो साहिब मन पाणी जे को ओस दी रीस करे सो मूड अजानी जिसनो सतगुर मेले सो गुण रवे गुण आख बखाणी नानक सच्चा सच है बुझ सच समाणी। सलोक महला चौथा हर सत निरंजन अमर है निर्भउ निरवैर निरंकार जिन जपया एक मन एक चित तिन लथा हूं मैं भार जिन गुरमुख हर आराध्या

आप मलाई गुण की सांझ तिन स्यों करी सब अवगण शब्द जलाए अवगण विकण पल्लरी जिस देसो सच्चे पाए बलिहारी गुरे अपने जिन अवगण मेट गुण प्रगटे आए वड्डी वड्याई वड्डे की गुरमुख आलाए श्लोक महला चौथा सतगुर विच वड्डी वड्याई जो आन दिन हर हर नाम ते आवे हर हर नाम रमत सुच संजम।

सतगुरु की सेवा निर्मली निर्मल जन होए सो सेवा काले जिन अंदर कपट वकार झूठ वे आपे सच्चे वख कड़े जजमाले सच्यार सिख बह सतगुर पास कालन कूड़ियार ना लभनी कितै थाए पाले जिन्ना सतगुर का

सच साहा हमारे, सच पूंजी नाम दृढ़ाए प्रभ, वणजारे थारे सच सेव है सच वणंज लै, गुण कथ है निरारे, सेवक पाए से जन मिले, गुर शब्द सवारे, तू सच्चा साहब अलख है, गुर शब्द लिखारे।

हर तिनका दर्शन ना करहु, जो दूजे पाए चित लाही, तुर करत आप लिख पाया, तिस नाल केहो चारा नाही, जन नानक नाम अराध तू, तिस अपड़ को ना सकाही।

करे हर वस्त संभाले नाम निदान हर बन जीए हीरे परवाले विण काया जे होर थै धन खोज दे से मूड बेताले से उजड़ भरम पवाई है ज्यों झाड़ मिर्ग पाले। श्लोक महला चौथा जो निंदा करे सतगुर पूरे की सो औखा जग मह होया नरक घोर दुख खूह है उथे पकड़ ओहो ढोया कूक पकार को ना सुने ओहो औखा होए होए रोया ओन हलत पलत सब गवाया लाहा मूल सब खोया ओहो तेली संदा बल्द कर नित भलके उठ प्रभ जोया हर वेखै सुनै नित सब किश तिदू किश गुजा ना होया।

0: इन वेख वेख हम जिवाहे। महला चौथा।
1: सा धरती पई हरियावली,
0: जिथै मेरा सतगुरु बैठा आए।
1: से जंत पई हरियावली,

जिन नाम अराध्या आप तरिया जिन्नी दिथा तिन्ना लय छाय हर सतगुर मेलो दया कर जन नानक धोए पाए पौड़ी सच सच्चा सतगुर अमर है जिस अंदर हर उर धारिया सच सच्चा सतगुर पुरख है जिन काम क्रोध बेख मारिया जा डिठा पूरा सतगुरु ता अंदरों मन साधारिया बलिहारी गुरे अपने सदा सदा घुम वारिया गुरमुख जिता मनमुख हारिया सलोक महला चौथा कर किरपा सतगुर मेलियोन मुख गुरमुख नाम त्याए सी सो करे जे सतगुर भाव सी गुरु

मेरे भाई पौड़ी हौ आख सलाही सिफत सच सच सच्चे की वड़ियाई सलाही सच सलाह सच सच कीमत किने ना पाई सच सच्चा रस जिन्नी चखिया

क्यों संतो निर्मल होए, गुरमुख गुण वे हाजी है, मल होमै कड्डै धोए, सच मणंजह रंग स्यों, सच सौदा होए, तोटा मूल ना आवे, लाहा हर भावै सोए, नानक तिन सच मणंजिया, जिन्ना तुर लिखिया प्राप्त होए, पौड़ी सालाही सच सालाहना, सच सच्चा पुरख निराली, सच सेवी सच मन वसै, सच सच्चा हर रखवाली।

चौथा सतसंगत मह हर पुस्तत है संग साधु मिले प्यारिया वे पुरख प्राणी धन ज्ञान है उपदेश कर है पर उपकारिया हर नाम दृढ़ाव है हर नाम सुनाव है हर नामे जग निस्तारिया गुर वेखण को सब कोई लोचै नवखंड जगत नमस्कारिया तुद आपे आप रखिया सतगुर विच गुर आपे तुद सवारिया तू आपे पूज है पूज कराव है सतगुर को सिरजन हारिया कोई विछड़ जाए सतगुरु पासो तिस काला मुह जम मारिया तिस अग्गै पिछै ढोई नाही।

नानक के गुरसिख पुत हो हर जपे हो हर निस्तारिया महला तीजा हो मैं जगत पलाया दुर्मत बिख्या बेकार सतगुरु मिले ता नदर होए मनमुख अंध अंधियार नानक आपे मेल लय जिसनों शब्द लाए प्यार पौड़ी सच सच्चे की सिफत सलाह है सो करे जिस अंदर भिजै जिन्नी एक मन एक अराध्या तिनका कंध न कबहू सिजै तन तन पुरख साबास है जिन सच रसना अमृत पिजै सच सच्चा जिन मन भामदा से मन सच्ची दरगाह लिजै तन तन जन्म सचियारिया मुख उज्जल सच करिजै सलोक महला चौथा साकत जाए निवह गुरे आगे मन खोटे कूड़ कूड़ आरे जा गुर कह उठो मेरे भाई बह जाहे कुसर बगलारे गुरसिखा अंदर सतगुर वरत चुन कडे लद्दो वारे कोई अगे पिछे बह मुह सुपाइन ना रलनी खोटे आरे ओना दा भख सो ओथे नाही जाए कूड़ लहन पे डारे जे साकत नर खवाई है लोची है बिख कड्डे मुख उगलारे हर साकत सेती संग ना करियो हो उए मारे सिरजन हारे जिसका एहो खेल सोई कर वेखे जन नानक नाम समारे महला चौथा सतगुर पुरख अगम है जिस अंदर हर उर तारिया सतगुरु नो अपड़ कोई ना सकई जिस वल सिरजन हारिया सतगुरु का खड़ग संजो हर भगत है जित काल कंटक मार वडारिया सतगुरु का रखन हारा हर आप है सतगुरु के पिछे हर सब उभारिया जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का सो आप उपावन हारे मारिया यही गल हुआ हर दरगाह सच्चे की जन नानक अगम बिचारिया पौड़ी सच सुत्या जिन्नी अराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जोग मह जानी है जो गुरमुख सच रवे हौ बलिहारी तिनको जे अन दिन सच लवे जिन मन तन सच्चा भामदा से सच्ची दरगाह गवे जन नानक बोले सच नाम सच सच्चा सदा नवे सलोक महला चौथा क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते परवान जिन्ना सास ग्रास ना विसरे से पूरे पुरख प्रधान करमी सतगुर पाई है अन दिन लगे ध्यान तिनकी संगत मिल रहा दरगाह पाई मान सौंदे वाहो वाहो उच्च रह उठदे पी वाहो करेन नानक ते मुख उजले जे नित उठ संभालेन महला चौथा सतगुर सेविया अपना पाईए नाम अपार भौजल डुबदियां कढ लए।

माया धारी अत अन्ना बोला शब्द ना सुनी बहु रोल कचोला गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मन्ने हर नाम समाए जो तिस भावै सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया पौड़ी तू करता सब किस जानदा जो जिया अंदर वरतै तू करता आप अगणत है सब जग विच गणत है सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बनत है तू घट घट एक वरतदा सच साहिब चलत है सतगुरु नू मिले सो हर मिले नाही किसे परत है सलोक महला चौथा एह मनुआ दृढ़ कर रखी है गुरमुख लाइए चित क्यों सास ग्रास वसारी है बहंदिया उठदिया नित मरण जीवन की चिंता गई एह जियड़ा हर प्रभ वस ज्यों भावै त्यों रख तू जन नानक नाम बखश महला तीजा मनमुख अहंकारी महल ना जाने खिन आगे खिन पीछे सदा बलाइए महल ना आवे क्यों कर दरगाह सीजै।

जित सतगुर का मन मन्ने, जहां सतगुर का मन मन्या ता पाप कसम्मल पन्ने, अपदेश जे दिता सतगुरु सो सुनिया सिखी कन्ने, जिन सतगुर का पाणा मन्या तिन चढ़ी चवगण वन्ने, एह चाल नराली गुरमुखी गुर दीखिया सुन मन भिन्ने। सलोक महला तीजा, जिन गुर गोपिया अपना तिस ठौर ना ठाओ, हलत पलत दोवें गए दरगाह नाही थाओ, ओह वेला हथ ना आवई फिर सतगुर लगह पाए, सतगुर की गणत कुसी है दुखे दुख विहाय, सतगुर

दुर्मत अहंकारी अंतर क्रोध जुए मातहारी कूड़ कसात ओह पाप कमावे क्या ओह सुने क्या आख सुनावे अन्ना बोला खोए उजड़ पाए मनमुख अंधा आवे जाए बिन सतगुर भेटे थाए ना पाए नानक पूर्व लिखिया कमाए पौड़ी जिनके चित कठोर है से बह ना सतगुर पास उत सच वरतदा कूड़े आरा चित उदास ओए वल छल कर झत कढ दे फिर जाए बह कूड़े आरा पास विच सच्चे कूड़ ना गड़े मन वेखो को निरजास कूड़े आर कूड़े आरी जाए रले सच्यार सिख बैठे सतगुर पास। सलोक महला पंजवा रहंदे खोंदे निंदक मारियन कर आपे आहर संत सहाई नानका वरतै सब जाहर महला पंजवा मुंडो भुले मुंड ते कितै।

आपे पछताणी अजराइल फरेसता तिन पीड़े कहानी। श्लोक महला पंजवा। सेवक सच्चे शाह के से परवान, दूजा सेवन नानका से पच पच मोए अजान। महला पंजवा। जो तुर लिखिया लेख प्रभ मेटना ना जाए, राम नाम धन वखरो नानक सदा ते आए पौड़ी। पंजवा।

ही पखै सच्चै साहिब मारिया कौन किसनो रखै नानक तिस शरणागति जो पुरख अलखै। श्लोक महला पंजवा नरक घोर बहु दुख घणी किरत घणा का थान तिन प्रभ मारे नानका होए होए मोए हराम महला पंजवा अवखद सबे कीते अन।

संग जुट सलोक महला चौथा तपा न होवै अंदरों लोभी नित माया नू फिरे जज मालिया अगों दे सद्या सतै दी भिखिया ले नाही पिछों दे पछताए कै आण तपै पुत विच बहालिया पंच लोग सब हसन लगे।

गुमान कर है मूड गुमानिया विस खादी मरिये आए लगे नी देह थोड़े ज्यो पक्का खेत लुनिये जेहे कर्म कमाम दे तेवे हो पणिये जन नानक का खसम वड्डा है सबना दा तनिये सलोक महला चौथा मनमुख मूलों भुलिया विच लभ लोभ अहंकार झगड़ा करदिया अन दिन गुदरे शब्द ना करहै विचार शुद्ध मत करतै सब हिर लई।

कम कराई सो जंत महा दुख पावे पौड़ी तू सच्चा साहिब अत वड्डा तुहे जेवड़ तू वड वड्डे जिस तू मिल है सो तुद मिले तू आपे बख्श लह लेखा छड़े जिसनो तू आप मलाएंदा सो सतगुर सेवे मन गड गड़े तू सच्चा साहिब सच तू सब जियो पिंड चम तेरा हड्डे ज्यो भावै त्यों रख तू सच्चिया नानक मन आस तेरी वड वड्डे सुध गौड़ी की वार महला पंजवां राय कमाल दी मौजदी की वार की धुन उपर।

थान थनंतर रावर हया जी अंदर जाना साध संग मिल पाई है मन सच्चे पाना नानक प्रभ शरणागती साध साध कुर्बाना। श्लोक महला पंजवा चेताई ता चेत साहिब सच्चा सो धणी।

मुखी उजन सदा सुखी नानक सिमरत एक पौड़ी उथ अमृत वंडी है सुखिया हर करने जम कै पंथ ना पाई है फिर नाही मरने जिसनो आया प्रेम रस तिसे ही जरने बाणी उचर है साध जन हम्यो चल है चरने पेख दर्शन नानक जीविया मन अंदर तरने सलोक महला पंजवा सतगुर पूरै सेवै दुखां का होए नाश नानक नाम अरादै कारज आवै रात महला पंजवा जित सिमरत संकट छुटै है आनंद मंगल बिचराम नानक जपियै सदा हर निमक न बिसरो नाम पौड़ी तिनकी शोभा क्या गणी।

पार ब्रह्म हर पड़ बुझ समधा नानक पाया सो धनी हर अगम अगद्दा सलोक महला पंजवा कामना करे ही अपना फिरह अवत्ता लोए नानक नाए वसारे है, सुख कनेहा हुए महला पंजवा बिखै कुड़तन सगल माहे जगत रही लपटाए नानक जन विचारिया मीठा हर का नाउ पौड़ी एह निशानी साध की जिस भेटत तरिय जम कंकर नेड़ ना आवई फिर बहुड़ ना मरिय भव सागर संसार बिख सो पार उतरिय हर गुण गुम्फो मन माल हर सब मल पर हरिय नानक प्रीतम मिल रहे पार ब्रह्म नर हरिय तलोक महला पंजवा नानक आए से परवान है जिन हर गुठा चित डाली अल पलालिया कम ना आवह मित महला पंजवा पार ब्रह्म प्रभ दृष्टि आया पूर्ण अग

होए भगुत्ते करतब करन पलेरिया मद माया सुत्ते फिर जून पवाईयन जम मार्ग मुत्ते कीता पायन अपना दुख सेती जुत्ते नानक नाए वसारे है सब मंदिर उत्ते। सलोक महला पंजवा उठंदियां बहंदियां सवंदियां सुख सोए नानक नाम सलाह है मन तन शीतल होए। महला पंजवा लालच अटिया नित फिरै स्वार्थ करे ना कोए जिस गुर

जो जा चंडी हेकड़ो गाली ब्या विकार नानक धनी मिहूणिया महला पंजवा नीह जे विद्या मन पछाणु विरलो थियो जोड़न हारा संत नानक पादर पदरो पौड़ी सोई सेव हो जियड़ी दाता बख्शिंद किल विख सब बनास होन सिमरत गोविंद हर मार्ग साधु दस्या जपिय गुरमंत माया स्वाद सब फिक्किया

एक जिस तुस देवे आप जित खादे मन तृप्ति है नानक साहिब दात पौड़ी लाहा जग मैं से खट है जिन हर धन रास दुतिया भाव न जाननी सच्चे दी आस निश्चल एक सरेविया होर सब विनाश पार ब्रह्म जिस विसरै तिस बिरथा सास कंठ लाए जन रखिया नानक बल जास। श्लोक महला पंजवा। पार ब्रह्म फरमाया मीह उठा सहज सपाए तन तन बहुत उपजिया रिथमी रजी तिप्त अगहाय सदा सदा गुण उच्चरै दुख दालद गया बिलाय पूर्व लिखिया पाया मिलिया तिसै रजाय परमेश्वर जी वालिया नानक तिसै त्याय। महला पंजवा। जीवन पद निर्वाण।

ज्ञान रंग रूप रस बाद के करह परानिया जिस पलाए आप तिस कल नहीं जानिया रंग रते निर्वाण सच्चा गावही नानक सरन द्वार जे तुद पावही पौड़ी जम्मन मरन ना तिनको जो हर लड़ लागे जीवत से परवान हुए हर कीर्तन जागे साध संग जिन पाया से वड भागे नाए विसरिया त्रिग जीवना टूटे कच धागे नानक धूड़ पनीत साध लख कोट पिरागे।

जह दिशा जल पर्वत बन राए, जिथे दिठा मृत को तिल बेठी आए। पौड़ी जिस सर्व सुखा फल लोड़ी है, सो सच कमावो नेड़े देखो पार ब्रह्म। एक नाम त्यावो

सारी पौड़ी रसना उचरै हर श्रवणी सुने सो उधरै मित्ता हर जस लिखें लाए भावनी से हस्त पविता अठ सठ तीर्थ मजना सब पुन तिन किता संसार सागर ते उधरे बिख्या गढ़ जिता नानक ला।

तन फुटन जिन्ना साहि विसरै महला पंजवां प्रेतोह की तुन देवता तिन करनै हारे सबे सिख उभारियन प्रभ काज सवारे निंदक पकड़ पछाड़ियन झूठे दरबारे नानक का प्रभ वड्डा है।

तू तरवर हो पंखी आहे, मंद भागी तेरो दर्शन नाहे। तू सतगुर हो नौ तन चेला, कह कबीर मिले अंत की बेला। गौड़ी कबीर जी, जब हम एको एक कर जाने।

बिना रत बहु रूप रचाही, तिनको दया सुपने पी नाही। चार चरण कह बहु आगर, साधु सुख पावह कल सागर। कहो कबीर बहु काय करीजै, सर्बस छोड़ महारस पीजै।

चतराई ना चतर भुज पाई रहाओ। पर हर लोभ अर लोकाचार, पर हर काम क्रोध अहंकार, कर्म करत बदे अहमेव, मिल पाथर की कर ही सेव। रहो कबीर भगत कर पाया, भोले पाए मिले रघुराया। गौड़ी कबीर जी गर्भवास मह कुल नहीं जाती, ब्रह्म बिंद ते सब उत्पाती। कहो रे पंडित बामन कब के हुए, बामन कह कह जन्म मत खोए रहा। जौ तू ब्राह्मण ब्राह्मणी जाया, तो आन बाट काहे नहीं आया। तुम कत ब्राह्मण, हम कत सूद, हम कत लोहू, तुम कत दूध। कहो कबीर जो ब्रह्म बीचार है, सो ब्राह्मण कहियत है हमारे। गौड़ी कबीर जी अंधकार सुख कबह ना सोई है, राजा रंक दो मिल रोई है। जौ पै रसना राम ना कहबो, उपजत बिनसत रोवत रहबो रहाओ। जस देखी है तरवर की छाया, प्राण गए कहो कां की माया। जस जंती

इस परचाए परच रहो एस गौड़ी कबीर जी। जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना, ना जाना बैकुंठ कहां ही, जान जान सब कह तहां ही रहाओ, कहन कहावन नह पति आई है, तो मन माने जाते हो मैं जई है, जब लग मन बैकुंठ की आस, तब लग हुए नहीं चरण निवास, कहो कबीर एह कही है काहे, साध संगत बैकुंठ आहे, गौड़ी कबीर जी, उपजै निपजै निपज समा

तौ की जय जो आपन जी जय। मैं ना मरूं मरबो संसारा, अब मोहे मिलियो है जे आवनहारा रहाओ। या देही परमल महकंदा, ता सुख बिसरे परमानंदा। कुवटा एक पंच पनिहारी, टूटी लाज परे मत हारी। कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, ना ओह कुवटा ना पनिहारी। गौड़ी कबीर जी अस्थावर जंगम कीट पतंगा, अनक जन्म किए बहुरंगा। ऐसे घर हम बहुत बसाए, जब हम राम गर्भ होए आए रहाओ। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, कबहू राजा छत्रपत कबहू पेखारी। साकत मर है संत सब जीव है।

पंच पदे ज्यो जल छोड़ बाहर भयो मीना पूर्व जन्म हो तप काहीना अब कहो राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म शिवपुरी गवाया मरती बार मगहर उठ आया बहुत बरस तप किया कांसी मरन भया मगहर की बासी कांसी मगहर

सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंधा सत राम झूठा सब धंधा गौड़ी कबीर जी तिपदे चार तुके जमते उल्ट भये है राम दुख बिन से सुख कियो विश्राम बैरी उल्ट भये है मीता साकत उल्ट सुजन भये चीता अब मोहे सर्ब

गौड़ी कबीर जी कत नहीं ठौर मूल कत लावूं खोजत तन मह ठौर ना पावूं लागी होए सो जाने पीर राम भगत अनियाले तीर रहाऊ एक भाई देखो सब नारी क्या जानो सह कौन प्यारी कहो कबीर जाके मस्तक भाग सब पर हर ताको मिले सुहाग गौड़ी कबीर जी जाके हरसा ठाकुर पाई मुक्त अनंत।

कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी, क्या बस जो बेख दे महतारी। गौड़ी कबीर जी बिन सत सती होए कैसे नार, पंडित देखो हृदय बिचार। प्रीत बिना कैसे बदे स्नेह, जब लग रात तब लग नहीं नेह। रहाओ साहन सत करे जी अपने, चोर मैये को मिले ना सुपने। तन मन तन गृह।

नाव इनकै सद बलिहार है जाओ सो निर्मल निर्मल हर गुण गावे सो भाई मेरे मन पावे रहाओ जिहे कट राम रहया भरपूर तिनकी पग पंकज हम धूर।

मेरी पाठी संच महारस तन भया काठी वाको कहिए सहज मतवारा पीवत राम रस ज्ञान बिचारा रहाउ सहज कलालन जो मिले आई आनंद माते अन दिन जाई चीनत चीत निरंजन लाया कहो कबीर तो अनुभव पाया गौरी कबीर जी मन का सुपहो।

कमन सिद्ध थापी कमन सो मोन जो मन मारे मन को मार कहो किस तारे रहाऊ मन अंतर बोले सब कोई मन मारे बिन भगत ना हुई कहो।

तारा कह कवना राम जपत तन जर की ना जाए राम नाम चित रहे आसमाए रहाओ काको जरै काहे होए हान नटवट खेलै।

कैसे जीवन हुए हमारा, जब ना हुए राम नाम अधारा रहाओ। कहो कबीर खोजो असमान, राम समान ना देखो आन। गौड़ी कबीर जी, जेहे सिर रच रच बांधत पाग, सो सिर चुंच सवार है काग। इस तन तन को क्या

35 राग गौड़ी ग्वार री अष्टपदी कबीर जी की एको ओंकार सतगुरु प्रसाद सुख मांगत दुख आगे आवे सो सुख हमहु ना मांगिया पावे बिछिया अजहु सुरत सुख आसा कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाउ इस सुख ते शिव ब्रह्म डराना सो सुख हमहु साच कर जाना सनकादक नारद मुन सिखा तिन भी तन

जाना, जिस मन को नहीं आवन जाना, जिसका भर्म गया तिन साच पछाना, जिस मन को रूप न रेखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बूझ समाई, इस मन का कोई जाने पियो, एह मन लीन भये सुख देव, जियो एक अर सगल शरीरा, इस मन को राव रहे कबीरा, गौड़ी ग्वार री अहनस एक नाम जो जागे, केतक सिद्ध भये लिव लागे रहाउ, साधक सिद्ध सगल मुनहारी।

ठपी रे जी न लाज लाज तो हे नाही हर तज कत काहू के जाही रहाओ जाको ठाकुर ऊंचा होई सो जन पर कर जात ना सोही सो साहिब रहया भरपूर सदा।

माया तपत बुझिया अंगियार, मन संतोख नाम आधार, जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखों तत अंतर जामी, अपनी भगत आप ही

होई। उठत बैठत सूतक लागे सूतक परै रसोई। हासन की बिद सब को जाने छूतन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचारे सूतक तिन्ह ना।

धारी उपर दुर्मत भांडा फूटा आंधी पाछे जो जल बरखै तेह तेरा जन पीना कह कबीर मन भया परगासा उदय पान जब चीना गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

सतगुरु प्रसाद जीवत पितर ना माने कोहु मुए श्राद्ध कराही पितर भी बपरे कहो क्यों पावे है कौआ कूकर खाही मोको कुशल बतावो कोई कुशल कुशल करते जा।

कहत कबीर अकुल नहीं चेतिया लिखिया स्यों लपटाना गौड़ी जीवत मरै मरै फुन जीवै ऐसे सुन समाया अंजन माहे निरंजन रही है बहुड़ ना पवजल पाया मेरे राम ऐसा खीर बलोई है गुरमत मनुआया स्थिर राखो इन बेद अमृत पियोई है रहाओ गुर कै बाण बजर कल छेदी प्रगटिया पद परगासा सकत अंधेर जेवड़ी भ्रम चूका निहचल शिव घर बासा तिन बिन बाण तनख चढ़ाई एहो जग बेदिया भाई दह दिस बूढ़ी पवन चलावै जोर रही लिवलाई उन मन मनुआ सुन समाना दुबदा दुरमत भागी कहो कबीर अनभव एक देखिया राम नाम लिवलागी गौड़ी बैरागण तिप दे उल्टत पवन चक्कर खट भेदे सुरत सुन अनरागी आवे ना जाए मरे ना जीवे तास खोज बैरागी मेरे मन मन ही उल्ट समाना गुर प्रसाद अकल पही अवरे नातर था बेगाना रहाओ निवरै दूर दूर पुन निवरै।

कहो डडिया बंद है धन खड़ी पाहू घर आए मुकलाऊ आए रहाऊ ओहो जे दिसै खूहड़ी कौन लाज वहारी लाज घड़ी स्यों टूट पड़ी उठ चली पनेहारी साहिब हुए दयाल कृपा करे अपना कार्ज सवारे ता सुहागन जानिए गुर शब्द बीचारे किरत की बांधी सब फिरै

कबीरा गौड़ी जोगी कह है जोग पाल मीठा अवरना दूजा पाई रुंडित मुंडित एक है शब्दी एक है सिद्ध पाई हर बिन परम पलानी अंधा जाप है जाऊं आप छुटकावन ते बांधे बहु

कहे बद हम ही जिसे बुझाए सुई बूझे बिन बूझे क्यों रही है। सतगुरु मिले अंधेरा चूके इन विद मानक लही है। तज बावे दाहने बेकारा हर पद दृढ़ कर।

किस नाही, पांच तात तह नाही, एड़ा पिंगला सुखमन बंदे, ए अवगण कत जाही, तागा टूटा गगन बिनस गया, तेरा बोलत कहां समा।

पिंड तह नाही, रचनहार तह नाही, जोड़नहारू सदा अतीता, एह कहिए किस माही। जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग होए बिनासी, काको ठाकुर काको सेवक, को काहू कह जासी।

रहाउ। खांड ब्रह्मांड मह सिंही मेरा बटुआ, सब जग पसमा धारी, ताड़ी लागी त्रिपल पलटी है, छूटे हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है, जुग जुग सारद साजी, थिर पई तंती टूटस नाही, अनहद किंगरी बाजी, सुन मन मगन पए हैं पूरे, माया डोलना लागी, कहो कबीर ताको पुनरप जन्म नहीं, खेल गयो बैरागी, पौड़ी गाज नाव गाज दास गाज इक्कीस, पुरिया एक तनाई, साठ सूत नव खंड बहत्तर, पाठ लगो अधिकाई, गई बनावन माहो, कर छोड़े जाए जलाहो रहाओ, गजी ना मिनी है तोल ना तुली है, पांचन सेर अढ़ाई, जो कर पांचन बेग ना पावे, चगर करे करहाई, दिन की बैठ खसम की बरकस,

नतर रही उरझाई छोड़ पसार इहां रहो बपुरी कहो कबीर समझाई गौड़ी एक जोत एका मिली किंबा हुए मोहोए जित घट नाम ना उपजे फूट मरे जन सोए सांवल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तो हे रहाओ साध मिले सिद्ध पाई है।

आई गौड़ी जेते जतन करत ते डूबे भाव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम हम बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकुर सो क्यों मनो बिसारियो रे हीरा लाल अमोल जन्म है।

संगानी काष्ट लोह उधारियो रे तावत जोन जन्म भ्रम थाके अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिलत महारस प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हस्तनी मन बौरारे चलत रचियो जगदीश काम सवाए गज बस परे मन बौरारे अंकस सहयो सीस विखै बाच हर्राच समझ मन बौरारे निरपै हुए ना हर भजे मन बौरारे गहयो ना राम जहाज रहाउ मरकट मुष्टि अनाज की मन बौरारे लीनी हाथ पसार छूटन को सहसा परिया मन बौरारे नाच्यो घर घर बार ज्यो नलनी सुअटा गहयो मन बौरारे माया इहो व्यवहार जैसा रंग कुसुंभ का मन बौरारे त्यों पसरियो पासार नावन को तीर्थ कर।

झूठा परपंच जोर चलाया, किन्हूं लाख पांच की जोरी, अंत की बार गगरिया फोरी, कह कबीर एक नीम उसारी, किन मह बिन सजाए अहंकारी गौड़ी, राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे, दीन दयाल परोसे तेरे, सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाउ, जां तिस पावे ता हुक्म मनावे, इस बेड़े को पार लंघावे, गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी, चूक गई फिर आमन जानी, कहो कबीर भज सारग पानी, उरवार पार सब एको दानी, गौड़ी नौवा जोन छाड़ जो जग मह आयो, लागत पवन खसम बिसरायो, जियरा हर के गुना गाओ रहाओ, गर्भ जोन मह उर्द तप करता, तौ जठर अगन मह रहता, लख चौरासी जोन भ्रम आयो, अब के छुटके ठोर ना ठायो, कहो कबीर भज सारग पानी, आवत दिसै जात ना जानी, गौड़ी पूर्वी सुर्ग बास ना बांछी।

गुण गाइय जाते पाइय परम निदान रहाउ। क्या जप क्या तप संयम क्या वर्त क्या स्नान जब लग जुगत ना जानी भाउ भगत भगवान। संपै देख ना हरखीय विपत देख ना रोए ज्यों संपै त्यों विपत है विध निरति आसो होए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मझार सेवक सो सेवा भले जिह घट बसै मरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं खिंच ले जिन पार बिरक बसेरो पंख को

कह रची पीवत मर्दन लाग कह कबीर चित चेतिया राम सिमर बैराग राग गौड़ी पंथ निहारै कामनी लोचन भरी ले।

जीवन पद कारण हर की भगत करी जय एक आधार नाम नारायण हरस नाराम रवि जय राग गौड़ी ग्यारवा आस पास घन तुरसी का बिरवा माज बना रस गाऊं रे वाका स्वरूप देख मोही गुआरन मोको छोड़ ना आऊ ना जाहू रे तो हे चरण मन लागो सारंग धर सो मिले जो बड़ भागो रहाओ बिंद्राबन मन हरन मनोहर कृष्ण।

साधु परम प्रगट हुए नाचो हो या माया के डांडे सूर के सन्मुख रन ते डर पै सती के सांचय भांडे डगमग छाड़ रे मन बौरा अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है लीनो हाथ संधौरा रहाओ काम।

नाम पदार्थ मन बसाइए हृदय शुद्ध जो निंदा हुए हमरे कपरे निंदक धोए निंदा करे सो हमरा मीत निंदक माहे हमारा चीत निंदक सो जो निंदा हो रे हमरा जीवन निंदक लो रे निंदा हमरी प्रेम प्यार निंदा हमरा करे उधार जान कबीर को निंदा सार निंदक डूबा हम उतरे पार राजा राम तू ऐसा निरपहु तरन तारन राम राया रहाऊ जब हम होते तब तुम नाही अब तुम हो हम नाही अब हम तुम एक भये है एक देखत मन पति आही जब बुद्ध होती तब बल कैसा अब बुद्ध बल ना खटाई कह कबीर बुद्ध हर लई मेरी बुद्ध बदली सिद्ध पाई गौड़ी खट नेम कर कोठड़ी बांधी वस्त अनूप बीच पाई कुंजी कुल्फ प्राण कर राखे करते बार ना लाई अब मन जागत रहो रे पाई गाफल होए कै जन्म गवायो चोर मुस्से घर जाई रहाओ पंच पहरुआ दर मह रहते तिनका नहीं पतियारा चेत सुचेत चेत हुए रहो तव लै परगास उजारा नौ कर देख जो कामन भूली वस्त अनूप ना।

जास गुण गाव है तास बस है मोरे प्राणा ना रहाउ। हृदय प्रगास ज्ञान गुर गम्मित गगन मंडल में त्या नाना। विखै रोग पै बंधन भागे मन निज कर सुख जा नाना। एक समत रत जान मान प्रभ दूसर मन है ना आनाना। चंदन बास पय मन बासन त्याग घटियो अभमान हाना। जो जन गाए त्याए जस ठाकुर तास प्रभु है था नाना। तेहे बड भाग बसियो मन जाकै कर्म प्रधान मथा नाना। काट सकत शिव सहज परगासियो एक है एक समानाना। कह कबीर गुर भेट महा सुख भ्रमत रहे मन मानाना।

त्रै सब कछ इन ही माहे ए अखर खिर जाहिंगे ओए अखर इन मह नाहे जहां बोल तह अक्षर आवा जह अबोल तह मन ना रहावा बोल अबोल मद है सोई जस ओह है तस लखै ना कोई।

अद मैं जाना लिख अर मिटे ताहि न माना। ओंकार लखे जो कोई सोई लख मिटना ना होई। कक्का किरण कमल मह पावा सस बगास संपट नहीं आवा। हर जे तहां कुसम रस पावा कह कहां कह का समझावा। खखा एह खोड़ मन आवा खोड़े छाड़ ना दह दिस तावा। खसम जान खिमा कर रह तो हुए निखियो अखै।

ना जाई अगह गह गह गगन रहाई कग्गा घट घट निमसै सोई घट फूटे घट कबह ना होई ता घट माही घाट जो पावा सो घट छाड़ अब घट कत तावा नन्ना निग्रह स्नेहो कर निर्वारो संदेह नाही देखना भाजी है परम स्यानप एह चचा रचत चित्र है भारी।

या तीरा जिन ठग ठगया सगल जग खावा सो ठग ठगया ठहर मन आवा डड्डा डर उपजे डर जाई ता डर मह डर रहे आसमाई जो डर डरे ता फिर डर लागे न डर हुआ डर उर होए भागे टड्डा ढिग ढूंढ कातियाना ढूंढत ही तह गए पराना चढ़ समेर ढूंढ जब आवा जिह गड़ गड़े हो सो गड़ मह पावा।

जाई। तन त्रि भवन मह रहो समाई, जो त्रि भवन तन माहे समावा, तो तत्त है तत् मिलिया सच पावा। थथा अथाहा थाहा नहीं पावा, ओह अथाहा एहो थिर ना रहावा। थोड़े थल थानक आरंभ है, बिन ही थंब है मंदर थंब है। ददा देख जो बिन सनहारा,

बसेरा, अर्दह उर्दह मांज बसेरा, अर्दह चाड उर्द जो आवा, तो अर्दह उर्द मिलिया सुख पावा। नन्ना निस दिन निरखत जाई, निरखत नैन रहे रतवाई। निरखत निरखत जब जाए पावा, तबले निरख है निरख मलावा। पप्पा अपार पार नहीं पावा, परम ज्योत स्यो परचो लावा। पांचो इंद्री निग्रह करी, पाप पुन दो निर्वरी। फफा बिन फूल फल हुई,

बिंद है बिंद ना बिचरन पावा, बंदो होए बंदगी गह, बंदक होए बंद सुदल है, पब्बा भेद है भेद मलावा, अब पवो पान पुरो सौ आवा, जो बाहर सो पीतर जानिया, पया भेद पूपत पहचानिया, मम्मा मूल गहया मन माने, मरमी हुए सो मन को जाने, मत कोई मन मिलता बिल मावे, मगन पयाते सो सच पावे, मम्मा मन स्यों काज है, मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन स्यों कह कबीरा, मन सा मिलिया ना कोई, एहो मन शक्ति एहो मन सीओ।

दुर्मत हन कर बस काया गांव रण रूतो भाजे नहीं सूरो थारो नाव रारा रस निरस कर जानिया होए नरस सो रस पहचानिया ए रस छाडे ओह रस आवा ओह रस पिया ए रस नहीं भावा लल्ला ऐसे लिव मन लावे अनत न जाए परम सच पावे अर जो तहां प्रेम लिव लावे तो अलह लह लह चरण समावे ववा बार बार बिसन समहार बिसन

होए, इहो अर ओहो जब मिले तब मिलत ना जाने कोई। सत्सा सो नीका कर सुध हो, घट परचा की बात नरुद्ध हो। घट परचै जो उपजै पाओ, पूर रहया तह त्रे पवन राओ। खखा खोज परै जो कोई, जो खोजै सो बहुर ना होई। खोज बूझ जो करै बिचारा, तो भवजल तरत ना लावे बारा। सत्सा सो सह सेज सुवारै, सोई सही संदेह निवारै। अल्प सुख छाड परम सुख पावा, तब एह त्री ओह कंत कहावा। हा हा होत हुए नहीं जाना, जब ही हुए तब है मन माना। है तो सही लख जो कोई, तब ओही ओह एहो ना होई। न्यो न्यो करत

छठ खट चक्कर शहू दिस धाय, बिन परचै नहीं फिरा रहाय। दुबदा मेट खिमा गह रहो, कर्म धर्म की सूल ना सहो।

एकादशी एक दिस तावे तो जोनी संकट बहुर ना आवे। शीतल निर्मल भया शरीरा दूर बतावत पाया नीरा। बारस बारह उगवे सूर एनस बाजे अनहद तूर। देखिया तिहूं लोक का पियो अचरज भया जीव ते सियो। तेरस तेरह अगम बखान अर्द उर्द बिच सम पहचान। नीच ऊच नहीं मान अमान व्यापक राम सगल समान। चौदस चौदह लोक मझार रोम रोम मह बसह मरार। सत संतोख का धरहु ध्यान कतनी।

रीत पंच चोर की जाने रीत कर छोड़े बाहर जिन जाए नातर खरार सहराई राय बुधवार बुध करे प्रगास हृदय कमल मह हर का बास गुर मिल दो एक सम धरे उर्द पंकल।

माहि हैनस कसमल तो वह नाहि सो किरत सहारै सो एह ब्रत चढ़ै अन दिन आप आप स्यों लड़ै सुरखी पांचो राखै सबै तो दूजी दृष्ट ना पैसै कवै थावर थिर कर राखै सोई जोत दी वटी घट मह जोए बाहर भीतर भया प्रगास तब हुआ सगल कर्म का नास जब लग घट मह दूजी आन तौ लो महल न लाभ जान रमत राम।

वाहन तारियले। राम कहत जन कस ना तरे रहाउ, तारी ले गन का बिन रूप कुबजा। ब्याज अजामल तारियले, करन बदक जन तेउ मुक्त पए। हौं बाल बाल जिन राम कहे, दासी सुत जन बिदर सुदामा। उगर सैन कौराज दिए।

जी के पदे गौड़ी गुआररी एक ओंकार सतनाम करता पुरख गुर प्रसाद मेरी संगत पोच सोच दिन राती मेरा कर्म कुटिलता जन्म को भांति।

प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा कस देश बदेश ना बूझ ऐसे मेरा मन बिख्या बमोहया कश आरा पार ना सूझ सगल भवन के नायका एक छिन दर्श

रे मोसौ को न कह समझाय जाते आवा गमन बिलाय रहाव बहु विद धर्म निरूपीय करता दिसै सब लोए कवन कर्म ते छूटिय जेह साधे सब सिद्ध होए कर्म अकर्म विचारिय शंका सुन वेद पुराण संसा सद हृदय बसै कौन हिरै अभमान बाहर उदक पखारिय घट भीतर बेबिद बेकार शुद्ध कवन पर होए बो सोच कुंचर बिद व्यवहार रब प्रगास रजनी जथागत जानत सब संसार पारस मानो तांबो छुए कनक होत नहीं बार परम परस गुर भेटी है पूर्व लिखत।

पड़े रिथि सुर जुग जुग बेदा नाले गावन तुदनो मोहनिया मन मोहन सुरग मछ पयाले गावन तुदनो

वह तुद जी जन नानक तिन कुर्बाना हर त्यावह हर त्यावह तुद जी से जन जुग मह सुखवासी से मुक्त भये जिन हर त्याया जियो तिन टूटी जम की पासी जिन निरभउ जिन हर निरभउ त्याया जियो तिन का भउ सब गवासी जिन सेविया मेरा हर जियो ते हर हर रूप समासी ते धन जिन हर त्याया जियो जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी परे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनक अनेक अनंता तेरी अनक करह हर पूजा जी तप तापह जपह बेअंता तेरे अनेक पढ़ह बहु सिमरत शास्त्र जी कर क्रिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो भाव है मेरे हर भगवंता तू आदि पुरख अपरंपर करता जी तुद जेवड़ अवर ना कोई तू जुग जुग एको।

जानोई। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग आसा महला पहला चौपदी कर दूजा सुन वड्डा आखे सब कोई।

रात जिन दिन करकै कीती रात खसम वसार है ते कम जात नानक नावै बाज सनात आसा महला पहला जे दर मांगत कूक करे महली खसम सुने भावै धीरक भावै धक्के।

चित तरे, जा तू करनहार करतार, क्या मोहताजी क्या संसार, आप अपाए आपे दे, आपे दुर्मत मन है करे, गुर प्रसाद वस्सै मन आए, दुख अनेरा विचों जाए, साच प्यारा आप करे, अवरी को साच ना दे, जे किसै देव खाने, नानक आगे पूछ ना ले, आसा महला पहला, ताल मदीरे घट के घाट, दोलक दुनिया वाजह वाज, नारद नाचै कल का पाव, जति सती कह राखह पाव, नानक नाम विटो कुरबान, अंधी दुनिया साहिब जान रहाऊ।

किस दरगाह पावे मान। आसा महला पहला जेता शब्द सुत धुन तेती।

इत रंग नाच हो रख रख पाव पूरे ताल जाने सलाह होर नचना खुशियां मन माह रहाउ सत संतोख वजह दोए ताल पैरी वाजा सदा निहाल राग नाद नहीं दूजा पाव इत रंग नाच हो रख रख पाव।

कहिए सर्ब निरंतर रव रहिया नाल कटंब साथ वरदाता ब्रह्मा पालन सिष्ट गया आग्या अंत न पायो ताका कंस छेद क्या बड़ा भया रतन उपाय तरे खीर मथिया होर पखलाए जे असी किया कह नानक छपै क्यों छपया एकी एकी वंड दिया आसा महला पहला कर्म करतूत बेल बिस्थारी राम नाम फल हुआ तिस रूप नारेख अनाहद वाजै शब्द निरंजन।

ज्योति ज्योत समाणी पीतर ता छोड़े माया के लाहे सर्व ज्योत रूप तेरा देखिया सगल भवन तेरी माया हरारे रूप नरालम बैठा नदर करे विच छाया बिना शब्द वजावे जोगी दर्शन रूप अपारा शब्द अनाहद सो सहोराता

याद जब लग हृदय न आवह याद तौ प्रवाह के ही क्या कीजै जन्म जन्म किस लीजी लीजै रहाउ मन की मत मता गल मता जो किस बोलिए सब खतो खता क्या मुँह लै कीचै अरदास पाप पुन धोए साखी पास जैसा तू करह तैसा को होए तुझ बिन दूजा नाही कोए जे ही तू मत देहे ते ही को पावे तुझे आपे पावे तिमें चलावे राग रतन परिया परवार तिस विच उपजै अमृत सार नानक करते का इहो धन माल जे को बूजै इहो बीचार आसा महला पहला कर कृपा अपने घर आया।

हमरे घर आया जग जीवन पतार रहाव गुरु द्वारे हमरा व्याहो जे हुआ जा सहु मिलिया ता जानिया तेहो लोका हमें शब्द रव्या है आप गया मन मानिया अपना कार्य आप सवारी पूर्ण कार्य ना हुई जित कार्य सत संतोख दया धर्म है गुरमुख बूझे कोई भणत नानक सबना का पिर एको सोई जिसनो नदर करे सा सुहागण होए आसा महला पहला ग्रहो बन समसर सहज सुपाई दुर्मत गत पई कीरत थाई सच पौड़ी साचो मुख नाम सतगुर सेव पाई।

भेख बहु करै दुख बिख्या सुख तन पर हरै काम क्रोध अंतर धन हिरै दुबदा छोड़ नाम निस्तरै सिफत सलाहन।

अंग हर जियो राखो अपनी सरनाई गुर प्रसादी हर रस पाया नाम पदार्थ नौ निद पाई रहाओ कर्म धर्म सच साचा नाओ ता कै सद बलिहारे जाओ जो हर राते से जन परवान तिनकी संगत परम निदान हर वार जिन पाया धन।

खेल गुरमुख निर्मल रह प्यारी ज्यों जल अंब ऊपर कमल निरारी बुरा भला कहो किसनों कहिए दिसै ब्रह्म गुरमुख सच लही है।

उपेद अठसठ मज्जन हर सरेद गुरमुख निर्मल मैल न लागे नानक हिरदय नाम वड्डे तुर भागे आसा महला पहला निव निव पाई लगो गुरे अपने आत्म राम निहारिया करत बिचार हिरदय हर रविया हिरदय देख बिचारिया बोलो राम करे निस्तारा गुर प्रसाद रतन हर लाभ है मिटे अज्ञान हुए उजियारा रहाउ रवनी रवे बंधन नहीं टूटे है विच हों मैं भरम ना जाई सतगुर मिले ता हों मैं टूटे ता को लेखे पाई हर हर नाम भगत प्रिय प्रीतम सुख सागर उर तारे भगत वछल जग जीवन दाता मत गुरमत हर निस्तारी मन स्यों जूझ मरे प्रभ पाई मनसा मन है समाई नानक कृपा करी जग जीवन सहज भाई लिवलाई आसा महला पहला किसको कह सुनावे है किसको किस समझावे है समझ रहे किसे पढ़ावे है पढ़ गुण बूझे सतगुर शब्द संतोख रहे ऐसा गुरमत रमत शरीरा हर भज मेरे मन गहर गंभीरा रहाउ अनत तरंग भगत हर रंगा अनदिन सूचे हर गुण संगा मिथ्या जन्म साकत संसारा राम भगत जन रह निरारा सूची काया हर गुण गाया आत्म चीन रह लिवलाया आद अपार अपार।

ग्रास ग्रास एहलस अंदले दीपक दे पाव जल डूबत चिंत करे कह सुनह जो मानह नाऊ हौ बलिहारे तां कह जाऊ नानक एक कह अरदास जियो पिंड सब तेरे पास जा तू देह जपी तेरा नाऊ दरगाह बैसन होए थाऊ जा तुद भावे तां दुरमत जाए ज्ञान रतन मन वसै आए नदर करे ता सतगुर मिले प्रणवत नानक पव जल तरे आसा महला पहला पंच पदी दुध बिन तीन पंख बिन पंखी जल बिन उत्पुज काम नाही क्या सुल्तान सलाम विहूना अंधी कोठी तेरा नाम नाही की विसरह दुख बहुता लागे दुख लागे तू विसर नाही रहाऊ अखी अंध जीव रस नाही कन्नी पवन ना वाजे चरनी चले पजूता आगे विण सेवा फल लागे अखर बिरख बाग भोए चोखी

सो प्रगट जाई, सच निशान है ठाक न पाई। पंडित पढ़े बखान है वेद, अंतर वसत न जान है भेद। गुरबिन सोजी बूझ ना हुए, साचा रव रहिया प्रभ सोय। क्या हौ आखा आख बखानी, तू आपे जान है सर्ब वडाणी। नानक एको दर दीवान, गुरमुख साच तहां गुदरान। आसा महला पहला, काची गागर देहे दोहेली। उपजै बिरसै दुख पाई, यो जग सागर दुत्तर क्यों तरियै। बिन हर गुर पार न पाई, तुझ बिन अवर ना कोई मेरे प्यारे। तुझ बिन अवर ना कोई हरे, सर्बी रंगी रूपी तू है। जिस बख्शे जिस नदर करे रहाओ, सास बुरी घर वास ना देवे। फिर स्यों मिलन ना दे बुरी, सखी साजनी के हों चरण सरेवो। हर गुर कृपा ते नदर धरी, आप विचार मार मन देखिया। तुम सा मीत ना अवर कोई, ज्यों तू राख है तिव ही रहना। दुख सुख देव है करह सोई, आसा मनसा धूब नासक। त्रिहो गुण आस नरास पई, तुरी अवस्था गुरमुख पाई है। संत सभा की ओट लही, ज्ञान ध्यान सगले सब जप तप। जिस हर हृदय अलख अपेवा, नानक राम नाम मन राता। गुरमत पाई सहज सेवा, आसा महला पहला पंच पदी।

सच नाम जा नव निध पाई रोवै पूत न कलपै माई एत मोहे डूबा संसार गुरमुख कोई उतरै पार एत मोहे फिर जूनी पाहे मोहे लागा जम पुर जाहे गुर दीखिया ले जप तप कमाहे ना मोह टूटै ना थाए पाहे नदर करे ता एहो मोह जाए नानक हर स्यों रह समाए आसा महला पहला आप करे सच अलख अपार हों पापी तू बख्शन हार तेरा भाणा सब किछ होवै मन हथ कीचै अंत वगोवै रहाउ मन मुख की मत कूड़ व्यापी बिन हर सिमरन पाप संतापी दुर्मत त्याग लाहा किछ लेवो जो उपजै सो अलख अपेवो ऐसा हमरा सखा सहाई गुर हर मिलिया भगत दिरडाई सगली सौदी तोटा आवै नानक राम नाम मन भावै आसा महला पहला चौपदे विद्या विचारी ता पर उपकारी जा पंच रासी ता तीर्थवासी घुंगरू वाजै जे मन लागै तौ जम कहां करे मोस्यों आगै रहाउ आस नरासी तौ सन्यासी जा जत जोगी ता काया भोगी

मेरा सहो जागे हों निस भर सोवा क्यों क्यों कंत प्यारी होवा। सहो जागे हों निस भर सोवा रहाव आस प्यासी सीजै आवा आगे।

तेरा आधार गंग बनारस सिफत तुम्हारी नावै आत्म राव सच्चा नावण तां फीऐ जां एनस लागै भाव इक लोकी होर समचरी ब्राह्मण वट पिंड खाए नानक पिंड बख्शीस का कबहू न खूटस नाहे आसा घर चौथा महला पहला।

हाव धर कर महला हस्ती घोड़े छोड़ वलायत देश गए पीर पे कांबर सालक सादिक छोड़ी दुनिया थाए पए साध सहज सुख रस कस तजियले कापड़ छोड़े चमड़ लिए दुखिए दर्द वंद दर तेरे नाम रते दरवेश पए खलड़ी खपरी लकड़ी चमड़ी सिखा सूत धोती कीनी तू साहिब हो सांगी तेरा प्रणवै नानक जात कैसी आसा घर पंजवा महला पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद पीतर पंच गुप्त मन वासी थिर ना रह जैसे भवह उदासी मन मेरा दयाल सेती थिर ना रह लोभी कपटी पापी पाखंडी माया अधिक लगे रहाव फूल माला गल पहरूंगी हारू मिलेगा प्रीतम तब करूंगी शिंगारू पंच सखी हम एक पतारू पेड़ लगी है जियड़ा चालन हारू पंच सखी मिल रुद

मह मुंदरा खिंता खिमा हंडावू जो किस करे भला कर मानू सहज जोग निद पावू बाबा जुगता जियो जुग है जुग जोगी परम

अगली ज्योत हमारी समया नाना वर्ण अनेकं कहो नानक सुन परथर जोगी पार ब्रह्म लिव एकं। आसा महला पहला गुड़ कर ज्ञान ध्यान कर तावै कर करनी कस पाई पाठी भवन प्रेम का पोचा इतरस अम्यो चवाई बाबा मन मतवारू नाम रस पीवै सहज रंग रच रहिया एनस बनी प्रेम लिव लागी शब्द अनाहद गहियारा।

कोई गुर के दर्शन सदा सुख होए। गुर के दर्शन मोख द्वार, सतगुर सेवै परवार साधार। नुगुरे को गत काई नाही, अवगुण मुठे चोटा खाही। गुर के शब्द सुख शांत शरीर, गुरमुखता को लगे ना पीर। जम काल किस नेड़ ना आवै, नानक गुरमुख साच समावै। आसा महला तीजा, शब्द मुआ विचों आप गुआए। सतगुर सेवे तिल ना तमाए, निरपहु दाता सदा मन हुए। सच्ची बाणी पाए भाग कोई।

पाए, हर की मत किन बिद होए, हर अपरम पर अगम अगोचर, गुर कै शब्द मिले जन कोए रहाओ, गुरमुख कीमत जाने कोए, विरले कर्म प्राप्त होए, ऊंची बाणी ऊंचा होए, गुरमुख शब्द बखाने कोए, विणनावे दुख दर्द शरीर, सतगुर भेटे ता उतरे पीर, बिन गुर भेटे दुख कमाए, मनमुख बहुती मिले सजाए, हर का नाम मीठा अतरस होए, पीवत रह पियाए सोए, गुर कृपा ते हर रस पाए, नानक नाम रते गत पाए, आसा महला तीजा, मेरा प्रभ साचा गहर गंभीर, सेवत ही सुख शांत शरीर, शब्द तरे जन सहज सुपाए, किनकै हम सद लागह पाए, जो मन राते हर रंग लाए, तिनका जन्म मरण दुख लाथा, ते हर दरगहा मिले सुपाए रहाओ, शब्द चाकै साचा साध पाए, हर का नाम मन वसाए, हर प्रभ सदा रहया भरपूर, आपे नेड़ै आपे दूर, आखण आखै बकै सब कोए, आपे बख्श मलाए सोए, कहने कथन ना पाया जाए, गुर प्रसाद वसै मन आए, गुरमुख विचों आप गवाए, हर रंग राते मोह चुकाए, अत निर्मल गुर शब्द विचार, नानक नाम सुवारन हार, आसा महला तीजा, दूजै पाए लगे दुख पाया, बिन शब्दै बिरता जन्म गवाया, सतगुर सेवै सूजी।

सुख पाए, संत संगत मेल हर गुण गाए, नामे नाम करे विचार, आप तरह कुल उधरनहार, गुर की बाणी नाम बजाए, नानक महल शब्द कर पाए, गुरमत सत सर हर जल नाया, दुरमत महल सब दुरत गुआया, आसा महला तीजा, मनमुख मर है मर मरन बगाड़ है, दूजे भाए आत्म संघार है, मेरा मेरा कर कर विभूता, आत्म ना चीन है पर मैं विच सूता, मर मुया शब्दे मर जाए, उस्तत निंदा गुर समझण आई, इस युग में है लाहा हर जप लै जाए, रहाउ नाम मिहून गर्भ गल जाए, बिरथा जन्म दूजे लो भाई, नाम मिहूनी दुख जलै सबाई, सतगुर पूरै बूझ बुझाई, मन चंचल बहु चोटा खाए, इथों छुड़किया खौर ना पाए, गर्भ जोन विस्टा का वास, तिथ घर मनमुख करे निवास, अपने सतगुर को सदा बल जाई, गुरमुख ज्योति ज्योत मलाई, निर्मल बाणी निज घर वासा।

सोग हरक दोए सम कर जाने, गुर प्रसादी शब्द उधर रहाउ, करनी कार तुरहु फरमाई, बिन शब्द को थाए ना पाई, करनी कीर्त नाम वसाई, आपे देवे ढिल ना पाई, मनमुख परम भुले संसार, बिन रासी कूड़ा करे व्यापार, बिन रासी वखर पल्ले ना पाई, मनमुख भुला जन्म गवाई।

पाखंड वकार रहाउ, सदा सुहागण जो प्रभ पावे, गुर शब्दी सिंगार बनावे, सेज सुखाली अन दिन हर रावे, मिल प्रीतम सदा सुख पावे, सा सुहागण साची जिस साच प्यार, अपना पिर राखे सदा उर तार, नेड़े वेखे सदा हदूर।

नानक साच संभावै सोई आसा महला तीजा भगत रत्ता जन सहज सुपाई गुर कै भै साचै साच समाई बिन गुर पूरे भगत न होए मन मुख रुन्ने अपनी पत खोए मेरे मन हर जप सदा त्याए सदा आनंद हो।

रुख जाए, ज्ञान रतन साचै सहज समाए, नावै जेवड होर धन नाही कोय, जिसनो बख्शे साचा सोए, पूरै शब्द मन वसाए, नानक नाम रते सुख पाए, आसा महला तीजा, निरत करे बहु वाजे बजाए, इहो मन अंधा बोला है किसे आख सुनाए, अंतर लोभ भरम अनलवाओ, दीवा बलै ना सूझी पाए, गुरमुख भगत घट चानण होए, आप पछाण मिले।

रतन पाया, गुरमुख लादा मन मुख गवाया, तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरियाओ सब तुझी माहे, तुझ

बाजी हारी हमरे हर धड़ा जे हलत पलत सब सुवारी कलयुग मह धड़े पंच चोर चगड़ाए काम क्रोध लोभ मोह अभमान वधाए जिसनों कृपा करे तिस सत संग मलाए हमरा हर धड़ा जिन एह धड़े सब गवाए मिथ्या दूजा पाओ धड़े बह पावे प्राया सिदर अटकले अपना अहंकार वधावे जैसा बीजे तैसा खावे जन नानक का हर धड़ा।

माया मलतारी विण गुण जन्म मुए अहंकारी शरीर सरोवर गुण प्रगट किए नानक गुरमुख मत तत कढ़ी।

गुरमुख परगासा, नाम बिना मैं धर नहीं काई, नाम रविया सब सास ग्रासा रहाओ, नाम मैं सुरत सुनी मन पाई, जो नाम सुनावे सो मेरा मीत सिखाई, नाम हीन गए मूड नंगा, पच पच मुए बिख देख पतंगा, आपे थापे थाप उथापे, नानक नाम देवे हर आपे, आसा महला चौथा, गुरमुख हर हर वेल वधाई, फल लागे हर रस करसाई, हर हर नाम जप अनत तरंगा, जप जप नाम गुरमत सालाही, मारिया काल जम कंकर भुयंगा रहाऊ, हर हर गुरमह भगत रखाई, गुर तुट

अंधा, सब ने फल कर्म किए दुख तंदा, हर हर हर जस जपै वड भागी, नानक गुरमत नाम लिव लागी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद।

अस्तर बैल मन जोग हो हर सिंचो हो गुरमत जेत जोगी जंगम सिष्ट सब तुमरी जो देहो मती तित चेल जन नानक के प्रभ अंतर जामी।

पते आवै, लोक पति ने ना पत होए, जन नानक हर हिरदय सद त्याव हो, ता जय जय करे सब कोए, आसा महला चौथा, सत संगत मिलिए हर साधु, मिल संगत हर गुण गाए, ज्ञान रतन बलिया घट चानन, अज्ञान अंधेरा जाए, हर जन नाच हो हर हर त्याए, ऐसे संत मिलह मेरे पाई, हम जन के तो वह पाए रहाओ, हर हर नाम जप हो मन मेरे, अन दिन हर लिब लाए, जो इच्छो हो सोई फल पाव हो, फिर भूख ना लागे आए, आपे हर अपरंपर करता, हर आपे बोल बुलाए, से संत भले तुद पावे है, जिनकी पत पावे है थाए, नानक आख नाराजे हर गुण, ज्यों आखे त्यों सुख पाए, भगत भंडार दिए हरे अपने, गुण गाहक वणज लै जाए, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा कर अठवा की काफी महला चौथा, आया मन तुरा हो हम मैं रोई है, गुरमुख नाम ते आए अस्थिर हुई है, गुरपूरे साबास चलन जानिया, लाहा नाम सो सार शब्द समाणिया रहाओ, पूर्व लिखे देहे से आए माया, चलन आज के काल तुरहों फुरमाया, बिरथा जन्म तिना जिन्नी नाम वसारिया, जुए खेलन जग के इहो मन हारिया, जीवन मरण सुख होए जिन्ना गुर पाया, नानक सच्चे सच सच समाया, आसा महला चौथा, जन्म पदार्थ पाए नाम ते आया, गुर प्रसादी भुज सच समाया, जिन तुर लिखिया लेख तिनी नाम कमाया, दर सच्चे सत्यार महल बुलाया रहाओ, अंतर नाम निदान गुरमुख पाईऐ, अन दिन नाम त्याए हर गुण गाईऐ, अंतर वस्त अनेक मनमुख नहीं पाईऐ, हम मैं गर्भ गर्भ आप खुआईऐ, नानक आपे आप खुआईऐ, गुरमत मन परगास सच्चा पाईऐ, राग असावरी कर सोलवा के दो महला चौथा सोधंग, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हम अन दिन हर नाम कीर्तन करूं, सतगुर मोको हर नाम बताया, हम हर बिन किन पल रह ना सको रहाऊ, हमरे सर्वन सिमरन हर कीर्तन, हम हर बिन रह ना सको हम एक खिन, जैसे हंस सर्वर बिन रह ना सके, तैसे हर जन क्यों

हर जन प्रीत लाई हर निर्वाण पद नानक सिमरत हर हर भगवान असावरी महला चौथा माई मोरो प्रीत मराम बताव होरी माई हों हर बिन खिन पल रह ना सकूं जैसे कर हर बेल रिझाई रहाउ हमरा मन बैराग बिरकत भयो हर दर्शन मीत कै ताई जैसे अल कमला बिन रह ना सकै तैसे मोहे हर बिन रहन ना जाई राख सरन जगदी सुर प्यारी मोहे शरदा पूर हर गुसाई जन नानक कै मन आनंद होत है हर दर्शन निमक दिखाई।

पर जन्म ना मरे ना आवे ना जाई हर सेती ओहो रहे सुमाई आसा महला पंजवां निज भगती सी।

वख वख परमावै घर की नायक घर वास ना देवै जतन करूं पुरजाई फरेवै रहाउ तुरकी भेजी।

मेरो सब दुख जो हो आंगन मेरा सोभा चंद निसबासर प्रिय संग आनंद वस्त्र हमारे रंग चलूल सगल आभरण शोभा कंठ फूल प्रिय पेखी दृष्ट पाए सगल निदान दुष्ट दूत की चूकी कान साधु कुचियां।

फिर सुहागन संग पतारी आसा महला पंजवा दान दे कर पूजा करना लैत देत उन्मुख कर परना।

तन ते मन निर्मल हर हर गुण गाए पये आनंद मिल साधु संग अब मेरा मन कत ही ना जाए तपत बुझी गुर शब्दी माए बिनस गयो ताप सब सहसा गुर शीतल मिलियो सहज सुपाए रहाओ धावत रहे एक एक बूझिया आए बसे अब निश्चल थाए जगत उदाहरण संत तुम्हारे दर्शन पेखत रहे अगाए जन्म दुख परे मेरे पाछे अब पकड़े ने

सिर बिसरिया, अपना कीता पावे निंदक रहाओ। जे कोई उसका संगी होवे, नाले लए सदावे, अनहुंदा अजगर भार उठाए।

रहना, मुआ होए तिस निश्चल रहना, जीवत मोए मोए से जीवे, हर हर नाम अवखद मुख पाया, गुर शब्दी रस अमृत पीवे रहाओ, काची मटकी बिनस बनासा, जिस छूटे त्रिकुटी तिस निज घर वासा, ऊंचा चढ़े सो पवे पयाला, तरन पड़े तिस लगे ना काला, प्रमत फिरे तिन किछु ना पाया, से अस्तर जिन गुर शब्द कमाया, जियो पिंड सब हर का माल, नानक गुरमिल भए निहाल, आसा महला पंजवां, पुत्री तेरी बिद कर थाटी, जान सत

के चौपदे एक घड़ी दिन समो को बहुत दिहारी मन ना रह कैसे मिलो प्यारी एक पल दिन समो को कब हो ना बिहावे दर्शन की मन आस कनेरी कोई ऐसा संत मोको पिरह मिलावे रहाओ चार पहर चहो जुगह समाने रैन पई तब अंत ना जाने पंच दूत मिल पिरो विछोड़ी प्रम प्रम रोवे हाथ पछोड़ी।

निदान अमृत सार सदे ही परपूरा रहाओ। चरण कमल हृदय अंतर तारे प्रगटी ज्योत मिले राम प्यारे। पंच सखी मिल मंगल गाया अनहद बाणी नाद बजाया। गुरु नानक तुठा मिलिया हर राई सुख रैन विहानी सहज सुपाई। आसा महला पंजवां कर कृपा हर प्रगटी आया मिल सतगुर धन पूरा पाया। ऐसा हर धन संची है भाई पाए न जल जल नहीं डूबे। संग छोड़ कर कतहु न जाई रहाओ तोट न आवे नखुट न जाई। खाए खर्च मन रहया अगाए सो सच साह जिस घर हर धन संचाना। इस धन ते सब जग वरसाना इन हर धन पाया जिस पुरब लिखे का लहना। जन नानक अंतवार नाम गहना आसा महला पंजवा। जैसे किरसान बोवे किरसानी काची पाकी बाड परानी। जो जन्मे सो जानहु मुआ गोविंद भगत अस्थर है किया रहाउ। दिन ते सर पर पौसी रात रैन गई फिर हुए प्रभात। माया मोहे सोए रहे अपागे गुर प्रसाद को विरला जागे। कहो नानक गुण गाई है नीत मुख उजल हुए निर्मल चीत। आसा महला पंजवां नौ निद तेरह।

पंजवा हर रस छोड़ होशै रस माता घर मह वसत बाहर उठ जाता सुनी ना जाई।

रहाउ त्रिपत अगावन साक्य नाय आठ सठ मज्जन संत तुराय सब मैं जानु करता एक साध संगत मिल बुद्ध विवेक दास सगल का छोड़ अभमान नानक को गुर दीनो दान आसा महला पंजवा बुद्ध परगास पई मत पूरी तांते बिनसी दुरमत दूरी ऐसी गुरमत पाई अले बूढ़त कोर।

हर रस पीवै अलमस्त मतवारा आन रसा सब हो शेरे रहाओ। हर रस की कीमत कही न जाए हर रस साधु हाट समाए लाख करोरी मिले ना केहे।

आद एक ऊत कत छोड़ ना जाए, नानक गीता हर रस माहे। आसा महला पंजवां, काम क्रोध लोभ मोह मिटावे, छुटकै दुरमत अपनी धारी, होए नमाणी सेव कमावह, ता प्रीतम होवह मन प्यारी। सुन सुंदर साधु बचन उधार।

तुम्हारी जो यह मंत्र कमावे नानक सो पौ जल पार उतारी। आसा महला पंजवा धोपदे पई प्राप्त मालुख देवरिया गोविंद मिण की यह तेरी बरिया अवर काज तेरे कितै ना काम मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग पवजल तरण कै जन्म बिरथा जात रंग माया कै रहाउ जप तप संयम धर्म ना कमाया।

आप सहाय गुण निदान नित गावे नानक सहसा दुख मटाई आसा महला पंजवा औखद खायो हर को नाउ सुख पाए दुख बिन सिया थाउ ताप गया बचन गुर पूरे आनंद पया सब मिटे वसूरे रहाउ जी जंत सगल सुख पाया पार ब्रह्म नानक मन त्याया आसा महला पंजवा बांसत नाही सो बेला आई बिन हुक्मै क्यों।

पन्या सदा सदाय आत्म परगास साध संगत हर चरण निवास राम नाम नित जप मन मेरे शीतल शांत सदा सुख पाव है किलविख जाही सबे मन तेरे रहाओ। कहो नानक जाके पूरन कर्म सतगुर भेटे।

अतोली, हर सिमरत नानक पई अमोली। आसा महला पंजवा, काम क्रोध माया मद मत सर, ए खेलत सब जुए हारे। सत संतोख दया धर्म सच, एह अपने ग्रह भीतर वारे। जन्म मरण चूके सब भारे, मिलत संग भयो मन निर्मल।

ग्रह मंदर महला जो दिसह ना कोई संगार। जब लग जीव है कली काल मह जन नानक नाम समार। आसा घर तीजा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। राज मिलख जोगन ग्रह सूबा रूपवंत जो आनी बहुत दरबहस्ती अर घोड़े।

कर कर डूबे खप खप मोए गवारा। गुरमिल नानक नाम त्याया साच नाम निसतारा। राग आसा घर पंजवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। भ्रम मैं सोई सगल जगत धंद अंध को।

जन्म जन्म की मन धोवै पराई अपना कीता पावै इहां सुख नहीं दरगाह ढोई जमपुर जाए पचावै निंदक अहला जन्म गवाया पहुँच ना साकै काहू बातै आगे ठौर ना।

गोविंद भजन की मत है होरा, बरमी मारी साफ ना मरी, नाम ना सुनी डोरा रहाऊ, माया की किरत छोड़ गवाई।

पाया। कूड़ कपट बंच निम नियादा बिनस गया तत्काली। सत सत सत नानक कहया अपने हिरदय देख संभाली। आसा महला पंजवा उदम करत हो ऐ मन निर्मल नाचै आप निवारी। पंच जना ले वसगत राखै मन मह इकंकारी। तेरा जन नृत करे गुण गावै रबाब पखावज ताल कुंगरू अनहद शब्द।

सुनावै कर संग साधु चरण पखारै संत धूर तन लावै मन तन अर्प धरे गुर आगै सत पदार्थ पावै जो जो सुने पेखै लाए श्रद्धा तड़का जन्म मरण दुख भागै।

स्थापित न्याई, बारक ज्यों प्रतपारिया, गुरसिख राखे गुरु गोपाल, काढ लिए महापव जलते, अपनी नदर निहाल रहाउ, जां कै सिमरन जमते छुटिया, हलत पलत सुख पाइया, सास ग्रास जपो जप रसना, नीत नीत गुण गाइया।

मन की होर किस पह आख सुनाइए विण नावै सब जग बोराया नाम मिले सुख पाइए।

मुक्त पाए अंधकूप महा कोरते बाहा पकर गुर काड लिए निरपव पाए सगल पव मिटिया राखे राख नहारे ऐसी दात तेरी प्रभ मेरे कार

आख है जिस जानी ऊपर तेरी कृपा तिसको बेपना को पाख है ओहो सुख ओहा वड्याई जो प्रभ जी मन पानी तू दाना तू सद मेहरवाना नाम मिले रंग माणी।

बहुत तृण जाले कोई हरिया बूट रहे ओरी। ऐसो समरथ वर्णना साको ताकि उपमा जात ना कहोरी। काजर कोठ मह पई ना कारी निर्मल वर्ण बनियोरी। महामंत्र गुर हृदय बसियो अचर्ज नाम सुनियोरी। कर कृपा प्रभ नदर अवलोकन अपने चरण लगाई। प्रेम भगत नानक सुख पाया।

पंजवा दुख कनो जब होते दूर अब मसलत मोहे मिली हदूर चुका ले हो रहा सखी सहेरी परम गया गुर पिर संग मेरी रहाव निकट आन प्रिय सेज धरी कान कड़न ते छूट परी मंदर मेरा शब्द उजारा आनंद बनोदी खसम हमारा मस्तक भाग मैं फिर घर आया।

दीस आवत है बहुत भी हाला, सगल चरण की इहो मन राला, नानक जन गुर पूरा पाया, अंतर बाहर एक दिखाया, आसा महला पंजवा, पावत रलिया जोबन बलिया, नाम बिना माटी संग रलिया, कान कुंडलिया बस्तर उडलिया, सेज सुखलिया मन गर्बलिया, रहाव तलै कुंचरिया सिर कनक छतरिया, हर भगत बिना ले धरन गडलिया, रूप सुंदरिया अनक इस्तरिया, हर रस बिन सब स्वाद फिकरिया, माया छलिया विकार बिखलिया, शरण नानक प्रभ पुरख दयालिया, आसा महला पंजवा, एक बगीचा पेड़ घन करिया, अमृत नाम तहां मह फलिया, ऐसा करहु विचार ज्ञानी, जाते पाईए पद निर्वाणी, आस पास बिखुआ के कुंता, बीच अमृत है पाई रे रहाव, सिंचन हारे एक माली, खबर करत है पात पत डाली, सगल बनस्पतियां जनाई, सगली फूली निफल ना काई, अमृत फल ना

तेरा ओले भ्रम के परदे सतगुरु खोले रहाउ हुक्म बूझ रंग रस माणी सतगुरु सेवा महानिर्वाणी जिन तू जाता सो गिरस्त उदासी परवान नाम रत

बाट काट ज पीजै, गुर प्रसाद हर अमृत पीजै, दिन सरैन हर कीर्तन गाइय, सो जन जम की वाट ना पाइय, आठ पहर जिस विसरह नाही, गत होए नानक तिस लग पाई।

सतगुर अपना सद सदा मनावहु रहाउ। सतगुर का सत शब्द कमावहु, थिर कर बैठे प्रभ अपना पावहु। पर का बुरा

सूत परोई कट कट अंतर रव्या सोई ओपत परलोखिन मैं करता आप अलेपा निर्गुण रहता कर्ण कराम ने अंतर जामी आनंद करे नानक का स्वामी। आसा महला पंजवा कोट जन्म के रहे पवारे दलब देह जीती नहीं हारे किल बिख बनासे दुख दर्द दूर पये पनीत संतन की तूर रहाव प्रभ के संत उदाहरण जोग तिस भेटे।

बिनस्यो मन का मूर्ख तीठा, प्रभु का पाणा लागा मीठा। गुरपूरे के चरण गहे, कोट जन्म के पाप लहे। रतन जन्म एहो सफल पया, कहो नानक प्रभ करी मया। आसा महला पंजवा, सतगुर अपना सद सदा संहारे। गुर के चरण केस संग चारे, जागरे मन जागन हारे। बिना

आपे पेड़ बिस्थारी साख, अपनी खेती आपे राख, जत कत पेखों एकै ओही

भाव खोया, आनंद रूप सब नैन अलोया, आसा महला पंजवा, मुक्त सयानप किशु ना जाना।

हर हर अखर दुए एह माला, जपत जपत भय दीन दयाला, करो बेनती सतगुरे अपनी, कर कृपा राख।

महला पंजवां जिसका सब किस तिसका होए तिस जन लेपना व्यापै कोए हर का सेवक सद ही मुक्ता जो किछ करै सोई भल जन कै आत्मनिर्मल दास की जुगता रहाओ सगल त्याग हर सरणी आया तिस जन कहां व्यापै माया नाम निदान जाके मन माहे तिसको चिंता सुपने नाहे कहो नानक गुर पूरा पाया परम मोह सगल बिनसाया आसा महला पंजवां जो सो प्रसन्न होयो प्रभ मेरा ता दुख भरम।

हर जन छूटे सोए रहे माया मद माती, जागत भगत सिमरत हर राती। रहाउ मोह परम बहु जोन पवाया, अस्थिर भगत हर चरण त्याया। बंधन अंध कूप ग्रह मेरा, मुक्ते संत बुझ है हर नेरा। कहो नानक जो प्रभ सरनाई,

रोवन हार झूठ कमाना, हस हस सोग करत बेगाना, को मुआ काके घर गावन, को रोवे को हस हस पावन रहाव, बाल व्यवस्था ते बिरधाना, पहुंचना मूका फिर पछताना, त्रिहु गुण मह वरतै संसारा, नरक सुर्ग फिर अवतारा, कहो ना

प्रभ खबर ना जानी, भोर भया बहोर पछतानी, प्रिय प्रेम सहज मन आनंद तरहुरी, प्रभ मिलबे की लालसा, तांते आलस कहां करो री रहाओ, कर्म है अमृत आनन सारे, खिसर गयो।

प्रभ अपना होया कृपाल संत प्रसाद भली बनी जाके ग्रह सब किछ है पूरन सो भेटिया निरभय धनी रहाओ नाम दृढ़ाया साध कृपाल मिट गई भूख महा विकराल ठाकुर।

आनंदन मूसा लाज टुकाई गिरत कूप मह खाए मठाई सोचत साचत रैन बयानी अनकरंग माया के चितवत कबहू ना सिमरै सारंग पानी रहाउ द्रुम की छाया निश्चल ग्रह बांधिया काल कै फांस सकत सर सांधिया बालू किनारा तरंग मुख आया सो थान मूड निश्चल कर।

मेला उनके संग हम तुम संग मेल उनके संग तुम सब को लोरे कोस बिना को मुख नहीं जोरे ते बैरागी कहां समाए तिस बिन तुही दोहे रीरी रहाओ उनके संग तू ग्रह महमाहर उनके संग तू होई है जाहर उनके संग तू रखी पपोल उस बिना तू छुटकी रोल उनके संग तेरा मान महत

उस बंधन ना हम बांधे, ना उस तंदा ना हम तांदे, ना उस मैल ना हम कौ मैला, उस आनंद ता हम सद केला, ना उस सोच ना

गर्भ मोह तज हों रेन, उनकै संग देखो प्रभ नैन। निमक निमक एही आराधो, दिन सरहन ए सेवा साधो। भये कृपाल गोपाल गोबिंद, साध संग नानक बख्शिंद। आसा महला पंजवां, प्रभ की प्रीत सदा सुख होए, प्रभ की प्रीत दुख लगे ना।

सगल उधार है, प्रभु की प्रीत चले संगार है, आपो कोई मिले ना भूले, जिस कृपाल तिस सार संग भूले।

संबाहा निकसिया फूक ता हुए गयो स्वाहा। ऊचे मंदर महल अररानी हस्त घोड़े जोड़े मन पानी। वड परवार पूत अरतियां मोहे पचे पच

बाट घाट ग्रह बन बन जो है मन तन लागे होए कै मीठी गुर प्रसाद में खोटी डीठी अगरक उसके वडे ठगाऊ छोड़े नाही बाप ना माऊ मेली अपने उनले बांधे गुर कृपा ते मैं सगले साधे अब मोरे मन भया आनंद पौ चूका टूटे सब फंद कहो नानक जा सतगुर पाया कर सगला मैं सुखी बसाया आसा महला पंजवा आठ पहर निकट कर जाने।

मेरे भाई वाकी महिमा कथन ना जाई रहाओ। वर्तन जाके केवल नाम आनंद रूप कीर्तन विश्राम। मित्र सत्र जाके एक समान प्रभ अपने बिन अवर ना जाने। कोट कोट अग काटन हा।

सब लिखते लेखा, भगत जना कहो दृष्ट ना पेखा, कहो नानक जिस सतगुर पूरा, वाजे ता कै अनहद तूरा, आसा महला पंजवा धुपदा एक, साधु संग सखायो नाम, सर्ब मनोरथ पूर्ण काम, बुझ गई तृष्णा हर जसै अगानी, जप जप जीवा सारग पानी, करन करावन सरन परया, गुर प्रसाद सहज कर पाया, मिटिया अंधेरा चंद चढ़िया रहाओ, लाल जवे हर भरे भंडार, तोट न आवै जप निरंकार, अमृत शब्द पीवै जा

सुख सहज मेरा धन सुहागा, कहो नानक मोरी पूरन आसा, सतगुर मेली प्रभ गुणतासा, आसा महला पंजवां, माथे त्रिकुटी दृष्ट क्रूर, बोले कौड़ा जिहवा की फूड, सदा भूखी पिर जाने दूर, ऐसी स्त्री एक राम अपाई, उन सब जग खाया, हम गुर राखे मेरे पाई रहाव, पाए ठगौली सब जग जोहया, ब्रह्मा विष्णु महादेव मोहया, गुरमुख नाम लगे से सोहया, वर्त नेम कर थाके पुनः चरना, तट तीरथ पवे सब तरना, से उबरे जे सत

वहां पकड़ हम राखा आशा मोहल्ला पंजवा सर्व दुख जब बिसरह स्वामी इहां उहां कामना प्राणी संत तृपता से हर हर त्याए कर कृपा अपने नाए लाए सर्व सुख प्रभ तुमरी रजाए रहाओ संग होवत को जानत दूर सो जन मरता नित नित चूर जिन सब किस दिया तिस चितवत ना।

नाम जपत मन तन सब हरिया, कलमल दुख सगल पर हरिया, सोई दिवस भला मेरे भाई, हर गुण गाए परम गत पाई। रहाओ साध जना के पूजे पैर, मिटे अपद्र है मन ते बैर, गुरपूरे मिल झगर चुकाया, पंच दूत सब वस गत आया, जिस मन वस्या हर का नाम, नानक तिसी ऊपर कुर्बान, आसा मोहल्ला पंजवा, गावले तू गावन हारे, जी पिंड के प्राण आधारे, जाकी सेवा सर्व सुख पाव है, अवर काहू पह बहुड़ ना जाव है, सदा आनंद आनंदी साहिब, गुण निधान नित नित जापी है, बलिहारी तिस संत प्यारी, जिस प्रसाद प्रभ मन वासी है। रहाओ जाका दान न खूटे नाही, पली भांत सब सहज समाही, जाकी बख्श न मेटे कोई, मन वासाई है साचा सोई, सगल समग्री ग्रह जाकै पूरन, प्रभ के सेवक दुख ना चूरन, ओट गही निर्भव पद पाई है, सास सास सो गुण निद गाई है, दूर ना होई कतहू जाई है, नदर करे ता हर हर पाई है, अरदास करी पूरे गुर पास, नानक मंगे हर धन रास। आसा महला पंजवा, प्रथमे मिटिया तन का दुख, मन सगल को हुआ सुख, कर कृपा गुर दीनो नाओ, बल बल तिस सतगुर को जाओ, गुर पूरा पायो मेरे भाई, रोग सोग सब दुख बनासे, सतगुर की शरणाई रहाओ, गुर के चरण हृदय वसाए, मन चिंतत सगले फल पाए।

कै मन बहुत बिगास, जमया पूत भगत गोविंद का, प्रगटया सब मह लिखया तुरका रहा। दसी मासी हुक्म बालक जन्म लिया, मिटिया सोग महा आनंद थिया, गुरबाणी सक

मेरा जियो पिंड सब तिसदा सब किश है तेरा मान माने तू धनी तेरा परवासा बिन साचे अनटेक है सो जानहु काचा रहाउ तेरा हुक्म अपार है कोई अंत ना पाए जिस गुर पूरा भेट सी सो चले रजाए चतुराई सियाणपा कितै काम ना आई है टुठा साहिब जो देवै सोई सुख पाई है जे लख कर्म कमाई है किश पवै ना बंदा जन नानक कीता नाम धर होर छोड़िया धंधा आसा महला पंजवा सर्व सुखा मैं पालिया हर जीवड़ ना कोई गुर पुठे ते पाई है सच साहिब सोई बलिहारी गुर अपने सद सद कुरबाना नाम ना विसरो एक खिन चसा एहो कीजै दाना रहाउ भागट सच्चा सोए है जिस हर धन अंतर सो छूटै महाजाल ते जिस गुर शब्द निरंतर गुर की महिमा क्या कहां गुर विवेक सत सर ओहो आदि जुगादि जुगह जुग पूरा परमेश्वर नाम त्यागो सद सदा हर हर मन रंगे।

पंजवा लाख भगत आराध्य है जप ते पियो पियो कवन जुगत मलावो निर्गुण बिखे जियो तेरी तेख गोविंद गोपाल दयाल प्रभ तू सबना के नाथ तेरी श्रेष्ठ सब रहाओ सदा सहाई संत पेख है सदा हजूर नाम बिहू नड़िया से मरन वसूर वसूर दास दास तन पाए मिटिया तिना गौण विसरिया जिन्ना नाम तनाड़ा हाल कौन जैसे पास हरियाओ

संग भेटिया सुख पाया जन प्रसाद दुख सब मेटिया रहाओ जेते खंड ब्रह्मांड उधारे तिनखे

साहा साह नानक की लोचा पूर सच्चे पातशाह आसा महला पंजवा पूर रहया सब ठाए हमारा खसम सोए एक साहिब सिर सत दूजा नाही कोई ज्यों पावे त्यों राख राखण हारिया तुझ बिने अबर ना कोई नदर निहारिया रहाउ प्रतपाले प्रभे आप घट घट सारी है जिस मन बुठा आप तिस ना वसारी है जो कुछ करे सो आप आपन पाणिया भगतां का सहाई जुग जुग जानिया जप जप हर का नाम कदे ना झूरी है।

हर कीर्तन आधार निश्चले हो तनो जेते माया रंग तेत पछावया सुख का नाम निदान गुरमुख गावया सच्चा गुणी निदान तू प्रभ गहर गंभीरे आस भरोसा खसम का नानक के जियरे आसा महला पंजवा जिस सिमरत दुख जाए सहज सुख पाई है रैन दिन सकर जोड़ हर हर त्याई है नानक का प्रभ सोए जिसका सब कोई सर्व रहया भरपूर सच्चा।

सगल रोग राखन हार अपार राखै अग्न माहे शीतल हर हर नाम सिमरत तपत जाए सुख सहज आनंद घणा नानक जन धूरा कार्य सगले सिद्ध भए

हर रंग माणीय आवहो संत मलाह हर कथा कहानियां अन दिन सिमरहै नाम तज लाज लुकानियां रहाउ जप जप जीवा नाम होवै आनंद घना मिथ्या मोह संसार झूठा विनसना चरण कमल संग नेहो किने विरले लाया धन सुहावा मुख जिन हर त्याया जन्म मरण दुख काल सिमरत मिट जावई नानक कै सुख सोए जो प्रभ पावई आसा महला पंजवा आवहो मीत इकत्तर होए रस कास सब पुंच है अमृत नाम हर हर जप है।

भाव कर तो निद हर पावो सगली दासी ठाकुर सब कहती मेरा जिसह सिंगारे नानका तिस सुख बसेरा आसा मोहल्ला पंजवा संतां की होए दासरी।

हर नाम मजीठै रंगरी त्याग सियाणप चातुरी तू जान गोपाल है संगरी रहाओ भरता कह सुमानी है एहो शिंगार बनाए री दूजा भाव वसारी है एहो तंबोला खाए री गुर का शब्द कर दीप को एह सत की सेज बछाए री आठ पहर कर जोड़ रहो तौ भेटै हर राय री तिस ही चज शिंगार सब साई रूप अपार री साई सुहागण नानका जो पाणी करतार री आसा महला पंजवां दीगण डोला तौ लो जो मन के भरमा भ्रम काटे गुर अपने पाए बिसरामा ओए बिखादी दोखिया ए गुरते हूटे हम छूटे अब उनाते ओए हम ते छूटे रहाओ मेरा तेरा जानता तब ही ते बंदा गुर काटी अज्ञानता तब छुटके फंदा जब लग हुक्म न

नानक राखे पार ब्रह्म फिर दुख ना थिया। हासा कर नौवा महला पंजवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद चितवो चितव सर्व सुख पावो आज्ञा पावो के ना पावो एक दतार सगल है जाचक दूसर कै पह जावो हों मांगो आनल जावो सगल शत्रपत एको ठाकुर कौन समसर लावो रहाओ उठो बैसो रह पीना साको दर्शन खोज खजावो ब्रह्मादिक सनकादिक सनक सनंदन सनातन संत कुमार तिनको महल दुल पावो अगम अगम अगाद बोध कीमत परे ना पावो ताकि शरण सत पुरख की सत गुर पुरख त्यावो भयो कृपाल दयाल प्रभ ठाकुर काट्यो बंद गरावो कहो नानक जो साध संग पायो तो फिर जन्म ना आवो।

नाम दृढ़ गुर मन मह दिया मोरी तिसा बुझारी दिन पी गावो रहनी गावो गावो सास सास रसनारी सत संगत में बसास हुए हर जीवत मर्त संगारी जन नानक को एहो दान देहो प्रभ पावो संतरेन उरतारी श्रवनी कथा नैन दर्श पेखो मस्तक गुर चरनारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा कर दसवा महला पंजवा जिसनो तू अस्थर कर मन है ते पाहुन दो दाहा पुत्र कलत्तर ग्रह सगल समगरी सब मिथ्या असनाहा रे मन क्या करह है हाहा दृष्ट देख जैसे हर चंदौरी एक राम भजन लै लाहा रहाओ जैसे बस्तर देह ओढ़ाने दिन दोए चार पुराहा पीत ऊपरे केतक ताई है अंत ओर को आहा जैसे अंब कुंड कर राखियो परत सिंध गल जाहा आव गया गया पार ब्रह्म की उठ जासी मोहत चसाहा रे मन लेखे चल है लेखे बैस है लेखे लेंदा साहा सदा कीर्त कर नानक हर की उबरे सतगुर चरण उठाहा आसा महला पंजवा अपुष्ट बात ते पई सीधरी दूत दुष्ट सजनई अंधकार मह रतन परगासियो मलीन बुद्ध हसनई जो कृपा गोविंद पई सुख संपत हर नाम फल पाए सतगुरु मिली रहाओ मोहि कृपण को कोई ना जानत सगल भवन प्रगटई संग बैठनो कहीं ना पावत हुन सगल चरण सेवी आड़ आड़ को पिरत ढूंढते मन सगल तृष्ण बुझ गई एक बोल पी खवतो नाही साध संगत सीत लई एक जी गुण कवन वखाने अगम अगम अगमई दास दास दास को करियो हो जन नानक हर सरनई आसा महला पंजवा रे मूड़े लाहे को तू टीला टीला तोटे को बेग ताया सस्त वखर तू

गंदन वहन सुनह उर जावह, नाम लैत अलकाया, निंद चिंद को बहुत अमाहयो, बूजी उल्टाया, पर तन पर तन परती निंदा, अखाद खाहे हरकाया, साच धर्म स्यो रुच नहीं आवै, सत सुनत सोहाया, दीन दयाल कृपाल प्रभ ठाकुर, भगत टेक हर नाया, नानक आहे सरन प्रभ आयो, राख लाज अपनाया, आसा महला पंजवा, मिथ्या संग संग लपटाई, मोह माया कर बांधे, जह जानो सो चीत ना आवे, अहम बुद्ध भय आंदे, मन बैरागी क्यों ना अरादे, काच कोठरी माहे तू बसता, संग सगल बिखे की ब्यादे रहाओ, मेरी मेरी करत दिन रैन बिहावे, पलखिन सीजे अर जादे, जैसे मीठे साध लुभाए, झूठ धंद दुर्गम दे, काम क्रोध अर लोभ मोह, एह इंद्री रस लपटा दे, दीप वारी पुरख बधाटे, बहुर बहुर जनमाते, जो भयो कृपाल दीन दुख भंजन, तो गुर मेल सब सुख लादे, कहो नानक दिन रैन त्यावो, मार काढ़ी सगले अपादे, इउं जपियो भाई पुरख बधाते, भयो कृपाल दीन दुख भंजन।

आद कारण कोट दिन से दुख पावे है, करी मोहत रंग माण है, फिर बहुर बहुर पछतावे है। अंधे चेत हर हर राया, तेरा सो दिन नेड़े आया रहाओ। पलक दृष्ट देख भूलो, आक नीम को तूमर, जैसा संग बिसियर स्यों है रे।

संगी साजन सिंह बैराना सगल संसार एह बिद व्याप्यो सो उबरियो जिस गुरपुरा कहो नानक भव सागर तरियो पये पनीत शरीरा आसा महला पंजवा दोपदे लूक कमानो सोई तुम पेखेओ मूड मुगद मुकरानी आप कमाने कौले बांदे फिर पाछे पछतानी प्रभ मेरे सब विद आगे जानी भ्रम के मूसे तू राखत परदा पाछे जी की मानी रहाओ जित जित लाए तित तित लागे।

तिन जन निर्दलिया साध संगत कै चली रे आसा महला पंजवां नीकी जी की हर कथा उत्तम आन सगल रस फीकी रे रहाओ बहु गुण धुन मुन जन खट बेते अवर

चालत बैसत सोवत हर जस मन तन चरण खटानी हौ हौरो तू ठाकर गौरो नानक सरन पछानी राग आसा महला पंजवा घर बारवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद त्याग

महा पौजल लंगी है, सदा हर गुण गाओ, जन्म मरण निवारी है, दुख ना जम पुर होए, नाम निदान सोई पाए, कृपा करे प्रभ सोए, एक टेक आधार एको, एक का मन जोर, नानक जपिया मिल साध संगत, हर बिन अवर ना होर, आसा महला पंजवा, जियो मन तन प्राण प्रभ के, दिए सब रस भोग, दीन बंदप जी दाता, सरन राखण जोग, मेरे मन त्याए हर हर नाम, हलत पलत सहाए संगे, एक स्यों लिवलाओ रहाओ, वेद शास्त्र जन

दुख पाया बिना साधु संग खाट लाभ गोविंद हर रस पार ब्रह्म एक रंग हर को नाम जपिए नीत सास सास त्याए सो प्रभ त्याग अवर प्रीत रहाउ कर्ण कारण समरथ सो प्रभ जी दाता आप त्याग सगल सियाणपा आठ पहर प्रभ जाप मीत सखा सहाय संगी ऊच अगम अपार।

नाम चराव हो रंगन आपे ही प्रभ रंग मन में राम नामा जाप कर कृपा वसो मेरे हृदय होए सहाई।

किरमे अपने को यह मनोरथ सुहाओ। तन धन तेरा तू प्रभ मेरा हमरे वस किश नाही। ज्यो ज्यो राख है त्यो त्यो रहना तेरा दिया खाहे। जन्म जन्म के किल विख काटे मज्जन हर जन तूर। पाए भगत परम पौ नासे हर नानक सदा हजूर। आसा महला पंजवा अगम अगोचर दर्स तेरा सो पाए जिस मस्तक भाग। आप किरपाल किरपा प्रभ धारी सतगुर बख्शिया हर नाम। कल युग उधारिया गुरदेव मल मूत मूड़ जे मुगद होते सब लगे तेरी सेव। रहाओ तू आप करता सब श्रेष्ठ धरता।

प्रसाद, सतगुर बचन तुम्हारे, निर्गुण निस्तारे, रहाओ महाबिखादी दुष्ट अपवादी, ते पनीत संगारे, जन्म पवंते नरक पड़ंते, तिनके कुल उधारे, कोई ना जाने कोई ना माने, से प्रगट हर द्वारे, कमन उपमा देओ कमन वडाई, नानक खिन खिन वारे, आसा महला पंजवा, बावर सोए रहे, रहाओ मोह कटांब बिखै रस माते, मिथ्या गहन गहे, मिथन मनोरथ सुपन आनंद उलास, मन मुख सत कहे, अमृत नाम पदार्थ संगे, तिल मर्म ना लहे, कर कृपा राखे।

गज मोतियन लालन नह नाहा नहीं राज ना भाग ना हुक्म ना साधन किस किस ना चाही चरणन सरनन संतन बंदन सुखो सुख पाही नानक तपत हरि।

दर्शन नानक सुख सुख सोयना आसा महला पंजवा हर हर नाम अमोला ओह सहज सुहेला रहाओ संग सहाई छोड़ ना जाई ओह अगह अतोला प्रीतम भाई बाप मोरो माई भगतन का ओलाह अलख लखाया गुरते पाया नानक इहो हर का चोला आसा महला पंजवा अपनी भगत नवाहे ठाकुर आयो आहे रहाओ नाम पदार्थ होए सकारथ हृदय चरण बसाहे एहे मुक्ता एहे जुगता राखो संत संगाहे नाम त्यावो सहज समावो नानक हर गुण गाहे आसा महला पंजवा ठाकुर चरण सुहावे हर संतन पावे रहाओ आप गवाया सेव कमाया गुण रस रस गावे एक है आसा दर्श प्यासा आन ना पावे दया तुहारी क्या जंत विचारी नानक बल बल जावे आसा महला पंजवा एक सिमर मन माही रहाओ नाम त्याव हो हृदय बसाव हो इस बिन को नाही प्रभ सरनी आईय सर्व फल पाईय सगले दुख जाहि जीयन को दाता पुरख बधाता नानक घट घट आहि आसा महला पंजवा हर बिसरत सो मुआ रहाओ नाम त्यावै सर्व फल पावै सो जन सुखिया हुआ राज कहावै हौ कर्म कमावै बांधियो नलनी भ्रम सुआ कहो नानक जिस सत

संयम कर थाके नानक साध सरन प्रभ संग वसै आसा महला पंजवां घर पंद्रवां पड़ताल एक ओंकार सतगुर प्रसाद बेकार माया माद सोयो सूझ बूझ ना आवै पकर केस जम उठारियो तद ही घर जावै लोभ बिखया बिखै लागे हर वित चित दुखाही

निपट बाजी हार मूका पछतायो मन पूरा दान सगल गैर वजह भरिया दीवान लेख ना परिया जेहे कार्ज रह ओला सोए काम ना करिया।

सहजाए दरसाए अब रातिया गोविंद सिंह संत सेव प्रीत नाथ रंग लालन लाए गुर ज्ञान मन दृढ़ाए रहसाए नहीं आए सहजाए मन निदान पाए सब

प्रभ त्यावो भ्रम पीत जीत मटावो निद नाम नानक मोरे आसा महला पंजवा काम क्रोध लोभ त्याग मन सिमर गोविंद नाम हर भजन सफल।

तिस पुखान नानक सहज समायो रे मना सावरी महला पंजवा हर हर हर गुनी हा जपिय सहज तुनी हा साधु रसन पनी हा।

ए मना असावरी महला पंजवा एका ऊट गहो हां गुर का शब्द कहो हां आगे आ सत सहो हां मन है निदान लहो हां सुख है।

कौन स्यो मन की लोभ ग्रस्यो दस हूँ दिस धावत आसा लाग्यो धन की रहाओ सुख कै हेत बहुत दुख पावत सेव करत जन जन की द्वार है द्वार स्वान ज्यों डोलत नह सुध राम भजन की मानस जन्मे अकारथ खोवत लाज ना लोक हसन की नानक हर जस क्यों नहीं गावत कमत बनासै तन की राग आसा महला पहला अष्टपदिया घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद उत्तर अव घट सरवर नावै बकै न बोलै हर गुण गावै जल आकाशी सुन समावै रस सत झोल महारस पावै ऐसा ज्ञान सुनो अब मोरे भरपुर धार रहया सब ठौरे रहाओ सच ब्रत नेम ना काल संतावै सतगुर शब्द क्रोध जलावै गगन निवास समाध लगावै पारस परस परम पद पावै सच मन कारण तत् बलोवै सुभार सरवर मैल ना धोवै जैस्यो राता तैसो होवै आपे करता करे सो होवै गुर हे वसी तल अगन बुझावै सेवा सुरत बेभूत चढ़ावै।

नाई, कर बिन वाजा पग बिन ताला, जे शब्द बुझे ता सच निहाला, अंतर साच सबे सुख नाला, नदर करे राख रखवाला, त्रे भवन सूजे आप गवावे, बाणी बूझे सच समावे, शब्द विचारे एक लिवतारा, नानक धन सवार नहारा, आसा महला पहला, लेख असंख लिख लिख मान, मन माने सच सुरत बखान, कथनी बदनी पढ़ पढ़ पार, लेख असंख अलेख या पार।

जीवन मुक्त मन नाम वसाए, गुरमुख होए ता सच समाए। जिन तर साजी गगन आकाश, जिन सब थापी।

आचारी जग पंडित बिरला विचारी बिन सतगुर भेटे सब फिरे अहंकारी जग दुखिया सुखिया जन कोई

को रोवै दुख कोई, सो रोवै जिस बेदन होए, जिस बीती जाने प्रभ सोए, आपे करता करे सो होए, जीवत मरना तारे तरना, जय जगदीश परम गत सरना, हौ बलिहारी सतगुर चरना, गुर बोहित शब्द पै तरना।

भ्रांत सूतक अगन पखै जग खाए सूतक जल थल सब ही थाए नानक सूतक जन्म मरी जै गुर प्रसादी हर रस पीजै राग आसा महला पहला आप विचारै सो परखे हीरा एक दृष्ट तारे गुर पूरा गुर मानै मन

लह संधान जिसका अन तन सहज ना जाना परम भुलाना फिर पछताना गल फाही बवरा बौराना बूढ़त जग देखिया तो डर भागे सतगुर राखे से वड भागे।

कहा वह बीते बिन नावै मन झूठ अनीते कहां चलो मन रहो करे गुरमुख राम नाम तृप्तास्ते खोजत पाव हो सहज हरे रहाओ काम क्रोध मन मोह शरीरा लाभ लोभ अहंकार सो पीरा राम नाम बिन क्यों मन तीरा अंतर नामन साच पछाणे अंतर की गत गुरमुख जाने साच शब्द बिन महल ना पछाणे निरंकार मह आकार समावे अकल कला सच साच टिकावे सो नर गर्भ जोन नहीं आवे जहां नाम मिले तह जाऊं गुर प्रसादी कर्म कमाऊं नामे राता हर गुण गाऊं गुर सेवा ते आप पछाता अमृत नाम वस्या सुखदाता।

ग्रास इकत थाए किए गुरमुख राग स्वाद अन त्यागे गुरमुख एहो मन भगती जागे अनहद सुन मानिया शब्द विचारी आत्म चीन भय निरंकारी एहो मन निर्मल दर घर सोई गुरमुख भगत भाओ धुन होई एहनस हर जस गुर प्रसाद घट घट सो कब याद जुगाद राम रसायन एहो मन माता सर्ब रसायन गुरमुख जाता भगत हेत गुर चरण निवासा नानक हर जन के।

तू आप भुलावह नाम विसार, तू आपे रख कृपा धार। रोग भरम भेद मन दूजा, गुरबिन भरम जपह जप दूजा। आदि पुरख गुर दर्शना देख है, बिन गुर शब्द जन्म के लेख है। देख अचरज रहे बिस्माद, घट घट सुर नर सहज समाद। भरपुर तार रहे मन माही, तुम समसर अवर को नाही। जा की भगत हेत मुख नाम, संत भगत की

0: सुख तिस लागै।
1: जो जन राम नाम लिव जागै,
0: भगत वछल भगता हर संग, नानक मुक्त भये हर रंग। आसा महला पहला एक तुकी, गुर सेवे सो ठाकुर जानै, दुख मिटै सच शब्द पछानै।

पास एक लाख लहन बैठिया लख लहन खड़िया गरी सुहारे खांदिया मानन सेजड़िया तिन गल सिलका पाइया टुटन मोत सरिया धन जोबन दोए वैरी होए जिन्नी रखे रंग लाए दूतानो फरमाया ले चले पत गवाए जे तिस भावे दे वड़ियाई।

कामण जिस वेख नींद ना पाई कहा सुपान तंबोली हरमा हो या शाई माई। इस जर कारण कणी विगुत्ती इन जर कणी खोआई पापा बाजो।

जाननी घट ब्रह्म लुकाना। एक तपसी बन मह तप कर है नित तीरथ वासा आप ना चीन है तामसी काहे भये उदासा। एक बिंद जतन कर राख दे से जती कहावह बिन गुर शब्द ना छूट ही भ्रम आवह जावह। एक गिर ही सेवक साधका गुरमति लागे नाम दान इशनान दृढ़ हर भगत सो जागे। गुर ते दर घर जानी है सो जाए सियाण नानक नाम ना विसरे साचे मन माने। आसा महला पहला मनसा मन है समाए ले भवजल सच तरना आद जुगाद दयाल तू ठाकुर तेरी सरना। तू दातो हम जाचिका हर दर्शन दीजै गुरमुख नाम त्याई है मन मंदर भीजै रहाओ। कूड़ा लालच छोड़ी तो साच पछाने गुर कै शब्द समाई है परमारथ जाने। इहो मन राजा लोभिया लुभ तहु लोभाई गुरमुख।

लालच दुख भारी साचो साहिब मन वसै हो मैं बिख मारी दुबदा छोड़ कवाटड़ी मूस हो गए भाई अहनस नाम सलाही है सतगुर सरनाई मनमुख पत्थर सैल है त्रिग जीवन फीका जन्म है के तारा की है

आसा महला पहला चले चलन हार वाट बटाया धंद पिटे संसार सच ना पाया क्या भवी है क्या ढूंढी है गुर शब्द दिखाया ममता मोह विसर्जिया अपने घर आया रहाऊ सच मिले सचिया।

वाटड़ी सच्ची भगत दृढ़ाए मनमुख जे समझाई है पी उजड़ जाए बिन हर नाम ना छूट सी मर नरक समाए जन्म मरे परमाई है हर नाम ना लेवे ताकि कीमत ना पवे बिन गुर की सेवे जे ही सेव कराई है करनी पी साई आप करे किसे आकी है वेखे वडे आई गुर की सेवा सो करे जिसे आप कराए नानक सिर दे छूटी है दरगाह पत पाए आसा महला पहला रूड़ो ठाकुर माहरो रूड़ी गुरबाणी वड्डे भाग सतगुर मिले पाईए पद निर्वाणी मैं उल गिया उल गी हम छोरू थारी ज्यो त्यों राख त्यों रहा मुख नाम हमारी रहाओ दर्शन की प्यासा कणी भाणे मन पाईए मेरे ठाकुर हाथ वड्याईया भाणे पत पाईए साचो दूर ना जानिए अंतर है सोई जह देखा तह रव रहे किन कीमत होई आप करे आपे हरे वेख वड्याई गुरमुख होए निहाली है इयों कीमत पाई जीवंदियां लाहा मिले गुरकार कमावे पूर्व होवे लिखिया तां सतगुर पावे मनमुख तोटा नित है परम है परमाए मनमुख अंध ना चेतई क्यों दर्शन पाई तां जग आया जानिए साचे लिव लाई गुर भेटे पारस पहे ज्योति ज्योत मलाए ऐनस रह निरालमो कार तुरकी करनी नानक नाम संतोखिया राते हर चरनी आसा महला पहला केता आखण आखी है ताके अंत ना जाना मैं धरया धर एक तू मैं तान सताना नानक की अरदास है सच नाम सुहेला आप गया सूजी पई गुर शब्दी मेला रहाउ हो मैं गर्भ गवाई है पाईए विचार साहिब सिउ मन मानिया दे साच आधार अहनस नाम संतोखिया सेवा सच साई तां को बिघन ना लाग गई चाले हुक्म रजाई जो चले सो पवे खजाने खोटे ठवर ना पाएनी रले जूठाने नित नित खरा संभाली है सच सौदा पाई है खोटे नदर ना आमनी ले अगन जलाई है जिन्नी आत्म चीनिया परमात्म सोई एको अमृत बिरख है फल अमृत होई अमृत फल जिन्नी चाखिया सच रहे अगाई तिन्ना भरम ना भेद है हर रसन रसाई हुक्म संजोगी।

मन वसाया शब्द चीन सदा सुख पाया सुन मन मेरे तत् ज्ञान देवन वाला सब बिद जाने गुरमुख पाईए नाम निदान रहाउ सतगुरु भेटे की वडियाई जिन ममता अग्न तृष्णा बुझाई सहजे माता हर गुण गाई।

गुरमुख जुग जुग आख वखाणी, मनमुख मोहे परम पुलाणी, बिन नावे सब फिरै बहुराणी, तीन भवन मह एका माया, मूर्ख पढ़ पढ़ दूजा भाओ दिरडाया, बहु कर्म कमावे दुख सबाया, सतगुर सेव सदा सुख पाया, अमृत मीठा।

जप पढ़िया गुर शब्द विचार, हर जप पढ़िया होमे मार, हर जपिया पहे सच प्यार, नानक नाम गुरमत उरतार, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग आसा महला तीजा, अष्टपदियां घर अठवां काफी, गुर ते शांति उपजै जिन तृष्णा अग्न बुझाई, गुर ते नाम पाई वड्डी वडियाई, एको नाम चेत मेरे भाई,

घर घर पाया, भगती भरे भंडारा, गुरमुख नाम त्याई है, बूझै विचारा, गुरमुख भगत सलाहा है, अंतर शब्द अपारा, गुरमुख सुख उपजै, दुख कदे ना होई, गुरमुख हउमै मारी है, मन निर्मल होई, सतगुर मिले है आप गया, त्रे पवन सोजी पाई, निर्मल ज्योत पसर रही, ज्योति ज्योत मलाई, पूरा गुर समझाया, माति उत्तम होई, अंतर शीतल शांत होए, नामे सुख होई, पूरा सतगुर ता मिले, जान नदर करे, किले विक पाप सब कटी है, फेर दुख बिघन ना होई, अपने हाथ वडियाईया, दे नाम

हर कृष्णा ही गुर प्रसादी पाई है अंतर कपट खुलाई सतगुर ते हर पाई है पाई अंतर नाम निदान है पूरा सतगुर दिया दिखाई रहाओ हर का गाहक होए सो लए पाए रतन विचारा अंदर खोले दिव दिष्ट देखे मुक्त भंडारा अंदर महल अनेक है जियो करे बसेरा मन चिंदिया पल पाए से फिर हुए ना फेरा पारखियां वत संभाल लई गुर सोजी होई नाम पदार्थ मुल सा गुरमुख पावे कोई बाहर भाले सो क्या लह वत करे अंदर पाई भरमे भूला सब जग फिरे मनमुख पत गवाई घर दर छोड़े अपना पर कर झूठा जाई चोरे वांगू पकड़ी है बिन नावे चोटा खाई जिन्नी घर जाता अपना से सुखिए पाई अंतर ब्रह्म पछाणिया गुर की वडियाई आपे दान करे किसे आखी है।

नामे ही सुख उपजै नामे सरनाई बिन नावे कोई ना मनिए मनमुख पत गुआई जामपुर बद्दे मारी है बिरता जन्म गुआई नामे की सब सेवा करे गुरमुख नाम बुझाई नाम हो ही नाम मनिए नामे वडियाई जिसनों देवै तिस मिले गुरमती नाम बुझाई नानक सब किस

नानिवह दूजा भाऊ सुआउ इहो मनुआ क्यों कर वासे आवे गुर प्रसादी ठाकिया ज्ञान मती घर आवे रहाउ सुहागनी आप सवारियों लाए प्रेम प्यार सतगुर कै भाणे चल दिया नामे सहज सिंगार सदा रावह फिर अपना सच्ची सेज सुपाय फिर कै प्रेम मोहिया मिल प्रीतम सुख पाय ज्ञान अपार सिंगार है सुभावंती नार सा सब हाई सुंदरी फिर कै हित प्यार सुहागनी विच रंग रखियों सच्चे अलख अपार सतगुर सेवन अपना सच्चे भाई प्यार सुहागनी सिंगार बनाया गुण का गलहार प्रेम फिरमल तन लावना अंतर रतन विचार भगत रते से उत्मा जात पत शब्दे होए बिनना वै सब नीच जात है बिष्टा का कीड़ा होए हौ हौ कर दी सब फिरे बिन शब्द हौ ना जाय नानक नाम रते तिन हौ मैं।

दी आगे जुग जुग प्रगट होए ए मन रूड़े रंगले तू सच्चा रंग चढ़ाए रूड़ी बाणी जे रपे ना एहो रंग लह ना जाए रहाओ हम नीच मैले अत अभमानी दूजे पाए विकार गुर पारस मिले कंचन होए निर्मल जोत अपार बिन गुर कोई ना रंगी है गुर मिले रंग चढ़ाओ गुर कह पै पाए जो रते सिफती सच समाओ पै बिन लाग ना लगई ना मन निर्मल होए बिन पै कर्म कमावनी झूठे ठाओ ना कोय जिसनो आपे रंगे सो रपसी सत संगत मिलाए पूरे गुर ते सत संगत उपजे सहजे सच सुभाए बिन संगती सब ऐसे रह जैसे पास ढोर जिन कीते तिसे ना जाननी बिन नावे सब चोर एक गुण विहाज है औगण विकण है गुर कै सहज सुभाए।

एक है बहुविध श्रेष्ठ उपाय हुक्मे कार कराएंदा, दूजा किस कही है भाई बुझना अबुझना तुद किया। ए तेरी सिरकार इक ना बख्शे मेल लह, एक दरगाह मार कड़े कूड़ियार। एक धुर पवित पावन है तुद ना मेलाए, गुर सेवा ते सुख उपजै सच्चा शब्द बुझाए। एक कुचल कुचील विखली पते, नाम हो आप खुआए ना उन सिद्ध ना बुद्ध है, ना संजमी फिर है उतवताए। नदर करे जिस अपनी तिस नो भावनी लाए, सत संतोख एह संजमी मन निर्मल शब्द सुनाए। लेखा पढ़ ना पहुंची है कत कहने अंत ना पाए, गुर ते कीमत पाई है सच शब्द सोजी पाए। इहो मन देही सोध तू गुर शब्द वी।

कर गए पल्ले किश ना पाए महल नाही दोहागनी अंत गई पछताए सो फिर मेरा एक है

शब्द रहे आपरपूर रहाउ गुरमुख आप पछाणिया तिन्नी एक मन त्याया सदा रवह पेरे अपना सच्चा नाम सुख पाया ए मन तेरा को नहीं कर वेख शब्द विचार हर सरनाई भज पओ पाए हे मोख द्वार शब्द सुनिए शब्द बुझिए सच रह लिवलाई शब्द हमें मारिए सच्चे महल सुख पाए इस जुग में शोभा नाम की।

सहज सुख के सब हाट, साहा व्यापारी एकै थाट, जे जिया दन को लय ना जगात, सतगुर कर दीनी तुर की छाप, बखर नाम लद खेप चलावो, लै लाहा गुरमुख घर आवो, सतगुर साहु सिख बन जारी, पूंजी नाम लेखा साच संवारे, सो वसै इत कर जिस गुर पूरा सेव, अब चल नगरी नानक देव, असावरी महला पंजवा घर तीजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, मेरे मन हर स्यों लागी प्रीत, साध संग हर हर जपत, निर्मल साची रीत, रहाउ दर्शन की प्यास घणी, चितवत अनक प्रकार, करो अनुग्रह पार ब्रह्म, हर कृपा धार मरार, मन परदेसी आया, मिलियो साध कै संग, जिस वखर कौ चाहता, सो पायो नामह रंग, जेते माया रंग रस, बिनस जाहि खिन माहि, भगत रते तेरे नाम स्यों, सुख पुंचह सब ठाई, सब जग चलतो पेखी है, निःचलार को नाम, कर मित्राई साध स्यों, निःचल पावह ठाऊं, मीत साजन सुत

साथ चरण कमल बोहित पै लग सागर तरयो ते पेट्यो पूरा सतगुरु साचा प्रभ स्यो नेह साध तेरे की जाचना विसरना सास ग्रास जो तुद पावे सो पला तेरे पाने कारज रास सुख सागर प्रीतम मिले उपजे महा आनंद कहो नानक सब दुख मिटे प्रभ पीते परमानंद आसा महला पंजवा बिरहड़ी घर चौथा संता की जात एक ओंकार सतगुर प्रसाद पार ब्रह्म प्रभ सिमरिया प्यारी दर्शन कौ बल जाओ जिस सिमरत दुख बीस

सुख सिंगार बिठिया के फीके तज छोड़े मेरी माए काम क्रोध लोभ तज गए प्यारी सतगुर चरनी पाई जो जन राते राम स्यो प्यारी अनत ना काहू जाई हर रस जिन्नी चाखिया प्यारी तृप्त रही आगाई अंचल गहया साध का नानक पैसा गिर पार पराई जन्म मरण दुख कटिया प्यारी

सुख दुख तेरी आज्ञा प्यारी दूजी नाही जाय। जो तू कराम है सो करी प्यारे, अवर किछ करन ना जाय। दिन रैन सब सुहावने प्यारी, जित जपिए हर नाम साई कार कमावनी प्यारी। तुर मस्तक लेख लखाई एको आप वर्तदा प्यारी, घट घट रहिया समाई। संसार कूप ते उधर लह प्यारे, नान

सत्सै सोए श्रिष्ट जिन साजी सबना साहिब एक भया सेवत रहे चित जिन का लागा आया तिनका सफल भया मन काहे भूले मूड मना जब लेखा देव है बीरा तौ पढ़िया रहाओ ईवड़ी याद पुरख है दाता आपे सच्चा सोई इना अखरा मह जो गुरमुख बूझे तिस सिर लेख ना हुई।

जलिया जमराज की रू आए माया कै संगल बंद लया खखे खुंदकार साहा आलम कर खरीद जिन खर्च दिया बंधन जा कै सब जग बांधिया अवरी का नहीं हुक्म पया गगे गोए गाए जिन छोड़ी गली गोविंद गर्भ पया कर भांडे जिन आवी साजी चाड़न वाह तई किया कगे काल सेवक जे काले शब्द गुरु कै लाग रह बुरा भला जे सम कर जाने इन वेद साहिब रमत रह चचे चार वेद जिन साजी चारे खानी चार जुगा जुग जुग जोगी खानी भोगी पढ़िया पंडित आप थिया सच्चे छाया वर्ती सब अंतर तेरा किया परम हुआ परम अपाए फुलाइन आपे तेरा कर्म हुआ तिन गुरु मिलिया जजे जान मंगत जन जाचे लख चौरासी भीख पविया एको लेवे एको देवे अवर न दूजा मैं सुनिया छजे चूर मरहो क्या प्राणी जो किस देना सो दे रहिया दे दे वेखे हुक्म चलाए ज्यो जिया कारज कपया नन्हे नदर करे जा देखा दूजा कोई नाही एको रव रहिया सब थाई एक वसिया मन माही तत्ते तंच करहु क्या प्राणी टड़ी के मोहत के उठ चलना जूए जन्म ना हारो अपना भाज पढ़ो तुम हर सरना ठठे ठांड वर्ती तिन अंतर हर चरणी जिनका चित लागा चित लागा से जन निस्तरे तो प्रसादी सुख पाया डड्डे डंप करहु क्या प्राणी जो किश हुआ सो सब चलना तिसे सरे वो ता सुख पावहु सर्व निरंतर राव रहिया तड्डे ताहे उसारे आपे ज्यो तिस पावे तिवें करे कर कर वेखै हुक्म चलाए तिस निस्तारी जा कौ नदर करी नाणे रवत रह घट अंतर हर गुण गावे सोई आपे आप मलाए करता पुनरप जन्म ना हुई तत्ते तारू पवजन हुआ ताका अंत ना पाया ना तर ना तुल्हा हम बूढ़स तार ले तार नराया थत्ते थान थनंतर सोई जाका किया सब हुआ क्या परम क्या माया कही है जो तिस पावे सोई भला गद्दे दोष ना देऊ किसे दोष करमा अपनिया जो मैं किया सो मैं पाया दोष ना दीजे अवर जना तदे धार कला जिन छोड़ी हर चीजी जिन रंग किया तिसदा दिया सबनी लिया करमी करमी हुक्म पया नन्ने ना हां भोग नित भोगे ना दीठा ना संभलिया गली हों सुहागण पैने कंत ना कबहू मैं मिलिया पप्पे पातशाह परमेश्वर वेखण कौ परपंच किया देखे बूझे सब किस जाने अंतर बाहर रव रहिया फप्पे फाही सब जग फासा जम कै संगल बंद लया गुर प्रसादी से नर उबरे जे हर शरणागत भज पया बब्बे बाजी खेलन लागा चौपड़ कीते चार जुगा जी जंत सब सारी कीते पासा ढालन आप लगा पब्बे पाल है से फल पाव है गुर प्रसादी जिन कौ पौ पया मनमुख फिर है ना चेत है मूड़े लाख चौरासी फेर पया मम्मे मोह मरण मधुसूदन मरण पया तब चेतव्या काया पीतर अवरो पड़िया मम्मा अखर विसरिया यही जन्म ना होवी कद ही जे कर सच पछाण गुरमुख आख गुरमुख बूजे गुरमुख एको जाने रारे राव रहिया सब अंतर
जेते किए जनता जंत अपाई तंदे सब लाए कर्म हुआ तिन नाम लया लल्ले लाए तंदे जिन छोड़ी मीठा माया मोह किया खाना पीना सम कर सहना पाने ताके हुक्म पया ववै वास देव परमेश्वर वेखण कहो जिन वेस किया वेखे चाखे सब किछ जाने अंतर बाहर राव रहया राड़े राड़ करह क्या प्राणी तिसह त्यावो जे अमर होवा तिसह त्यावो सच समावो ओस विटोह कुर्बान किया हाहे होर न कोई दाता जी उपाई जिन रिजक दिया हर नाम त्यावो हर नाम समावो अन दिन लाहा हर नाम लिया आयड़ आप करे जिन छोड़ी जो किछ करना सो कर रहया करे कराए सब किछ जाने नानक शायर इव कहया राग आसा महला तीजा पट्टी एक ओंकार सतगुर प्रसाद अयो अंग सब जग आया काके कंग काल पया रीरी लल्ली पाप कमाने पर अवगण गुण विसरिया मन ऐसा लेखा तू की पढ़िया लेखा देना तेरे सिर रहिया रहाउ सिदंगाय सिमरह नाही नन्ने ना तुद नाम लया सस्से सीजह अहन समूड़े क्यों शूतह जम पाकड़िया बब्बे बूजह नाही मूड़े परम भुले तेरा जन्म गया अनहोंदा ना उतरायो पांदा अवरा का भार तुद लया जजे जोत हिर लई तेरी मूड़े अंत गया पछतावहगा एक शब्द तू चीनह नाही फिर जूनी आवहगा तुद सिर लिखिया सो पढ़ पंडित अवरा नो ना सखाल बिखिया पहला फाहा पया पांदी पिछों दे गल चाटड़िया सस्से संयम गयो मूड़ी एक दान तुद कथाई लया साई।

रूपया अंतर आत्म ब्रह्म ना चीनिया माया का मोहताज भया ककै काम क्रोध भरम्यो हो मूड़े ममता लागे तुद हर विसरिया पढ़ है गुण है तू बहुत पुकार है विन बूझे तू डूब मुआ तत्तै तामस जल्यो हो मूड़े थत्तै थान पृष्ठ हुआ कग्गै घर कर फिर है तू मूड़े दद्दै दान ना तुद लया पप्पै पार ना पवे ही मूड़े पर पंच तू पलच रहया सच्चै आप खुआयो हो मूड़े एहो सिर तेरे लेख पया पब्बै भवजल डुबो हो मूड़े माया विच गलतान पया गुर प्रसादी एको जाने एक घड़ी मह पार पया वावे वारी आईया मूड़े वास देव तुद वी सरिया ए वेला ना लह सह मूड़े फिर तू जम कै वस पया झज्जै कदे ना झूरह मूड़े सतगुर काप देस सुन तू विखा सतगुर बाजो गुर नहीं कोई न गुरे का है नाउ बुरा तद्दै तावत वर्ज रख मूड़े अंतर तेरे निदान पया गुरमुख हो वह ता हर रस पी वह जुगा जुगंतर खाही पया गगै गोविंद चित कर मूड़े गली किनै ना पाया गुर के चरण हृदय वसाए मूड़े पिछले गुनाह सब बख्श लया हा है हर कथा।

सदा सुख हुई मनमुख पढ़ै तीता दुख लागै बिन सतगुरु मुक्त ना हुई हरारै राम चित कर मूड़े हृदय जिन कै रव रहया गुर प्रसादी जिन्नी राम पछाता निर्गुण राम तिन्नी बूझ लहया तेरा अंत ना जाई लखिया अकथ ना जाई हर कथिया नानक जिन को सत

वाद पुरुष अपरम्परु तारे नाम अगमय गोचर अपरय पारा पार ब्रह्म परदानो आद जुगादि है पी होसी अवर झूठा सब मानो कर्म धर्म की सार ना जाने सुरत मुकट क्यों पाई है नानक गुरमुख शब्द पछाने अहनस नाम त्याई है मेरा मनो मेरा मन मानिया नाम सखाई राम हूं मैं ममता माया संग ना जाई राम मात पित भाई सुत चतुराई संग ना संपै नारी शायर की पुत्री पर हर त्यागी चरण तले विचारी आद पुरख एक चलत दिखाया जह देखा तह सोई नानक हर की भगत ना छोडो सहजे हुए सो होई मेरा मनो मेरा मन निर्मल साच संभाले राम अवगुण मेट चले गुण संगम नाले राम अवगुण पर हर करनी सारी दर सच्चे सत्यारो आवण जावण थाक रहाए गुरमुख तत विचारु साजन मीत सजान सखा तू सच मिले वडियाई नानक नाम रतन पर गासिया ऐसी गुरमत पाई सच अंजनो अंजन सार निरंजन राता राम मन तन राव रहिया जग जीवनो दाता राम जग जीवन दाता हर मन राता सहज मिले मिलाया साध सभा संतां की संगत नदर प्रभु सुख पाया हर की भगत रति बैरागी चूकै मोह प्यासा नानक हों मैं मार पतीने विरले दास उदासा राग आसा।

सिरजनहार जीव सबना का दाता कर्म विधाता दुख बसारन हार जीव दुख बसारन हार स्वामी कीता जाका हुवै कोट कुटंतर पापा केरे एक करी मह खोवै हंस से हंसा बग से बग्गा कट कट करे बीचार जियो तू सबनी ताई जितै हो जाई साचा सिरजनहार जियो जिन एक मन प्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो तिन जम नेड़ ना आवै गुर शब्द कमावै कबहू ना आवै हार जियो ते कबहू ना हारह हर हर गुण सार है तिन जम नेड़ ना आवै जमन मरन तिना का चूका जो हर लागे पावे गुरमत हर रस हर फल पाया हर हर नाम उर धार जियो जिन एक मन त्याया तिन सुख पाया ते विरले संसार जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया तिसै विटोह कुर्बान जियो ताकि सेव करीजै लाहा लीजै हर दरगाह पाइए मान जियो हर दरगाह मान सोई जन पावै जो नर एक पछाणै ओह नव निध पावै गुरमत हर त्यावै नित हर गुण आख बखाणै अहनस नाम तिसै का लीजै हर उत्तम पुरख प्रधान जियो जिन जगत अपाया तंदै लाया हौ तिसै बिटोह कुर्बान जियो नाम लैन से सो है तिन सुख फल होवै मन है से जिन जाहि जियो तिन फल तोट ना आवै जहां तिस पावै जे जुग केते जाहि जियो जे जुग केते जाहि स्वामी तिन फल तोट ना आवै तिन जरा ना मरना नरक ना परना जो हर नाम त्यावै हर हर करह से सूकह नाही नानक पीड़ ना खाहे जियो नाम लैन से सोह तिन सुख फल होवै।

कित पवह जंजाले राम साचा साहिब मन वसै की फासह जम जाले राम मछली वछुनी नैण रुनी जाल बदक पाया संसार माया मोह मीठा अंत परम चुकाया भगत कर चित लाए हर सिउ छोड़ मनु अंदेसिया सच कह नानक चेतरे मन जीअड़िया परदेसिया नदियां वहा विछुनिया मेला संजोगी राम जुग जुग मीठा विस भरे को जाने जोगी राम कोई सहज जाने हर पछाने सत गुरु जिन चेतिया बिन नाम हर के भरम भूले पचह मुगद अचेतिया हर नाम भगत नारद साचा से अंत ताही रुनिया सच कह नानक शब्द साच मेल चरीव सुनिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा संत घर पहला हम घरे साचा सोहिला साचा शब्द सुहाया राम धन पिर मेल भया प्रभ आप मलाया राम प्रभ आप मलाया सच मन वसाया कामन सहजे माती गुर शब्द शिंगारी सच सुवारी सदा रावी रंग राती आप गवाए हर वर पाए ता हर रस मन वसाया कहो नानक गुर शब्द सुवारी सफलियो जन्म सवाया दूजड़ै कामन भरम भुली हर वर ना पाए राम कामन गुण नाही बिरथा जन्म गवाए राम बिरथा जन्म गवाए मनमुख इयाणी अवगुणवंती झूरे अपना सतगुर सेव सदा सुख पाया ता फिर मिलिया हदूरे देख फिर विगसी अंदरों सरसी सच्चा शब्द सुपाए नानक बिन नावै कामन परम पलानी मिल प्रीतम सुख पाए फिर संग कामन जानिया गुरमेल मलाई राम अंतर शब्द मिली सहजे तपत बुझाई राम शब्द तपत बुझाई अंतर शांत आई सहजे हर रस चाखिया मिल प्रीतम अपने सदा रंग माणी सच्चै शब्द सुपाखिया पढ़ पढ़ पंडित मोनी थाके भेखी मुक्त ना पाई नानक बिन भगती जग बौराना सच्चै शब्द मलाई सा तन मन आनंद भया हर जियो मेल प्यारे राम सा तन हर कै रस रसी गुर कै शब्द अपारे राम शब्द अपारे मिले प्यारे सदा गुण सारे मन वसी सेज सुहावी जा फिर रावी मिल प्रीतम अवगण नसी जित कर नाम हर सदा त्याई सोहे लड़ा जुग चारी नानक नाम रते सदा आनंद है हर मिलिया कार्य सारी एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला तीजा शंत कर तीजा साजन मेरे प्रीतम हो तुम सह की भगत करे हो गुर सेवो सदा अपना।

तुम करहु ता फिर सह खुशी न आवे। भगत भाव एहो मार्ग बिखड़ा गुरुद्वारे को पावे। कह नानक जिस करे कृपा सो हर भगती चित लावे। मेरे मन बैरागिया तू बैराग कर किस दिखावे। हर सोहिला तिन सदा सदा जो हर गुण गावे। कर बैराग तू छोड़ पाखंड सो सहो सब किस जाने। जल थल महियल एको सोई गुरमुख हुक्म पछाने। जिन हुक्म पछाता हरी केरा सोई।

का शब्द संभाले, साथ तेरे सो सहु सदा है, एक खिन हर नाम संभाले, जन्म जन्म के तेरे पाप कटे, अंत परम पद पावे, साचे नाल तेरा गंध लागे, गुरमुख

मरण जीवन की सोजी होई, गुर प्रसादी एको जान है, ता दूजा भाव ना होई, मन शांत आई बजी बधाई।

सब पर हर त्यागी सुन्ने सुन समावे बन जारे एक भगती आवे है लाहा हर नाम ले जाए नानक मन तन अर्प गुरे आगे जिस प्राप्त सो पाए रतना रतन पदारथ बहु सागर भरिया राम बाणी गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया राम गुरबाणी लागे तिन हाथ चढ़िया निर्मोलक रतन अपारा हर हर नाम अतोलक पाया तेरी भगत भरे भंडारा समुंद वरोल शरीर हम देखिया एक वस्त अनूप दिखाई गुरु गोविंद गोविंद गुरु है नानक।

सिद्ध कार्य सब सोहाए राम, रोमे रोम रोम रोमे, मैं गुरमुख राम त्याए राम, राम नाम त्याए पवे।

गवाई मन तन शीतल श्रृंगार सब हुआ गुरमत राम परगासा नानक आप अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा जिन्नी रामो राम नाम वसारिया से मन मुख मूड अपागी राम किन अंतरे मोह व्यापै खिन खिन माया लागी राम माया मल लागी मूड पए अपागी जिन राम नाम नह पाया अनेक कर्म करह अभमानी हर रामो नाम चुराया महाबिखम जम पंथ दुहेला कलू खत्म हो अंधियारा नानक गुरमुख नाम त्याया ता पाए मोख द्वारा रामो राम नाम गुरु राम गुरमुखे जाने राम एह मनुआ खिन ऊब पयाली भरमदा इकत कर आणै राम मन इकत कर आणै।

तमो रमि उचा गुण कहत्या अंत ना पाया। नानक राम नाम सुन पीने राम नाम सुमाया। जिन अंतरे राम नाम वसै तिन चिंता सब गवाया। राम सब अर्था सब धर्म मिले मन चिंदिया सो फल पाया। राम मन चिंदिया फल पाया राम नाम ते आया। राम नाम गुण गाई दुर्मत कबुद्ध गई सुध होई। राम नाम मन लाई सफल जन्म शरीर सब होआ। जित राम नाम परगासिया नानक हर पज सदा दिन राती। गुरमुख निज घर वासिया जिन शरदा राम नाम लगी तिन दूजे चेतना लाया। राम जे धरती सब कंचन कर दीजे बिन नाम है अवर ना पाया। राम राम नाम मन पाया परम सुख पाया।

राम सते सत गुरमुख जानिया राम सेव को गुर सेवा लागा जिन मन तन अर्प चढ़ाया राम मन तन अर्पया बहुत मन सरदया गुर सेवक पाए मलाए।

हर गुण गाया, जन्म जन्म के किल विख दुख उतरे, हर हर नाम समाया, जिन हर त्याया तुर भाग लिख पाया, तिन सफल जन्म परवान जियो, हर हर मन पाया परम सुख पाया, हर लाहा पद निर्वाण जियो, जिन हर मीठ लगाना ते जन परधाना, ते उत्तम हर हर लोग जियो, हर नाम वडाई हर नाम सखाई, गुर शब्दी हर रस भोग जियो, हर रस भोग महा निर्जोग, वडभागी हर रस पाया, से धन वड्डे सतपुरखा पूरे, जिन गुरमत नाम ते आया, जन नानक रेण मंगै पग साधू।

पग चारे धर्म ध्यान जियो। मन तन हर गाव है परम सुख पाव है, हर हृदय हर गुण ज्ञान जियो। गुण ज्ञान पदार्थ हर हर कृतार्थ, शोभा गुरमुख होई अंतर बाहर हर प्रभे को। दूजा अवर ना कोई, हर हर लिव लाई हर नाम सिखाई, हर दरगाह पावे मान जियो। सत जुग सब संतोख सरीरा, पग चारे धर्म ध्यान जियो। तेता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए दियो। पग चौथा खिसिया त्रै पग टिकिया, मन हृदय क्रोध जलाए दियो। मन हृदय क्रोध महा बिसलोद, निरपता वह लड़ दुख पाया। अंतर ममता रोग लगाना, हों मैं अहंकार वधाया। हर हर कृपा धारी मेरे ठाकुर, देख गुरमत हर नाम लह जाए जियो। एता जोग आया अंतर जोर पाया, जत संयम कर्म कमाए जियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी कान उपाय जियो। तप तापन ताप है जग पुन आरंभ है, अत किरिया कर्म कमाए जियो। किरिया कर्म कमाया पग दोए खिसकाया, दोए पग टिकै टकाए जियो। महाजुद जोद बहु कीने, विच हों मैं पचै पचाए दियो। दीन दयाल गुर साध मलाया, मिल सत गुर मल लह जाए दियो। जुग द्वापर आया परम परमाया, हर गोपी काने उपाए दियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो। गुर शब्द कमाया औखद हर पाया, हर कीरत हर शांत पाए जियो। हर कीरत रोते आई हर नाम वडाई, हर हर नाम खेत जमाया। कल युग बीज बीजे बिन नावे, सब लाहा मूल गवाया। जन नानक गुर पूरा पाया, मन हृदय नाम लखाए जियो। कल युग हर किया पग त्रै खिसकिया, पग चौथा टिकै टकाए दियो। आसा महला चौथा, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर रस पाया गुरमत हर त्याया। तुर मस्तक भाग प्राण जियो, तुर मस्तक भाग हर नाम सुहाग। हर नामे हर गुण गाया, मस्तक मणि प्रीत बहु प्रगटी। हर नामे हर सोहाया, ज्योति ज्योत मिली प्रभ पाया। मिल सतगुर मनुआ मान जियो, हर कीरत मन पाई परम गत पाई। हर मन तन मीठ लगान जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, तिन हम चरण सरेव है खिन खिन पग धोवे है। जिन हर मीठ लगान जियो, हर मीठा लाया परम सुख पाया। मुख भागा रती चारी, गुरमत हर गाया हर हार उर पाया। हर नाम कंठ धारी, सब एक दृष्ट समत कर देखै। सब आत्म राम पछाण जियो, हर हर जस गाया परम पद पाया। ते उत्तम जन प्रधान जियो, सत संगत मन पाई हर रसन रसाई। विच संगत हर रस होए जियो, हर हर अराध्या गुर शब्द विगासिया। बीजा अवर ना कोए जियो, अवर ना कोए हरे अमृत सोए।

संगत मन पाई हर रस नरसाई विच संगत हर रस होए जियो हर दया प्रभ तार हो पाखण हम तार हो कद ले वो शब्द सुपाए जियो मोह चीकड़ पाथे निगरत हम जाते।

को होए, हर जन प्रभ एक समान जियो। तुर मरन लखाया गुरमुख सुहाया, जन उबरे हर हर ध्यान जियो। जग उपजै बिनसै बिनस बनासै, लग गुरमुख अस्थिर होए जियो। गुरमंत्र दृढ़ाए हर रसक रसाए, हर अमृत हर मुख चोए जियो। हर अमृत रस पाया मुआ जीवाया, फिर बहुड़ मरना होई। हर हर नाम अमर

जियो जागे उपजै बिन सह बिन सबनासै लग गुरमुख अस्थिर होए जियो आसा महला चौथा संत वड्डा मेरा गोविंद अगम अगोचर आदि निरंजन निरंकार जियो ता की गत कही ना जाई अमित वड्याई मेरा गोविंद अलख अपार जियो गोविंद अलख अपार।

निर्गोचर आद निरंजन निरंकार जियो। तू आद पुरुष अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू घट घट अंतर सर्व निरंतर सब में रहया समाए जियो। काटे अंतर पार ब्रह्म परमेश्वर ताका अंत ना पाया तिस रूप न रेख अदिष्ट अगोचर। गुरमुख अलख लखाया सदा आनंद रह दिन राति सहजे नाम समाए जियो। तू आद पुरख अपरंपर करता तेरा पार न पाया जाए जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। हर हर प्रभ एको अवर ना कोई तू आपे पुरख सुजान जियो। पुरख सुजान तू प्रधान तुद जेवड़े अवर ना कोई तेरा शब्द सब तू है वरत है तू आपे करह सो होई। हर सब मह रव्या एको सोई गुरमुख लखिया हर नाम जियो। तू सत परमेश्वर सदा अविनाशी हर हर गुणी निदान जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। तुद आपे भावै तिवें चलावह सब तेरा शब्द समाए जियो। सब शब्द समावै जां तुद भावै तेरा शब्द वडियाई। गुरमुख बुद्ध पाई आप गवाई है शब्दे रहया समाई। तेरा शब्द अगोचर गुरमुख पाई है नानक नाम समाए जियो। सब तू है करता सब तेरी वडियाई ज्यों भावै तिवें चलाए जियो। एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा महला चौथा।

मेरा मन तनो पिन्ना जन नानक मुसक चकोलिया सब जन्म तन तन्ना हर प्रेम बाणी मन मारिया अणियाले अणिया राम राजी जिस लागी पीर पिराम की सो जाने जरिया जीवन मुक्त सो आखी है।

हर पाया, हर भगत एक मंगा, मेरा मन तन शब्द विगासिया, जाप अनत तरंगा, मिल संत जना हर पाया, नानक सत संगा, दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ हर राया राम राजी, हों मांगू सरन हर नाम की, हर हर मुख पाया, भगत वच्छल हर बिरद है।

रस भिन्नी मैं हर प्रभ प्यारा दस गुर मेल हर मन मनी हम मूर्ख कार लाइया नानक हर कमे गुर अमृत पिन्नी दे होरी अमृत बुर के राम राजी जिन्ना गुरबाणी मन पाईया अमृत शक शके गुर तुठ हर पाया चूके तक तके हर जन हर हर होया नानक हर इक्के आसा महला चौथा हर अमृत भगत भंडार है गुर सतगुर पासे राम राजी गुर सतगुर सच्चा साहू है सिख दे हर रासी तन तन बन जारा बन जे है गुर साहू सबासी जन नानक गुर तिन्नी पाया जिन तुर लिखत ललाट लखासी सच साहू हमारा तू धनी सब जगत बन जारा राम राजी सब पांडे तुदै साजिया विच वसत हर थारा जो पावे पांडे विच वस्त सा निकले क्या कोई करे बेचारा जन नानक को हर बख्शिया हर भगत भंडार।

आई। आसा महला चौथा, जिन मस्तक तुर हर लिखिया, तिन्ना सतगुर मिलिया राम राजी, अज्ञान अंधेरा कट।

मेरा सतगुरु सोथान सोहावा राम राजी गुर सिखी सोथान पालिया लै तूर मुख लावा गुर सिखा की काल ताई पई जिन हर नाम त्यावा जिन नानक सतगुर पूजिया तिन हर

गुरसिखा की भुख सब गई, तिन पिछै होर खाए कनेरी। जन नानक हर पुन बीजिया, फिर तोट ना आवै हर पुन केरी। गुरसिखा मन वाधाइया, जिन मेरा सतगुरु डिठा राम राजी। कोई कर गल सुनावै हर नाम की, सो लगै गुरसिखा मन मिठा। हर दरगाह गुरसिख पैलाई है, जिन्ना मेरा सतगुरु तुठा। जन नानक हर हर होया। हर

जिन्ना सुख सद हुई जिन्ना नानक सतगुर भेटिया तिन्हा मिलिया हर सोई जिन्ना अंतर गुरमुख प्रीत है तिन हर रखण हारा राम राजी तिनकी निंदा कोई क्या करे जिन हर नाम प्यारा जिन हर सेती

करे मन तृष्णा ना बुझी मेरे प्यारे नित आस करे नित जोवन जावे मेरे प्यारे जम सास हिरे भाग मणि सुहागण मेरे प्यारे नानक हर पुर तारे फिर रत्याड़े मैंडे लोइन मेरे प्यारे चात्रक बूंद जिवें मन

रुते फिर बाजड़ियों हो मेरे प्यारे आंगन धूड़ लुते मन आस उड़ीनी मेरे प्यारे दोए नैन जुते गुरु नानक देख बिगसी मेरे प्यारे ज्यों मात सुते।

जिन हर मेलाइया सब आसा हर पूरियां मेरे प्यारे मन चिंदियाड़ा फल पाया हर तुठड़ा मेरे प्यारे जन नानक नाम समाया प्यारे हर बिन प्रेम ना खेलसा क्यों पाई गुर जित लग प्यारा देखसा।

सहज भया गृहवास आया मंगल गाया पांच दुष्ट ओए भाग गया शीतल आघाणे अमृत बाणी साजन संत बसीठा कहो नानक हर सियो मन।

सोहे बंक द्वारी नव निदे नौ निदे मेरे घर मह आई राम सब किश मैं सब किश पाया नाम त्याई राम नाम त्याई सदा सखाई सहज सुपाई गोविंदा गणत मटाई चूकी ताई कदे ना व्यापै मन चिंदा गोविंद गाजे अनहद वाजे अचरज।

सरसियड़े मेरे भाई सब मीता राम बिखमो बिखम अखाड़ा मैं गुरमिल जीता राम गुरमिल जीता हर हर कीता टूटी पीता भरम गड़ा पाया खजाना बहुत नदाना साणथ मेरी आप खड़ा सोई सुगयाना सो परदाना जो प्र

हर रंग माणी हर संता हर संत सज्जन मेरे मीत सहाई राम वड भागी सत संगत पाई राम वड भागी पाए नाम ते आए लाथे दूख संतापै गुर चरणी लागे प्रम पौ भागी।

हर दर सोहन तेरे भगत प्यारे राम। वारी तिन वारी जावा सद बलिहारे राम। सद बलिहारे कर नमस्कारी जिन भेटत प्रभ जाता। घट घट रव रहा सब थाई पूरन पुरख विधाता। गुरपुरा पाया नाम ते आया जूए जन्म न हारे। बिनवंत नानक सरन तेरी राख किरपा धारे। बेअंता बेअंत गुण तेरे केतक गावा राम। तेरे चरना तेरे चरण धूड़ वडभागी पावा राम। हर धूड़ी नाइय मैल गवाइय जन्म मरण दुख लाथे। अंतर बाहर सदा हदूरे परमेश्वर प्रभ साथे। मिटे दुख कल्याण कीर्तन बहुड़ जोन ना पावा। बिनवंत नानक गुर सरन तरिय अपने प्रभ पावा।

राजी मिल संत संगत आराध्या हर घट कटे दीठा राम राजी हर घट कटे दीठा अमृतो बूठा जन्म मरण दुख नाठे गुण निद गाया सब दुख मटाया हम मैं बिनसी गांठे प्रियो सह

मीठा ज्यों राती जल माछुली त्यों राम रस माते राम राजी गुर पूरै अपदेसिया जीवन गत पहते राम राजी जीवन गत स्वामी अंतर जामी।

जम पंथ भणी है तह साध संग ना डर पीऐ कर कीरत गोविंद गुणी है सगल परास्त दुख हरे कहो नानक संत गोविंद हर के मन हर स्यो नेहो करे हो ऐसी मन प्रीत हरे जैसी मछली नीर एक खिन पी ना तीरे मन ऐसा नेहो करे हो जैसी चात्रक प्यास खिन खिन बूंद चवे बरस सुहावे मेह हर प्रीत करी जय इहो मन दीजै हथ लाइय चित

कहो नानक संत अनंत ठाकुर की हर सियों की जय नेहा। मन ऐसा नेहो करे हो चकवी सूर स्नेहो चितवै आस घनी कद दिनियर देखी है। गोकल अंब प्रीत चवै सुहाविया मन हर रंग कीजिय। हर प्रीत करी जै मान ना कीजै इक राती के हब पाहुणिया। हब क्या रंग लायो मोहर चायो नांगे आवन जावणिया। थिर साधु सरनी पड़िए चरनी अब टूटस मोह जो कीती है। कहो नानक संत दयाल पुरख के मन हर लाए प्रीत कब दिनियर देखी है। निष्करंक जैसे नाद सुन श्रवणी हियो डिवै मन ऐसी प्रीत की जै। जैसी तरण पतार उर्जी तिरह सिवै एहो मन लाल दीजै। मन लालह दीजै भोग करीजै हब खुशियां रंग माणी। फिर अपना पाया रंग लाल बनाया

गीत की जय। आस्था महला पंजवा सलोक, बन बन फिरती खोजती हारी बहु अवगाही। नानक पेटे साध जब हर पाया मन माही। संत जाको खोजह असंख मुनि अनेक तपे, ब्रह्मे कोट अराध ज्ञानी जाप जपे। जप ताप संयम क्रिया पूजा, अनक सोधन बंदना कर गवन बसदा। तीर्थ है मज्जन मिलन को निरंजना, मानुख बन तिन पशु पंखी सगल तुझ आराधते। दयाल लाल गोबिंद नानक मिल साध संगत होए गते। कोट बिसन अवतार शंकर जटा धार, चाह है तुझ दयार मन तन रुच अपार। अपार अगम गोविंद ठाकुर सगल पूरक प्रभ धनी, सुर सिद्ध गण गंधर्व त्याव है जख किनर गुण भनी। कोट इंदर अनेक देवा जपत स्वामी जय जयकार, अनाथ नाथ दयाल नानक साध संगत मिल उधार। कोट देवी जाको सेव है लक्ष्मी अनक पांत, गुप्त प्रगट जाको राध है पौन पानी दिन सरात। नखियतर ससियर सूर त्याव है वसुद गगना गावे, सगल खानी सगल बाणी सदा सदा त्यावे। सिमरत प्राण चतर बेद खट शास्त्र जा को जपात, पतत पावन भगत वचल नानक मिली है संग सात। जेती प्रभु जनाई रसना तेत भनी, अनजानत जो सेवै तेती नह जाए गनी। अवगत अगंत अथाह ठाकुर सगल मंजे बाहरा, सर्ब जाचक एक दाता नह दूर संगी जाहरा। वस भगत थिया मिले जिया ताकि उपमा कित गनी, एहो दान मान नानक पाए सीस साधा धर चरनी। आसा महला पंजवा सलोक, उदम करहो वडभागी हो सिमरो हर हर राय। नानक जिस सिमरत सब सुख होवे है दुख दर्द भ्रम जाए। संत नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है, भेटत साधु संग जमपुर नह जाई है। दुख दर्द ना पौ ब्यापे नाम सिमरत सद सुखी, सास सास अराध हर हर त्याए सो प्रभ मन मुखी। कृपाल दयाल रसाल गुण निध कर दया सेवा लाई है। नानक पयंपे चरण जंपे नाम जपत गोबिंद नह अलसाई है। पावन पतत पनीत नाम निरंजना, परम अधेर बनास ज्ञान गुर अंजना। गुर ज्ञान अंजन प्रभ निरंजन, जल पल मही अल पूरिया एक निमख जा कैर दै वसिया। मिटे तिसै वसूरिया अगाध बोध समरथ स्वामी, सर्ब का पौ भंजना। नानक पयंपै चरण जंपै पावन पतत पुनीत नाम निरंजना। ऊट गही गोपाल दयाल कृपा निदे, मोहे आसर तो चरण तुम्हारी शरण सिदे। हर चरण कारण करण स्वामी, पतत उधरन हर हरि सागर संसार पाव उतार। नाम सिमरत बहुतरी आद अंत बेअंत खोजह, सुनी उधरन संत संग बिदे। नानक पयंपै चरण जंपै ओट गही गोपाल दयाल कृपा निदे। भगत वचल हर

आवे अवनासी अवघत सो प्रभ सदा नव तन निर्मला नह दूर सदा हदूर ठाकुर दह दिस पूर्ण सद सदा प्राण पत गत मत जाति प्रिय प्रीत प्रीतम भावे नानक वखाणे गुर बचन जाने फिर संतन सुहाग मरे ना जावे जाको राम पतार तां कै अनद घना सुखवंती सानार सोभा पूर्बना मान महत कल्याण हर जस संग सुरजन सो प्रभु सर्ब सिद्ध नवनिद तित ग्रह नहीं ऊना सब कछु मधुर बाणी प्रह मानी थिर सुहागता का बना नानक वखाणे गुर बचन जाने जाको राम पतार तां कै अनद घना आओ सखी संत पास सेवा लागी है पीसों चरण पखार आप त्यागी है।

पास सेवा लागी है। जाके मस्तक भाग से सेवा लाया, ताकि पूर्ण आस जिन साध संग पाया। साध संग हर कै रंग गोविंद सिमरन लागिया।

कर जोड़। हर हर नाम देहो, हर नाम मांगो चरण लागो, मान त्यागो तुम दया, कतहू ना तामो शरण पावो, करना मैं प्रभ कर्मया, समर्थ अगत अपार निर्मल।

कीच, सठ कठोर को लहीन, व्यापत मोह कीच, मल भरम करम अहंग ममता, मरण चीत न आवे, बनता बनोद आनंद माया, अज्ञान ताल पटावे, खिसै जोबन बदै जरुआ, दिन निहारे संग मीच, बिनवंत नानक आस तेरी, सरन साधु राख नीच, परमे जन्म अनेक, संकट महाजोन, लपत रहो ते संग, मीठे भोग सोन, प्रमत भार अगंत आयो, बहु परदेस सहतायो, अब ओट धारी प्रभ मरारी, सर्व सुख हर नायो, राखन हारे प्रभ प्यारे, मुझते कछु ना हुआ होन, सुख सहज आनंद नानक, कृपा तेरी तरह पौन, नाम तारीख उधारे, भगत हैं संसा कौन, जेन केन प्रकारे, हर हर जस सुनो श्रवन, सुन श्रवन बानी पुरख ज्ञानी, मन निधाना पावे, हर रंग राते प्रभ बधाते, राम के गुण गावे, बसद कागद बनराज कलमा।

धर्म करे दूत भय पलायन धर्म धीरज सहज सुखिए साध संगत हर भजे कर अनग्रहो राख लीने मोह ममता सब तजे गह कंठ लाए गुरमलाए गोविंद जपत अगायन विनवंत नानक सिमर स्वामी सगले आस पुजायन निध सिद चरण गहे ता केहा काड़ा सब किस वस जिसै सो प्रभु असाड़ा गह पुजा लीने नाम दीने कर धार मस्तक राखिया संसार सागर नह व्यापै हम्यों हर रस चाखिया साज संगे नाम रंगे

काहे दड़ो सो वेखी साथ है, संग देखै करनहारा काहे पाप कमाइयै सो कृत की जय नाम लीजै नरक मूल ना जाइए आठ पहर हर नाम सिमर।

साथी भज साध संगत सदा नानक मिट हैं दुख कमाते वलवंच कर उदर भर हैं मूर्ख गावारा सब किस दे रहे।

ताज काम क्रोध अनिंद निंदा प्रभ शरण आई आया। जल थल महियल रविया स्वामी ऊच अगम अपारा बिनवंत नानक टेक जन की चरण कमल अधारा। एक हर चंदौरड़ी अस्थर किश नाही माया रंग जेते से संग ना जाही। हर संग साथी सदा तेरे दिन सरैन संभाली है हर एक बिन काशे अवर नाही। भाओ दुतिया जाली है मीत जोबन माल सरबस प्रभ एक कर मन माही बिनवंत नानक वड़।

कमला भ्रम पीत कमला भ्रम पीत हे तीखण मद विपरीत हे अवध अकारत जात गहबर बन कोर गहबर बन कोर हे ग्रह मूसत मन चोर हे दिन करो अन दिन खात जात बेहात प्रभ बिन मिलो प्रभ करुणा पते जन्म मरण अनेक बीते प्रिय संग बिन कछ नह गते कुल रूप धूप ज्ञानहीनी तुझ बिना मोहे कमन मात कर जोड़ नानक सरण आयो प्रिय नाथ नरहर करो।

नानक मगन होत अलियल गुंजात, अलियल गुंजात हे मकरंद रस बासन मात हे प्रीत कमल बंधावत आप चातरक चित प्यास हे घन बूंद विचित्र मन आस हे अन पीवत बिन सतताप तापा बनासन दुख नासन मिल प्रेम मन तन अत घना सुंदर चतुर सुजान स्वामी कमन रसना गुण पना गह पुजाले वो नाम देव हो दृष्ट धारत मिटत पाप नानक जंपै पतत पावन हर दर्श।

करत ना लागी वार। महला दूजा, जे सौ चंदा उगवह सूरज चढ़ है हजार। एते चानन होंदिया गुरबेन घोर अंधार। महला पहला, नानक गुरु ना चेतनी, मन अपने सोचेत।

रते से जन गए हार गए से ठगण वालिया लिख नावे धर्म बहालिया। सलोक महला पहला विस्माद नाद विस्माद वेद विस्माद जी विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नांगे फिर है जंत विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेदह वेडाणी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगह पराणी विस्माद संजोग विस्माद विजोग विस्माद भुख विस्माद भोग विस्माद सिफत विस्माद सलाह विस्माद उज्जड़ विस्माद राह विस्माद नेड़ विस्माद दूर विस्माद देख हाजरा हजूर वेख वडान रहया विस्माद नानक बुझण पूरे भाग। महला पहला कुदरत दिसै कुदरत सुनिए कुदरत पौ सुख सार कुदरत पाताली आकाशी कुदरत

जहान कुदरत नेकियां कुदरत बदियां कुदरत मान अभमान कुदरत पौन पानी बैसंतर कुदरत धरती खाक सब तेरी कुदरत तू कादर करता पाकी नाई पाक नानक हुक्मै अंदर वेखै वरतै ताको ताक पौड़ी आपी न भोग भोग कै होए पसमड़ पौर सदाया वड्डा हुआ दुनीदार गल संगल कत चलाया अगे करनी कीरत वाची है बहलेखा कर समझाया।

पताल लख टकिया के मुंदड़े लख टकिया के हार जित तन पाई है नानका से तन हो है शार ज्ञान ना गली ढूंढी है कथना करड़ा सार कर्म मिले ता पाई है

बहुते जन्म परमिया ता सतगुर शब्द सुनाया। सतगुर जे वरदाता को नहीं सब सुनियो हो लोक सबाया। सतगुर मिलया सच पाया जिनी विचों आप गवाया। जिन सचो सच बुझाया सलोक महला पहला। कड़िया सबे गोपिया पहर कन गोपाल। गहने पौन पानी बैसंतर चंद सूरज अवतार। सगली धरती माल धन बर्तन सर्ब जंजाल। नानक मुस्तै ज्ञान विहूनी खाए गया जमकाल। महला पहला वायन केले नचन गुर पैर हलायन फेरन सिर। उड़ उड़ रावा चाट।

मन भाऊ पौड़ी ना तेरा निरंकार है ना ही लै नरक ना जाई है जियो पिंड सब तिसदा देखा जय आख गवाई है जे लोड़ है चंगा अपना कर पुनो नीच सदाई है जे जरवाना पर हर है जर वेस करेंदी आई है को रह ना भरिय पाई है सलोक महला पहला मुसलमाना सिफत सरयत।

तीर्थ नाव है अर्चा पूजा अगर वास बहकार। जोगी सुन त्यावन जेते अलख नाम करतार। सूखम मूर्त नाम निरंजन

पौड़ी बिन सतगुर किने ना पायो, बिन सतगुर किने ना पाया। सतगुर विच आप रखियोन कर प्रगट आख सुनाया।

बंदना फिर फिर जोनी पाहे हम मैं कितों उपजे कित संजम एह जाए हम मैं एहो हुक्म है पये किरत फराहे हम मैं दीर्घ रोग है दारू पी इस माहे कृपा करे दे अपनी ता गुर का शब्द कमाए नानक कहे सुनहो जनहो हित संयम दुख जाहे पौड़ी सेव कीती संतोखे जिनी सचो सच ते आया ओनी मंदे पैर ना रखियो कर सो किरत धर्म कमाया ओनी दुनिया तोड़े बंदना अन पानी थोड़ा खाया तू बख्शी सी अगला

जिन सचो सच वरताया, जिस तू देह तिस मिलै सच, ता तिन्नी सच कमाया। सतगुर मिलिया सच पाया, जिन कै हिरदै सच वसाया, मूरख सच ना जाननी, मन मुखी जन्म गवाया, विच दुनिया काहे आया। श्लोक महला पहला, पढ़ पढ़ गड्डी लदी है, पढ़ पढ़ भरी है साथ, पढ़ पढ़ बेड़ी पाई है, पढ़ पढ़ गड्डी है खात, पढ़ी है जेते बरस बरस, पढ़ी है जेते मास, पढ़ी है जेती आरजा, पढ़ी है जेते सास। नानक लेख एक गल, होर हूं मैं चखना चाख। महला पहला, लिख लिख पढ़िया ते ता कड़िया, बहु तीर्थ भविया ते तो लविया, बहु भेख किया देही दुख दिया, सहोवे जिया अपना किया, अन्न न खाया साध गुआया, बहु दुख पाया दूजा पाया, बस्तर न पहरे अहनिस कहरे, मोन बगूता क्यों जागे गुरबिन सूता, पग उपे ताना अपना किया कमाना, अलमल खाई सिर शाई पाई, मूर्ख अंधे पत गुआई, विण नामे किस थाए ना पाई, रह बेबाणी मड़ी मसाणी, अंध न जाने फिर पछताणी, सतगुर भेटे सो सुख पाई, हर का नाम मन वसाई, नानक नदर करे सो पाए, आस अंदेसे ते निह केवल, हम मैं शब्द जलाई पौड़ी, भगत तेरे मन भाव दे, दर सोहन कीरत गाव दे, नानक करमा बाहरे, दर ढो ना लहनी धाम दे, एक मूल ना बुझन अपना, अणहुंदा आप गणाए दे, हों ढाडी कानी।

मल उतर तन करे हच्छा तोय सच ता पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुन मन रहसी है ता पाए मोख द्वार।

वास सच सबना हुए दारू पाप कड्डे तोए नानक वखाणे बेनती जिन सच पल्ले हुए पौड़ी दान महिंदा तली खाक जे मिले ता मस्तक लाई है कूड़ा लालच छड़ी है होए एक मन अलख ते आई है फल तेवे हो पाई है जे वे ही कार कमाई है जे होवे पूर्व लिखिया ता धूड़ तिना दी पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सलोक महला पहला सच काल कूड़ वरतिया कल कालक बेताल बियो बीज पत लै गए अब क्यों उगवे दाल जे एक होए ता उगवे रुती हूं रुत होए नानक पाहे बाहरा पूरे रंग ना सोए भै विच खुंभ चढ़ाई है शर्म पाह तन होए नानक भगत।

पाहे भरे मरदार। ज्ञानी नचह वाजे वावह रूप करह सिंगार। ऊचे कूकह वादा गावह जोदा का विचार। मूर्ख पंडित हिकमत हुज्जत संजय करह प्यार। धर्मी धर्म करह गावावह

होई बलिहारी कुदरत वस्या तेरा अंत न जाई लखिया रहाउ जात मह जोत जोत मह जाता अकल कला भरपूर रहया तू सच्चा साहिब सिफत सवालियो।

ऐसा चिरहि सबको सच समावे। ऋग कह रहे आ भरपूर राम नाम देवा महसूर। नाई लय परास्त जाहे नानक तौ मुखंतर पाहे। जुज मह जोर छली चंद्रावल कान कृष्ण जादम भया। पार जात गोपी लै आया बिंद्रा बन मह रंग किया। कल मह वेद अथर बन हुआ नाउ खदाई अल्लुह भया।

सूत जत गंढी सत वट एहो जने उजी का है ता पांडे कत ना एहो तुटे ना मल लगे ना एहो जले ना जाए तन सो मानस नानका जो गल चले पाए चौकड़ मुल अनाया बह चौंके पाया सिखा कन चढ़ाइया गुरु ब्राह्मण थिया ओह मोवा ओह झड़ पया वे तगा गया महला पहला लख चोरिया लख जारिया लख कूड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया रात दिन सजी नाल।

फिर पाइय होर नानक तग ना टुटई जे तग होए जोर महला पहला नाए मन्ने पति उपजै साला ही सच सूत दरगाह अंदर पाई है तग ना टूट सपूत महला पहला तग ना इंदरी तग ना नारी पलके थुक पवे नित दाड़ी तग ना पैरी तग ना हथी तग ना जेवा तग ना अखी वे तगाया पे बत्ते वट तागे अवरा।

कार कराए सी सो सेवक सेवा करे जिसनो हुक्म मनाए सी हुक्म मने हुए प्रवान ता खसमै का महल पाए सी खसमै भावे सो करे मनहु चिंदिया सो फल पाए सी ता दरगाह पैंदा जाए सी। श्लोक महला पहला। गऊ ब्राह्मण कौ कर लावहु गोबर तरण ना जाई धोती टिक्का तै जप माली धान मलेच्छा खाई अंतर पूजा पढ़ै कतेबा संजम तुरका पाई।

ताग तिनकर ब्राह्मण पूरह नाद उना ते आवह ओई साध कूड़ी रास कूड़ा वापार कूड़ बोल करह आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका तेड़ तो तीक खाई हाथ छुरी जगत का साई नील वस्त्र पहर हो वह परवान मलेश तान ले पूजह पुराण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके ऊपर किसे न जाना देके चौका कड्डी कार ऊपर आए बैठे कूड़ियार मत पिटे वे मत पिटे एह अन्न असाडा फिटे तन फिटे फेड़ करेन मन जूठे चुली परेन कहो नानक सच त्याईए सोच होवे तां सच पाईए पौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे दे वडियाईया आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो हो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर तंदे लाएंदा नदर उपट्ठी जे करे सुल्ताना काहु कराएंदा दर मंगन भिख ना पाएंदा सलोक महला पहला जे मुहाका कर मोहे कर मोहे पितरी दे अग्गे वस्त सियाणी है पितरी चोर करे वड़िये है हाथ दलाल के मुस्फी एहे करे नानक अग्गे सो मिले जे खट्टे काले दे महला पहला।

नानका जिन मन वसिया सोए पौड़ी तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हरम सवारिया कोठे मंडप माड़िया लाए बैठे कर पा सारिया चीज करन मन भाव दे हर बुझण नाही हारिया कर फुरमाए सिखाया वेख महलत मरन वसारिया।

कोई पहला पानी जियो है जित हरिया सब कोई सूतक क्यों कर रखी है सूतक पवैर सोय नानक सूतक एव ना उतरै ज्ञान उतारे तोय महला पहला मन का सूतक लोभ है जिहवा सूतक कूड़ अखी सूतक वेखना पर त्रिय पर धन रूप कन्नी सूतक कन पै लायत बारी खाहे नानक हंसा आदमी बदे जमपुर जाहे महला पहला सभो सूतक भरम है।

गुरमुख बुझिया तिना सूतक नाही पौड़ी। सतगुर वड्डा कर सालाही है जिस विच वड्डियां वड्याईयां सह मेले ता नदरी आईयां जां तिस पाणा ता मन वसाईयां कर हुकम मस्तक हाथ धर विचों मार कढ़ियां बुरियाईयां सह तुठे नौ निध पाईयां। सलोक महला पहला पहला सुचा आप होए सुचै बैठाया आए सुचे अगै रखियोन

फिक्का मूर्ख आखिए पाणा लह सजाए महला पहला अंदरों झूठे पैज बाहर दुनिया अंदर फैल अठ सठ तीरथ जे नावह उतरै नाही मैल जिन पट अंदर बाहर गुदड़ ते भले संसार तिन ने हो लगा रब सेती देखने विचार रंग हसह रंग रूवह चुप भी कर जाहे परवाह नाही किसे केरी बाज सच्चे नाह दरवाटे ऊपर खर्च मंगा।

तह धारी देख है कीता अपना तर कच्ची पक्की सारी है जो आया सो चल सी सब कोई आई वारी है जिसके जी प्राण है क्यों साहिब मनु विसारी है अपना।

आई नानक आशिक कांडी है सद ही रह समाई चंगा चंगा कर मन्ने मंदा मंदा होए आशिक इहो ना आखी है जे लेख वरत सोए महला दूजा सलाम जवाब दोए करे मुंडो कुथा जाए नानक दोए कूड़िया थाए ना काई पाए पौड़ी जित सेवे है सुख पाई है सो साहिब सदा संभाली है जित कीता पाई है अपना साकाल बुरी क्यों काली है मंदा मूल ना कीचे ही दे लम्मी नजर निहाली है ज्यों साहिब नाल ना हारी है ते वेहा पासा ढाली है किश लाहे उपर काली है सलोक महला दूजा चाकर लगे चाकरी नाले गारबवाद गल्ला करे कनेरियां खसम ना पाए साध आप गुआए सेवा करी।

नाल आने दूसती कदे न आवै रास जिहा जाने ते हो वरतै वेखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावै दूजी होवै पास साहिब सेती हुक्म ना चलै कही बने अरदास कूड़ कमाणे कूड़ो होवै नानक सिफत विगास महला दूजा नाल आने दोस्ती।

किसनो अगली ओह वजहो पेदूना खाए खसमै करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजहो गवाए अगला मुहे मुहे पाना खाए जिस दा दिता खावना तिस कही ऐसा बास नानक हुक्म।

कियो। गुर चरण लाग हम बिनवता, पूछत कह जियो पाया। कमन काज जग उपजै बिनसै, कहो मोहे समझाया। देव करहु दया, मोहे मार्ग लाभ हो।

इन भेद अपियो ना चूके कही ना उपजे उपजी जाने भाव अभाव बिहूना उदय अस्त की मन बुद्ध नासी तो सदा सहज लिव लीना ज्यों प्रतिबिंब बिंब को मिली है उदक कुंभ बिगराना कहो कबीर ऐसा गुण भ्रम भागा तो मन सुन समाना आसा गज साडे तै तै धूतियां तेरे पाइन तग गली जिन्ना जप मालियां लोटे हाथ निबग ओए हर के संतन।

काल आगम निर्गम जो तिक जान है बहु बहु ब्याह करना तंत मंत्र सब औखद जान है अंत तहु मरना राज भोग अर सतर संघासन बहु सुंदर रमना पान कपूर सुबासक चंदन अंत तहु मरना वेद पुराण सिमरत सब खोजे।

शंख बजावे वंश को पूत ब्याहन चलिया सोइने मंडप छाए रूप कन्या सुंदर बेदी ससै सिंह गुन गाए।

आसा बटुआ एक बहतर आधारी एको जिसह द्वारा नवे खंड की प्रथमी मांगे सो जोगी जग सारा ऐसा जोगी नौनिध पावे तल का ब्रह्म ले गगन चरावे रहाउ खिंथा ज्ञान ध्यान कर सोई शब्द तागा मथ काले पंच तत् की कर मिर्गानी गुर कै मार्ग चाले दया पहुरी काया कर तुई दृष्ट की अग्न जलावे तिसका पाओ लए हृदय अंतर चहो जुग ताड़ी लावे सब जोग तन राम नाम है।

पड़त गुनत ऐसे सब मारे, किन्हूं खबर ना जानी रहाओ। सकत सुनेहो कर सुन्नत करिए, मैं न बदौगा पाई, जौरे खुदाए मोहित।

जव नहीं हटै गुसाई दो तुके एक ओंकार सतगुर प्रसाद आसा श्री कबीर जीओ के चौपदे एक तुके सनक सनंद अंत नहीं पाया वेद पढ़े पढ़ ब्रह्मे जन्म गवाया हर का बलोव ना बलोव हो मेरे भाई सहज बलोव हो जैसे तत ना जाई रहाव तन कर मटकी मन माहे बलोई इस मटकी मह शब्द संजोई।

खंडस अवगन मेरा रहाव, जे अत क्रोप करे कर ताया, तां पी चीत ना राखस माया, चिंत पवन

समझावूं। आसा श्री कबीर जीओ के पंच पदे नौ, दो तुके पंज, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पाती तोरै मालनी, पाती पाती जीओ, जिस पाह

डारी फूल शंकर देव तीन देव प्रताख तो रह करह किसकी सेव पाखान गढ़ कै मूर्त कीनी दे कै छाती पाव जे एह मूर्त साची है तो गढ़न हारे खाओ पात पहत अरलापसी कर करा का सार भोगन हारे भोगया इस मूर्त के मुख शार मालिन भूली जग भुलाना हम

काल पन बीते, 20 वर्ष कस तप ना कियो, 30 वर्ष कस देव ना पूजा, फिर पछताना बिरद भयो, मेरी मेरी करते जन्म गयो, शायर सोख भुजंग बलियो, रहाओ सूके सरवर पाल बंधावे, लूणे खेत हथवार करे, आयो चोर तुरंत है ले गयो, मेरी राखत मुग्ध फिरे, चरण सीस कर कंपन लागे, नैनी नीर असार बह, जिहवा बचन शुद्ध नहीं निकसे, तबरे धर्म की आस करे, हर जियो कृपा करे लिवलावे, लाहा हर हर नाम लियो, गुर प्रसादी हर तन पायो, अंते चल दिया नाल चलियो, कहत कबीर सुनो रे संत हो, अन तन कछुए लै ना गयो, आई तलब गोपाल।

सो कृत कर कर लीजै रे मन रहाओ। कुमारै एक जो माटी गूंदी बहु विद्वानी लाई। काहू मह मोती मुक्ताहल काहू ब्याद लगाई। सुमह धन राखण को दिया मुग्ध कह धन मेरा। जम का डंड मूंड मह लागे किन मह करे निवेरा। हर जाने उत्तम भगत सदावे आग्या मन सुख पाई। जो तिस भावे सत

आसा तम मशकीन खुदाई बंदे तुम राजस मन भावे अल्लाह अवल दीन को साहिब जोर नहीं फरमावे काजी बोलिया बन नहीं आवे रहाउ रोजा धरे निवाज गुजारे कलमा पिसत ना होई सतर काबा घट ही पीतर जे कर जाने कोई नवाज सोई जो न्याऊं बिचारे कलमा अकलह जाने।

कर फीकी। आप जनाए अवर को जाने तब हुए पिस्त सरीकी। माटी एक पेख तर नाना ताम है ब्रह्म पछाना। कह कबीरा पिस्त छोड़ कर दोजक स्यों मन माना। आसा गगन नगर एक बू

जराई, कह बिसियर को दूध पियाई, सात संगत मिल बबेक बुद हुई, पारस परस लोहा कंचन सोई, साकत सुवान सब करी कराया, जो

रमत तिस सब किश सूजै। 22 चौपदे तथा पंच पदे आसा श्री कबीर जीओ के तिप दे 8, 2 तुके 7, 1 तुका 1। एक ओ अंकार सतगुर प्रसाद, बिंद तेजन पिंड किया, अगन कुंड रहाया, 10 मास माता उदर राखिया, बहुर लागी माया, प्राणी काहे को लोभ लागे, रतन जन्म खोया, पूरब जन्म कर्म कूम, बीज नाही बोया रहाओ, बारक ते बिरद भया, होना सो होया, जां जम आए चोट पकरे, तब है काहे रोया, जीव न की आस करह, जम ने

आओ नाभ कमल मह बेदी रचले ब्रह्म ज्ञान उचारा राम राय सो दूलोह पायो आसवड भाग हमारा सुर नर मुन जन कौतक आए कोट तेतीस उजाना कह कबीर मोहे ब्याहे चले हैं पुरख एक भगवाना आसा।

पुर की प्यारी जेठ के नाम डरो रे सखी सहेली नंद गहेली देवर का बिरह जरो रे।

राई माया सद मतवारी बड़े भाई कह जब संग होती तब हो नाह प्यारी कहत कबीर पंच को झगरा झगरत जन्म गवाया झूठी माया सब जग बांदिया मैं राम रमत सुख पाया।

गायत्री गोविंद हृदय हमारे मेरी जिह्वा बिसन नैन नारायण हृदय बस है गोविंदा जम द्वार जब पूछस बबरे तब क्या

खसम हमारे तू बामन मैं कांसी के जुलहा बुझो मोर ज्ञाना तुम तो जाचे भूपत राजे हर सौ मोहर त्याना आसा जग जीवन ऐसा सुपने जैसा जीवन सुपन समान साच कर हम गांठ दीनी छोड़ परम निदान बाबा माया मोह हित कीन जिन ज्ञान रतन हिर लीन रहाओ नैन देख पतंग उर्जे पासना देख आग काल पासना मुग्ध चेत कनक कामन लाग कर विचार विकार परहर तरन तारन सोए कह कबीर जग जीवन ऐसा दुतिया नाही कोय आसा जो मैं रूप किए बहु तेरे अब खुन रूप न होई तागा तंत साज सब ठाका राम नाम बस होई अब मोहे नाचनो ना आवे मेरा मन मंदरिया ना बजावे रहाओ काम क्रोध माया ले जारी तृष्णा गागर फूटी काम चोलना भया है पुराना गया परम सब छूटी।

मैं तेरा सोच विचार ना देखै खबर ना करै दीन के बौरे तां ते जन्म अलेखै रहाउ साचक ते बखाने अल्लाह नार पुरख नहीं कोई पड़े गुने नाही कछ बौरे ज्यो दिल मह खबर ना होई अल्लाह गैब सगल घट पीत।

तेरो पेर हौ हर की बहुरिया, राम बड़े मैं तनक लहरिया रहाओ। धन पेर एक है संग बसेरा, सेज एक पै मिलन दुहेरा। धन सुहागन जो पी पावे, कह कबीर फिर जन्म ना आवे। आसा श्री कबीर जीओ के दुपदे, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। हीरे हीरा बेद पवन मन, सहजे रहे आसमाई। सगल जोत इन हीरे बेदी, सतगुर बचनी मैं पाई। हर की कथा अनाहद बानी, हंस होए हीरा ले पछानी रहाओ। कह कबीर हीरा अस देखियो, जग मह रहा समाई। गुप्त हीरा प्रगट भयो, जब गुरगम दिया दिखाई। आसा पहली क्रूप कुजात कुलखनी, सोहरे पेय बुरी। अब की स्वरूप सुजान सुलखनी, सहजे उदर धरी। भली सरी मुई मेरी पहली बरी, जुग जुग जीवो मेरी अब की धरी रहाओ। कहो कबीर जब लोहरी आई, बड़ी का सुहाग टरियो। लोहरी संग पई अब मेरे, जेठी और धरियो। आसा मेरी बहुरिया को तनिया नाओ, ले राखियो राम जनिया नाओ। इन मुंडियन मेरा घर तुंदरावा, बिटवह राम रमऊआला।

रहु रहुरी बहुरिया घूंघट जिन काढ़े अंत की बार लहगी ना आढ़े रहाउ। घूंघट काट गई तेरी आगे उनकी गैल तोहे जिन लागे। घूंघट काढ़े की यह बड़ाई दिन दस पांच बहु भले आई। घूंघट तेरो तो पर साचे हर गुण गाए।

जाना सब जग अनत नायो ताना रहाउ। जब तुम सुन ले वेद पुराना तब हम इतनक पसरे उताना। तरन आकाश की कर गह बनाई चंद सूरज दोए साथ चलाई। पाई जोर बात एक कीनी तह तांती मन माना। जो लाहे घर अपना चीना घट ही राम पछाना।

जे तीर्थ लावे किस बैकुंठ ना जाना, लोक पतीने कछु ना होवे, ना ही राम अयाना, पूजो राम।

ऐसे ओए नर फिर जोनी आवे है मनहु कठोर मरे बनारस नरक ना बांचिया जाई हर का संत मरे हाड़म्भ है ता सगली सैन तराई दिन सना रैन वेद नहीं शास्त्र।

मन सत सहंस जैसी ऊत पूत प्रभ सोई रहाउ। जल तरंग हर फीन बुद बदा जल ते भिन न होई। एहो परपंच पार ब्रह्म की लीला विचरत आन न होई। मिथ्या भरम हर सुपन मनोरथ सत पदार्थ जानिया सुकिरत मनसा गुर उपदेसी जागत ही मन मानिया। कहत नाम देओ हर की रचना।

कुंभ पराई ले उदक ठाकुर को स्नान करूं। 42 लाख जी जल मह होते बीठल पहला काहे करूं। जतर जाऊं तत बीठल पहला महा आनंद करे सदके ला रहाओ। आनी ले फूल परोई ले माला ठाकुर की हम पूज करूं। पहले बास लई है भवर है बीठल पहला काहे करूं। आनी ले दूध रिदाई ले खीरं ठाकुर को नैवेद करूं। पहले दूध बटारियो बछरे बीठल पहला काहे करूं। ईबै बीठल ऊबै बीठल बीठल बिन संसार नहीं। थान तनंतर नामा प्रणवे पूर रहे हो तू सर्वमही। आसा मन मेरो गाज जेहबा मेरी काती। माप माप काटो जम की फासी।

अपना खसम त्यागो सोने की सुई रुपे का धागा नामे का चित हर स्यों लागा आसा साप कुंच छोड़े भिख नहीं छाड़े उदक माहे जैसे बाग ध्यान मांडे काहे को कीजे ध्यान जपन्ना जब ते सुध नाही मन अपना रहाओ सिंगच भोजन जो नर जाने।

आदि मृग मीन प्रिंग पतंग कुंचर एक दुख बनास पंच दुख असाद जाम है ताकी केत के आस माधो अविद्या हित कीन दुबेक दीप मलीन रहाव त्रिगद जोन अचेत संभव पुन पाप असोच मानुखा अवतार दुलभ तिही संगत पोच जी जंत जहां जहां लग कर्म के बस जाए काल पास अबद लागे कशना चले उपाय रविदास दास उदास तज ब्रह्म तपन तप गुर ज्ञान भगत जन पै हरन परमानंद करो निदान आसा संत तुझी तन संगत प्राण सतगुर ज्ञान जाने संत देवा देव संत की संगत संत कथा रस संत प्रेम माजै दीजै देवा देव रहाओ संत आचरण संत चो मार्ग संत च ओलग ओलगणी और एक मांगो भगत चिंतावन जनी लखाव हो संत पापी सन रविदास भणै।

सुगंध निवासा माधु सतसंगत शरण तुम्हारी हम योगन तुम उपकारी रहाओ तुम मखतूल सुपेद सुपियल हम बपुरे जस कीरा सतसंगत मिल रही है माधो जैसे मदपम खीरा जाति ऊंचा पाती ऊंचा ऊषा जन्म हमारा।

जो तन भयो छिन छिन प्रेम जाए तो डरपै तेरो जन तुझे चरण अरबिंद भवन मन पान करत पायो पायो रामैया तन रहाओ संपत बिपत पटल माया तन ता मह मगन होत ना तेरो जन प्रेम की जेवरी बांधे ओ तेरो जन कह रविदास छूटे बो कवन गुन आसा हर हर हर हर हर हर हरे हर सिमरत जन गए निस्तर तरे रहाओ हर के नाम कबीर उजागर जन्म जन्म के काटे कागर निमत नाम देव दूध पे आया तौ जग जन्म संकट नहीं आया जन रविदास राम रंग राता इयों गुर प्रसाद नरक नहीं जाता माटी को पुतरा कैसे नचत है देख देख सुन बोले दौर्यो फिरत है रहाओ जब कश पावे तब गर्भ करत है माया गई तब रोवन लगत है मन बच क्रम रस कसै लुभाना

हीरा रविदास टवंता टोर नीत तिन त्यागी माया प्रगट हुआ साध संग हर दर्शन पाया सैन नाई बुत कारिया ओह कर कर सुनिया हिरदै वसिया पार ब्रह्म भगतां मह

खुदाई तू बख्शंदगी सेख फरीद खैर दीजे बंदगी आसा बोले सेख फरीद प्यारे अल्लाह लगे एहो तन हो सी खाक निमाणी गोर करे आज मलावा सेख फरीद ताकम कुंजड़िया मनोम चिंदड़िया रहाओ जे जाना मर जाइए घूमना आइए झूठी दुनिया लग ना आप वंजाइए।

पीरिया कंचन वन्ने पासे कलवत चीरिया सेख हयाती जागना कोई थिर रहे आ जिस आसन हम बैठे केते बैस गया कत्तक कूंजा चेत डौ सावन बिजुलियां से आले सोहंदियां फिर गल बाहड़ियां चले चलन हार बचारा ले मनो गा देंदियां शे माह तुड़ंदियां हिक खिनो जिमी पुछे असमान फरीदा खेवट किन गए जालन गोरा नाल गुलामे जी सहे।

पुजे, भेद पढ़ मुख कंठ सवार, ताको अंत न जाई लखना, आवत जात रह गुबार, प्रीतम क्यों बिसरह मेरे प्राण आधार, जा की भगत करह जन पूरे, मुन जन सेवह गुर विचार, रहाव राव सस दीपक जाके त्रे भवन, एका जोत मरार, गुरमुख होए सो अहनस निर्मल, मनमुख रहन अंधार, सिद्ध समाद करह नित झगड़ा, दोह लोचन क्या हेरै, अंतर ज्योत शब्द धुन जागै, सतगुर झगर नबेरै, सुर नर नाथ बेअंत अजोनी, साचे महल अपारा, नानक सहज मिले जग जीवन, नदर करहु निस्तारा। राग गुजरी महला तीजा, कर पहला एक ओंकार, सतगुर प्रसाद त्रिग अवेहा जीवना, जित हर प्रीत ना पाए, जित काम हर विसरै, दूजे लगे जाए, ऐसा सतगुर सेविए मना, जित सेवे हैं गोविंद प्रीति उपजै।

गोविंद प्रीत सिंह एक सहज उपजिया वेख जैसी भगत बनी आप सेती आप खाया ता मन निर्मल हुआ ज्योति ज्योत समई बिन भागा ऐसा सतगुर ना पाईए जे लोचै सब कोई कूड़ै की पाल विचों निकले ता सदा सुख होए नानक ऐसे सतगुर की क्या ओह सेवक सेवा करे गुर आगे जियो तरे सतगुर का पाणा चित करे सतगुर आपे कृपा करे गुजरी महला तीजा हर की तुम सेवा करो दूजी सेवा करो ना कोई जी हर की सेवा ते मनु चिंदिया फल पाई है दूजी सेवा जन्म बिरथा जाए जी।

हर मेरा सिमरत हर मेरा शास्त्र हर मेरा बंदप हर मेरा भाई हर की मैं भूख लागे हर नाम मेरा मन तृप्त है हर मेरा साख अंत होए सखाई हर दिन होर रास कूड़ी है चलदियां नाल ना जाई हर मेरा धन मेरे साथ चल जहां हों जाऊं तह जाई सो झूठा जो झूठे लागे झूठे कर्म कमाई कह नानक हर का पाणा होआ कहना कछु ना जाई गुजरी।

हृदय जिन कह कपट वसै बाहर हूं संत कहाहे तृष्णा मूल ना चुकई अंत गए पछताहे अनेक तीर्थ जे जतन करे ता अंतर की हम मैं कदे ना जाए जिस नर की दुबदा ना जाए धर्म राये तिस देश जाए कर्म होवे सोई जन पाए गुरमुख बूझे कोई नानक विचों हम मैं मारे ता हर भेटै सोई गुजरी महला तीजा तिस जन शांत सदा मत निश्चल जिसका अभमान गवाए सो जन निर्मल जे गुरमुख बूझे हर चरणी चित लाए हर चेत अचेत मना जो इच्छा है सो फल होई गुर प्रसादी हर रस पाव है पीवत रह है सदा सुख होई रहाओ सतगुर भेटे ता पारस होए पारस होए ता पूज कराए जो उस पूजे सो फल पाए दीखिया देवे साच बुझाए बिन पारस है पूज ना हो वही बिन मन परचे अवरा समझाए गुरु सदाए अज्ञानी अंधा किस ओहो मार्ग पाए नानक बिन नदरी किछु ना पाई है जिस नदर करे सो पाए गुर प्रसादी दे वडियाई अपना शब्द वरताए गुजरी महला तीजा पंच पदे ना कांसी मत उपजे ना कांसी मत जाए सतगुर मिले मत उपजे ता

फिर रह ता भरम बिचों जाय रहाउ हर चरण हृदय वसाए तू किल विख हो वह नास पंच भू आत्मा वस करह ता तीर्थ करह निवास मनमुख एहो मन मुगद है सोजी किशु ना पाए हर का नाम ना बुझई अंत गया पछताई एहो मन कांसी सब तीर्थ सिमरत सतगुर दिया बुझाए अठ सठ तीर्थ तिस संग रह जिन हर हिरदय रहे आसमाय नानक सतगुर मिले हुक्म बुझिया एक वस्या मन आय जो तुद भावे सब सच है सच्चे रह समाय गुजरी महला तीजा तीजा एको नाम निधान पंडित सुन सिख सच सोई दूजे भाई जेता पढ़े पढ़त गुणत सदा दुख होई हर चरणी तू लाग रहो गुर शब्द सोजी होई हर रस रसना चाख

पुरख जो आप ना पछाने, सच ना धरे प्यार, सच्चे जगत दहकाया, कहना कछु ना जाए। नानक जो तिस पावे सो करे, ज्यों तिस की रजाए। एक ओंकार सतगुर प्रसाद, राग गुजरी महला चौथा, चौपदे घर पहला, हर के जन सतगुर सतपुरखा।

सखाई हर कीरत हमरी रहरास रहाऊ हर जन के वड भाग वडेरे जिन हर हर श्रद्धा हर प्यास हर हर नाम मिले तृप्ता सह मिल संगत गुण परगास जिन हर हर हर रस नाम ना पाया ते भागहीन जम पास जो सतगुर सरण संगत नहीं आई त्रिग जीवे त्रिग जीवास जिन हर जन सतगुर संगत पाई तिन तुर मस्तक लिखिया लेखास तन तन सत संगत जित हर रस पाया मिल नानक नाम परगास गुजरी महला चौथा गोविंद गोविंद प्रीतम मन प्रीतम मिल सत संगत शब्द मन मोह है जप गोविंद गोविंद त्याई है सब को दान दे प्रभ को है मेरे भाई जना मोको गोविंद गोविंद गोविंद मन मोह है गोविंद गोविंद गोविंद गुण गावा मिल गुर साध संगत जन सो है रहाऊ सुख साध

भागहीन मत फीके, नाम सुनत आवे मन रोहै, कौआ काग कौ अमृत रस पाई है, तृप्त विष्टा खाए मुख गोहै, अमृत सर सतगुर सतवादी, जितना तै कौआ हंस हो है, नानक धन तन वड्डे वड भागी, जिन गुरमत नाम हृदय मल तो है, गुजरी महला चौथा, हर जानी उत्तम उत्तम बाणी, मुख बोलह पारे उपकारी, जो जन सुने सरदा भगत सेती।

लय गल लाई, गुजरी महला चौथा। गुरमुख सखी सहेली मेरी, मोको देव हो दान हर प्राण जिवाया। हम हो वह लाले गोले गुरसिखा के, जिन्ना अन दिन हर प्रभ पुरख ते आया। मेरा मन तन बिरहो गुरसिख पग लाया, मेरे प्राण सखा गुर के सिख पाई। मोको करहो उपदेश हर मिले मिलाया रहाओ। जा हर प्रभ पावे ता गुरमुख मेले, जिन वचन गुरु सतगुर मन पाया। बड भागी गुर के सिख प्यारी, हर निर्बाणी निर्बाण पद पाया। सत संगत गुर की हर प्यारी, जिन हर हर नाम मीठा मन पाया। जिन सतगुर संगत संग ना पाया, से भागहीन पापी जम खाया। आप कृपाल कृपा प्रभ तारी, हरे आपे गुरमुख।

पद गुजरी महला चौथा कर तीजा माई बाप पुत्र सब हर के किए सबना कहो संबंध हर कर दिए हमरा जोर सब रहे ओ मेरे वीर हर का तन मन सब हर के वस है शरीर रहाओ भगत जना को श्रद्धा आप हर लाई विचे ग्रिस्त उदास रहाई जब अंतर प्रीत हर स्यों बने आई तब जो किश करे सो मेरे हर प्रभ पाई जित कारे कम हम हर लाई सो हम करहें जो आप कराई जिनकी भगत मेरे प्रभ पाई ते जन नानक राम नाम लिवलाई गुजरी महला पंजवां चौपदे कर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद काहे रे मन चितवह उदम जा आहार हर जियो परया सैल पत्थर मह जनते उपाय ता कारजक आगे कर तरिया मेरे माधो जी सत संगत मिले से तरिया गुर प्रसाद परम पद पाया सूके काष्ट हरिया रहाउ जनन पिता लोक सुत बनता कोई ना किसकी तरिया सिर सिर रिज

शरिया उन कवन खलावे कवन चगावे मन मह सिमरन करिया सब निदान दस अष्ट सिधान ठाकुर कर तल धरिया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत न पारा वरिया गुजरी महला पंजवा चौपदी घर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद किरिया चार करह खट करमा पितराती संसारी अंतर मैल न उतरे हुमे बिन गुर बाजी हारी मेरे ठाकुर रख ले वो कृपा तारी कोट मदे को विरला सेवक होर सगले व्यवहारी रहाव सास्त वेद सिमरत सब सोदे

हर सिमरत आनंद अनंता, रंग तमाशा पूर्ण आसा, कभे ना व्यापे चिंता, पवर तुम्हारा इहु मन होवो, हर चरना हो कौला, नानक दास हुन संग।

काटी काम क्रोध माया बिख ममता ए व्याध ते हाटी हर जस साध संग मिल गायु गुर प्रसाद पयु मन निर्मल सर्व सुखा सुख पायु रहाउ जो किछु कियो सोई भल मानै ऐसी भगत कमानी मित्र सत्तर सब एक समानी जोग जुगत निशानी पूरन पूर रहो सर्ब थाई आन न कतहु जाता घट घट अंतर सर्ब निरंतर।

सो अपने दुख भरिया पार ब्रह्म जिन हृदय अरादिया तिन भउ सागर तरिया गुर हर बिन को ना बिरथा दुख काटै प्रभ तज अवर सेवक जे हुई है तित मान महत जस काट।

पदे कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद दुख बिन से सुख किया निवासा तृष्णा जलन बुझाई नाम निदान सतगुरु दृढ़ाया।

वाला करने हार पछाता, जिसका साथ नहीं रख लिया सगल जुगत बन आई। कहो नानक प्रभ पुरख दयाला, कीमत कहन ना जाई। गुजरी महला पंजवा, दो पदे घर दूजा, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। पतत पवित्र लिए करे अपने, सगल करत नमस्कारु। वर्ण जात को पूछे नाही, बांछ चरण रवारु। ठाकुर ऐसो नाम तुम्हारो, सगल सृष्ट को धनी की जय। जन को अंग नरारु रहाउ, साध संग नानक बुद्ध पाई। हर कीर्तन आधारु, नाम देओ त्रिलोचन कबीर दासरु। मुक्त भयो चमियारु, गुजरी महला पंजवा। है नाही को बूजन हारु, जान कवन पता। शिव ब्रंच अर सगल मोन जन, गहना सकाहे गता। प्रभ की अगम अगाध कथा, सुनिए अवर अवर बिद बुझी।

यत्र कता गुजरी महल्ला पंजवा मता मसूरत अवर सियानप जन को कछु न आयु जह जह अवसर आये बनियो है तहां तहां हर त्यायु प्रभ को भगत वचल बिरदायु करे प्रतपाल बारक की न्याई जन को लाड लडायु रहाउ जप तप संयम कर।

पंजवा मुन जोगी शास्त्रग कहावत सब कीने बस अपनही तीन देव अर कोड तीसा तिनकी हैरत कश ना रही बलवंत व्याप रही सब मही अवर न जानस को मर्मा गुर कृपा ते लही रहाउ जीत जीत जीते सब थाना सगल पवन लपटही कहो नानक साध ते भागी होए चेरी चरण गही गुजरी महला पंजवा दुए कर जोड़ करी बेनंती ठाकुर अपना त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मटाया।

नानक तिस गुर बलिहारी जिन सब का किया उधार गुजरी महला पंजवा मात पिता भाई सुत बंदप तिनका बल है थूरा अनक रंग माया के पेखे किस साथ न चाले पूरा ठाकुर तुझ बिन आहे ना मोहरा मोहे अनाथ निर्गुण गुण नाही मैं आहे हो तुमरा तुरा रहाओ बल बल बल बल चरण तुम्हारा।

सगल निहोरा, गुजरी महला पंजवा, आल जाल प्रम मोहत जावे, प्रभ सेती रंग लाई, मन को एह उपदेश दृढ़ावे, सहज सहज गुण गाई, साजन ऐसो संत सहाई, जिस पेटे टूटे हैं माया बंद, बिसरना कबहू जाई रहाओ, करत करत अनक बहु पांती,

कर कृपा सर्व प्रतपालक प्रभ को सदा सलाही रहाउ। सास सास तेरा नाम सुमारो तुम ही को प्रभ आही। नानक टेक भई करते की और आस बढ़ानी लाही। गुजरी महला पंजवां कर कृपा अपना दर्श दीजै जस गावो निस हर भोर।

मिथ्या पज सदा भगवंत रहाउ नाम एक आधार भगता ईत आज्ञा टेक कर कृपा गोविंद दिया गुरु।

साधु नानक हर निद लही गुजरी महला पंजवा घर चौथा चौपदी एक ओंकार सतगुर प्रसाद छाड़ सगल सियाणपा साध सरणी आओ पार ब्रह्म परमेश्वरु प्रभु के गुण गाओ रे चित चरण कमल आराध सर्ब सुख कल्याण पावह मिटै सगल उपाद रहाओ मात पिता सुत मीत भाई तिस बिना नहीं कोए ईत ऊत जी नाल संगी सर्ब रविया सोए कोट जतन अपाव मिथ्या कशना आवै काम शरण साधु निर्मला गत

साध संग उधार इहो मन आठ पहर आराध काम क्रोध अहंकार बिनसै मिटै सगल उपाद अटल अशेद अपेद स्वामी शरण ताकी आओ चरण कमल अराध हृदय एक स्यो लिव लाओ पार ब्रह्म प्रभ दया तारी बक्षली ने आप सर्व सुख हर नाम दिया नानक सो प्रभ जाप गुजरी महला पंजवा गुर प्रसादी प्रभ ते आया।

महला पंजवा अहम बुद्ध बहु सगन माया महादीर गरोग हर नाम औखद गुर नाम दीनो करन कारण जोग मन तन बांछिए जन तूर कोट जन्म के लह पातक गोविंद लोचा पूर रहाओ आद अंते माध्य आसा कुकरी बिकराल गुर ज्ञान कीर्तन गोविंद रमणं।

भगत गोपाल सिमरन मिटत जूनी भवन मित्र पुत्र कलत्र सुर रिद तीन ताप जलंत जप राम रामा दुख नवारी मिले हर जन संत सर्ब बिद भ्रम ते पकार है कत है नाही छोट हर चरण सरन अपार प्रभ की दृढ़ गही नानक ओट गुजरी महला पंजवां घर चौथा दोपदे एक ओंकार सतगुर प्रसाद राज श्री तर सफल मूरत करन कारण योग गुण रमन श्रवण अपार महिमा फिर ना होत बेयोग मन चरणार बिंद उपास कल कलेश मटंत सिमरन काट जमदूत फास रहाउ सत्र दहन हर नाम कहन अवर कछ ना अपाउ कर अनुग्रह प्रभु मेरे नानक नाम सुआउ गुजरी महला पंजवा तू समरथ सरण को दाता दुख भंजन सुख राई जाहे कलेश मिटे भै भरमा निर्मल गुण प्रभ गाई गोविंद तुझ बिन अवर ना ठाउ कर कृपा पार ब्रह्म स्वामी जपी तुम्हारा नाउ रहाउ सतगुर सेव लगे हर चरनी वड्डे भाग लिव लागी कवल प्रगास भये साध संगे दुरमत बुद्ध त्यागी आठ पहर हर के गुण गावे सिमरै दीन दयाला आप तरै संगत सब उदरै बिनसी सगल जंजाला चरण आधार तेरा प्रभ स्वामी ओत पोत प्रभ साथ शरण परिउ नानक प्रभ तुमरी दे राखियो हर हाथ गुजरे अष्टपदियां महला पहला घर पहला एक ओंकार सतगुर प्रसाद एक नगरी पंच चोर बसी अले बरजत चोरी धावे त्रिह दस माल रखे जो नानक मोख मुक्त सो पावे केतो हो बास देव बनवाली राम हृदय जप माली रहाउ उर्द मूल जिस साख तलाहा चार भेद जित लागी सहज

सर्वदृष्ट लोचन अभयंतर एकानदर सोत्रे पवन सार पवन पानी अगन तिन किया ब्रह्मा विष्णु महेश अकार सर्वे जाचक तू प्रवदाता दात करे अपने विचार कोट ततीस जाच है प्रभ नायक दें दे तोट नाही पंडार ऊंदे भांडे कछ ना समावे सिद्ध अमृत पर निहार सिद्ध समाधि अंतर जाच है रिद्ध सिद्ध जाच करह जयकार जैसी प्यास हुए माने अंतर

बूझ अंतर शब्द विचार अब तब अवर ना मांगो हर पै नाम निरंजन दीजे प्यार नानक चातरक अमृत जल मांगे।

जिन्ना मध्यम हर शरणागत हर के लोग नाम रते केवल बैरागी सोग बजोग विसर्जत रोग भाई रे गुर कृपा से भगत ठाकुर की सतगुर वाक हृदय हर निर्मल ना जम कान ना जम की बाकी रहाओ हर गुण रसन रवह प्रभ संगे जो तिस भावे सहज हरि बिन हर नाम वृथा जग जीवन हर बिन निफल मेक करी ऐ जी खोटे ठौर नाही घर बाहर निंदक गत नहीं काई रोस करे प्रभ बख्श ना मेटै नित नित चढ़ै सवाई।

है। ये गुरमुख शब्द विचारी कहो नानक से सहज सुख पावे हैं। जिनको नदर तुम्हारी गुजरी महला चौथा कर दूजा एक ओंकार सतगुर प्रसाद हर बिन जियरा रह ना सके। ज्यों बालक खीर आधारी अगम अगोचर प्रभ गुरमुख पाई है। अपने सतगुर कै बलिहारी मन रे हर कीरत तर तारी गुरमुख नाम अमृत जल पाई। जिनको कृपा तुम्हारी रहाओ सनकस नंदन नारद मुन सेव है। अन दिन जपत रह बनवारी शरणागत प्रहलाद जन आई। तिनकी पैज सुवारी

कथ कथा नित नियारी, सफल जन्म भया तिन केरा, आप तरे कुल तारी, मनमुख दुबदा दुर्मत व्यापे, जिन अंतर मोह गुबारी, संत जना की कथा ना पावे, ओए डूबे सन परवारी, निंदक निंदा कर मल धोवे, ओहो मल पख माया धारी, संत जना की निंदा व्यापे, ना उरवार ना पारी, इहो परपंच खेल किया सब करतै, हर करतै सब कल धारी, हर एको सूत वरतै जोगे अंतर, सूत खिंचै एकंकारी, रसन रसन रस गावह हर गुण, रसना हर रस धारी, नानक हर बिन अव

भय त्रास नास कृपाल गुण निध सफल स्वामी सेव हर गोपाल गुरु गोविंद चरण सरण दयाल केशव तार जग भव सिंध रहाउ काम क्रोध हरन मद मोह दहन मरार मन मकरंद जन्म मरन निवार करनी तर पत राख परमानंद जलत अनेक तरंग माया गुर ज्ञान हर रिद मंत छेद अहम बुद्ध करना मैं चिंत मेट पुरख अनंत सिमर समरथ पल मुहूर्त प्रभ ध्यान।

बेकार राख धर्म परम बदार मनते उदर हर निरंकार तनाड आड़ पंडार हर निद होत जिन्ना ना चीर खल मुग्ध मूड कटाक सिरी धर पय गुण मत धीर जीवन मुक्त जगदीश जप मन धार रिद प्रतीत जी दया मया सर्वत्र रमण परम हंस हरीत बेत दर्शन श्रवण हर जस रसन नाम उचार अंग संग भगवान परसन प्रभ नानक पतत उदार।

गारू इन मल दल लाई पाए नानक से उबरे जे सच रहे लिवलाए पौड़ी ताड़ी करे पुकार प्रभु सुनाए सी अंदर तीरक होए पूरा पाए सी जो तुर लिखिया लेख से कर्म कमाए सी जा होवै खसम दयाल ता महल घर पाए सी सो प्रभ मेरा अत वड्डा गुरमुख मिलाए सी सलोक महला तीजा सबना का सहो एक है सदी रहे हजूर नानक हुक्म ना मन्ने ता घर ही अंदर दूर हुक्म पी तिना मनाए सी जिनको नदर करे हुक्म मन सुख पाया प्रेम सुहागण होए महला तीजा रैन सबाई जल मोई कंतना लायो भावो नानक सुख वसन सुहागणी जिन प्यारा पुरख हर राव पौड़ी सब जग फिर मैं देखिया हर इको दाता उपाय कितै ना पाईऐ हर कर्म बधाता गुर शब्दी हर मन वसै हर सहजे जाता अंदरों तृष्णा अग्न बुझी हर अमृत सर नाता वड्डी वड्याई वड्डे की।

ताहि नानक हुकुम ना जातु खसम का जे रहा सच सुमाए महला तीजा एको निश्चल नाम धन होर धन आवै जाय इस धन को तस्कर।

आई, सतगुरु की सेवा न कीतिया, अंत गया पछताई, अपनी कृपा करे गुर पाई, विचों आप गवाई, कृष्णा भुख विचों उतरे, सुख वसै मन आई, सदा सदा सलाही है, हिरदय लिवलाई। सलोक महला तीजा, जे सतगुर सेवे अपना, तिसनो पूजे सब कोए, सबना उपावा सिर उपाऊ है, हर नाम प्राप्त होए, अंतर शीतल शांत वसै, जप हिरदय सदा सुख होए, अमृत खाना अमृत पहनना, नानक नाम वडाई होए महला तीजा। ए मन गुर की सिख सुन, हर पाव है गुणी निदान, हर सुख दाता मन वसै, हउ मैं जाए गुमान, नानक नदरी पाई, तायन दिन लागे ध्यान पौड़ी, सत संतोख सब सच है, गुरमुख पविता अंदरों कपट विकार गया, मन सहजे जिता, तह जोत प्रगास आनंद रस, अज्ञान गविता आनंद नहार के गुण रवे, गुण प्रगट किता, सबना दाता एक है, इको हर मिता। सलोक महला तीजा, ब्रह्म बिंदे सो ब्राह्मण कही है, जे अन दिन हर लिवलाए,

को विरला ब्रह्म ज्ञानी जे हम मैं मेत समाए नानक किसनो मिलिया सदा सुख पाई है जे अन दिन हर नाम त्याए महला तीजा अंतर कपट मनमुख अज्ञानी रसना झूठ बोलाए कपट कीता हर पुरख ना पीजे नित वेखै सुनै सुभाए दूजै पाए जाए जग प्रबोधै।

मन पाया। गुरमुख हर वेख है, गुरमुख हर बोल है, गुरमुख हर सहज रंग लाया। नानक गुरमुख ज्ञान प्राप्त हुवै, तिमर अज्ञान अंधेर चुकाया। जिसनो कर्म होवै धुर पूरा, इन गुरमुख हर नाम त्याया। महला तीजा, सतगुर जिन्ना ना सेवियो, शब्द ना लगो प्यार, सहजे नाम ना त्याया। किते आया संसार, फिर जूनी पाई है, विस्ता सदा खुआर। कूड़ै लालच लगिया, ना उरवार ना पार। नानक गुरमुख उबरे, जे आप मेले करतार पौड़ी। भगत सच्चै दर सोहदे, सच्चै शब्द रहाए। हर की प्रीत तिन उपजी, हर प्रेम कसाए। हर रंग रह सदा रंग राते, रसना हर रस प्याए।

क्रोध अहंकारा यह जम की सिरकार है। इना उपर जम का डंड करारा मनमुख जम मग पाईन

रस भोगी आप अतीत अलिप्त है निर्योग हर योगी जो तिस भावै सो करे हर करे सो होगी हर गुरमुख नाम ते आई है लह जाहे वजोगी।

कर्म प्राप्त होए महला तीजा। वाह वाह करती रसना शब्द सुहाई, पूरा शब्द प्रभ मिलिया आई। वडभागिया वाह वाह मुंह कढ़ाई, वाह वाह करह से जन सोहने, तिन कौ परजा पूजन आई। वाह वाह कर्म प्राप्त होवे, नानक दर सच्चै शोभा पाई। पौड़ी बजर कपाट काया गढ़ पीतर, कूड़ कुसत अभमानी, भरम भूले नदर ना आवनी। मन मुखियां दे अज्ञानी, उपाय कितै ना लभनी, कर भेख थके भेखवानी।

जाए। नानक हस्ती कुंडे बाहरा फिर उजड़ पाए पौड़ी। तिस आगे अरदास जिन उपाया सतगुर अपना सेव सब फल पाया। अमृत हर का नाम सदा त्याया संत जना कै संग दुख मिटाया। नानक भय अचिंत हर धन चलाया। श्लोक महला तीजा खेत में आला उचिया कर उचा निर्णय। महल भगती घर सरह सज्जन पहुण्यो। बरसना ता बरस कना बहुल बरस है काही। नानक तिन बलिहार ने जिन गुरमुख पाया मन माहे। महला तीजा मिठा सो जो भावदा सज्जन सो जे रास।

पौड़ी नित जपिए सास ग्रास नाओ पर्वत गारदा जिसनो करे रहम तिस ना विसारदा आप उपावन हार आपे ही मारदा सब किस जाने जान बुझ विचारदा अनक रूप खिन माहे कुदरत धारदा जिसनो लाए सच तिसे उधारदा जिस दै होवे वल सो कदे ना हारदा सदा भग दी बाण है हौ तिस नमस्कार दा श्लोक महला पंजवां काम क्रोध लोभ छोड़ी दीजे अग्न जलाई जीव दया नित जापीए नानक साचा नाओ महला पंजवां सिमरत सिमरत प्रभ आपन।

मतवन्य मित्र असाढ़े से खाट ने दी जग सबाया जन नानक विरले के पौड़ी आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठियां मन की कटिया मैल साध संग उठिया जन्म मरण भव कटिया जन का शब्द जप बंधन खोलन संत दूत सब जाहे छप तिस स्यों लाइन रंग जिस दी सब धारिया ऊची हूं ऊचा स्थान अगम अपारिया रैन दिनस कर जोड़ सास सास त्याई जां आपे होए दयाल ता भगत संग पाई है।

तिन संग संग ना की चई नानक जिन्ना अपना सुआउ पौड़ी ता वेला परवान जित सतगुर भेटिया हुआ साधु संग फिर दुख ना तेटिया पाया निचल थान फिर गर्भ ना लेटिया नदरी आया एक सगल ब्रह्मेटिया तत ज्ञान लाए ध्यान दृष्ट समेटिया सबो जपिया जाप जे मुखो बोलेटिया हुक्मे भोजनिहाल सुख सुखेटिया परख खजाने पाए से बहुड़ ना खोटिया। सलोक महला पंजवा विशोहे जंबूर हवे ना वंजन गाखड़े जेसो तनी मलन नानक सुख संभू।

तिस माए भगताए हो आधार गुण गोविंद गाए सदा सदा दिन रैन इको एक त्याई

जिन जन त्याया खसम तिन सुख पाया सफल जन्म परवान गुरमुख आया हुक्मै बुज निहाल खसम फुरमाया जिस हुआ आप कृपाल सो नह परमाया जो जो दिता खसम सोई सुख पाया नानक जिसे दयाल बुझाए हुक्म मित जिसे पलाए आप मर मर जमै है नित पौड़ी निंदक मारे तत्काल खिन टिकन ना दिते प्रभदास का दुख ना खव सकै हर जोनी जुते मथे वाल पछाड़ियन जम मार्ग मुते दुख लगे बिन लाणिया नरक घोर सुते कंठ लाए दास रखियन नानक हर सत्ते।

दौलत बन महिया अजहो ना पेट अगही है जन भगतन को कहो ना मानो कियो अपनो पई है दुख सुख करत महाभ्रम बूडो अनक जोन परमई है रतन जन्म खोयो प्रभ बिसरे हो एहो अवसर कत

आई आवत किने ना पेखियो कमने जाने री बाई कौन कह किन बूझी है रमैया आकुल री बाई रहाउ ज्यों अकाश पंखी अलो खोज निरखियो ना जाई।

पानी लख चौरासी जिन अपाई सो सिमरो निर्वाणी कायक मंडल कापड़ी आरे अठ कायक राही बदत त्रिलोचन सुन रे प्राणी कण बिन गाह के पाही गुजरी अंत काल जो लक्ष्मी सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सर्प जोन वल वल औतरै हरी बाई गोविंद नाम।

काल जो लड़के सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै सूकर जोन वल वल अवतरै अंतकार जो मंदर सिमरै ऐसी चिंता मह जे मरै प्रेत जोन वल वल अवतरै अंतकाल नार

पहला सेवक जन बने ठाकुर लिव लागे जो तुम राजस कहते गुरमत तिन मुख भाग सुभागे रहाओ टूटे माया के बंधन फाहे हर राम नाम लिव लागे हमरा मन मोहयो गुरमोहन हम बिसम भई मुख लागे सगली रैन सोई अंधियारी गुर किंचत कृपा जागे जन नानक के प्रभ सुंदर स्वामी मोहे तुम सर अवर ना लागे देव गंधारी मेरो सुंदर कहो मिले कित गली हर के संत बतावो मार्ग हम पीछे लाग चली रहाओ प्रिय के बचन सुखाने ही अरे यह चाल बनी है भली लटुरी मधुरी ठाकुर पाई ओह सुंदर हर ढोल मिली एको प्रियो सखियां सब प्रिय की जो भावे पेर सा भली नानक गरीब क्या करे बेचारा हर भावे तित राहे चली देव गंधारी मेरे मन मुख हर हर हर बोली है गुरमुख रंग चलूलै राती हर प्रेम पीनी चोली है रहाओ हों फिरो दीवानी आवल बावल तिस कारण हर ढोली है कोई मेलै मेरा प्रीतम प्यारा हम तिस की गुल गोली है सतगुर पुरख मनावो अपना हर अमृत पी झोली है गुर प्रसाद जन नानक पाया हर लादा देहे टोली है देव गंधारी अब हम चली ठाकुर पहार जब

सुखदाई पूर्ण प्रभ करता मेरी बहुत ज्ञान पजरत निर्गुण क्रूप कोलहीन नानक हौ आनंद रूप स्वामी भरत देव गंधारी मन हर कीर्त कर सद हूं गावत सुनत जपत उधारै

ज्यो अपने प्रभ भावो नीचो नीच नीच अतनाना होए गरीब बलावो रहाओ अनक अडंबर माया के बिरथे तास्यो प्रीत कटावो ज्यो अपनो स्वामी सुख माने ताम है सोभा पावो दासन दास ऋण दासन की जन की टहल कमावो सर्व सुख बड़े

तेवा दर्शन दुख अवतारेउ नाम जपत महासुख पायो चिंता रोग बदारेउ काम क्रोध लोभ झूठ निंदा साधु संग बसारेउ माया बंद काटे कृपा निद नानक आप उधारियो देव गंधारी मन सगल सियान परही करन कराम नहार स्वामी नानक ओट गही रहाउ आप मेट पए सरनाई एह मत साधु कही प्रभु की आज्ञा मान सुख पाया।

हां किल बिख कोट दोख रोगा प्रवदिष्ट तुहारी हाते सोवत जाग हर हर हर गाया नानक गुर चरण पराते।

रहाउ। खोजत खोजत खोज बीचारियो, हर संत जना पह आहा। तिने प्राप्त इहो निधाना, जिनकै कर्म लिखा हा। ते बड़ भागी ते

लाग हर चरनी लागो जिस प्रभे अंचल गही है आंच न लागे अग्न सागर के शरण स्वामी की अही है कोट पराध महा कीर्त कान बहुर बहुर प्रभ सही है परना मैं पूर्ण परमेश्वर नानक तिस शरण ही है देव गंधारी पंजवा गुर के चरण हृदय प्रवेशा रोग सोग सब दुख बनासे उतरे सगल कलेचा रहाव जन्म जन्म के किल विकनाश है।

नानक दास बलिहारी चके तिन देव गंधारी महला पंजवा माई प्रभ के चरण निहारो करहो अनग्रहो स्वामी मेरे मन ते कभू ना डारो रहाओ साधु धूर लाई मुख मस्तक काम क्रोध बिख जारो सब ते नीच आत्म कर मानो मन में है इहो सुख धारो गुण गावे है ठाकुर अबनासी कलमल सगले चारू नाम निदान नानक दान पावो कंठ लाए उर धारो देव गंधारी महला पंजवा प्रभ जीओ पेखों दर्श तुम्हारा सुंदर ध्यान धार दिन रहनी।

जाको उपजी छोड़ ना कतहु जाता रहा बैखत हर हर सोवत हर हर हर रस भोजन खाता अठ सठ तीरथ मज्जन कीनो साधु धूरी नाता सफल जन्म।

लाइय संकट घोर कटे खिन तर नानक हर दर्श समाइय देव गंधारी महला पंजवा ठाकुर होए आप दयाल पई कल्याण आनंद रूप होई है उबरे बाल गोपाल रहाव दुए कर जोड़ करी बेनंती पार ब्रह्म मन त्याया हाथ दे राखे परमेश्वर सगला दुर्त मिटाया वर नारी मिल मंगल गाया ठाकुर का जयकार कहो नानक जन को बल जाइए जो सबना करे उदार।

काल दयाल दुख भंजन, मेरा सगल अनेतरा गया रहाउ। हम पापी पाखंडी लोभी, हमरा गुण अवगुण सब सहया। कर मस्तक धार साज निवाजे, मुए दुष्ट जो फया। पर उपकारी सर्ब सधारी, सफल दर्शन सह जया। कहो नानक निर्गुण कहो दाता, चरण कमल उर धरिया। देव गंधारी महला पंजवा, अनाथ नाथ प्रभ हमारी।

जब चितवो तब तुहारी उन समाहार मेरा मन साधारी सुन गावो गुरबचनारी बल बल जाऊं साध दरसारी मन मैं राखो एक असारी नानक प्रभ मेरे करने हारी देव गंधारी महला पंजवा प्रभ यह मनोरथ मेरा कृपा निदान दयाल मोहे दीजै कर संतन का चेरा रहा प्रातः काल लागू जन चरनी निस बासुर दर्स पावूं तन मन अर्प करूं जन सेवा रसना हर गुण गाव सास सास सिमरो प्रभ अपना संत संग नित रहिए एक आधार नाम धन मोरा आनंद नानक एहो लही है।

यो पाए छोड़ न जाए सद ही संगे अन दिन गुर मिल गाए रहाओ मिलियो मनोहर सर्ब सुखैना त्याग न कतहु जाए अनक अनक भांत बहु पेखे प्रिय रोम न समसर लाए मंदर भाग सोभ द्वार अनहत रुण चुन लाए कहो नानक सदा रंग मा

गुरचरण तो उत्तरी सगल दुराख्य देव गंधारी पंजवा अमृता प्रिय बचन तुहारी अत सुंदर मन मोहन प्यारी सब हूँ मद निरारी रहाऊ राज ना चाहो मुक्त ना चाहो मन प्रीत चरण कमलारी।

दीन दयाल भये प्रभ अपने बहुड़ जन्म नहीं मारियो रहाओ साध संगम गुण गावे हर के रतन जन्म नहीं हारियो प्रभ गुण गाए बिखे बन तरिया कुलह समूह उधारियो चरण कमल बस्यारिद पुत्र तास ग्रास उचारियो नानक उठ गही जगदीश पुनः पुनः बलिहारियो।

रहाउ, काहे प्रमत हो तुम प्रमहु ना पाई। रवियारे रविया सर्वथान, ज्यों बैसंतर काष्ट मजार, बिन संजम नहीं कार्य सार। बिन गुर ना पावे गो हर जी को द्वार, मिल संगत ताज अभमान। कहो नानक पाए है परम निदान, देव गंधारी पंजवा। जानी ना जाई ता की गात रहाव, कह पखारू हो कर चतुराई। बिस्मन बिस्मे कहन कहात, गण गंधर्व सिद्ध अर साधक। सुर नर देव ब्रह्म ब्रह्मादक, चतुर वेद उचरत दिन रात।

छुटकी रे मन छुटकी रे काकत संग ना छुटकी रे रहाओ। ज्यो काजर भर मंदर राखियो जो पैसा कालू की रे दूरों ही ते भाग गयो है जिस गुरमिल छुटकी त्रे कुटीरे मांगो दान कृपाल कृपा।

करे, ठीक सुखाई रही अपनी सी, दुर्मत ती ना तरे रहाउ, मद माया कै भयू बावरू, हर जस नह उचरे, कर पर पंच जगत को डहके, अपनु उधर पर है, स्वान पूछ दियो होए ना सूदो, कहो ना कान तरे, कहो नानक भज राम नाम नित, जाते काज सरे, देव गंधारी महला नवा, सब किश जीवत को व्यवहार, मात पिता भाई सुत बंधप, हर फुन ग्रह की नार रहाव, तन ते प्राण हो जब न्यारे, तीरत प्रेत पकार, आद करी को नह राखे, घर ते देत निकार, मृग तृष्णा ज्यों जग रचना, यह देखो हृदय विचार, कहो नानक भज राम नाम नित, जहां ते होत उधार, देव गंधारी महला नौवां, जगत मैं चूती।

कोयं गन बसरिया अनक उपरिया तो मैं हर हर करिया तो सुख सहजरिया रहाव मिथन मोहरिया अनको मेरिया विच घूमन घिरिया सगल बटरिया बिरख कतरिया बहुबंद है परिया हिर साध सफरिया जह कीर्तन हरिया नानक सरनरिया एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग बिहागड़ा महला नौवा हर की गत नह को जाने जोगी जति तपी पाच हारिए अर बहु लोग सियाने रहाव तिन मह राव रंक कौ करी राव रंक कर डारी रीते परे परे सखनावे यह ताको व्यवहारी

राम। हर रस बीता हर मन प्यारा, मन हर रस नाम चकोले राम। गुरमत मन ठहराइए मेरी जिंदड़िए, अनक ना काहू डोले राम। मन चिंदड़ा फल पाया हर प्रभु, गुण नानक बाणी बोले राम। गुरमत मन अमृत गुठड़ा मेरी जिंदड़िए, मुख अमृत बैन अलाए राम। अमृत बाणी भगत जना की मेरी जिंदड़िए, मन सुनिए हर लिव लाए राम। श्री वचुन्ना हर प्रभ पाया, गल मिलिया सहज सुपाए राम। जन नानक मन आनंद भया है मेरी जिंदड़िए, अनहत शब्द बजाए राम। सखी सहेली मेरिया मेरी जिंदड़िए, कोई हर प्रभ आन मलावै राम। हौ मन देवो तिसे आपना मेरी जिंदड़िए, हर प्रभ की हर कथा सुनावै राम। गुरमुख सदा आराध हर मेरी जिंदड़िए, मन चिंदड़ा फल पावै राम। नानक भज हर शरणागति मेरी जिंदड़िए, वडभागी नाम त्यावै राम। कर कृपा प्रभ आए मिल मेरी जिंदड़िए, गुरमत नाम परगासे राम। हौ हर बाज उडीनिया मेरी जिंदड़िए, ज्यो जल बिन कमल उदासे राम। गुरपुरै में लाया मेरी जिंदड़िए, हर सज्जन

मन सुखा हरिया होया मेरी जिंदड़िए हर हर नाम त्याए राम हर भाग वड्डे लिख पाया मेरी जिंदड़िए जन नानक नाम समाए राम हर सेती मन बेदया मेरी जिंदड़िए ज्यों बालक लग दुध कीरे राम हर बिन चांत ना पाईऐ मेरी जिंदड़िए ज्यों चातरक जल बिन तेरे राम।

फिर मर्दा बहुड़ जीव आया राम, जन नानक सतगुरु जो मिले मेरी जिंदड़िए, तिनके सब दुख गवाया राम, अत उत्तम हर नाम है मेरी जिंदड़िए, इत जपे पाप गवाते राम, पतत पवित्र गुर हर किए मेरी जिंदड़िए, चहो कुंडी चहो जुग जाते राम, हमें मैल सब उतरी मेरी जिंदड़िए, हर अमृत हर तरना राम, अपराधी पापी उधरे मेरी जिंदड़िए, जन नानक खिन हर राते राम, बिहागड़ा महला चौथा हों बलिहारी।

गुण गावै हर प्रभ कीरे राम। ते सर्वन भले शोभ नीक है मेरी जिंदड़िए, हर कीर्तन सुने है हर तेरे राम। सो शीस भला पवित्र पावन है मेरी जिंदड़िए, जो जाए लगे गुर पैरे राम। गुर विटो नानक वारिया मेरी जिंदड़िए, जिन हर हर नाम च तेरे राम। ते नेत्र भले परवान है मेरी जिंदड़िए, जो साधु सतगुरु देख है राम। ते हस्त पनीत पवित्र है मेरी जिंदड़िए, जो हर जस हर हर लेख है राम। तिस जन के पग नित पूजिय है मेरी जिंदड़िए, जो मार्ग धर्म चलेस है राम। नानक तिन विटो वारिया मेरी जिंदड़िए, हर सुन हर नाम मनेस है राम। धरत पाताल आकाश है मेरी जिंदड़िए, सब हर हर नाम त्यावै राम। पौन पानी वै संतरो मेरी जिंदड़िए, नित हर हर हर जस गावै राम। वण तृण सब आकार है मेरी जिंदड़िए, मुख हर हर नाम।

तेरा जिस अंतर हृदय शुद्ध है मेरी जिंदड़िए तिन जान सब डर सुट कत्ते राम हर निरपो नाम पतीजिया मेरी जिंदड़िए सब झक मारन दू

सहस सियाणप नह मिले मेरी जिंदड़िए। जन नानक गुरमुख जाता राम शका एक बिहागड़ा महला पंजवा शंत घर पहला।

मार्ग बिखड़ा साध गुरमुख हर दरगाह सूबा पाइय जिनको बधाता तुरहु लिखिया तिना रहन दिन लिव लाइय हौ मैं ममता मोह छुट्टा जा संग मिलिया साधे जन कह नानक मुक्त हुआ हर हर नाम अरादे कर जोड़े हो संत एकत्र होए मेरे लाल जियो।

दूर भगतन की मन तन लगो, हर जियो सब पतत पनीता राम। पतता पनीता होए तिन संग, जिन बधाता पाया नाम राते जी दाते। नित देहे चढ़े सो आया, रिद्ध सिद्ध नव निद हर जप। जिन्नी आत्म जीता बिनवंत नानक बड़ भाग पाई है, साध साजन मीता। जिन्नी सच वणंजिया हर

कै चरण लगे है, मन प्रिय प्रेम घना, हर की भगत मंगे है, हर भगत पाई है, प्रभ ते आई है, जाए मिलिए हर जना, मान मोह विकार तजिए, अर्प तन तन एहो मना, बड़ पुरख पूरन गुण संपूर्ण, प्रम पीत हर हर मिल भगे है।

प्रभ त्यावै धन ते बदभागिया सुख सहज सोवह है किल विख खोवह है नाम रस रंग जागिया मिल प्रेम रहना हर नाम गहना प्रिय बचन मीठे पाणी बिनवंत नानक मन इच पाई हर मिले पुरख चिराणी तित ग्रह सोहलड़े कूड आनंदा मन तन रव रहा प्रभ परमानंदा हर कंत अनंत दयाल श्री धर गोविंद पतत उधार नू प्रभ कृपा धारी हर मुरारी भय सिंध सागर तार नू जो सरन आवै तिस कंठ लावै एहो बिरख स्वामी संदा बिनवंत नान।

नाम तपतमा कतह बुझै बिन स्वामी सरनाराम। प्रभ सरन तेरी काट बेरी संसार सागर तारी, नाथ निर्गुण कछ ना जाना। मेरा गुण अवगुण ना बिचारी है, दीन दयाल गोपाल प्रीतम। सम्रात कारण करना नानक चातरक हर बूंद मांगे, जप जीवा हर हर चरना। अमह सरोवरो पियो हर हर नामा राम। संत है संग मिले जप पूर्ण कामा राम। सब काम पूर्ण दुख बदीरन, हर निमख मनहु ना बीसरे। आनंद अनदिन सदा साचा, सर्व गुण जगदीसर। अगणत ऊच अपार ठाकुर, अगम जाको तामा। बिनवंत नानक मेरी इच्छ पूरन, मिले श्री रंग रामा। कई कोटक जग फला सुन।

सदमना शुभ दिवस आए गह कंठ लाए प्रभु ऊचे अगम अपारी बिनवंत नानक सफल सब किश प्रभ मिले अत प्यारी बिहागरा।

लेखा धर्म भया तिल पीड़े कहानी राम किरत कमाने दुख सहो प्राणी अनक जोन प्रमाया महामोहनी संग राता रतन जन्म गवाया एक सहार के नाम बाजू आन काज सियाणी बिनवंत नानक लेख लिखिया भरम मोहे लोभाणी बीच ना कोई करे किरत घन विछड़ पया आए खरे कठन जम कंकर पकड़ लया पकड़े चलाया अपना कमाया महामोहनी रातिया गुण गोविंद गुरमुख ना जपया तपत थम गल लातिया काम क्रोध अहंकार मूठा खोए ज्ञान पछतापया बिनवंत नानक संजोग भूला हर जाप रसन ना जापया तुझ बिन को नाही प्रब राखन हारा राम पतत उदारन हर बिरद तुम्हारा राम पतत उदारन सरन स्वामी कृपा निद दयाला अंधकूप ते उधार करते सगल घट प्रतपाला।

अनक दुख कमावनी अलिपत बंधन रहत करता किया अपना पावनी कर अनग्रह पतत पावन बहु जोन प्रम ते हारी बिनवंत नानक दास हर का प्रभ जी प्राण अधारी तू समरथ वड्डा मेरी मत थोरी राम पाल है अकिरत घना पूर्ण दृष्ट तेरी राम अगाध बोध अपार करते मोहे नीच कछु न जाना रतन त्याग संग्रहन कौडी पशु नीच इयाना त्याग चलती महा चंचल दोख कर कर जोरी नानक सरन

प्रगट भए तीजा सुहावी संग प्रभ कै अपनी प्रभ कर लय छोड़ चिंत अचिंत होए बहुड़ दुख ना पाया नानक दर्शन पेख जीवे गोविंद गुण निद गाया।

बिन नाम हर के सुख नहीं, सहस सियाणप अपाव थाके, जह भावत तह जाहि, आद अंते मद पूरन सर्वत्र घट घट आही, बिनवंत नानक जिन साध संगम, से पत सेती घर जाहि, नरपत जान ग्रहयो सेवक सियाने राम, सर पर विचड़ना मोहे पछताने राम, हर चंदौरी देख भूला कहां अस्थित पाई, बिन नाम हर के आन रचना अहला जन्म गवाई।

तार अनग्रहो अपना कर लीना राम, पुजा गह काग लियो साधु संग दीना राम, साध संगम हर अरादे सगल कलमल दुख जले, महा धर्म सोदान किरिया संग तेरे सिह चले, रसना अरादै एक स्वामी हर नाम मन तन पीना, नानक जिसनो हर

विचार अंतर शब्द वसाया दुख कटिया चानन किया करतार नानक रखन हारा रखसी अपनी कृपा धार महला तीजा।